अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम स्वर रंजनी। आपने सुना गायन राग अहीर भैरव, कलाकार शराभरी बैनर्जी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। श्री मोदी ने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर बल दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा जरूरी है। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। गृहमंत्री ने कहा कि अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। भारतीय नौसेना 31 अगस्त को मुंबई की नौसेना गोदी में निस्टार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को नौसेना में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ये पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसका निर्माण विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। ये पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी नौसेना की क्षमता को मजबूत करेगा। भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू की गई यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के साथ वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक की लंबी सफलता की सराहना की है।
1: दुनिया के 2 डिजिटल भुगतान लेनदेन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेनदेन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेनदेन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दिल्ली सरकार आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर सशक्त बनाना है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीदकर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने प्याज की सस्ती बिक्री के लिए विभिन्न स्थानों पर कैंप लगाने और नेफेड से खरीद की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को संसदीय समिति ने सर्वसम्मति से स्वीकृति दे दी है। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल मामलों की संसदीय समिति की बैठक में एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच मतभेद रहे। बाद में रिपोर्ट की भाषा पर सहमति बनने के बाद समिति ने एजेंसी में सुधार और उसे मजबूत करने से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को स्वीकृति दे दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4 दिन की यात्रा पर कनाडा के टोरंटो पहुंच गई हैं। इस दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांसुआ फिलिप शॉपेनिये के साथ पहली भारत कनाडा आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। इसके बाद वित्त मंत्री G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए अमरीका जाएंगी। भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: Good morning. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi has stressed the need to explore common utility corridors for infrastructure services wherever feasible, particularly while planning major transport and infrastructure projects. Chairing the 53rd meeting of Pragati at Seva Tirth, Mr. Modi called upon ministries and states to examine such integrated approaches at the planning stage itself, keeping in view their technical and economic feasibility. He said that the speed of execution must be accompanied by uncompromising quality. He called upon ministries, states and implementing agencies to adopt modern technologies and strengthen quality assurance and supervision at every stage. During the meeting, Mr. Modi reviewed 6 key infrastructure projects across the railway, road and power sectors spanning 9 states with a cumulative cost of more than 30,000 crore rupees. The projects significant for strengthening connectivity, supporting industrial and economic activity and improving public services were reviewed with particular emphasis on adherence to timelines, inter-agency coordination, resolution of pending issues and expeditious completion. Home Minister Amit Shah has said that to emerge as a leader in every sector, India must further strengthen its internal security. Addressing the concluding session of National Security Strategies Conference, NSSC, in New Delhi, Mr. Shah said Prime Minister Narendra Modi has set the goal of a Viksit Bharat by 2047 and the primary prerequisite for a developed India is robust internal security. He said had the previous governments foreseen the issues of narcotics, Naxalism and the challenges in the Northeast before they escalated into massive crisis, the country would not have had to bear their brunt for decades. The Home Minister said, the government has eliminated the formidable challenges across these 3 internal security hotspots and the entire credit for this goes to the state police forces, central agencies and the CAPFs. He said this NSSC forum should analyze trends for the next 15 to 20 years to identify potential emerging issues and devise strategies to preempt them. Mr. Shah said, the 3 new criminal justice laws will be implemented 100% within the next year, aiming to ensure the resolution of criminal cases up to the Supreme Court level within 3 years and to boost the conviction rate by 25%. India has highlighted the importance of maintaining peace and tranquility in the India-China border areas for the continued development and progress of the India-China bilateral relationship. National Security Advisor Ajit Doval co-chaired the 25th round of the Special Representative's talks on the India-China boundary question with Chinese Foreign Affairs Minister Wang Yi in Beijing yesterday. In a statement, External Affairs Ministry said that the 2 Special Representatives had a candid and in-depth exchange of views on the India-China boundary question. They agreed to continue their work in seeking a political settlement of the boundary question in the context of their overall and long-term interests. Delhi government will hand over the approval letters to 4,000 eligible women beneficiaries under the Delhi Lakshmi Yojana today. Under the scheme, eligible women will receive financial assistance of 2,500 rupees every month. Canada has struck back at the United States with retaliatory tariffs on about $20 billion worth of American goods, including steel, dairy products, appliances and farm equipment, as the trade war between the 2 countries escalated sharply. The new tariffs extend well beyond industrial goods, hitting everyday purchases such as seafood, cheese, clothing, cosmetics and toilet paper, with some facing duties as high as 50%. The tariffs will be implemented from 8 September, even as US tariffs already came into place on Saturday. Canada's Finance Minister François-Philippe Champagne said Ottawa's tariffs will match US levels. Canada's retaliation came after the Trump administration imposed 50% tariffs over the weekend on Canadian goods following the collapse of trade negotiations. And US President Donald Trump has said that the US Navy has removed or detonated all mines in the Strait of Hormuz, the vital waterway which Iran has largely closed since the beginning of the war in West Asia. In a post on his Truth Social platform, Trump said Iran has been notified that any ship or boat placing new mines will be immediately and systematically destroyed. There is no comment from Iran. Closure of the strait has caused wild fluctuations in the price of oil on world markets. And that is the end of this news bulletin.
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है सुबह के 6:10 और पूरे 15 सेकंड। और आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

di Bapak.

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शब्द भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में। आज के लिए इतना ही। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन, जिसमें आप सुनेंगे स्वामी रामकृष्ण परमहंस के विचार।

0: स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास प्रतिदिन अनेक लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आते थे। स्वामी जी से अपनी जिज्ञासा व्यक्त करके व उनसे समाधान पाकर लोग खुशी खुशी अपने घर लौटते थे। एक व्यापारी अपने जीवन में बहुत व्यस्त रहता था। उसका व्यापार बहुत तरक्की कर रहा था। वह अपने व्यापार में पूरी ईमानदारी बरतता था। ईश्वर में भी उसकी अटूट आस्था थी, किंतु उसे अपने व्यस्त जीवन में आराधना का समय नहीं मिल पाता था। वह अपनी इसी समस्या को लेकर स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचा। स्वामी रामकृष्ण बोले, इस प्रश्न का जवाब मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, पर पहले तुम मुझे यह बताओ कि क्या तुमने कभी किसी ग्रामीण स्त्री को ढेंकी से चूड़ा बनाते देखा है? स्वामी जी का यह अजीबोगरीब प्रश्न सुनकर व्यापारी बोला, नहीं स्वामी जी, मैंने तो किसी ग्रामीण स्त्री को ऐसा करते आज तक नहीं देखा। अरे, मुझे अपने व्यापार से फुर्सत मिले तब तो मैं कुछ देखूं। इस पर स्वामी जी बोले, चूड़ा बनाने वाली ग्रामीण स्त्री एक हाथ से चूड़ा पलटती जाती है तथा दूसरे हाथ से बच्चे को गोदी में लेकर दूध पिलाती रहती है। उस दौरान यदि कोई पड़ोसन या अन्य व्यक्ति उसके पास आता है तब वह उनसे बातें भी करती है, ग्राहक आने पर उनसे हिसाब भी करती है, किंतु इन सब के बीच उसका कार्य निरंतर चलता रहता है। इन सब कामों के बीच उसका ध्यान ओखली और मूसल पर लगा रहता है। वह भली भांति जानती है कि यदि थोड़ी सी भी असावधानी बरती गई तो मूसल हाथ पर गिरेगा और हाथ टूट जाएगा। उस ग्रामीण स्त्री की तरह ही हमें अपने सांसारिक कार्यों के बीच सर्वशक्तिमान ईश्वर की स्तुति करनी चाहिए। उसके लिए अलग से समय नहीं निकाल पाने का पछतावा नहीं करना चाहिए। स्वामी जी के इस उदाहरण से व्यापारी भली भांति समझ गया कि व्यस्त रहते हुए भी ईश्वर की आराधना की जा सकती है। तभी स्वामी जी बोले, पुत्र, एक बात और याद रखना कि कार्य और व्यापार में ईमानदारी बरतना, मन लगाकर काम करना भी ईश्वर की आराधना के ही बराबर है। व्यापारी स्वामी रामकृष्ण परमहंस से अपनी जिज्ञासा का उत्तर पाकर संतुष्ट हो गया और उन्हें प्रणाम कर वापिस चला गया।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन, जिसमें आपने सुना रामकृष्ण परमहंस के विचार।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस अयोध्या कांड भाग 29।

श्री राम के वनगमन पर अयोध्या वासियों का आर्तनाद सुना नहीं जाता। जब राजा दशरथ की मूर्छा दूर हुई तो उन्होंने मंत्री सुमंत्र को बुलाकर कहा, श्री राम वन जा रहे हैं किंतु अब भी मेरे प्राण शरीर नहीं छोड़ रहे। ना जाने किस सुख की आशा में ये अब भी इस शरीर में टिके हुए हैं। फिर कठिनाई के साथ मन में धीरज धारण कर उन्होंने सुमंत्र से अनुरोध किया कि वे दोनों सुकुमारों और सुकुमारी जानकी को रथ में बिठा वन दिखाकर चार दिनों में वापस लौटावे। यदि दृढ़ प्रतिज्ञ दोनों कुमार ना भी लौटे तो उनसे आग्रह करना कि वे सुकुमारी सीता को लौटा दें। यदि सीता वन देखकर डरें तो उनसे कहना कि सास ससुर का ऐसा संदेश है कि पुत्री तुम लौट आओ। यदि वो लौट आई तो मेरे प्राणों को थोड़ा सहारा मिल जाएगा। इतना कहकर राजा एक बार फिर मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। राजा की आज्ञा के अनुसार सुमंत्र रथ लेकर श्री राम, सीता और लक्ष्मण के पास पहुंचे। हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर सिया समेत दोनों भाई रथ पर चढ़कर वन की ओर चले। व्याकुल अयोध्यावासी उनके रथ के पीछे दौड़ते चले। श्री राम उन्हें वापस चले जाने को कहते हैं तो वो लौटने लगते हैं किंतु प्रेमवश फिर रथ के पीछे दौड़ने लगते हैं। राम के विरह में शोकाकुल अयोध्यावासी चित्रलिखित से हो चले हैं।

0: सीमाक्षेत्रेषु शान्तिस्थापनस्य महत्त्वं भारतं प्रतिपादितवान्। राष्ट्रियसुरक्षापरामर्शदः अजीतडोभालः फिजिंगनगरे चीनविदेशमन्त्रिणा वांग यी इत्यनेन सह भारत-चीन-सीमाप्रश्नविषयेषु विशेषप्रतिनिधीनां वार्तायाः 25तमस्य चरणस्य सहाध्यक्षतां कृतवान्। विदेशमन्त्रालयः एकस्मिन् वक्तव्ये अवदत् यत् उभौ प्रतिनिधी तेषां समग्रं दीर्घकालिकं च हितं दृष्ट्वा सीमप्रश्ने राजनैतिकसमाधानस्य प्रयत्नान् अनुवर्तयितुं सहमतौ अभवताम्। उभौ पक्षौ 24,000-2,000तमवर्षस्य अक्टूबरमासे कजाननगरे, गतवर्षे अगस्तमासे तियाचीननगरे च स्वनेतृभिः प्राप्तानां महत्त्वपूर्णसर्वसम्मतीनां कार्यान्वयने प्रगतिम् अभिलक्षितवन्तौ। उपभोक्तृकार्यविभागस्य सचिवा निधिखरे इत्येषा अकथयत् यत् कांदा एक्सप्रेस यानं दिल्लीनगरं प्रति प्रायः 800 मैट्रिकटन परिमितं पलाण्डुः आनयनस्ति। सामाजिकान्तरजालीये पटले सचिवा अवदत् यत् नाफेड, NCCF तथा केन्द्रीयभण्डारकेन्द्रेषु पलाण्डुः 35 रूप्यकाणि प्रति किलोग्राम मूल्येन विक्रीयते। कांदा एक्सप्रेस यानम् आरम्भे चेन्नई, एर्नाकुलम, मदुरई, गुवाहाटी इत्येतेषु स्थानेषु प्राप्स्यति इति सा संसूचितवती इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी ने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र और राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर बल दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बेहद जरूरी है। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। गृहमंत्री ने कहा कि अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। भारतीय नौसेना 31 अगस्त की मुंबई की नौसेना डॉकयार्ड में नेपस्टार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को नौसेना में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ये पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों को लेकर संसदीय समिति ने मसौदा रिपोर्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। समिति ने एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने समेत एजेंसी में सुधार और उसे मजबूत बनाने से जुड़ी सिफारिशों पर सहमति व्यक्त की। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति की ये 6ठी बैठक थी। इसमें 382वीं रिपोर्ट के मसौदे पर चर्चा के बाद उसे मंजूरी दी गई। दिल्ली सरकार आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर सशक्त बनाना है। इस बीच दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा है कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीदकर लोगों को

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका, जिसमें आपने सुना इंद्रेश मिश्रा द्वारा भजन। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सब सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग और मैं हूं आपकी दोस्त आरती कौर। उम्मीद है आपकी सुबह बेहद खूबसूरत और ताजी चाय की चुस्की जैसी कड़क होगी। सूरज देखिए निकल चुका है और परिंदे भी चहकना शुरू कर चुके हैं और आपका अपना इंद्रप्रस्थ चैनल आपके साथ जुड़ चुका है आपके दिल को शानदार बनाने के लिए। और ये खूबसूरत सा गीत जो आप सुन रहे हैं, इसके बाद आपके बॉडी में एक अलग तरीके की तरंग, एक अलग तरीके की एनर्जी जरूर आ गई होगी।

दोस्तों, ये गीत आपने सुना फिल्म जब तक है जान से, और कार्यक्रम है गीतों भरी। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ आपकी दोस्त आरती कौर। और हर खूबसूरत सुबह में कुछ ना कुछ नया ऐसा होता है जो आपके लिए कुछ सीखने लायक ज़रूर आता है। हर सुबह अपने साथ जो लाती है वो होता है मौका, एक नया मौका कुछ नया सीखने का, पुरानी गलतियों को भूल कर आगे बढ़ने का। और ये मौका गंवाना बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि अगर आपने ये मौका गवा दिया तो फिर आप फिर से सेम गलती करेंगे, फिर से कुछ और ऐसा करेंगे जिससे आपकी ज़िंदगी और मुश्किल हो जाएगी। तो हर मौके को आप अपनाना सीखिए, और हर मौके में कुछ ना कुछ छिपा होता है आपके सीखने के लिए, आपके अनुभव के लिए और आपकी लाइफ में कुछ बदलने के लिए।

जी हाँ, थोड़ी सी हंसी, थोड़ा सा गम और इन्हीं से मिलकर बन जाती है हमारी जिंदगी। फिलहाल हमेशा की तरह आपको पता है ना कि मैं आपके लिए सिर्फ एक मौका ही नहीं लेकर आती, बल्कि मैं आपके लिए लेकर आती हूँ एक खूबसूरत सी छोटी सी ऐसी कहानी जिससे आपको अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखने के लिए, इंस्पायर होने के लिए मिल सकता है। तो आज की भी जो एक कहानी है ना, वो किसी के एक्सपीरियंस पर बनी है। मेरा एक फ्रेंड ने ये कहानी मुझे सुनाई थी कि एक बार जब वो कहीं जा रहा था तो उसने रास्ते में एक छोटी सी घटना देखी जो वो सबके साथ शेयर करना चाहता था, लेकिन वो शेयर करने के लिए उसे माध्यम नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा चलो माध्यम मैं बन जाती हूँ। उसने बताया कि एक बुज़ुर्ग अंकल सड़क किनारे एक छोटे से पौधे को पानी दे रहे थे। तो उसने गाड़ी रोकी और उसने पूछा कि अंकल, आप रोज़ इस पौधे का इतना ख्याल रखते हैं क्यों? इस पेड़ की ठंडी छाँव में बैठने के लिए शायद आप खुद ना हो। तो अंकल मुस्कुराए और बोले, बेटा जब मैं छोटा था तो जिन पेड़ों की छाँव में बैठकर मैंने खेल कूद किया, वो पेड़ मेरे दादाजी ने लगाए थे। आज अगर मैं ये पौधे लगा रहा हूँ तो इसलिए नहीं कि ये मुझे छाँव देंगे, बल्कि इसलिए कि आने वाली पीढ़ी को एक ठंडी छांव मिल सके। जी हाँ, कई बार हम यही तो करते हैं। हम अपने बारे में इतने स्वार्थी हो जाते हैं, इतना सोचने लगते हैं कि हमें अपने लिए करना है, अपने लिए करना है, ये बचाना है, वो रखना है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमारे जाने के बाद भी तो दुनिया रहेगी, तो क्या हमें उसके लिए कुछ करके नहीं जाना चाहिए? ज़रूरी तो नहीं कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो, बहुत सारी दौलत शौहरत हो, आप वही उसी से दुनिया का भला कर सकें। आपकी एक प्यारी सी मुस्कान, आपकी एक मीठी सी बात और आपके ये छोटे छोटे काम भी किसी के काम आ सकते हैं। तो भाई, मुझे तो उन बुज़ुर्ग अंकल की कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला है। क्या आपको भी सीखने को मिला है? आप मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन फिलहाल इस खूबसूरत से गीत को चलिए सुनते हैं और सुनकर ये पता लगाते हैं कि कितनी खुशी हमारे अंदर अभी और बची है, जिसे हमें मुस्कुराना सीखना है और जिसके साथ हमें जीना है।

दोस्तों, इस गीत ने कितनी खूबसूरती से संगीत को बयां कर दिया। जी हाँ, संगीत की अपनी कोई जुबान नहीं होती। संगीत जब आपके दिल में बजने लगता है ना, तो फिर अपने आप में उसमें दुनिया समा जाती है। आप अपना हर मौका देख लीजिए, आप खुशी में होते हैं तो आपको खुशी के नगमे सुनने का मन करता है, आप दुख में होते हैं तो आपके अंदर एक दुख की धुन चल रही होती है। आप अगर ऐसे ही यूं ही बस अपने वक्त को अपने साथ गुजारना चाहते हैं, अपनी तन्हाई को जीना चाहते हैं, तो उस वक्त भी संगीत आपका साथी बन जाता है। रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, जब भी हो, संगीत आपके साथ होता है। और संगीत सच में, इसके अंदर पूरी दुनिया जुड़ी है, हमारे सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं। और संगीत अपने आप में जीवन की एक ऐसी रिदम है, एक ऐसी धुन है, जो हर वक्त हमारी हर एक सांस के साथ बजती रहती है। आप अपने दिल की धड़कन सुनिए, उसमें भी एक संगीत बज रहा है। और सच में, संगीत से हम सब ऐसे जुड़े हैं जैसे बिना संगीत के हमारा जीवन कुछ है ही नहीं।

दोस्तों, हम हमेशा सच्ची खुशी की तलाश में रहते हैं और सच्ची खुशी ना तो पैसों में होती है और ना ही साजो सामान में, बल्कि सच्ची खुशी छिपी होती है छोटी छोटी सी खुशियों के अंदर, छोटे छोटे से पलों के अंदर। जी हाँ, आपकी छोटी छोटी उपलब्धियाँ होती हैं या छोटी छोटी अचीवमेंट्स होती हैं, वो आपको खुशी देती हैं। कभी कभी एक खूबसूरत सा खिला हुआ सा फूल भी देखकर आपका दिल बिल्कुल गार्डन गार्डन हो जाता है। और कभी अपने दोस्तों के साथ बैठकर ढेर सारी बातें करना, चाय की चुस्की लेना, परिवार के साथ एंजॉय करना, या फिर कभी अपने अकेलेपन में एक प्यारी सी किताब लेना और अच्छा सा संगीत सुनना, ये भी आपको खुशी दे जाता है। और इन सब चीज़ों के लिए आपको किसी पैसे की ज़रूरत नहीं होती। और कभी कभी आप जब किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो उससे बड़ी तो कोई बात नहीं होती। वो सिर्फ खुशी आपके अंदर ही नहीं आती है, बल्कि वो खुशी बहुत सारे लोगों को भी आप बांट चुके होते हैं, आपको पता ही नहीं होता। आपकी एक छोटी सी मुस्कान किसी और के चेहरे पर मुस्कान ला देती है और किसी को अंदर तक खुशी दे जाती है, ये आपको कभी पता नहीं चलता। और इन सब चीज़ों के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। बस आपके अंदर होनी चाहिए पॉजिटिविटी, आपके अंदर होनी चाहिए कुछ करने की चाह, और आपके अंदर होनी चाहिए दूसरों के साथ, इंसानियत के साथ रहने की तमीज़। अगर आप ये चीज़ें अपने अंदर रख लेंगे तो फिर सच्ची खुशी आपसे दूर नहीं रहेगी, बल्कि आपके अंदर ही रहेगी और हमेशा आप उसे पा सकते हैं।

दोस्तों इसी गीत के साथ आपसे लेनी होगी विदाई, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि आप अपने अंदर की जो उम्मीद है उसे जिंदा रखेंगे, जो बीत गया उसे भूल जाएंगे, उस अनुभव से सीख लेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। फिलहाल अपनी दोस्त आरती को दीजिए इजाजत, लेकिन बहुत सारे कार्यक्रम इंद्रप्रस्थ पर अभी आपके लिए आने बाकी हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम से मैं चलती हूँ, आपसे लेती हूँ विदा। आपका दिन मंगलमय हो इसी शुभकामना के साथ। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम की तो वेरी गुड मॉर्निंग, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। भारत और चीन ने सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। दुनिया भर में ईद मिलाद उन नबी की रौनक, केरलवासी मना रहे ओणम का सबसे शुभ दिन तिरुओणम। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराकर ग्रैंड शतरंज टूर फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। श्री मोदी ने किसानों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रीस्टैक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर उपयोग का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा दिया जाए। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश भर में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बेहद जरूरी है।
3: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि अगले 15 से 20 वर्षों की संभावित चुनौतियों की पहचान कर उन्हें समय रहते रोकने की रणनीति बनाई जानी चाहिए। गृह मंत्री ने राज्यों से नशे के खिलाफ अभियान तेज करने और सुरक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर बल देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: गृह मंत्रालय ने केरल का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम कर दिया है। ये बदलाव 25 अगस्त से लागू हो गया है। केरल का नाम बदलने से संबंधित विधेयक 11 अगस्त को लोकसभा और अगले दिन राज्यसभा में पारित हुआ था। इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके बाद इसे कानून का रूप मिल गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। भारतीय नौसेना निस्तार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को 31 अगस्त को मुंबई में डॉकयार्ड में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ये पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका निर्माण विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। ये पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी नौसेना की क्षमता को मजबूत करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
4: अब तक 9,13,000 से अधिक महिलाओं ने इस योजना के लिए पंजीकरण कराया है और 6,52,000 से अधिक आवेदन अंतिम रूप से जमा किए जा चुके हैं। दिल्ली सरकार ने कहा कि वित्तीय सहायता अगले महीने की पहली तारीख से सीधे महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। दिल्ली के वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। दिल्ली सरकार ने सभी पात्र महिलाओं से समय पर अपना ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करने का भी आग्रह किया है। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा है कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीद कर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ गठित करने के विचार पर सहमत हो गया है। केंद्र सरकार ने याचिका में सिविल सेवा परीक्षा 2025 के अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर से जुड़े उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले पर स्पष्टीकरण मांगा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों को लेकर संसदीय समिति ने मसौदा रिपोर्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। समिति ने एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने समेत इसमें सुधार और मजबूत बनाने से जुड़ी सिफारिशों पर सहमति व्यक्त की। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति की ये छठी बैठक थी। ई श्रम पोर्टल को आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये भारत के असंगठित कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 2021 में इस पोर्टल को शुरू किया था। इसके माध्यम से देश का पहला आधार आधारित राष्ट्रीय असंगठित श्रमिक डेटाबेस तैयार किया गया है। सरकार अखिल भारतीय निगरानी नेटवर्क के माध्यम से देश भर में प्रचलित मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों के रुझानों पर कड़ी नजर रख रही है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ राजीव बहल ने मीडिया को बताया कि देश में वर्तमान में फैल रहा इन्फ्लुएंजा वायरस पिछले कुछ वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप है। वर्तमान अवलोकन किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे के उभरने का संकेत नहीं देते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 25 अगस्त से 2 सितंबर तक कनाडा और अमेरिका की 9 दिन की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करना है। कनाडा की 4 दिन की यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन वहां के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शॉपिने के साथ पहली आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। अमरीका में वित्त मंत्री शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क का दौरा करेंगी। भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों ने कहा है कि इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।
5: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल पेचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं दौर की वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों देशों ने अक्टूबर 2024 में कजान और पिछले साल अगस्त में तियाजिन में बनी सहमति को लागू करने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों पक्षों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा और 3 निर्धारित सीमा व्यापार मार्गों से सीमा व्यापार समेत लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने का भी स्वागत किया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं विकास नापा।
1: भारत और न्यूजीलैंड ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों देशों के बीच दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में हुई। वार्ता में

0: समुद्री सुरक्षा, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और 2030 के रोड मैप के लक्ष्यों को पूरा करने पर विचार किया। भारत और मोरक्को ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने, निवेश में वृद्धि करने और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और मोरक्को के बीच साझेदारी को अधिक मजबूत तथा गतिशील बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कनाडा ने अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापार विवाद के बीच 27 अरब 60 करोड़ डॉलर के अमेरिकी सामान पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाने का फैसला किया है। ये जवाबी शुल्क 8 सितंबर से लागू होंगे। गोवा के परनेम स्थित पत्रा देवी शहीद स्मारक का आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अनावरण करेंगे। ये स्मारक गोवा के मुक्ति संग्राम में बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति और उनके योगदान को समर्पित है।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि यह स्मारक उन 31 सत्याग्रहियों की याद में बनाया गया है जिन्होंने 1955 में गोवा को भारत में शामिल करने की मांग को लेकर सत्याग्रह किया था। गोवा में प्रवेश की कोशिश के दौरान पुर्तगाली सैनिकों की गोलीबारी में उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्मारक परिसर में शहीदों की याद में मूर्तियां और अलग अलग संरचनाएं बनाए गए हैं। पत्रा देवी शहीद स्मारक शहीदों को श्रद्धांजलि देने, इतिहास को समझने और आने वाली पीढ़ियों को गोवा के मुक्ति संग्राम से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने की उम्मीद है। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर अलग अलग जगहों पर पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। उधर केरलवासी ओणम का सबसे शुभ दिन तिरुओणम मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को ओणम के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि खुशियों और उल्लास का ये रंगारंग त्योहार पूरी दुनिया में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने ईद ए मिलाद उन नबी की भी शुभकामनाएं दी हैं। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, केरलम और माहे में तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी दिन के दौरान तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में सक्रिय मॉनसून के बीच आज सुबह राज्य में भूकंप के झटके महसूस किए गए। शिमला में सुबह करीब 5:46 पर हल्के झटके आए जो कुछ सेकंड्स तक चले। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर के फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है। प्रज्ञानंदा ने सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट कीमर को 19-9 से हराया। फाइनल मैच प्रज्ञानंदा और मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआना के बीच खेला जाएगा। शीर्ष 3 स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ी अगले साल के ग्रैंड चेस टूर के लिए सीधे क्वालिफाई करेंगे। भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन से पीछे है। भारतीय टीम ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान की खबर है, देश में अब निजी कंपनियां भी मिसाइल का निर्माण कर सकेंगी। डीआरडीओ की तकनीक निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करने की मंजूरी। अमर उजाला लिखता है, सरकार देगी तकनीक, निजी कंपनियां बनाएंगी मिसाइलें। इस फैसले से देश में ही मिसाइलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सकेगा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, H1N1 संक्रमण के मामले बढ़े, स्कूलों को दी हिदायत। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सीमा विवाद का समाधान तलाशने पर भारत चीन सहमत। एनएसए अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की अगुवाई में हुई विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता। जनसत्ता ने सर्वोच्च न्यायालय का कथन दिया है, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं होने देंगे। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, यूपी में बुजुर्ग महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर। स्कॉलरशिप से वंचित स्टूडेंट्स के लिए फिर खुलेगा पोर्टल, मेडिकल क्षेत्र में भी भत्ता बढ़ा। पंजाब केसरी ने

0: हमाम, बारूदी सुरंगों को हटा दिया है या धमाके से तबाह कर दिया है। आबनाए हुरमुज एक इंतहाई अहम बहरी गुजरगाह है, जिसे मगरबी एशिया में जंग शुरू होने के बाद से ईरान ने बड़ी हद तक बंद कर रखा है। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा कि ईरान को खबरदार कर दिया गया है कि अगर कोई भी जहाज या कश्ती नई बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश करेगी तो उसे फौरी तौर पर और मुनज्जम अंदाज में तबाह कर दिया जाएगा। ट्रंप के इस बयान पर अब ईरान की जानिब से अभी कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। आबनाए हुरमुज को बंद करने के बायस आलमी बाजारों में तेल की कीमतों में शदीद उतार चढ़ाव देखा गया है। ट्रंप अक्सर कहते रहे हैं कि इस इलाके पर अमरीका का कंट्रोल है, ताहम ईरान ने उन बहरी जहाजों पर फायरिंग भी की है जिनके बारे में उसका कहना है कि जहाजों ने उसकी इजाजत के बगैर आबनाए हुरमुज से गुजरने की कोशिश की थी। आज पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत ईद मिलादुन्नबी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर मीलाद महफिलों और सीरत पाक के जलसों का एहतमाम किया गया है, जिसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा और तालीमात को उजागर किया जाएगा। इस मौके पर मीलाद के जुलूस भी निकाले जा रहे हैं, सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ईद मिलादुन्नबी के मौके पर शहरियों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने उम्मीद जाहिर की कि यह दिन दुनिया भर में इत्तेहाद और खुशी को फरोग देगा। वजीर आजम ने तमन्ना की कि रहमदिली, मेहरबानी और मुआशरे की भलाई का जज्बा हमेशा हम वतनों की रहनुमाई करता रहे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ओनम के मौके पर हम वतनों को मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि यह रंगारंग फेस्टिवल दुनिया भर में बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। जनाब मोदी ने कहा कि यह फेस्टिवल खुशी, इत्तेहाद और खुशहाली के जज्बे को मजीद फरोग दे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज पर्नम में पितरा देवी मार्टियस मेमोरियल का इफ्तिताह करेंगे। ये यादगार गोवा की आज़ादी की जिद्दोजहद के लिए एक खराज तहसीन है और इसका मकसद आज़ादी की तहरीक के दौरान दी जाने वाली कुर्बानियों की याद को महफूज बनाना है। पेश एक रिपोर्ट।
1: वजीर आला डॉ प्रमोद सावंत ने कहा कि ये यादगार उन 31 सत्याग्रह करने वाले लोगों को खराज अकीदत है जिन्हें 1955 में गोवा को भारत में शामिल करने के मुतालबे के साथ दाखिल होने की कोशिश के दौरान पुर्तगाली फौजियों ने शहीद कर दिया था। इस यादगार को इस अंदाज में डिजाइन किया गया है कि हाजरीन गोवा की सत्याग्रह तहरीक की तारीख को आसान और दिलचस्प अंदाज में समझ सके। तवक्कु है कि यह यादगारी मकाम मालूमात और मकामी फख्र का एक ऐसा मरकज बनेगा जो नई नस्ल को गोवा की तारीख से जोड़ने में मदद करेगा। पनाजी से महेश चोपड़े की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
0: दिल्ली सरकार ने कहा है कि कौमी राजधानी में फिलहाल प्याज या चीनी की कोई किल्लत नहीं है। दिल्ली के वजीर आला रेखा गुप्ता ने कल दिल्ली में प्याज और चीनी की दस्तियाबी और कीमतों का जायजा लिया। हुकूमत ने कहा है कि अगर कीमतों में मजीद इजाफा होता है तो मरकजी हुकूमत के इदारे नैफेड से प्याज और चीनी खरीद कर दिल्ली के मुख्तलिफ मकामात पर आवाम के लिए दस्तियाब कराएगी। हुकूमत ने यह भी यकीन दिलाया कि ये अशिया उसी कीमत पर फरोख्त की जाएंगी जिस कीमत पर उन्हें नैफेड से खरीदा जाएगा, जबकि नकल व हमल और दीगर मुतल्लिका अखराजात दिल्ली सरकार बर्दाश्त करेगी। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रगनंदा ने जर्मनी के विंसेंट केमर को 19-9 से शिकस्त देकर ग्रैंड चेस टूर के आखिरी मरहले के फाइनल में जगह बना ली है। दूसरा क्लासिकल मैच जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ी को आखिरी दिन 6 पॉइंट्स की बर्तरी हासिल थी, जिस दिन कम दौरानिये के मैच खेले गए। टूर्नामेंट के फाइनल में प्रगनंदा का मुकाबला अमेरिका के फैबियानो कारवाना से होगा, जो इस इवेंट के दिफाई चैंपियन हैं। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
2: शुक्रिया अम्मार। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल के दौरे चीन से मुतालिक खबरों को अपनी शेष सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा प्रताप की सुर्खी है, चीन के नायब सदर हान से मिले डोभाल, दो तरफा ताल्लुकात को बेहतर बनाने पर की बातचीत। दिफाई खुद इनसारी की जानिब भारत का बड़ा कदम, रिवायती मिजाइल निजाम की टेक्नोलॉजी भारतीय सनतों को मुंतकिल करने की मंजूरी। इस खबर को इनकलाब प्रताप समेत कई दीगर अखबारात ने अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने एक अहम खबर को शाये करते हुए सुर्खी लगाई है, वजीर दाखिला अमित शाह ने दरअंदाजों के खिलाफ कार्रवाई, मफरूर मुजरिमों को मुल्क वापस लाने और कानून के शिकंजे में लाने के लिए सिक्योरिटी एजेंसियों को सख्त हिदायत जारी की। आज ईद मिलाद उन नबी के मौके पर पूरे मुल्क में खसूसी इंतजाम किए गए हैं। इस खबर को सभी अखबार ने अहमियत के साथ शाई किया है।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने प्रगति मीटिंग में 30,000 करोड़ रूपए मालियत के बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का जायजा लिया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने 3 नए फौजदारी कवानीन के 100% नफाज के लिए 1 साल की मुद्दत मुकर्रर की। दिल्ली हुकूमत आज लक्ष्मी योजना के तहत 4,000 अहल खातून मुस्तफीदीन को मंजूरी नामे फराहम करेगी। भारत और चीन ने मजमूई और तवील मुद्दती मफादात को मद्देनजर रखते हुए दोनों मुल्कों के सरहदी मसले के सियासी हल के लिए काम जारी रखने पर इत्तेफाक किया। आज पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत ईद मिलादुन्नबी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। और आर परगनंदा ने जर्मनी के विंसेंट केमर को 19-9 से हराकर ग्रैंड चेस टूर के आखिरी मरहले के फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वर गंगा, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सोनाली भट्टा की प्रस्तुति, जो राग मिश्र रामदासी मल्हार, मिश्र सिंधु भैरवी और राग मिश्र भैरवी में ठुमरी व दादरा प्रस्तुत करेंगी। तबले पर बलराम सिसोदिया और हारमोनियम पर दिनकर शर्मा उनका साथ देंगे। तो आइए आनंद लेते हैं शास्त्रीय संगीत की इस खूबसूरत प्रस्तुति का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वर गंगा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आपने सुना सोनाली नट्टा को, जो राग मिश्र रामदासी मल्हार, मिश्र सिंधु भैरवी और राग मिश्र भैरवी में ठुमरी व दादरा प्रस्तुत कर रही थी। तबले पर साथी थे बलराम सिसोदिया और हारमोनियम पर दिनकर शर्मा उनका साथ दे रहे थे। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.5

0: वाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में प्रधानमंत्री ने 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा भी की।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। श्री मोदी ने किसानों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रीस्टैक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर उपयोग का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा दिया जाए। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश भर में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में कल राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बहुत जरूरी है। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि अगले 15 से 20 वर्षों की संभावित चुनौतियों की पहचान कर उन्हें समय रहते रोकने की रणनीति बनाई जानी चाहिए। गृह मंत्री ने राज्यों से नशे के खिलाफ अभियान तेज करने और सुरक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर बल देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: गृह मंत्रालय ने केरल का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम कर दिया है। ये बदलाव कल से लागू हो गया है। केरल का नाम बदलने से संबंधित विधेयक 11 अगस्त को लोकसभा और अगले दिन राज्यसभा में पारित हुआ था। दिल्ली सरकार आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान के लिए वार्ता जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर भी बल दिया गया है। दोनों देशों ने कहा इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल पेचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। भारतीय नौसेना निस्तार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को 31 अगस्त को मुंबई में डॉकयार्ड में शामिल करेगी। इसका निर्माण विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों को लेकर संसदीय समिति ने मसौदा रिपोर्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। समिति ने एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने समेत इसमें सुधार की सिफारिशों पर सहमति व्यक्त की। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति की यह 6वीं बैठक थी। ई श्रम पोर्टल को आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये भारत के असंगठित कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 2021 में इस पोर्टल को शुरू किया था। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन ईद ए मुलादुन नबी आज धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। केरलम में ओणम का सबसे शुभ दिन तिरु ओणम मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने ईद ए मिलादुन नबी और ओणम की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ग्रैंड शतरंज टूर के फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है। प्रज्ञानानंद ने सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट कीमर को 19-9 से हराया। भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के 4थे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेल रहा है। श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर समाप्त घोषित की थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज।

0: तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मिट्टी दी महक। 10 बजने वाले हैं, आपसे कुछ देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार आकाश।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म कयामत से ये खूबसूरत सा गीत। और देखिए, संदेश की बात करें तो संदेश इतने ज़्यादा हम तक पहुंच चुके हैं, बहुत से मैसेज जो हैं लोगों द्वारा पहुंच चुके हैं हमारे पास। और देखिए, पूरा जो हमारा इनबॉक्स है वो हम कह सकते हैं कि भर चुका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने मैसेज से। तो देखिए, पहला संदेश ये हमें भेजा है अनिल जी ने, और ये कह रहे हैं कि ये सुनना चाहते हैं फिल्म हीर रांझा से कोई गीत। और ये शिवाजी चौक कटनी से हमें मैसेज कर रहे हैं, और इनके साथ साथ हमें फरमाइश भेजी है अनिल तामरकर, अमर, दिलीप वर्मा, अजय सोनी, संजय सोनी, अरुण, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, रजन, रजक, सोना, मोना, हनी, और उनके जो मम्मी पापा है वो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और देखिए, अगली फरमाइश की ओर बढ़ते हैं और आपको बताएं कि ये मैसेज जो हमें भेजा है अनूप सिंह जी, हमें मैसेज कर रहे हैं, लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग भाई, आपको भी गुड मॉर्निंग। राजस्थान से इन्होंने हमें मैसेज किया है, और इनके साथ हमें फरमाइश भेजी है धीरज सिंह सोलंकी, सागर पवार, भानु प्रताप सिंह पवार, और इनका समस्त परिवार इस कार्यक्रम को सुन रहा है। और देखिए, एक और मैसेज जो हमें भेजा है, ये लिख रहे हैं, नमस्कार भाई, आपको भी नमस्कार। और ये कह रहे हैं कि आप अपनी ही पसंद का कोई गीत हमें सुनवा दें। और दोस्तों, एक और मैसेज जो हमें ये भेजा है, ये अनिल कुमार जी ने हमें मैसेज किया है, और ये लिख रहे हैं, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार भाई, आपको भी नमस्कार। और कह रहे हैं कि आपकी पसंद का कोई भी गीत सुनवाने का कष्ट करें। महाराष्ट्र से इन्होंने हमें मैसेज किया है, इनके साथ हमें फरमाइश भेजी है अभिजीत और श्रीमती सरिता जी ने, प्रिंस एकांश, और बदलापुर मुंबई से हमें मैसेज किया है प्रणीता, सिद्धांत, अर्जुन ने, और नागपुर से हमें मैसेज किया है वैशाली, एकांत, सुमित, कुमारी, ध्वनि और परी ने। अगले संदेश की ओर बढ़ते हैं, और दोस्तों आपको बता दें कि ये जो मैसेज हमें आया है, ये कृष्णा पार्क दिल्ली से इन्होंने हमें मैसेज किया है, और इनके साथ हमें फरमाइश की है, मैसेज करने वाले का नाम है सुखविंदर सिंह जौड़ा, और इनके साथ सुनना चाहा है सीटी दीवाना, पंखा रोड, जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह। अगले संदेश की बात करें तो दोस्तों आपको बता दें कि ये मैसेज हमें भेजा है धर्मेंद्र छिपा जी ने, ये लिख रहे हैं, आपको हार्दिक नमस्कार, और एक नगमा आप सुनवा दीजिए। और राजस्थान से इन्होंने हमें मैसेज किया है, इनके साथ हमें मैसेज के लिए फरमाइश की है कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार ने, और कह रहे हैं कि हमारे मैसेज को ज़रूर आप शामिल कीजिएगा। तो देखिए, आपके मैसेज को हमने शामिल कर लिया है। तो दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और आप ही की पसंद पर हम सुनते हैं हमारा अगला गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

0: यशोदा, अभी आप इस गीत का आनंद ले रहे थे और चलिए देखते अब कौन सा संदेश जो है हम तक पहुंचा है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये मैसेज हमें किया है रविंद्रनाथ मोहनदास ने, और ये कह रहे हैं कि कोई भी गीत आप सुनवा दें। किशनगंज बिहार से हमें ये मैसेज कर रहे हैं और इनके साथ हमें फरमाइश की है रविंद्र मोहनदास और आशा देवी ने। और दोस्तों एक और मैसेज जो हम तक पहुंचा है ये है मोहम्मद सईद अब्बासी जी हमें मैसेज कर रहे हैं और ये बुलंदशहर से इन्होंने हमें मैसेज किया है। इनको भेजने वाले हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी और सुहान अब्बासी। और देखिए अगला जो मैसेज हम तक पहुंचा है ये हमें किया है दोस्तों सतीश अनेजा जी ने, और ये लिख रहे हैं नमस्कार भाई, आपको भी नमस्कार। और इन्होंने हमें मैसेज किया है चंडीगढ़ से और इनके साथ हमें फरमाइश भेजी है बिमला अनेजा ने। तो अगले मैसेज की ओर बढ़ते हैं और अगला मैसेज जो हमें भेजा है ये मस्कीन जी हमें भेज रहे हैं और ये लिख रहे हैं आरजे जी, आपको नमस्कार भाई, आपको भी नमस्कार। और ये कह रहे हैं कि आप कोई भी प्यारा सा नगमा हमें सुनवा दें, और बिहारी कॉलोनी शहादरा दिल्ली से ये हमें मैसेज कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मेरी दोस्त आरती भी जुड़ गई है।
1: दोस्तों आरती के साथ आरती और मैं कर रही हूँ आप सबका स्वागत। सबसे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए मेरा, और मैं बहुत खुश हूँ कि भाई मेरी हमनाम मेरे साथ है, और मुझे लगता है उसे भी इस बात की खुशी तो होगी। क्यों आरती?
0: बिल्कुल आरती, और कंफ्यूज भी हो जाते होंगे हमारे श्रोता भाई ये कौन सी वाली आरती
1: तो ये
0: है।
1: शर्मा जी हैं और मैं गौड़ हूँ, ठीक है, ये आपके लिए मैं बता देती हूँ। और आप इतने प्यारे प्यारे गीत सुन रहे हैं और आरती आप सबको इतने खूबसूरत गीत सुनवा भी रही है, आपके प्यारे संदेश भी हम तक पहुँच रहे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आ गई हूँ तो चलिए एक और खूबसूरत सा गीत मेरी तरफ से भी हो ही जाए।

0: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है।
2: सुन, कते फटे हैं पुराने नोट को?
0: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
0: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो,
3: कूल रहो।
4: तो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम है आपकी पसंद, और पसंद बहुत सारी हम तक पहुंच रही है। देखिए, ये पहुंची है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज की। इसके साथ ही हमारे साथ जो अगले श्रोता जुड़े हैं वो हैं अलीका डब्बाली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार और कुलदीप गांधी। साथ ही हमारे साथ बहुत सारे ऐसे भी श्रोता जुड़े हुए हैं जिनके संदेश हम पहले भी ले चुके हैं। क्यों आरती?
5: बिल्कुल, मैं भी देख रही हूँ आरती, बहुत से ऐसे हमारे श्रोता हैं जो एक बारी नहीं भाई चार चार पांच पांच बारी उन्होंने हमें मैसेज किया हुआ है,
4: और इतनी बार हम उन्हें बता चुके हैं कि आपकी वजह से बाकी जो साथी हैं

0: वो हमें डांट देते हैं,
1: हम्म,
0: जबकि हम उनका भी संदेश लेना चाहते हैं, पर इतने सारी चीजों में जो नए संदेश हैं वो खो जाते हैं और आपके संदेश बार बार बार बार बार बार हम तक पहुंचते चले जाते हैं।
1: जी
0: तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्रम की ओर और आपको बताएं कि ये जो मैसेज हमें किया है ये राजेश जी हमें कर रहे हैं और ये दाखा से इन्होंने हमें मैसेज किया है। इनके साथ हमें फरमाइश भेजी है बिट्टू जैन, संजीव जैन और रेखा जैन ने। और देखिए दोस्तों अगला जो मैसेज हमें आया है ये हमें लिख रहे हैं, नमस्ते भाई, आपको भी नमस्ते और अपनी पसंद के किसी भी गीत में आप हमें शामिल कर लीजिए। और सीतामढ़ी से इन्होंने हमें मैसेज किया है, इनके साथ हमें फरमाइश भेजी है अक्रम हुसैन बेगम, वसीम अक्रम, रुबीना वसीम, अरीज वसीम, नदीम अक्रम, शमीम अक्रम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा। और बिहार से मैसेज किया है हमें मोहम्मद आसिफ खान और निखत परवीन ने।
2: जी हाँ, बहुत सारे संदेश हम तक आ चुके हैं और अब आप तक पहुंच रहा है ये खूबसूरत सा गीत जो है फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई से। और ये गीत बताता है कि पल पल कैसे कटता है जब आप अपने संदेश नहीं भेजते।

0: तो गीत आपने सुना फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई का, और संदेश हमारे पास आया है मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेरड़ी नाना जी लामसे मीना तेजस जय हर्षिता, और ये कोई भी गीत सुनना चाहते हैं। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा। साथ ही हमारे पास और भी बहुत सारे श्रोता हैं जो अपने संदेश लेकर आए हैं। ये हैं रोहिणी दिल्ली से सतप्रकाश गोयल, रेणु गोयल, विदित गोयल, और ये भी किसी भी गीत में शामिल होना चाहते हैं। साथ ही संदीप मकर, ज्योति मन्नत, भरत और कमल साहनी पिंगावाला चौक कोरिया जालंधर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ जुड़े हैं जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराज से रुपेश संगई, महेश संगई, प्रज्ञेश संगई और प्रतेश संगई और पूरा संगई परिवार। तो हमारे साथ ये इतने सारे श्रोता जुड़े हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारे जुड़े हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि देखिए यहाँ पर ना कल आरती बारिश बहुत अच्छी हुई थी।
1: बिल्कुल सही कहा आपने कि भाई मौसम जो था बहुत सुहाना हो चुका था। देखिए जब बारिश
0: लेकिन
1: होती है
0: हाँ,
1: तो वाकई एक अलग ही मजा होता है।
0: और आज जो है वो मौसम ने फिर से अपना मूड बदल लिया है, आज हो गई है धूप। तो
1: बिल्कुल
0: मौसम जो है वो पल पल बदल रहा है, कि आपकी तरफ भी ऐसा ही हाल है या फिर हम ही इससे बेहाल हैं?
1: बिल्कुल सही कहा आपने कि मौसम जो है बार बार ही बदल रहा है, और जहां तक मेरा ख्याल है भाई सब जगह यही हाल हमें देखने को मिल रहा है।
0: जी हाँ, तो भाई हम दोनों ने तो अपना हाल बयां कर दिया है, जरा आप भी अपना हाल बयां कीजिए कि आपके शहर का हाल चल क्या रहा है। आप मेघा के मजे ले रहे हैं या फिर सूरज देवता आपके मजे ले रहे हैं? फिलहाल हम मेघा के मजे ले न लें, ये गीत जरूर ले रहा है श्रीदेवी के डांस के साथ।

0: बाकी श्रोताओं, इस गीत ने हमें बरसात के मौसम का एहसास करवा दिया और जिस तरह से इस गीत में बताया गया था कि सावन में झूले पड़ जाते हैं, तो वाकई ये मौसम जो होता है बहुत ही सुहाना होता है और इस मौसम में कुछ त्यौहार भी आते हैं। और जैसे झूले की बात की जाए तो झूला झूलना जो सावन के महीने में एक बहुत ही मायने रखता है। और देखिए,
1: आपने झूला है कभी झूला आरती?
0: हाँ, देखिए अपनी बात करूँ तो मैंने आज तक अभी ऐसे पेड़ पर जो रस्सी डालकर जो झूला झूलते हैं वो मैंने नहीं अभी तक
1: मैंने
0: झूला है।
1: बहुत झूला है बचपन में, बहुत मैंने झूला है और अब मैं उसे मिस करती हूँ क्योंकि अब ऐसा मौका मिलता नहीं है।
0: जी तो श्रोता, आपको बता दें इस गीत की फरमाइश की थी आगरा से हमें अनुप्रिया सक्सेना और पायल सक्सेना ने।
1: जी हाँ दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं, और भी संदेश हम तक पहुंच रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का। जैसे ये हैं विदित गोयल, रोहिणी दिल्ली से, और इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू, और ये तेलीवाला उत्तराखंड से हैं।
0: और अगली जो फरमाइश हमें भेजी है ये लिख रहे हैं कि आपको नमस्कार भाई, आपको भी नमस्कार, और कह रहे हैं कि आपकी पसंद का कोई भी सदाबहार गीत आप हमें सुनवा दें। तो दोस्तों, आपको बता दें ये हमें वैष्णव कॉलोनी से मैसेज कर रहे हैं और इनके साथ हमें फरमाइश की है मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शकीर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री और रमेश गौड़ और मोहम्मद शदाब जी ने। और दोस्तों, अगले संदेश की ओर बढ़ते हैं तो आपको बता दें कि ये संदेश जो हमें भेजा है ये लिख रहे हैं कि आरती जी आपको नमस्कार भई, आपको भी नमस्कार, और टैगोर गार्डन नई दिल्ली से इन्होंने हमें मैसेज किया है और ये कह रहे हैं कि हम आपके नियमित श्रोता हैं और बहुत ही शिद्दत से आपके कार्यक्रम को सुनते हैं। तो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ते हैं। और देखिए, जब आप लोग हमारे कार्यक्रम में जुड़ते हैं और आप हमें फरमाइश भेजते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है कि आप हम आपकी पसंद के गीत बजाते हैं, और जब आपके मैसेज हम तक पहुंचते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है कि आप हमारे इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अगला जो संदेश हम तक पहुँचा है ये अनिल जैन जी हमें मैसेज कर रहे हैं, ये लिख रहे हैं नमस्कार जी भाई, आपको भी नमस्कार। मेरठ से इन्होंने हमें मैसेज किया है और इनके साथ हमें फरमाइश भेजी है संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवम जैन, और सरथाना मेरठ से हमें मैसेज किया है आदि जैन, अंश जैन, भव्य जैन ने। और अगले संदेश की बात करें तो दोस्तों, ये संदेश हमें भेजा है भगवत वर्मा ने और इनके साथ हमें फरमाइश भेजी है शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा, और ये कह रहे हैं कि कोई भी गीत आप अपनी ही पसंद का सुनवा दें। राशिद जी, हुसैन अंसारी जी का मैसेज हम तक पहुंचा है और ये कुरावली से हमें मैसेज कर रहे हैं, इनके साथ हमें फरमाइश भेजी है राशिद, हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, ये कह रहे हैं कि किसी भी सदाबहार नगमे में आप हमें शामिल कर लें। तो दोस्तों, अगला संदेश जो हमें भेजा है ये मैसेज हमें कर रहे हैं संदीप जी, और ये कह रहे हैं कि आप अपनी ही

0: पसंद का हमें कोई गीत सुनवा दें। तो चलिए आप ही की फरमाइश में हम सुनवाते हैं अगला गीत आशा भोसले और उदित नारायण की आवाज़ में।
1: जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले, जब दिल मिले तब गुल खिले, जब गुल खिले तब दिल मिले, मिले मिले मिले मिले दिल मिले, खिले खिले खिले खिले गुल खिले।

0: वाले हैं श्री सुधाकर राजे जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव देशमुख, जगुताई राजे जाधव, कुमार संचित देशमुख, प्रथमेश सर्वद, हर्षिता सानवी और प्रणाली देशमुख। कहते हैं दिल्ली में दो दिन की बारिश, ये थोड़ी बारिश हमारी तरफ भी भेज दो। बिल्कुल, अगर ऐसा होता तो मैं जरूर कर देती, लेकिन फिलहाल मैं विश कर सकती हूँ कि आपकी तरफ भी झमाझम बारिश हो जाए।
1: बिल्कुल सही कहा आरती। और देखिए अगले संदेश की ओर पहुंचते हैं, तो आपको बता दें कि सुदर्शन मुखी जी का ये मैसेज हम तक पहुंचा है और इनके साथ हमें फरमाइश भेजी है अनीता सिमरन, और ये शांति नगर सोनीपत से हमें मैसेज कर रही हैं। और अगले संदेश की ओर पहुंचते हैं, तो दोस्तों आपको बता दें कि ये मैसेज जो हमें किया है, देखिए बहुत से मैसेज जो हैं वो बार बार वही रिपीट हो रहे हैं। तो अगला मैसेज जो हमें भेजा है, लालगिरी जी हमें मैसेज कर रहे हैं और राजस्थान से इन्होंने हमें मैसेज किया है। इनके साथ हमें फरमाइश भेजी है हेमलता हेना और हर्षित जी ने। और अगला जो मैसेज दोस्तों हम तक पहुंचा है, ये एक ओंकार जी हमें भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत अच्छे गीत आप बजा रहे हैं, और नई दिल्ली से इन्होंने हमें मैसेज किया है और कह रहे हैं कि एक और गीत जो है आप हमें अपनी ही पसंद का सुनवा दें। और देखिए टैगोर गार्डन से ही एक और ने हमें मैसेज किया है और ये लिख रहे हैं कि इनके यहाँ मौसम साफ है। बिल्कुल, अभी देखिए तो दिल्ली में इस वक्त मौसम साफ है। और दोस्तों अगले फरमाइश की ओर बढ़ते हैं, तो ये मैसेज हमें किया है और ये लिख रहे हैं आपको सादर नमस्कार। भाई आपको भी नमस्कार। और छत्तीसगढ़ से इन्होंने हमें मैसेज किया है और कह रहे हैं कि इनके यहाँ पर मौसम जो है मस्त है, खूबसूरत धूप जो है खिली हुई है। और देखिए ये कह रहे हैं कि किसी भी गीत में आप इनके नाम को शामिल कर लें।

0: दोस्तों बातें बहुत सारी हैं, संदेश भी बहुत सारे हैं, लेकिन समय बिल्कुल भी नहीं बचा है और अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। मैं और मेरी दोस्त आरती शर्मा, हम दोनों आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन इस वादे के साथ कि दोबारा मुलाकात जरूर होगी।
1: बिल्कुल, तो सभी को हमारा नमस्कार और आप सुनते रहिए हमारे कार्यक्रम और गुनगुनाते रहिए ऐसे ही।
0: जी हाँ, इंद्रप्रस्थ के साथ यूं ही बने रहिए, कार्यक्रम सुनते रहिए और फिलहाल ये खूबसूरत संगीत आप सबके लिए छोड़े जा रहे हैं।

0: मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा सपना पूरा होगा।
1: क्या तुम्हारा सपना पूरा हो गया?
0: पूरा ना सही, लेकिन शुरुआत तो हो चुकी है।
1: मुझे भी कुछ कुछ

0: सच बात तो यह है कि मुझे रात भर नींद नहीं आई।
1: मुझे भी नींद नहीं आई।
0: पहली बार है ना?
1: पहली बार क्या होता है। तो श्रोता, अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम आपकी पसंद। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में प्रधानमंत्री ने 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजना की समीक्षा की।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने कृषि

0: क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रीस्टैक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर उपयोग का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा दिया जाए। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश भर में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बेहद जरूरी है। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। गृह मंत्री ने राज्यों से नशे के खिलाफ अभियान तेज करने और सुरक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर बल देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान के लिए वार्ता जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। दोनों देशों ने कहा है कि इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल बीजिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। भारतीय नौसेना नीस्टार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को 31 अगस्त को मुंबई में डॉकयार्ड में शामिल करेगी। इसका निर्माण विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों को लेकर संसदीय समिति ने मसौदा रिपोर्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। समिति ने एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने समेत इसमें सुधार की सिफारिशों पर सहमति व्यक्त की। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति की यह छठी बैठक थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माय भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। ई श्रम पोर्टल को आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये भारत की असंगठित कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 2021 में इस पोर्टल को शुरू किया था। सरकार अखिल भारतीय निगरानी नेटवर्क के माध्यम से देश भर में प्रचलित मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों के रुझानों पर कड़ी नजर रख रही है। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने कहा है कि देश में वर्तमान में फैल रहे इन्फ्लुएंजा वायरस पिछले कुछ वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान मामले किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे को उभरने का संकेत नहीं देते हैं और स्थिति सामान्य इन्फ्लुएंजा जैसी ही है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी आज धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। केरलम में ओणम का सबसे शुभ दिन तिरु ओणम्मा भी मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने ईद ए मिलाद उन नबी और ओणम की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर के फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है। प्रज्ञानंदा ने सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट केमर को 19-9 से पराजित किया। वहीं फाइनल मैच में प्रज्ञानंदा और मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआना के बीच मैच खेला जाएगा। शीर्ष 3 स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ी अगले साल के ग्रैंड चेस टूर के लिए सीधे क्वालिफाई करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi reviewed infrastructure projects worth 30,000 crore rupees at 53rd Pragati meeting in New Delhi yesterday. The Prime Minister has stressed the need to explore common utility corridors for infrastructure services wherever feasible, particularly while planning major transport and infrastructure projects. Mr. Modi called upon ministries and states to examine such integrated approaches at the planning stage itself, keeping in view their technical and economic feasibility. He said that speed of execution must be accompanied by uncompromising quality. Delhi government will hand over the approval letters to 4,000 eligible women beneficiaries under the Delhi Lakshmi Yojana today. Under the scheme, eligible women will receive financial assistance of 2,500 rupees every month. The Delhi government has informed that more than 9,13,000 women have registered for the scheme so far and over 6,52,000 applications have been submitted. The government said that the financial assistance will be credited directly to women beneficiaries' bank account from 1st of next month. Canada has struck back at the United States with retaliatory tariffs on about $20 billion worth of American goods, including steel, dairy products, appliances and farm equipment, as the trade war between the two countries escalated sharply. A report.
4: The new tariffs extend well beyond industrial goods, hitting everyday purchases such as seafood, cheese, clothing, cosmetics, and toilet paper. With some facing duties as high as 50%, the tariffs will be implemented from September 8, even as US tariffs already came into place on Saturday. Canada's finance minister said Ottawa's tariff will match US level. Canada's retaliation came after the Trump administration imposed 50% tariffs over the weekend on Canadian goods following the collapse of trade negotiation. Canadian Prime Minister Mark Carney accused Washington of trying to subordinate Canada. Vishal Kumar, Akashvani News, Delhi.
3: India and China have agreed to continue their work in seeking a political settlement of the boundary question in the context of their overall and long-term interests. National Security Advisor Ajit Doval highlighted the importance of maintaining peace and tranquility in the India-China border areas for the continued development and progress of bilateral ties between the two countries. Mr. Doval was co-chairing the 25th round of the Special Representative's talks on the India-China boundary question with Chinese Foreign Affairs Minister Wang Yi in Beijing yesterday. The Union Home Ministry has officially notified Keralam as the new name for the southern state of Kerala, which came into effect from yesterday, 25th of August. This notification follows the passage of the Kerala Alteration of Name Bill in the Lok Sabha on August 11th and in the Rajya Sabha the next day. Earlier this month, President Draupadi Murmu gave assent to a bill to rename Kerala as Keralam, turning the legislation into a law. Prime Minister Narendra Modi has highlighted the virtues of mutual learning and listening. Sharing a Sanskrit quote, Mr. Modi remarked that those who are eager to learn and listen to one another are praised by the wise, are free from selfish pursuits and ulterior motives, and they prosper in happiness in every way. Eid Milad-un-Nabi, the birthday of Prophet Hazrat Muhammad, is being celebrated with religious fervour in various parts of the country today. On the occasion, President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi have extended best wishes to the countrymen, especially the Muslim community. Keralites across the globe are celebrating Thiruvanam today. Thiruvanam celebrations began with Unnapukkalam, the traditional floral carpet made to welcome the legendary king Mahabali. On the occasion of Onam, President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi have extended their greetings and best wishes to all the citizens. In men's cricket, host Sri Lanka were 22 for 1 against India in their second innings on the fourth day of the second test in Colombo when reports last came in. Earlier, India enforced the follow-on after bowling Sri Lanka out for 290 in their first innings. Resuming the penultimate day at 265 for 8, Sri Lanka managed to add only 25 runs. And that is the end of this news bulletin.
5: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम सब रस का।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सबरस।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़। आइए अब सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुरमंजरी कार्यक्रम में तार शहनाई वादन बलजीत सिंह द्वारा राग अलैया बिलावल में।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुरमंजरी कार्यक्रम में तार शहनाई वादन। प्रस्तुति थी बलजीत सिंह की राग अलैया बिलावल में।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माय भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देशभर में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। ये खेल युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण को एक साझा मंच प्रदान करेगा। इससे युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा। इससे ये सुनिश्चित होगा कि उनके विचार और दृष्टिकोण भारत के युवा और खेल पारिस्थितिकी तंत्र पर चल रही चर्चा का हिस्सा बने। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के उपलक्ष में कल पंजाब और हरियाणा के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ का आयोजन कर रहा है। ये संवाद मेरा युवा भारत माय भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य युवाओं को खेल, फिटनेस और युवा नेतृत्व वाले विकसित भारत के दृष्टिकोण को एक साथ जोड़ना है। गृहमंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देशभर में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति

0: मिलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बेहद जरूरी है। एक रिपोर्ट।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। गृह मंत्री ने राज्यों से नशे के खिलाफ अभियान तेज करने और सुरक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर बल देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान के लिए वार्ता जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। दोनों देशों ने कहा है कि इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल पेइचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि जापान के शीर्ष कारोबारी और वित्तीय लीडर से व्यापार, मोबिलिटी, औद्योगिक, बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों में भारत में निवेश बढ़ाने और मजबूत कारोबारी अवसरों के बारे में चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जापान यात्रा के दौरान भारत की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता का लाभ उठाने और देश की भूमिका को वैश्विक निर्यात केंद्र के रूप में मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। सरकार अखिल भारतीय निगरानी नेटवर्क के माध्यम से देश भर में प्रचलित मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों के रुझानों पर कड़ी नजर रख रही है। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ राजीव बहल ने कहा है कि देश में वर्तमान में फैल रहे इन्फ्लुएंजा वायरस पिछले कुछ वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप है। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान मामले किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे के उभरने का संकेत नहीं देते हैं और स्थिति सामान्य मौसमी इन्फ्लुएंजा जैसी ही है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलादुन नबी आज धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। केरला में ओणम का सबसे शुभ दिन तिरु ओणम्मा भी मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। पाकिस्तान में आज इस्लामाबाद के एक अस्पताल के स्त्री रोग वार्ड में आग लगने से 14 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने एक बयान में बताया कि अस्पताल के मातृ और शिशु वार्ड की तीसरी मंजिल पर आग लगने से नवजात शिशुओं की मौत हुई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मिला जुला रुख देखने को मिला। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 95 अंक बढ़कर 77,751 पर और निफ्टी 27 अंक गिरकर 24,308 पर आ गया। कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे अंतिम मैच के चौथे दिन का खेल जारी है। फॉलो ऑन मिलने के बाद श्रीलंका ने दूसरी पारी में भोजन अवकाश तक 2 विकेट पर 83 रन बना लिए थे। श्रीलंका पहली पारी में आज 290 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी 503 अंक बनाकर घोषित की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: और मैं हूँ प्रतिभा।
1: स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा
0: नमस्कार। और श्रोताओं, आप सभी हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल यानी 100.1 MHz पर, और साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल पर भी यानी मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 KHz पर।
1: तो प्रतिभा, शुरुआत करते हैं एक बेहद खूबसूरत विचार से। डर एक एहसास है, साहस एक निर्णय है। डर तो हम सभी को लगता है नई शुरुआत से, असफलता से, लोगों की राय से, जजमेंट से, लेकिन साहस का मतलब है डर के बावजूद सही कदम उठाना। तो आज खुद से एक वादा कीजिए कि डर नहीं, आपके फैसले आपकी पहचान बनेंगे।
0: बिल्कुल। और देखो मंजुला, हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत में अपने श्रोताओं से एक सवाल पूछते हैं, है ना? और आज का भी हम सवाल पूछ लेते हैं अपने श्रोताओं से। और श्रोताओं देखो, आज है महिला समानता दिवस, और आज का जो हमारा प्रश्न है वो भी इसी से ही जुड़ा हुआ है। तो आपको ये बताना है कि आपके अनुसार सशक्त महिला की सबसे बड़ी पहचान क्या है। जी हाँ, आपके अनुसार सशक्त महिला की सबसे बड़ी पहचान क्या है, ये है आज का सवाल। तो अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें हमारे ईमेल आईडी पर, जो कि है fmgoldga@gmail.com। तो हमें रहेगा आपके जवाबों का इंतजार।
1: तो चलिए, मुस्कुराइए, जुड़े रहिए, इस खूबसूरत सफर का आनंद लीजिए, क्योंकि अगले कुछ पल होने वाले हैं जानकारी, प्रेरणा और सुनहरे गानों से भरपूर।

0: आशा भोसले की आवाज में अभी आपने ये प्यारा सा गीत सुना, फिल्म थी वक्त।
1: और प्रतिभा, आज का दिन बहुत ही खास है।
0: बिल्कुल, आज का दिन हमें याद दिलाता है उस महान व्यक्तित्व की जिनका जीवन दया, समर्पण और परोपकार की भावना से जुड़ा रहा। आज यानी 26 अगस्त को मदर टेरेसा की जयंती मनाई जा रही है। उन्होंने अपना जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया था।
1: और हमें ये सीख मिलती है कि हर व्यक्ति को समर्पण की भावना से प्रेरित होना चाहिए। उन्होंने अपना पूरा जीवन जरूरतमंदों और असहायों की सेवा में समर्पित कर दिया, जिसके लिए उन्हें 1979 में नोबल शांति पुरस्कार और 1980 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज हम उनकी जयंती पर उन्हें याद कर रहे हैं और उन्हें नमन करते हैं।
0: और देखो मंजुला, आज का दिन तो और भी खास है ही, क्योंकि आज है मिलाद उन नबी, यानी वो दिन जब पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। और इस दिन को ईद मिलाद उन नबी भी कहा जाता है। ये दिन उनके जन्म की खुशी और शिक्षाओं को याद करने का दिन है। इस दिन लोग उपवास करते हैं, दान करते हैं और अपने पैगंबर को याद करते हैं। तो आज के दिन की सभी श्रोताओं को ढेरों
1: शुभकामनाएं। और आज एक और खास दिन है, और कई मायनों में खास है। आज थिरुवोनम का त्योहार भी मनाया जा रहा है। यह ओणम की 10 दिवसीय त्योहार का 10वां और महत्वपूर्ण दिन है, जिसे भव्य सजावट, उत्सव और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। थिरुवोनम और ओणम त्योहार केरल की संस्कृति को समेटे हुए हैं, जो एकता, समृद्धि और राजा महाबली की शाश्वत गाथा का उत्सव है।
0: बिल्कुल, देखो मंजुला, ओणम 10 दिनों तक तो मनाया जाता है, और जिसका जो हर दिन होता है उसका अपना अलग महत्व और इसके रीति रिवाज होते हैं। ये त्योहार अथम से शुरू होता है और थिरुवोनम के साथ समाप्त होता है, जो इस उत्सव का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। तो आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो।

0: प्यार का मौसम। अभी आपने इस फिल्म से ये गीत सुना, आवाज थी मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।
1: हाँ, और प्रतिभा, आज एक और खास दिन है, महिला समानता दिवस। ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं, बल्कि उस संघर्ष की याद है जिसने दुनिया को ये सिखाया कि महिलाओं की आवाज भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना किसी और की।
0: और देखो, महिला समानता दिवस सबसे पहले अमेरिका में मनाया गया। इसकी शुरुआत उस ऐतिहासिक दिन की याद में जुड़ी है जब महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। लेकिन आज इसका अर्थ सिर्फ वोट देने का अधिकार नहीं है, बल्कि शिक्षा, रोजगार, नेतृत्व, सम्मान और अपने फैसले स्वयं लेने की आजादी भी है।
1: बहुत अच्छी बात गई। और एक समय था जब लड़कियों की पढ़ाई को जरूरी नहीं माना जाता था, आज वही बेटियां वैज्ञानिक बन रही हैं, फाइटर पायलट बन रही हैं, अंतरिक्ष तक पहुंच रही हैं, सेना की कमान संभाल रही हैं, कंपनियां चला रही हैं और देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रही हैं।
0: बिल्कुल। और देखो, लेकिन क्या समानता का मतलब पुरुषों से आगे निकलना है? बिल्कुल नहीं। सच्ची समानता का अर्थ है हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर आगे बढ़ने का अवसर मिले। ना किसी को सिर्फ इसलिए रोका जाए कि वह महिला है, और ना ही किसी को सिर्फ इसलिए कम आंका जाए कि वह पुरुष है। जब अधिकार और जिम्मेदारियां साथ साथ चलती हैं, तभी समाज वास्तव में आगे बढ़ता है।
1: एक बात और, प्रतिभा की समानता की शुरुआत कानून से नहीं, सोच से होती है। जब घर में बेटा और बेटी दोनों को एक जैसी शिक्षा, एक जैसा सम्मान और अपने सपनों को पूरा करने का समान अवसर मिलता है, तभी एक मजबूत समाज की नींव पड़ती है।
0: बिल्कुल। श्रोताओं, याद रखिए, महिलाओं को सशक्त बनाने का अर्थ उन्हें विशेष अधिकार देना नहीं, बल्कि उनके अधिकारों को स्वीकार करना है। क्योंकि जब एक महिला आगे बढ़ती है तो केवल उसका जीवन नहीं बदलता, बल्कि पूरा परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियां आगे बढ़ती हैं।
1: तो इस महिला समानता दिवस पर आइए छोटा सा संकल्प लें, हम अपने घर, कार्यस्थल और समाज में किसी के साथ भी जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। प्रतिभा को पहचानेंगे, हमारी इस प्रतिभा को नहीं, अपने टैलेंट को, सपनों को उड़ान देंगे और सम्मान को अपनी सबसे बड़ी पहचान बनाएंगे। तो सवाल आज का एक बार फिर से बता दें।
0: बिल्कुल। देखिए, आज का जो हमारा सवाल है वो हमारे जो महिला के सशक्त होने से जुड़ा हुआ है कि जो हमारी महिलाएं हैं, है ना, आपके अनुसार आपको ये बताना था कि सशक्त महिला की सबसे बड़ी पहचान क्या है, जिसके लिए आपको हमें जवाब देना है FM Gold GA@gmail.com पर।

0: लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में। अभी आपने ये सुना फिल्म थी चोरी चोरी, और मंजुला
1: ईमेल सी
0: देखो
1: मेल सी
0: बिल्कुल,
1: मेल सी जवाब आ
0: हम
1: गए
0: जवाब
1: तुझ।
0: आ गए हैं। और सबसे पहले जवाब आया है नवीन भाटिया जी का। वो कहते हैं कि सशक्त महिला की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो, यानी कि इंडिपेंडेंट हो। बहुत बढ़िया,
1: बहुत बढ़िया। और अनिल मेहता जी लिखते हैं कि एक सशक्त महिला की सबसे बड़ी पहचान उसका स्वयं पर अटूट विश्वास, असली जिंदगी के फैसले, अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की स्वतंत्रता।
0: और देखिए आदित्य मुद्गल जी कह रहे हैं कि वह अपने फैसले खुद लेती है, आत्मसम्मान से समझौता नहीं करती और हर परिस्थिति में खुद पर विश्वास रखती है।
1: बिल्कुल। और अनन्या श्रेष्ठा जी

0: लिखती हैं कि मेरे अनुसार एक सशक्त महिला की सबसे बड़ी पहचान उसका खुद पर विश्वास है। वो अपने फैसले खुद ले सकती है और मुश्किलों से लड़ना जानती है।
1: और देखिए अलमास हुसैन जी का मैसेज है महाराष्ट्र से, वो कह रहे हैं कि सशक्त महिला खुद से कमाती है, अपना जो भविष्य है उसका खुद से निर्माण करती है। देखो कितनी अच्छी बात कही ना
0: बहुत ही
1: उन्होंने।
0: अच्छी बात। और ऐना लिखती हैं कि मेरे अनुसार एक सशक्त महिला की सबसे बड़ी पहचान ये नहीं है कि वो कितनी ऊंची आवाज में बोलती है, बल्कि ये है कि बिना किसी शोर के भी अपनी जगह बनाना जानती है। वो हालातों के हिसाब से खुद को बदलने के बजाय हालातों को अपनी सोच के हिसाब से बदलने का साहस रखती है। बहुत ही खूबसूरत रिप्लाई।
1: है ना। और देखिए हनी राय जी कह रहे हैं कि किसी भी महिला को पहचान की ज़रूरत नहीं है, उसकी अपने आप में एक जो वो एक शख्सियत है, उसकी एक अपने आप में वर्थ है, और जो उसकी एग्जिस्टेंस है, जो उसका जो अस्तित्व है, वो अपने आप में ही बहुत कुछ कहता है, वही उसकी पहचान को बनाता है, क्योंकि वो शक्ति का रूप है।
0: बिल्कुल। और गौरी शंकर वर्मा जी का मेल आया है, वो उन्होंने लिखा है, आप दोनों बेटियों को राम राम। मैं तो यही कहूंगा कि महिला में इतनी शक्ति है, अगर समझदारी से काम ले तो बिगड़े हुए घर को भी सुधार देती है। माँ की याद आती है, उसी ने हमें दुनिया दिखाई। अच्छा करना या गलत करना वो हमारे हाथ में है, उसमें माँ का दोष नहीं है, वो तो हमें अच्छी शिक्षा देती है।
1: और देखिए डी राजेश्वर राव जी कहते हैं कि जो स्ट्रांग महिला है, जो सशक्त महिला है, वो अपना जो वर्थ है वो खुद से जानती है, वो चैलेंजेस को वो फेस करना जानती है, उसमें शक्ति है, उसमें ताकत है। और उन्होंने कहा है कि महिलाओं के पास फिजिकल स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस, एबिलिटी, बहुत कुछ है अपने डिसीजन लेने के लिए।
0: बहुत ही अच्छे रिप्लाई, बहुत ही अच्छा लगा पढ़कर आप लोगों के विचार। तो आप अभी भी मेल भेजते रहिए।

0: अभी हम सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म दो चोर से, और प्रतिभा, आधुनिक होना और आधुनिक दिखना, इन दोनों में बहुत फर्क है। हमें अक्सर लगता है कि आधुनिक कपड़े पहनकर हम आधुनिक बन जाएंगे, मॉडर्न बन जाएंगे, लेकिन आधुनिकता आपके पहनावे में नहीं, आपकी सोच में दिखाई देती है। आधुनिकता है अपनी पसंद पर विश्वास, अपनी पहचान को पूरे कॉन्फिडेंस से स्वीकार करना, स्वतंत्र सोच और अपने फैसले खुद लेने का साहस।
1: बिल्कुल, और देखो जब बात खूबसूरती की आती है ना, तो असली खूबसूरती सिर्फ चेहरे या पहनावे में नहीं, आपके गरिमापूर्ण व्यक्तित्व में होती है। अधिकार हमेशा गरिमा से आता है और शालीनता कभी फैशन से बाहर नहीं होती।
0: बिल्कुल, और एक सशक्त महिला अपने रूप और शालीनता दोनों से प्रभाव पैदा करती है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है वो आत्मविश्वास, गरिमा और आत्मसम्मान, जिसके साथ वो खुद को दुनिया के सामने रखती है, प्रेजेंट करती है।
1: बिल्कुल, और देखो अब आप जो है, हमारी जो महिलाएं हैं, आप भी आधुनिक हो सकती हैं, स्टाइलिश भी, फैशनेबल भी और बेहद आकर्षक भी, बिना ये महसूस किए कि अपनी पसंद से ज्यादा कुछ दिखाना जरूरी है, क्योंकि ध्यान आकर्षित करना एक बात है, लेकिन सम्मान और प्रशंसा हासिल करना वो एक कला है।
0: क्या बात है, तो रूप से नजरें ठहरती हैं मगर व्यक्तित्व से दिल जुड़ते हैं। फैशन बदलता रहता है दौर के साथ, पर गरिमा और आत्मसम्मान हमेशा खूबसूरत रहते हैं।

0: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी तीन देवियाँ। और देखो मंजुला, एक संदेश और है हमारे पास। श्रीपाल गोयल बहादुरगढ़ हरियाणा से लिख रहे हैं कि एक सशक्त महिला अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहती, वो अपने सभी फैसले खुद लेती है और अपने लिए आवाज़ भी उठाती है
1: अन्याय के खिलाफ। जी हाँ, तो चलिए बात अब सशक्त महिला की हो रही है तो ये बातचीत तो बनता है। 2026 की बेटियां वर्दी में शौर्य की नई तस्वीर। आज हम बात करेंगे उन बेटियों की जिन्होंने साल 2026 में अपनी मेहनत, साहस और कर्तव्य निष्ठा से देश का सिर गर्व से ऊंचा किया है। तो चलो प्रतिभा, शुरुआत करते हैं भारतीय वायुसेना से। स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ, 2026 में उन्होंने वायुसेना का अत्यंत कठिन लड़ाकू युद्ध नेतृत्व प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया और भारत की पहली महिला टॉप गन बनी। वे भारतीय वायुसेना के इतिहास में अकेले MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला भी रही हैं।
0: यानी लड़ाकू विमान उड़ाने के साथ साथ युद्ध जैसी कठिन परिस्थितियों में नेतृत्व और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता का भी शानदार प्रदर्शन। अब चलते हैं देखो मंजुला भारतीय थल सेना की ओर। कैप्टन शिवानी सहरावत 2026 में थल सेना प्रमुख की पहली महिला सहायक अधिकारी बनी। ये जिम्मेदारी सेना के सर्वोच्च नेतृत्व के साथ बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है।
1: क्या बात है। और सहायक सेना नायक सिमरन बाला ने पहली बार पुरुष जवानों की टुकड़ी का नेतृत्व किया। ये सिर्फ एक दृश्य नहीं, बदलते भारत की तस्वीर है।
0: और फिर आती है समुद्र की चुनौती। थल सेना, नौसेना और वायुसेना की 9 महिला अधिकारियों ने समुद्र प्रदक्षिणा के अंतर्गत लगभग 25,500 समुद्री मील की ऐतिहासिक यात्रा पूरी की। 314 दिन, 4 महासागर और सामने प्रकृति की अनगिनत चुनौतियाँ।
1: क्या बात है। लेकिन ये बेटियां रुकी नहीं और 2026 में एक और ऐतिहासिक अध्याय जुड़ा। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की पहली महिला प्रशिक्षु टुकड़ी ने प्रशिक्षण पूरा कर देश की सेनाओं में नई जिम्मेदारियां संभाली। यानी अब बेटियां सिर्फ वर्दी पहनने का सपना नहीं देख रही, वे नेतृत्व की जिम्मेदारी भी उठा रही।
0: बिल्कुल। और देखो श्रोताओं, इन कहानियों में एक बात बिल्कुल साफ दिखाई देती है, मौका बराबर हो तो क्षमता अपना रास्ता खुद बना लेती है। भारत की बेटियां आगे बढ़ रही हैं और उनके

0: महादेवन की आवाज में अभी आप ये गीत सुन रहे थे, फिल्म थी लक्ष्य। और प्रतिभा, सोचो अगर दुनिया के सारे रंग गायब हो जाएं तो क्या रह जाएगा? ना फूलों की खूबसूरती, ना त्योहारों की रौनक, ना कपड़ों की पहचान। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया जिन रंगों पर सदियों से मोहित है, उनमें से कई रंग भारत की धरती ने दुनिया को दिए हैं। आज की इस रंगीन यात्रा की शुरुआत करते हैं नीले रंग से।
1: भाई, दुनिया आज जिस इंडिगो ब्लू को डेनिम जीन्स का रंग मानती है, उसकी कहानी भारत से शुरू होती है। इंडिगो शब्द जो है वो ग्रीक और लैटिन के उस शब्द से निकला है जिसका अर्थ है भारत से आया। लगभग 4000 वर्ष ईसा पूर्व से भारत से नील का निर्यात मिस्र तक होता था। यानी आज दुनिया में पहने जाने वाली लगभग हर इंडिगो रंग की जो भी चीज होती है, उसकी ऐतिहासिक जड़ें जो हैं वो भारत से जुड़ी हैं।
0: अब बात उस लाल रंग की जिसने पूरी दुनिया को आकर्षित किया, मंजिष्ठा। दुनिया जिस टर्किश रेड के नाम से इस रंग को जानती है, उसकी रंगाई तकनीक का विकास सबसे पहले भारत में हुआ। 17वीं शताब्दी में भारतीय कपड़ों के माध्यम से ये रंग यूरोप पहुंचा और वहां से फैशन का हिस्सा बन गया।
1: और देखो, लाल रंग की ही एक और अनमोल विरासत है लाख। लाख के कीटों से प्राप्त प्राकृतिक गहरा लाल रंग सदियों से कांचीपुरम जैसी रेशम साड़ियों की रंगाई में उपयोग होता आया है। और अब चलते हैं कश्मीर की ओर।
0: चलो चलो।
1: कश्मीर की जो कारीगरी जो है वो सदियों पहले अखरोट के छिलकों से गहरा चॉकलेटी भूरा रंग तैयार करते थे वहां के कारीगर, और इसी रंग से पश्मीना और ऊनी शॉलों को रंगा जाता था। जब दुनिया में कृत्रिम भूरे रंग का अस्तित्व भी नहीं था, तब कश्मीर ये कला सीख चुका था। और सबसे सुंदर बात ये कि ये परंपरा आज भी जीवित है।
0: और अब बात उस रंग की जिसे भारत में केवल रंग नहीं, आस्था का प्रतीक माना जाता है, केसरिया। प्राकृतिक केसर रंग के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता तक मिलते हैं। यही रंग आगे चलकर भारतीय संस्कृति, त्याग, साहस और हमारी राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक बन गया। और हाँ, हल्दी का सुनहरा पीला रंग भी भारत की अनमोल देन है।

0: अभी आपने ये गीत सुना आन मिलो सजना फिल्म से, आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। और मंजुला देखो मेल आई है, हम फटाफट से पढ़ देते हैं। मेल है उग्रसेन यादव जी की, वो कह रहे हैं कि हर महिला अपने आप में सशक्त होती है, सिर्फ उसे अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की ज़रूरत होती है। बहुत बढ़िया।
1: और सुदर्शन मुखी जी ने लिखा है कि वुमन हैव ऑलवेज बिन अहेड ऑफ मेन इन एजुकेशन एंड राइटिंग। बहुत ही खूबसूरत बात, और समय इशारा कर रहा है कि हमारे पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन जाते जाते सुनिए बहुत ही खूबसूरत सा गीत।

0: और देखो मंजुला कार्यक्रम का तो वक्त हो गया, लेकिन सबसे पहले बता दें जो गाना सुन रहे हैं श्रोता, वो सुन रहे हैं नया दौर फिल्म से आवाज़ है आशा भोसले और शमशाद बेगम की।
1: और इसी के साथ आज के इस खूबसूरत सफर को देते हैं यहीं विराम, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, दीजिए मंजुला
0: और प्रतिभा को इजाजत। नमस्कार।

आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा, आपका घर आंगन। घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के रूप में स्थान बना चुका है। कनाडा के टोरंटो में आज भारतीय कारोबारी समुदाय को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत में परिवर्तन संरचनात्मक है और तेजी से होते शहरीकरण, मध्यम वर्गीय का स्तर बढ़ने और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे का इसमें अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि ये अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में नए अवसर सृजित कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने वित्तीय और वाणिज्यिक सेवाओं में भारत के डिजिटल तंत्र का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के दो कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। इससे युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से सीधे जोड़ने का अवसर मिलेगा। भारत ने अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में सैनिकों के लिए स्वदेशी पैराशूट तकनीक में बड़ी सफलता हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की आगरा स्थित एडीआरडीई द्वारा डिजाइन और विकसित मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का लद्दाख के न्योमा के मुद ड्रॉप जोन में सफल परीक्षण किया गया। ये दुनिया के सबसे ऊंचे ड्रॉप जोन में शामिल है। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 4000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर उन्हें सशक्त बनाना है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू उच्च अधिकारियों और हितधारकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में पायलटों और चालक दल के सदस्यों के शरीर में मनोसक्रिय पदार्थों की मौजूदगी का पता लगाने वाला मोका डोप टेस्ट सिस्टम

0: और नागर विमानन आवश्यकताओं CAR में जरूरी बदलावों पर चर्चा हो रही है। इसमें नागर विमानन मंत्रालय के महानिदेशक और एयरलाइन ऑपरेटर्स के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। दिल्ली चिकित्सा संघ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्वाइन फ्लू H1N1 के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की है। अब तक इसके 2000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली चिकित्सा संघ दिल्ली में इन्फ्लुएंजा की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और इस संक्रमण से होने वाली बीमारी और मौतों की निगरानी कर रही है। इन्फ्लुएंजा के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने और बचाव के जरूरी उपाय अपनाने की अपील की गई है। नॉर्वे में कश्मीरी प्रवासियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में की जा रही ज्यादति के खिलाफ प्रदर्शन किया। नॉर्वे की संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की बर्बरता और हिंसा का मुद्दा उठाया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नारे लगाए। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAEC के साथ एकजुटता दिखाते हुए इलाके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के ऑपरेशन को खत्म करने की मांग की। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल प्राथमिकता मौजूदा संघर्षों के मानवीय परिणामों को कम करने के लिए कदम उठाना होना चाहिए। जन संकट, वैश्विक और स्थानीय खाद्य संकटों को कम करने में सुरक्षा परिषद की भूमिका शीर्षक से सुरक्षा परिषद की खुली बहस को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि P. Harish ने सुरक्षित, त्वरित और निर्बाध मानवीय सहायता पहुंच के साथ प्रभावी संघर्ष निवारण व्यवस्थाओं के समर्थन का आह्वान किया। भारत ने नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र समिति की रिपोर्ट में किए गए उल्लेखों का इल्लोखे को खारिज कर दिया है। भारत ने इन्हें राजनीति से प्रेरित और बेहद दुर्भावनापूर्ण बताया। नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय संधि ICERD के तहत भारत की 11वीं आवधिक समीक्षा के बाद समिति की रिपोर्ट को लेकर मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने इसमें रचनात्मक ढंग से भाग लिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देने के लिए भारत और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल यूक्रेन के 35वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यूक्रेन के नागरिकों को अपनी शुभकामनाएं दी। कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे और अंतिम मुकाबले में चौथे दिन का खेल जारी है। फॉलो ऑन मिलने के बाद श्रीलंका ने दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 2 विकेट पर 100 रन बना लिए हैं। श्रीलंका की टीम पहली पारी में आज 290 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी 503 बनाकर घोषित की थी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. Finance Minister Nirmala Sitharaman today said that India stands as the fastest growing major economy in the world and offers a unique combination of scale, sustained growth, a young population, expanding consumption and rapidly deepening capital markets. Addressing prominent members of the Indian business community in Toronto today, Sitharaman said India's transformation is structural, driven by rapid urbanization, a growing middle class, and world-class digital infrastructure. She noted that these developments are creating new opportunities across virtually every sector of the economy. The finance minister also highlighted the role of India's digital ecosystem in transforming access to financial and commercial services. She underlined significant opportunities for collaboration with Canadian banks, fintech companies and regulators, not only in payments but also in shaping the next generation of digital financial infrastructure. India has rejected the references in the report of UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination, terming them politically motivated and highly malicious. In response to media queries on the committee's report following India's 11th periodic review under the International Convention on the Elimination of Racial Discrimination, ICERD, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that India participated in the spirit of constructive engagement as a routine treaty body review. The spokesperson said as a country that played a leading role in negotiating and drafting ICERD in the 1960s, India's commitment to combating racial discrimination remains unwavering. During the review, India highlighted its constitutional safeguards, robust legal framework, pluralism and sustained efforts to protect disadvantaged communities. India has asserted that

0: The immediate priority of the United Nations Security Council must be to take steps to mitigate the humanitarian consequences of ongoing hostilities. Addressing a Security Council open debate titled Food Under Fire, the Security Council's role in mitigating global and local food crises, India's permanent representative to the UN, P. Harish, called for safe, rapid and unimpeded humanitarian access, as well as support for effective deconfliction arrangements. He further urged the Security Council to ensure that its measures, including sanctions, do not inadvertently impede humanitarian assistance or legitimate food and agricultural trade. He noted that disruptions to energy markets, fertilizer supplies, maritime transport, humanitarian logistics, and agricultural trade have demonstrated that regional conflicts can threaten food security across the world. The Indian envoy, however, underlined that building resilient and food-secure societies remains primarily the responsibility of national governments supported by the UN development system and the Rome-based agencies rather than the Security Council. Keralites across the globe are celebrating Thiruvanam, most auspicious day of Onam. Our correspondent reports Thiruvanam celebrations began with Ona Pukalam, a traditional floral carpet made to welcome the legendary king Mahabali. This harvest festival is celebrated by Keralites irrespective of caste and religion. Special pujas have been held at temples including the hill shrine of Shabrimala, Aranmulla and Guruvayur. Eid Milad-un-Nabi, the birthday of Prophet Hazrat Muhammad, is also been celebrated today with religious fervor in various parts of the country. Milad Mehfils and Sirat conferences will be held highlighting the life and teachings of Prophet Muhammad. Delhi government will hand over the approval letters to 4,000 eligible women beneficiaries under the Delhi Lakshmi Yojana today. Under the scheme, eligible women will receive financial assistance of 2,500 rupees every month. Ukrainian President Volodymyr Zelensky has expressed gratitude to India and President Draupadi Murmu for conveying Independence Day greetings to the people of Ukraine. President Murmu yesterday extended her greetings to the people of Ukraine on the occasion of the country's 35th Independence Day. In men's cricket, host Sri Lanka were 108 for 2 against India in the second innings of the Colombo Test when reports last came in. India enforced the follow-on after bowling Sri Lanka out for 290 in the first innings. Resuming the penultimate day, 265 for 8, Sri Lanka managed to add only 25 runs. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्र प्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। वक्त हुआ है दोपहर के 1:10 और ये वक्त है आपके पसंदीदा प्रोग्राम, नाम है जिसका एक ही फिल्म से। प्रोग्राम शुरू करें उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
2: मोबाइल चार्ज करना,
3: दिमाग चार्ज कर अपना।
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
3: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल,
4: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाईफाई है ना।
3: बुद्धू सुधर जा।
4: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
4: आरबीआई कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
1: हिंदी सिनेमा में कई ऐसी फिल्में हैं जो भले ही बॉक्स ऑफिस पर इतनी ज्यादा हिट नहीं है रही, लेकिन उनके गानों ने सालों साल तक लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई और आज भी इन गीतों को लोग खूब पसंद करते हैं, गुनगुनाते हैं। उस दौर के ये गाने सुपरहिट साबित हुए, लेकिन आज भी इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो खूब है। आज हम आपको एक ऐसी ही फिल्म के बारे में बताएंगे जिसके गानों ने 70 के दशक के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। फिल्मों का असर सिर्फ कहानी तक सीमित नहीं होता, बल्कि संगीत, अभिनय और निर्देशन भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। जब कोई फिल्म इन सभी पहलुओं को संतुलित तरीके से प्रस्तुत करती है तो वो लंबे समय तक याद रहती है, और यही कारण है कि कुछ फिल्में समय बीतने के बाद भी उतनी ही प्रासंगिक लगती हैं। दर्शक उन्हें बार बार देखना पसंद करते हैं और इनके गाने पीढ़ियों तक गुनगुनाए जाते हैं। अब इतनी सब बातों के बाद शायद आप अंदाजा लगा लें, वैसे अगर नहीं भी लगाएंगे तो ये जो गीत सुनेंगे इसके बाद आपको अंदाजा हो ही जाएगा कि आज हम आपके लिए कौन सी फिल्म चुनकर लाए हैं। और जब आपको अंदाजा हो जाता है तो आपको पता है ना क्या करना है, अपने जवाब मेल के जरिए हमें पहुंचाने हैं। हमारा मेल आईडी है ip.radiodelhi@gmail.com। और आपको बता दूं कि आज इस प्रोग्राम में आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे।

जी हाँ दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ सामने रास्ते तो कई होते हैं मगर दिल किसी एक ही किनारे को तलाशता रहता है। और जब उस तलाश को एक शब्द मिलते हैं गुलजार साहब के, सुर मिलते हैं आर डी बर्मन साहब के, और आवाज़ मिलती है लता मंगेशकर, किशोर कुमार और भूपेंद्र सिंह जैसे फनकारों की, तो एक ऐसी फिल्म जन्म लेती है जो सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज का हमारा जो पिटारा है उसमें हम लेकर आए हैं 1977 की एक बेहतरीन संवेदनशील फिल्म किनारा। एक ऐसी फिल्म जिसमें प्रेम है, बिछड़ना है, स्मृतियां हैं और जिंदगी के उस किनारे तक पहुंचने की कोशिश जहां इंसान अपने अतीत और वर्तमान के बीच खड़ा दिखाई देता है।

मेरी आवाज ही पहचान है घर याद रहे, एक सुपर डुपर हिट गीत फिल्म किनारा का, जो कि 1977 में रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशन गुलजार साहब ने किया था और निर्माण भी उनके सहयोग से ही हुआ था। मुख्य भूमिकाओं में, जैसा कि हमने आपको बताया, जितेंद्र और हेमा मालिनी, जबकि धर्मेंद्र ने फिल्म में विशेष भूमिका निभाई थी और संगीत की जिम्मेदारी थी महान संगीतकार आर डी बर्मन साहब के ऊपर। गुलजार की फिल्मों की खासियत ये थी कि वो प्रेम को सिर्फ प्रेम कहानी की तरह नहीं देखते थे, बल्कि उसके पीछे छिपी भावनाओं, यादों और इंसानी रिश्तों को भी सामने लाते थे। कहानी का जो मुख्य पात्र है वो आरती सान्याल होती है, जो कि एक प्रतिभाशाली नृत्यांगना है, जो अपने अतीत के गहरी त्रासदी को अपने भीतर लिए हुए हैं। उनके जीवन में चंदन की याद बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर है इंदर, जो आरती की जिंदगी में प्रवेश करता है और धीरे धीरे वो आरती के प्रति आकर्षित होता है और उसके मन में भी प्रेम जन्म लेता है। लेकिन ये प्रेम कहानी इतनी सीधी नहीं है। आरती का अतीत, इंदर का वर्तमान और चंदन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण सच्चाई कहानी को एक भावनात्मक मोड़ देती है और यही खूबसूरती दिखाई है फिल्म किनारा में। यहाँ पर इंद्रजीत यानी कि इंदर की भूमिका जितेंद्र ने निभाई, हेमा मालिनी आरती सान्याल के रूप में नजर आई थी, धर्मेंद्र जो थे वो प्रोफेसर चंदन आर्य बने थे, श्रीराम लागू एक वास्तुकार के रूप में नजर आए थे, आरती के दादाजी के रूप में ओम शुप्री थे, दीना पाठक आरती की माँ बनी थी। सुनते हैं इसी फिल्म का एक और गीत भूपेंद्र जी की आवाज में।

0: देखो
1: प्रेम में सबसे खूबसूरत चीज क्या होती है, शायद वो सपना जिसे इंसान बार बार देखता है। फिल्म का गीत जब भी आप सुन रहे हैं, एक ही ख्वाब कई बार देखा, इसी एहसास को आवाज देता है। भूपिंदर सिंह और हेमा मालिनी की आवाज में गीत फिल्म की रोमांटिक संवेदना को बहुत ही खूबसूरती से सामने लाता है।

वाह, क्या खूबसूरत सा गीत है। वाकई आंख बंद करके तो इस गीत में खो जाने का दिल करता है। किनारा को खास बनाती है इसकी संवेदनशील कहानी। गुलजार की कहानी कहने की जो शैली है, कलाकारों का अभिनय और आर डी बर्मन साहब का संगीत। फिल्म की शूटिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक मांडू में हुआ था, जिसने फिल्म को एक खूबसूरत जो सीन थे, वातावरण था, वो दिया था। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला और 25वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में इसे निर्देशन, अभिनेत्री, सहायक अभिनेता, संगीत, गीतकार और कहानी सहित कई श्रेणियों में नॉमिनेशन मिला। सुनते हैं लता जी की आवाज में एक और खूबसूरत सा गीत।

उर्फ से राधे श्याम देवानगंद जगदीश जी हैं, छोटी बलिया फिल्म सिटी से अहमद भाई जी दुखनी हमारे सुन रहे हैं, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया नमन अपार डिंगिया जी हमारे साथ हैं, शिवा गो प्रेम गोप पश्चिम सिंहभूम चाईवासा झारखंड से हमारे साथ हैं, बन भगेरा राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सर्वा आशा जी हमें सुन रहे हैं, भवरपुर वसना से राधेश्याम चंपा जी हमारे साथ हैं, मोहम्मद रफीक पवार बेंजिन कोसर ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से हमें सुन रहे हैं, और मुकेश भट्ट जी हमारे साथ हैं चौटाला हरियाणा से, दारा पंडित संजय शर्मा जी हमें सुन रहे हैं, सुदर्शन मुखी अनीता सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से हमारे साथ हैं, आप सभी का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे इस सफ़र में हमारे हम सफ़र बनने के लिए, और आप इस वक्त आनंद ले रहे हैं फिल्म किनारा का। कुछ और संदेश भी हैं जिन्हें हमें शामिल कर लेती हूँ। मुकेश कासलेकर तहसील बरून जिला अमरावती महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी हेमलता हिना हर्षित जी हमें सुन रहे हैं, और सुदर्शन सुरेंद्र खुराना जी न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से हैं, हेमा मालिनी जितेंद्र धर्मेंद्र ने अपने किरदार बखूबी निभाए लिखते हैं वो फिल्म किनारा में, शुक्रिया आपका, जिला मुरादाबाद गांव धुलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान सलमान इरफान जी हमारे साथ हैं। तो दोस्तों किनारा सिर्फ 97.7 में आई एक फिल्म का नाम नहीं, ये उन भावनाओं का नाम है जिन्हें हम अपने भीतर लेकर चलते हैं, कुछ रिश्ते हमारे साथ रहते हैं, कुछ यादें हमें छोड़ती नहीं है, और कुछ लोग जिंदगी से दूर होकर भी हमारी कहानी का हिस्सा बने रहते हैं। ऐसी ही फिल्म है किनारा, जिसका आनंद आज आपने लिया। उम्मीद करती हूँ कि इस फिल्म को आपने ज़रूर देखा होगा, अगर अभी तक आपने इस फिल्म को नहीं देखा तो वक्त निकाल कर ज़रूर देखिएगा। फिलहाल वक्त मुझे कह रहा है आपसे अनुमति लेनी है, 2:30 पर विजेता जी आपके साथ रहेंगी, प्रोग्राम रहेगा एक ही कलाकार, तब तक अपनी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही फिल्म से, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को हैं, कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला खास खबरां। भारत ने नस्ली वितकरे के खात्मे बारे संयुक्त राष्ट्र कमेटी की रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों रद्द किया है। भारत ने उचाई वाले इलाकों में सैनिकों लिए स्वदेशी पैराशूट तकनोलॉजी में एक बड़ी सफलता हासिल की है। पंजाब सरकार ने कहा कि सूबे में खंड की कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद के एक हस्पताल में अग लगन कारण 14 नवजात बच्चों की मौत हो गई है। कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच भारत खिलाफ श्रीलंका की टीम अपनी पहली पारी च 290 दौड़ा से आउट होने तो बाद फॉलो ऑन खेडने लिए मजबूर। हुण खबरां विस्थार नाल। भारत ने नस्ली वितकरे के खात्मे बारे संयुक्त राष्ट्र कमेटी की रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों रद्द किया है। भारत ने इन्हां नूं राजनीतिक तौर पर प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण करार दिता है। नस्ली वितकरे के खात्मे बारे अंतरराष्ट्रीय संधि ICERD तहत भारत की 11वीं समीक्षा तो बाद कमेटी की रिपोर्ट बारे मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के बुलारे रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने इस रचनात्मक भावना नाल हिस्सा लिया है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने 1960 के दहाके में नस्ली वितकरे के खात्मे बारे अंतरराष्ट्रीय संधि की गलबात खरड़ा तैयार करने में मोहरी भूमिका निभाई सी। उन्होंने नस्ली वितकरे का मुकाबला करने भारत की दृढ़ वचनबद्धता भी दोहराया। समीक्षा दौरान भारत ने अपनी संवैधानिक सुरक्षा उपावां, मजबूत कानूनी ढांचे ते पछड़े वर्गों की राखी लई निरंतर यत्नां नूं उजागर कीता। भारत ने इस गल ते जोर दिता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तुरंत तरजीह चल रहे टकरावां दे मानवी असरां नूं घटाउण लई कदम चुकना होनी चाहीदी है। जन संकट, विश्वव्यापी ते स्थानक भोजन संकटां नूं दूर करने विच सुरक्षा परिषद की भूमिका विषय तहत सुरक्षा परिषद की खुली बहस नूं संबोधन करदिआं संयुक्त राष्ट्र विच भारत दे स्थाई प्रतिनिधि पी

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय कारोबारी बिरादरी के सरकर्ता अरकान से खिताब किया। उन्होंने कहा कि भारत की अक्सर तब्दीली ढांचा जाति, शहरों के तेजी से फरोख और आलमी मेयार के डिजिटल बुनियादी ढांचे पर मबनी है। भारतीय तिब्बी एसोसिएशन ने मुल्क में H1N1 इन्फ्लुएंजा के फैलने के सिलसिले में सेहत आमा से मुतालिक एडवाइजरी जारी की है। उसने कहा है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चौकन्ने रहें। ओनम का त्यौहार रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। हज़रत मोहम्मद का यौम पैदाइश ईद मिलादुल नबी मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। आइंदा दो रोज़ के दौरान मशरक़ी और शुमाल मशरक़ी रियासतों में शदीद बारिश जारी रहने का इम्कान है। और क्रिकेट में कोलंबो टेस्ट मैच में भारत ने श्रीलंका को फॉलो ऑन कराया है। अब खबरें तफसील से। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी रफ्तारी के साथ तरक्की करने वाली एक अहम मईशत है और मुल्क में लगातार तरक्की, नौजवान आबादी, खपत में बढ़ोतरी और तेजी से फरोग पाते हुए सरमाया बाजार मौजूद हैं। उन्होंने ये बात आज टोरंटो में भारत के कारोबारी तबके के सरकर्ता अरकान से खिताब करते हुए कही। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि भारत में शहरों के तेजी से फरोग, मुतवस्सित तबके की तरक्की और आलमी मेयार के डिजिटल बुनियादी ढांचे के नतीजे में यकसर कायापलट हुई है। उन्होंने कहा कि इस तरह के हालात से मईशत के लगभग हर तबके के लिए नित नए मौके पैदा हो रहे हैं। भारत और कनाडा के दरमियान बढ़ती हुई इकतसादी शराकत दारी की अहमियत को उजागर करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि कनाडा में मौजूद भारतीय बाशिंदे दोनों मुल्कों के दरमियान एक कलीदी पुल के तौर पर काम कर रहे हैं।

वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए खेलो इंडिया डायलॉग से खिताब करेंगे। मस्कूरा प्रोग्राम को खेलों के कौमी दिन 2026 के जश्न के हिस्से के तौर पर मेरा युवा भारत माई भारत की जानिब से मुनक्किद किया जा रहा है। ये प्रोग्राम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के हर एक ज़िले में 2 कॉलेजों में नौजवानों की शमूलियत के साथ मुल्क भर में मुनक्किद किया जाएगा। इसमें खेलों, नौजवान लीडरशिप, समाजी जिम्मेदारी, रज़ाकाराना खिदमात, फिटनेस और मुल्क की तामीर को एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर एक साथ लाया जाएगा, जिससे नौजवानों को मुल्क की खेलों से मुतालिक उमंगों में अमली तौर पर शामिल होने का मौका मिलेगा और इस बात को यकीनी बनाया जा सकेगा कि नौजवानों के ख्यालात और नुक्ताए नज़र को भारत के नौजवानों और खेलों से मुतालिक इको निज़ाम के ताल्लुक से जारी बातचीत का एक हिस्सा बनाया जा सके। प्रोग्राम में नौजवान माई भारत रज़ाकार, मकामी खिलाड़ी और अवामी नुमाइंदे शिरकत करेंगे। इस पहल के नुमाया हिस्से के तौर पर खेलों में दिलचस्पी रखने वाले नौजवान सरकर्दा भारतीय खिलाड़ियों और तमगा हासिल करने वाले खिलाड़ियों से बातचीत करेंगे। इस प्रोग्राम की एक मरकज़ी खसूसियत युवा संवाद होगा, जिसमें नौजवान शुरका को उनके ख्यालात, नुक्ताए नज़र और उमंगों पर बात करने के लिए मदऊ किया जाएगा। ये बातचीत 5 मौजूआत पर होगी, जिनमें खेल, ओलंपिक से मुतालिक उमंगें, नौजवान क़यादत, विकसित भारत और नशा मुक्त युवा शामिल हैं। खेलो इंडिया डायलॉग का मकसद नौजवानों की क़यादत में एक मजबूत विकसित भारत की खातिर अपनी उमंगें और नज़रियात का इश्तराक करते हुए मुल्क के खेलों के सफ़र में नौजवानों को शामिल करना है। इसका इनेकाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के एक फिट, मुनज़्ज़म और ज़ब्त पर मबनी और खेलों को फ़रोग देने वाले मुल्क के नज़रिए से मुताबिकत रखता है, जिससे नौजवानों की उमंगों को कौमी तरक्की के एजेंडा में मरकज़ी हैसियत हासिल हो सके। भारत ने पुरजोर अल्फाज में कहा है कि अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की फौरी तरजीह इंसानियत को दरपेश मसाइल को दूर करने के इकदामात होने चाहिए, जिसका उन्हें लड़ाई की वजह से सामना करना पड़ रहा है। अक्वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने सलामती काउंसिल में इस सिलसिले में एक खुली बहस में इजहार ख्याल करते हुए ये बात कही। उन्होंने बिला रुकावट इंसानी रसाई, महफूज और लड़ाई झगड़ों से पाक मुअस्सर इंतजाम की ज़रूरत को उजागर किया। उन्होंने सलामती काउंसिल पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि उसके इकदाम में ऐसी पाबंदियाँ शामिल होनी चाहिए जिनसे इंसानी बुनियाद पर दी जाने वाली इमदाद में दानिस्ता तौर पर रुकावट ना पड़े और जायज़ ज़रई तजारत और खुराक की फराहमी जारी रहनी चाहिए। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। भारत की मेडिकल एसोसिएशन ने अवाम पर जोर दिया है कि वो H1N1 इन्फ्लुएंजा के फैलने के बारे में होशियार और चौकस रहें। उसने ये भी कहा है कि मौसम की वजह से ये बीमारी बढ़ रही है और इससे मुतासर ज़्यादातर लोगों में ये एक हद तक रहता है और ये मामूली किस्म का होता है। उसने लोगों को मशवरा दिया है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेडिकल एसोसिएशन ने यह भी कहा है कि ये H1N1 एक वायरल इन्फेक्शन है और एंटीबायोटिक से इसके जरासीम ख़त्म नहीं होते। मेडिकल एसोसिएशन ने यह भी कहा है कि जब कोई अहल मेडिकल पेशेवर शख्स तजवीज़ करे तभी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। दुनिया भर में केरलम के बाशिंदे तिरु ओनम मना रहे हैं, जो ओनम का सबसे पवित्र दिन है। हमारे नामानिकार ने खबर दी है कि तिरु ओनम तकरीबात का आगाज़ ओना पुक्कलम से हुआ, जो बादशाह महाबली के खैर मकदम के लिए फूलों का एक रिवायती कालीन है। फसल की कटाई का ये त्यौहार केरलम के लोग ज़ात व मज़हब से क़त नज़र मना रहे हैं। मंदिरों में खसूसी पूजा का अहतमाम किया जा रहा है, जिनमें सबरीमला, अरनमुला और गुरुवयूर शामिल हैं। आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का योम पैदाइश ईद मिलादुन नबी भी मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर मिलाद महफिलों और सीरत नबवी कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया जा रहा है, जिसमें पैगंबर मोहम्मद की हयात तैयबा को उजागर किया जा रहा है। ईद मिलादुन नबी के मौके पर जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर CP राधाकृष्णन और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ओनम और ईद मिलादुन नबी के मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की है। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने अगले 2 रोज़ के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, मशरक़ी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, ज़ैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और शिमाल मशरक़ी रियासतों में शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। इस दौरान दिल्ली के हिस्सों में आमतौर पर बादल छाए रहने के साथ साथ कल बहुत हल्की से हल्की

0: with lightning and gusty winds likely to prevail over Uttarakhand, eastern Rajasthan, Andhra Pradesh, and Andaman and Nicobar Islands till Saturday. Parts of Delhi are expected to witness generally cloudy sky with possibility of very light to light rain tomorrow. Flood concerns have resurfaced in Odisha with the Mahanadi swelling following rainfall in its upper catchment areas in Chhattisgarh. We have more from a correspondent.
1: In Odisha, the flood situation remains a concern in several areas despite water levels in major rivers showing a receding trend. About 670,000 cubics of water reached Mundali in Cuttack following rainfall in the upper catchment areas, raising the possibility of a rise in Mahanadi levels. The Baitarani has flooded again in Bhadrak, with Chandbali witnessing its third flood. More than 1 lakh people remain affected across 6 districts with 79 rescue teams deployed. The state government has said presently no flood situation in the Salandhi, Subarnarekha and Brahmani rivers. The IMD has issued no rainfall warning for Odisha today but has forecast heavy rain tomorrow and very heavy rain at isolated places this weekend. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
0: In men's cricket, host Sri Lanka were 179 for 3 against India in the second innings on the fourth day of the second test in Colombo when reports last came in. Earlier, India enforced the follow-on after bowling Sri Lanka out for 290 in the first innings. Resuming the first innings at 265 for 8 this morning, the hosts managed to add only 25 runs. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Finance Minister Nirmala Sitharaman addresses leading members of Indian business community in Toronto, Canada, says India's transformation is structural, driven by rapid urbanization and world-class digital infrastructure. Chief Minister Rekha Gupta launches Delhi Lakshmi Yojana, hands over approval letters to 2,500 beneficiaries. And Indian Medical Association issues public health advisory on H1N1 influenza spread in country, says no cause for panic, just heightened vigilance required. Festival of Onam been celebrated with traditional fervor. Birthday of Prophet Hazrat Muhammad, Eid Milad Nabi, been celebrated in various parts of the country. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय व्यापारी समुदाय को संबोधित किया। कहा, भारत का परिवर्तन संरचनात्मक है जो तीव्र शहरीकरण और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे से प्रेरित है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। 2,500 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया। कहा, घबराने की जरूरत नहीं, सतर्कता बरतने पर जोर दिया। ओणम का त्योहार पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पैगम्बर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है। पूर्वी और उत्तर पूर्वोत्तर राज्य में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना। और क्रिकेट में भारत ने कोलंबो टेस्ट मैच में श्रीलंका को फॉलो ऑन खेलने के लिए कहा। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और यहां व्यापक अवसर, निरंतर वृद्धि, युवा आबादी, बढ़ती खपत तथा तेजी से विकसित हो रहे पूंजी बाजारों का अनूठा संयोजन निवेश के मजबूत अवसर प्रदान करता है। कनाडा के टोरंटो में आज भारतीय कारोबारी समुदाय के प्रमुख सदस्यों को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारामन ने ये बात कही।
3: भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारत में हो रहा बदलाव केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि एक व्यापक और संरचनात्मक परिवर्तन है। तेजी से हो रहा शहरीकरण, बढ़ता मध्यम वर्ग और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचा अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र में नए अवसर पैदा कर रहे हैं।
4: क्रॉस वर्चुअली एवरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी।
2: वित्त मंत्री ने कहा कि देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे ने वित्तीय और वाणिज्यिक सेवाओं तक पहुंच का दायरा बढ़ाया है। भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी के बढ़ते महत्व का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कनाडा में भारतीय प्रवासी दोनों देशों के बीच एक रणनीतिक सेतु हैं।
4: इंडिया कनाडा बायलैटरल रिलेशंस हैव सीन
3: भारत और कनाडा के द्विपक्षीय संबंधों में हाल के समय में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इन संबंधों को हमारे साझा लोकतांत्रिक और बहुलतावादी मूल्यों, बढ़ते आर्थिक सहयोग और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क ने मजबूत किया है।
4: ब्रिज बिटवीन टू वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज।

0: and two innovation-driven economies.
1: श्रीमती सीतारामन ने जून 2025 में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नए सिरे से मजबूत करने को लेकर बनी सहमति का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों देशों ने भविष्य केंद्रित रणनीतिक साझेदारी को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। श्रीमती सीतारामन 4 दिवसीय यात्रा पर कल टोरंटो पहुंची। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि जापान के शीर्ष कारोबारी और वित्तीय क्षेत्र के प्रमुखों से व्यापार, मोबिलिटी, औद्योगिक, बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों में भारत में निवेश बढ़ाने और मौजूद कारोबारी अवसरों के बारे में चर्चा की गई। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जापान यात्रा के दौरान भारत की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता का लाभ उठाने और देश की भूमिका को वैश्विक निर्यात केंद्र के रूप में मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। भारत ने इस बात पर भी जोर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल प्राथमिकता मौजूदा संघर्षों के मानवीय परिणामों को कम करने के लिए कदम उठाना होना चाहिए। जन संकट, वैश्विक और स्थानीय खाद्य संकटों को कम करने में सुरक्षा परिषद की भूमिका शीर्षक से सुरक्षा परिषद की खुली बहस को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सुरक्षित, त्वरित और निर्बाध मानवीय सहायता पहुंच के साथ प्रभावी संघर्ष निवारण व्यवस्थाओं के समर्थन का आह्वान किया।
2: खाद्य असुरक्षा सशस्त्र संघर्षों के सबसे गंभीर मानवीय परिणामों में से एक है। आज के संघर्षों का असर केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी प्रभाव पूरी दुनिया में देखने को मिल रहे हैं। ऊर्जा बाजारों, उर्वरक आपूर्ति, समुद्री परिवहन, मानवीय सहायता की व्यवस्था और कृषि व्यापार में होने वाले व्यवधानों से स्पष्ट है कि किसी क्षेत्रीय संघर्ष से वैश्विक खाद्य सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है।
3: हाईली इम्पोर्ट डिपेंडेंट।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माय भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। ये खेल युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण को एक साझा मंच प्रदान करेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि देश की प्रगति के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। नई दिल्ली में दिल्ली लक्ष्मी योजना के स्वीकृति पत्र सौंपते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि योजना के शुभारंभ के बाद से 9,22,000 से अधिक महिलाओं ने इसके लिए पंजीकरण कराया है।
4: 1 अगस्त से लेकर के आज तक 9,22,000 बहनों ने इस योजना में अपना नाम रजिस्टर किया। इस दिल्ली लक्ष्मी योजना में पहली 2,500 बहनों को हमने अप्रूवल सर्टिफिकेट सौंपा है, क्योंकि ये पहली 2,500 बहने हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है।
1: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये वित्तीय सहायता महिलाओं को बच्चों की देखभाल और शिक्षा, घरेलू आवश्यकताओं और आजीविका तथा व्यवसायिक गतिविधियों में सहायता जैसी महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकती है। भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने इन्फ्लुएंजा ए के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। IMA H1N1 का कहना है कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है। IMA ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की पर्ची के बिना एंटीबायोटिक्स न लेने की सलाह दी है। IMA ने विशेष रूप से एजिथ्रोमाइसिन, एमिक्सुलिन, क्लूवेंटलेट और सेफिक्साइमिम जैसी एंटीबायोटिक्स नहीं लेने की चेतावनी दी है। IMA ने बताया है कि H1N1 में आमतौर पर अचानक तेज बुखार और ठंड लगना, लगातार सूखी खांसी, गले में खराश, मांसपेशियों में तेज दर्द और थकान जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अन्य लक्षणों में सिरदर्द, नाक बहना या बंद होना, मतली, उल्टी और दस्त शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी UGC नेट, CSIR नेट तथा ICAR, AIEEPG और AICE PhD 2026 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी और परिणाम इस सप्ताह जारी करेगी। एजेंसी ने बताया है कि परिणाम और अंतिम उत्तर कुंजी उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और उसके वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के लिए महिला सशक्तिकरण केवल

0: चुनावी नारा है। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने कहा कि केंद्र सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस विधेयक का विरोध किया और सदन में इसके पारित होने में बाधा डाली। उन्होंने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की कांग्रेस शासित सरकारों में महिला मंत्रियों की अनुपस्थिति को लेकर राहुल गांधी से सवाल किया। आकाशवाणी कोलकाता ने आज प्रसारण के 100वें वर्ष में प्रवेश किया है। आकाशवाणी कोलकाता की शताब्दी यात्रा का ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: आकाशवाणी कलकत्ता ने आज अपना शताब्दी वर्ष में प्रवेश किया है, जो बंगाल में प्रसारण की इतिहास का एक महत्वपूर्ण पर्व है। केंद्र ने 26 अगस्त 1927 को अपना पहले बंगाल प्रसारण शुरू किया था। पिछले 100 वर्षों में आकाशवाणी कलकत्ता बंगाल के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। समाचार, संगीत, साहित्य, नाटक, शिक्षा और जनसेवा कार्यक्रम के माध्यम से इसने कई पीढ़ियों के श्रोताओं को जोड़ा और ज्ञान चर्चा को दिशा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रसार के अधीन ये केंद्र आज आधुनिक माध्यमों के जरिए श्रोताओं तक पहुंचने के साथ साथ अपनी समृद्ध विरासत को भी संरक्षित कर रहा है। संदीपन दासगुप्त के साथ अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासी आज तिरुओणम का पर्व मना रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: तिरुओणम के अवसर पर पारंपरिक पुष्प सज्जा ओण पुक्कलम से उत्सव की शुरुआत हुई। इसे पौराणिक राजा महाबली के स्वागत के लिए बनाया जाता है। फसल का ये प्रमुख पर्व सभी केरल वासियों द्वारा उत्सव के साथ मनाया जाता है। सबरीमाला, अरुणमुला और गुरुवायूर सहित राज्य के विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। पारंपरिक केरल भोज ओण साध्या भी तिरुओणम के प्रमुख आकर्षणों में शामिल है। आज राज्य भर में आधिकारिक आयोजनों सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारंपरिक खेल आयोजित किए जाएंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: वहीं पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न भागों में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। इसके लिए जगह जगह सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। आकाशवाणी समाचार के पूर्व समाचार वाचक पंचदेव पांडे का आज निधन हो गया। उन्होंने 1963 में आकाशवाणी वाराणसी से उद्घोषक के रूप में अपने सफर की शुरुआत की थी। उन्होंने 1983 से 1997 तक आकाशवाणी दिल्ली में समाचार वाचक के रूप में अपनी सेवाएं दी। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिन के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान है। वहीं उत्तराखंड, पूर्वोत्तर राजस्थान, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शनिवार तक तेज हवाएं चल सकती हैं। विभाग ने अगले सप्ताह देश में बारिश कम होने की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में कल आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में हुई बारिश के बाद महानदी का जलस्तर बढ़ने से उड़ीसा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: उड़ीसा में ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश के बाद कटक के मुंडली में लगभग 6,70,000 क्यूसेक पानी पहुंचा, जिससे महानदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। बाढ़ का पानी आरड़ी, सुंदरपुर, नंदापुर और उलाग पंचायत को प्रभावित कर रहा है। 6 जिलों में 1,00,000 से अधिक लोग प्रभावित है। अधिकारी नदियों के जलस्तर और संवेदनशील इलाकों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। IMD ने आज उड़ीसा के लिए बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की है, लेकिन कल भारी बारिश का अनुमान जताया है। दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: उधर उत्तरी नेपाल में आज सुबह अचानक आई भीषण बाढ़ ने सीमावर्ती बस्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया है और निचले इलाकों के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाढ़ सुबह तिब्बत की दिशा से आती हुई भोटे कोशी नदी में उमड़ी। नेपाल की सेना ने एक बयान में कहा कि पानी के अचानक बढ़ने से रसुवा जिले के तिरुमुरे और पास के सियाफुरुबेसी इलाके में भारी तबाही हुई है। भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT और नेटफ्लिक्स ने कहानी कहने वालों की अगली पीढ़ी को समर्थन देने के लिए 100 भारतीय विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की है। इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को 6 व्यावसायिक कार्यक्रमों में 80% तक वित्तीय सहायता

0: प्रदान की जाएगी, जिनमें एक वर्षीय दो डिप्लोमा कार्यक्रम और 6 माह के 4 प्रमाण पत्र कार्यक्रम शामिल हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव और IICT बोर्ड के अध्यक्ष चंचल कुमार ने कहा कि भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस वर्ष अगस्त में नेटफ्लिक्स के सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सारंडोस के साथ हुई बैठक के बाद की गई है। भारत ने अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में सैनिकों के लिए स्वदेशी पैराशूट तकनीक में बड़ी सफलता हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की आगरा स्थित ADRDE द्वारा डिजाइन और विकसित मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का लद्दाख के न्योमा के मुद ड्रॉप जोन में सफल परीक्षण किया गया। ये दुनिया के सबसे ऊंचे ड्रॉप जोन में शामिल है। इस दौरान प्रशिक्षित जम्परों ने शून्य से नीचे करीब 15 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 22,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई। कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे और अंतिम मुकाबले के चौथे दिन का खेल जारी है। फॉलो ऑन मिलने के बाद श्रीलंका ने दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 185 रन बना लिए हैं। इससे पहले श्रीलंका की टीम पहली पारी में आज 290 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी 503 रन बनाकर घोषित की थी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय व्यापारी समुदाय को संबोधित किया। कहा, भारत का परिवर्तन संरचनात्मक है जो तीव्र शहरीकरण और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे से प्रेरित है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। 2,500 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया। कहा, घबराने की जरूरत नहीं, सतर्कता बरतने पर दिया जोर। ओणम का त्यौहार पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन नबी धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना। और क्रिकेट में भारत ने कोलंबो टेस्ट मैच में श्रीलंका को फॉलो ऑन खेलने के लिए कहा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। ये प्रस्तुत है प्रोग्राम एक ही कलाकार और इस प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ इस प्रोग्राम की होस्ट विजेता चतुर्वेदी। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के उस निर्देशक के जिन्होंने दशकों तक दर्शकों को हंसाया, मनोरंजन को अपनी पहचान बनाया और बॉलीवुड की कॉमेडी फिल्मों को एक अलग अंदाज दिया। उनके फिल्मों में होता था तो गलत फहमियां, दोहरे किरदार और मजेदार सिचुएशंस, साथ में होते थे कुछ रंग बिरंगे गाने, सबसे बढ़कर दर्शकों को हंसाने की अद्भुत क्षमता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डेविड धवन की। राजेंद्र धवन के नाम से जन्मे डेविड धवन हिंदी सिनेमा के उन सफल निर्देशकों में शामिल हैं जिनका फिल्मी करियर कई दशकों तक फैला रहा। वे 16 अगस्त 1955 को अगरतला के त्रिपुरा में पैदा हुए। निर्देशन में आने से पहले उन्होंने फिल्म एडिटिंग में काम किया और संपादन को समझा और आगे चलकर उनकी फिल्मों की तेज गति और कॉमिक टाइमिंग में भी दिखाई दी। तो आइए डेविड धवन की जिंदगी और फिल्मों की इस मजेदार यात्रा पर चलते हैं।

श्रोताओं, डेविड धवन एक ऐसे परिवार से आते हैं जिसका सिनेमा से पुराना रिश्ता रहा है। उनके भाई अनिल धवन भी अभिनेता रहे हैं। डेविड धवन ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म एडिटर के रूप में की थी। एडिटिंग के बाद उनका रुझान निर्देशन की ओर बढ़ा और ये वही दौर था जब हिंदी सिनेमा में बड़े सितारे, बड़ी कहानियां और बड़े मनोरंजन का समय था। हिंदी सिनेमा के मशहूर फिल्म निर्देशक हैं जिन्हें मुख्य रूप से उनकी कॉमेडी के रूप ने उनको पहचान दिलाई और इसलिए उनको किंग ऑफ कॉमेडी भी कहा जाता है। अपने निर्देशन की शुरुआत 1989 में उन्होंने की थी। फिल्म का नाम था ताकतवर। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड को कई सुपरहिट और मनोरंजक फिल्में दी। मुख्य फिल्में और जो डेविड धवन ने अपने लंबे करियर में 45 से ज़्यादा फिल्मों का निर्देशन किया और उनकी अधिकांश फिल्मों में गोविंदा, अनिल कपूर, सलमान खान जैसे दिग्गज अभिनेताओं के साथ उनकी कॉमेडी की जुगलबंदी ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। उनके कुछ सबसे लोकप्रिय और यादगार फिल्में जो रही हैं वो डेविड धवन के उनमें ज़्यादातर जो है वो गोविंदा के साथ रही हैं और जहाँ पर जो ज़्यादातर टाइटल दिया गया है वो नंबर वन दिया गया है। तो इस तरह से डेविड धवन एक कॉमेडी का अगर बोला जाए कि एक नाम है तो ये कहना गलत नहीं होगा।

హలో 9821026212 BPL. అరే 9820026235 మ్యాచ్ దాచ్ యార్.

0: What is your gully number? What is your road number?
1: What is your style number? Karun kya dial number?
0: What is your ghar ka number?
2: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक ही कलाकार, और इस प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं बेहतरीन निर्देशक डेविड धवन की। और इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ इस कार्यक्रम की होस्ट विजेता चतुर्वेदी, और बात हो रही है उनके फिल्मी करियर की। 1992 में आई शोला शबनम ने उनकी इस शैली को और भी ज्यादा मजबूत किया। शैली मतलब कि जो उनका जॉनर था, जो कॉमेडी वो अपनी फिल्म में दिखाया करते थे। इसके बाद 1993 में आई

आंखें, जिसमें कॉमेडी, गलतफहमियां, दोहरे किरदार जैसी बातें दर्शकों को खूब पसंद आई। 1994 में आई राजा बाबू और ये फिल्म आज भी गोविंदा और डेविड धवन की लोकप्रिय फिल्मों में गिनी जाती है। 95 में फिर उसके बाद कुली नंबर वन, गोविंदा और करिश्मा कपूर की इस फिल्म ने मनोरंजन का ऐसा फॉर्मूला तैयार किया जहां पर कॉमेडी के साथ गाने, फैमिली ड्रामा, ये सभी चीज़ें फिल्मों में एक साथ चला करती थी। डेविड धवन ने दर्शकों को समझ लिया था और वो जानते थे कि आम दर्शक फिल्म देखने आते हैं, वो मनोरंजन चाहते हैं, हंसी चाहते हैं, गाना चाहते हैं और ऐसे किरदार चाहते हैं जिन्हें वो याद रख सकें। इसी वजह से उनकी फिल्में कई बार रियलिटी से हटकर थोड़ा मनोरंजन को प्रेफरेंस देने वाली बन जाया करती थी। उनकी फिल्मों का एक खास अंदाज था कि एक साधारण सी परिस्थिति को धीरे धीरे इतनी बड़ी कॉमिक उलझन में बदल देते थे कि दर्शक हंसते हंसते कहानी के साथ बहते चले जाते थे। डेविड धवन की फिल्मोग्राफी में सलमान खान के साथ जुड़वा, बीवी नंबर वन, चल मेरे भाई, दुल्हन हम ले जाएंगे, मुझसे शादी करोगी और मैंने प्यार क्यों किया जैसी चर्चित फिल्में शामिल हैं। जब 2000 का दशक आया तो हिंदी सिनेमा बदल रहा था, दर्शकों की पसंद भी बदल रही थी, नई पीढ़ी के सितारे सामने आ रहे थे, लेकिन डेविड धवन ने अपनी मूल पहचान नहीं छोड़ी जो थी कॉमेडी और मनोरंजन। डेविड धवन के निजी जीवन की बात करें तो उनके दो बेटे हैं रोहित धवन और वरुण धवन। रोहित भी फिल्म निर्देशक हैं जबकि वरुण हिंदी फिल्मों के लोकप्रिय अभिनेताओं में शामिल हैं। डेविड धवन ने वरुण धवन के साथ भी बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, मैं तेरा हीरो, जुड़वा नंबर वन, जुड़वा नंबर टू, कुली नंबर वन और 2026 की फिल्म है जवानी तो इश्क, जवानी है तो इश्क होना ही है। डेविड धवन ने एक बार ये भी कहा था कि कैमरे के पीछे उनके लिए वरुण उनके बेटे नहीं बल्कि एक अभिनेता है और यही उनके काम का परिणाम है।

और हमारे श्रोता भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, और न सिर्फ सुन रहे हैं बल्कि अपनी प्रतिक्रियाएं भी हम तक पहुंचा रहे हैं। तो चलिए अपने श्रोताओं के मेल्स की तरफ भी रुख कर लेते हैं। और सबसे पहला संदेश हमारे पास आया है तुलसी मस्किन जी का। लिखते हैं, विजेता चतुर्वेदी जी नमस्कार, एक ही कलाकार में आज डेविड धवन जी को याद किया जा रहा है। नाइस सॉन्ग से आगाज। और ये लिखते हैं, बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, साथ में हैं वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, डब्बू सम्राट, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान। और अगला संदेश है वडिंग खेड़ा से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा का, फागूराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव संबलपुर कांकेर से जुड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, पूजा वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी जी जुड़ती हैं। लिख रहे हैं, एक ही कलाकार प्रोग्राम में आज हिंदी फिल्म के कॉमेडी किंग निर्देशक डेविड धवन जी के फिल्मों के बारे में अच्छी जानकारी सुनने को मिल रही है। पहाड़गंज मुल्तानी ढाणा से जुड़ रहे हैं अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक। अगला संदेश है राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी का, गांव फरासी, जिला हिसार से। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल सहानी, पिंगावाला चौक, गोराया, जालंधर से जुड़ रहे हैं। और अगला संदेश हमारे पास आया है वीरम गांव गुजरात से अजीत भवसार, प्रमिला भवसार, भावेश कुमार और उनके सभी परिवारी जन। फारूक अली खान भी कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। और संदीप मक्कड़, ये दोबारा से हमारे पास संदेश आ गया है, तो कृपया एक बार शामिल होने के बाद अब दोबारा ना भेजें। छत्तीसगढ़ चुड़ी लाइन मुंगेली से हमारे श्रोता जुड़ रहे हैं, मोहम्मद इसहा, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा। लिखते हैं, आप जानकारी और गीत सुनकर बहुत ही मज़ा आया, कार्यक्रम में प्रस्तुति का अंदाज भी बेहद सटीक और शानदार है। तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे कार्यक्रमों को आप सुन रहे हैं। और ये संदेश है हमारे पास दुर्गोई सेलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता और सी आर कुलकर्णी जी का। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार जुड़ रहे हैं। लिखते हैं, आज आप एक ही कलाकार के अंतर्गत बेहतरीन निर्माता निर्देशक धवन साहब के बारे में बेहतरीन रोचक किस्से और नगमे सुनवा रही हैं। तो भाई कार्यक्रम से जुड़े रहिए और सुनते रहिए हमारे इस कार्यक्रम को। अगला संदेश भी ले लेते हैं, सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी जुड़ रहे हैं शांति नगर सोनीपत से। और शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल, शिवांश, संगीता, लिपि, दीपाली भी जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम में। चाईबासा झारखंड से, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, पी एस नुहाकर, निर्मला और विशाल जुड़ रहे हैं। अगला संदेश अनिल मोहन जी का है, ईद ए मिलाद उल नबी की दिली मुबारकबाद। तो भाई आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, राजकुमार बुडाना, सुदामा नगर खंडवा से, लक्ष्मी नंदिनी, रोहित ऋतु और मुकेश जगताप। तो ये थे हमारे श्रोताओं के प्यारे प्यारे से संदेश, और इन्हीं प्यारे से संदेशों के बाद अब एक और गीत सुन लेते हैं।

श्रोता हूँ, डेविड धवन की फिल्मों पर आलोचना भी बहुत हुई। कुछ लोगों ने उनके सिनेमा को बहुत हल्का कहा तो कुछ ने उनकी कॉमेडी को बहुत ज़्यादा लाउड कहा। लेकिन सिनेमा के इतिहास में किसी निर्देशक को समझने के लिए सिर्फ आलोचना नहीं बल्कि उसके दर्शकों पर पड़ने वाले प्रभाव को जरूर देखना होता है। डेविड धवन की सबसे बड़ी ताकत थी मनोरंजन। वो शायद ऐसी फिल्में बनाने के लिए याद किए जाते हैं जिनके बारे में दर्शक कह सकें, चलो कुछ देर के लिए जिंदगी की परेशानियों को भूलकर हंसते हैं। उनकी फिल्मों ने कई पीढ़ियों को हंसाया। गोविंदा के साथ उनकी जोड़ी ने एक दौर की कॉमेडी को परिभाषित किया। सलमान खान, वरुण धवन जैसे सितारों के साथ उन्होंने अलग अलग पीढ़ियों के लिए मनोरंजन किया। डेविड धवन को अपने लंबे करियर के लिए बहुत सारे मंचों पर सम्मान मिला और 2024 में उन्हें फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी प्रदान किया गया। ये सम्मान केवल एक निर्देशक को नहीं दिया गया, ये उस लंबे सफर की पहचान थी जिसमें उन्होंने दशकों तक मुख्य धारा के हिंदी सिनेमा को मनोरंजन से जोड़े रखा। राजेंद्र धवन से डेविड धवन बनने तक का ये सफर एक ऐसे फिल्मकार का सफर है जिसने कैमरे के पीछे खड़े होकर कई दशकों तक दर्शकों को गुदगुदाया। गोविंदा के साथ उनकी यादगार साझेदारी हो, सलमान खान के साथ उनके साथ सफल फिल्में हों, या फिर बेटे वरुण धवन के साथ नई पीढ़ी के लिए फिल्में बनाना हो। और शायद यही किसी भी फिल्मकार की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि उसका काम समय बीतने के साथ भी दर्शकों की यादों में जिंदा रहे।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए अब आनंद लेते हैं कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज का। कार्यक्रम में मैं हूँ विजेता चतुर्वेदी, स्वागत करती हूँ आपका इस कार्यक्रम में। और आज बात करेंगे बॉलीवुड के उस स्वर्णिम युग की, जहाँ फिल्मों में वीएफएक्स नहीं दिल धड़कता था और उसके गानों पर लोग झूम उठते थे। आज बात करेंगे उन 10 बेहतरीन फिल्मों की जिन्होंने हमारी हिंदी सिनेमा की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल कर रख दी, चाहे वो बात भारत में हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की हो। तो दिल थाम कर बैठिए क्योंकि यादों का ये सफर बेहद सुहाना होने वाला है। और इस सफर की शुरुआत करते हैं गुरुदत्त की मास्टरपीस कागज के फूल से। 1959 में आई ये फिल्म भारत की पहली सिनेमास्कोप फिल्म थी। एक ऐसे डायरेक्टर की कहानी थी जो कामयाबी की बुलंदियों से सीधे गुमनामी के अंधेरे में खो जाता है। रिलीज के वक्त ये फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन आज इसे दुनिया की महानतम फिल्मों में गिना जाता है। इसके बाद बात करेंगे 1963 में आई फिल्म बंदनी की। डायरेक्टर बिमल रॉय की ये फिल्म नारी शक्ति और उनके त्याग की वो बेमिसाल कहानी है जिसे देखकर आज भी आंखें नम हो जाती हैं। एक्ट्रेस नूतन की वो खामोश आंखें और उनका अभिनय वाकई लाजवाब है। तो इसी बात पर सुनते हैं बंदनी फिल्म का ये गीत जिसे आवाज दी आशा भोसले ने।

क्या इंटेंस गीत हुआ करते थे उस दौर में, जब एक नायिका अपने दिल की बात अपने बाबुल से कह रही है कि सावन का महीना आ गया है और अब के बरस भैया को ज़रूर भेज देना जिससे वो मुझे मायके ले आए, और उस सब पुरानी यादों को वो ताज़ा करे, अपने बचपन को वो यादा करे। तो ये गीतकार का एक जादू, उसके कलम का जादू हुआ करता था कि वो उन सभी शब्दों को इस तरह से लोगों के आंखों के आगे दृश्य के समान रख देता था। चलिए उदासी से थोड़ा बाहर निकलते हैं और रुक करते हैं साल 1958 की फिल्म मधुमति। दिलीप कुमार और वैजंती माला की इस फिल्म ने बॉलीवुड को पहली बार पुनर्जन्म यानी कि रेनक्रिएशन का चस्का लगाया था। इस हॉरर रोमांस फिल्म ने उस दौर में रिकॉर्ड 9 फिल्म फेयर अवार्ड जीते थे, जिसका निर्देशन और निर्माण महान फिल्मकार बिमल रॉय ने किया था। ये भारतीय सिनेमा की सबसे प्रभावशाली फिल्मों में से गिनी जाती है, जिसने बॉलीवुड को ये भूतिया हवेली की थीम इसको लोकप्रिय बनाया। और इस कालजयी फिल्म से जुड़ी मुख्य बातें ये हैं कि वैजयंती माला ने इस फिल्म में तिहरी यानी कि ट्रिपल रोल निभाए थे, जो उस दौर के सिनेमा में एक अनोखा रिकॉर्ड था। फिल्म की मूल कहानी मशहूर बंगाली लेखक और निर्देशक ऋत्विक घटक ने लिखी थी। और अब चलते हैं 1955 के उस दौर में, जब रिलीज हुई थी राज कपूर साहब की फिल्म श्री 420, वो फटे जूते, गोल टोपी, आवारा सांदास। इस फिल्म ने सिखाया कि बड़े शहर की चकाचौंध में भी अपनी ईमानदारी को कैसे जिंदा रखना है। ये फिल्म अपने दौर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनी। इसने न केवल भारत में बल्कि सोवियत संघ यानी कि रशिया और चीन में भी सफलता के नए रिकॉर्ड बनाए। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी और सर्वश्रेष्ठ एडिटिंग के लिए फिल्म फेयर पुरस्कारों से भी नवाजा गया। शंकर जयकिशन के संगीत और शैलेंद्र व हसरत जयपुरी के लिखे गानों ने इस फिल्म को दुनिया भर में अमर कर दिया, और इस फिल्म का ये गाना तो पूरी दुनिया गुनगुनाती है।

को राम राम, मुसलमान को सलाम, क्रिश्चियन को गुड मॉर्निंग और सरदार जी को सत श्री अकाल। मेरी तरफ देखिए, मेरे लिबास का मुआयना कीजिए, मेरे जूते हैं जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल गए हिंदुस्तानी। समझे ना भाई लोग, अपने पास एक ही चीज सोलह आने स्वदेशी है और वो है मेरा हिंदुस्तानी दिल।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मैटनी मेलेडीज। और आज बात हो रही है गोल्डन एरा की उन फिल्मों की जिन्होंने न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति प्राप्त की और सिनेमा के विचार को बदला, सिनेमा की राह को बदला, सिनेमा को नए अंदाज दिए। तो ऐसी एक फिल्म थी जो कि आई थी 1965 में, देवानंद साहब की गाइड। एक ऐसी फिल्म थी जो अपने दौर से बहुत आगे थी। रोजी और राजू गाइड की ये कहानी समाज की रूढ़ियों को तोड़ती है। मशहूर लेखक आर के नारायणन के प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड पर आधारित इस फिल्म का निर्देशन विजय आनंद ने किया था और इसके निर्माता मुख्य अभिनेता देवानंद साहब थे। इस फिल्म ने फिल्मफेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विजय आनंद, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता देवानंद और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री वहीदा रहमान सहित सभी मुख्य पुरस्कार जीते। गाइड विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में ऑस्कर के लिए भेजी जाने वाली भारत की पहली ऑफिशियल एंट्री बनी थी।

अब वो दौर आया जब रियलिस्टिक सिनेमा बनना शुरू हुआ। और ऐसी फिल्मों की अगर हम बात करते हैं तो 1953 में आई फिल्म दो बीघा ज़मीन, ये एक ऐसी कहानी है जो एक गरीब और ईमानदार किसान शंभू की कहानी है, जो अकाल के बाद अपनी दो बीघा ज़मीन को जमींदार के चंगुल से बचाने के लिए संघर्ष करता है। कर्ज चुकाने और अपनी ज़मीन बचाने के लिए वो कोलकाता जाकर रिक्शा खींचने काम करता है। फिल्म में आज़ादी के बाद के भारत के ग्रामीण और शहरी जीवन के कड़वे यथार्थ, जमींदार प्रथा के शोषण, गरीबी और पूंजीवाद के प्रभाव को बेहद मार्मिक ढंग से दिखाया गया है। सलिल चौधरी के संगीत निर्देशन में बना गीत धरती कहे पुकार की आज भी भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित गीतों में से एक है। इस फिल्म को पहले फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला था। बलराज साहनी साहब के ने किसान का दर्द पर्दे पर ऐसा जिया कि कांस फिल्म फेस्टिवल में भी इस फिल्म को सलाम करने पर मजबूर कर दिया। और अब बात करते हैं 1951 में आई फिल्म आवारा की। रूस और चीन के लोग इस फिल्म के दीवाने थे। टाइम मैगजीन ने इस ऑल टाइम बेस्ट फिल्मों में जगह दी। शंकर जयकिशन के संगीत ने इस फिल्म को अमर कर दिया। इसके गीतों को शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ने लिखा। आवारा हूँ इस गीत को गाया मुकेश ने, और ये केवल भारत ही नहीं बल्कि

रूस में, चीन में, तुर्की, मिडल ईस्ट में एक कल्ट एंथम बन गया। और साथ ही एक और गाना था जिसे गाया था लता मंगेशकर जी ने, घर आया मेरा परदेसी। इसे हिंदी सिनेमा का पहला भव्य ड्रीम सीक्वेंस माना जाता है। इसे फिल्माने के लिए स्टूडियो में विशाल सेट लगाया गया, भारी मात्रा में नकली धुओं का इस्तेमाल किया गया। तो चलिए याद कीजिए इस गाने को।

श्रोताओं, बात भारतीय सिनेमा के माइलस्टोन की। मुगले आजम 1960 में रिलीज हुई। डायरेक्टर के आसिफ ने 15 साल लगाए इस फिल्म को बनाने में। शहजादा सलीम और अनारकली की मोहब्बत, वो शीश महल का भव्य सेट और वो डायलॉग, सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा और हम तुम्हें जीने नहीं देंगे, ये डायलॉग आज भी फेमस है। के आसिफ ने इस फिल्म को बनाने में करीब एक दशक का समय लगाया। ये उस दौर की सबसे महंगी भारतीय फिल्म है जिसका बजट लगभग 1.5 करोड़ था। इसके बाद बात करते हैं 1957 की फिल्म प्यासा की, गुरुदत्त साहब की। ये एक फिल्म ऐसा आईना है जो कि इस मतलबी दुनिया को दर्शाता है। एक शायर की वो तड़प और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में रूह को झकझोर देने वाले गाने। और आखिर में एक और फिल्म का यहाँ पर जिक्र होना ज़रूरी है, 1957 की रिलीज़ फिल्म मदर इंडिया। महबूब खान की ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं, नए भारत की नारी के संघर्ष और उसके त्याग और स्वाभिमान का सबसे बड़ा प्रतीक है। ऑस्कर में जाने वाली भारत की पहली फिल्म बनी। नरगिस जी का वो हल उठाए हुए जो पोज है, आज भी हिंदुस्तानियों के दिल में छप कर रह गया है। और अब सुनते हैं मुगले आजम फिल्म का एक और बेहतरीन गीत, लता मंगेशकर और शमशाद बेगम के स्वर में।

श्रोताओं, आज भले ही सिनेमा 3D हो गया हो, VFX आ गए हों, करोड़ों के बजट में सिमट गया हो, लेकिन जो बात इन पुरानी फिल्मों की सादगी में थी वो आज ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। तो चलिए इस बात पर सुन लेते हैं मदर इंडिया फिल्म से ये गीत।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

तोहफा पेश किया हो। अगर इस पर पत्थर बरसाए गए हों तो पत्थर बरसाने वाले को गुलदस्ता पेश किया हो। अगर इसकी कोई मिसाल है तो वो सरजमीन हिजाज के बासी और अर्ज़ बथरा में गश्त करने वाले सालार कौम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी है। तारीख इस्लाम गवाह है कि फ़तह मक्का के बाद सहन हरम में दुश्मनान इस्लाम सरदारान कुरैश जमा थे। इनमें वो भी था जो आपकी राह मुबारक पर कांटे बिछाया करता था। इनमें वो नंगे इंसानियत भी था जिसने हज़रत सुमैया को शर्मनाक तरीके पर शहीद किया था और हज़रत अक़दस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक को शदीद अज़ियत पहुँचाई थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको मुखातब करके दरियाफ़्त फरमाया कि ए कुरैश, क्या ख्याल है, मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूँ। कुरैश ने जवाब में कहा कि हमें आपसे भलाई की तवक्को है, इसलिए कि आप शरीफ भाई के बेटे हैं और आपसे नेकी की उम्मीद की जा सकती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घबराओ नहीं, मक्का की माओ से कह दो तुम्हारी ममता नहीं लूटी जाएगी, मक्का के बच्चों से कह दो कि तुम्हें यतीम नहीं बनाया जाएगा, मक्का की बहनों से कह दो कि तुम्हारे दुपट्टे नहीं उतारे जाएंगे, बल्कि जिसने गले पर तलवार चलाई थी उसको गले लगाया जाएगा, जिसने सीने में खंजर घोंपा था उसको सीने से लगाया जाएगा, जो पैगाम मौत बनकर हमला आवर था उसको जाम हयात दिया जाएगा। सीरत पाक के इन्हीं पहलुओं से दुनिया के दानिश्वर वाकिफ़ होकर इस्लाम के लिए रुतबुल लिसान हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मिसाली शौहर थे, मिसाली बाप थे। आपकी हयात मुबारका के मुख्तलिफ पहलू हैं। आपने सिपाही, जनरल, मुनसिफ, गर्ज़े के ज़िंदगी के मुख्तलिफ तजर्बात से पूरी दुनिया को रोशनी दी। आपकी ज़िंदगी कसीरुल जिहाद थी। आपने दुनिया छोड़कर राहिब की ज़िंदगी नहीं गुजारी, बल्कि ज़िंदगी में राह अमल अपनाकर पूरी दुनिया को गर्विदा बनाया और इसी के बाइस मज़हब इस्लाम की तालीमात से पूरी दुनिया इस्तिफादा कर रही है। बच्चों के तय आपका शफक़त आमेज़ रवैया पूरी दुनिया में सराहा गया। यतीम, बेवा औरतों, गरीबों, मोहताजों के लिए आपने जिस अंदाज़ पर अवामुन्नास को मदद के लिए मदू किया उसकी आज के दौर में बड़ी अहमियत है। बीमार इंसानों के साथ हमदर्दी और उनकी देखभाल दुनिया इंसानियत के लिए एक नमूना है। आपके बताए हुए रास्ते पर चलकर ज़िंदगी में एक इनकलाब लाया जा सकता है। अहादीस की किताबों के मुताले से सीरत पाक के सभी तजर्बात सामने आते हैं। सखी वक्त हातिम ताई की बेटी सफाना सन 9 हिजरी में जंगी कैदी बनकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में पेश हुई। वो नंगे सर थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल से फरमाया कि मेरा रुमाल इसके सर पर डाल दो। हज़रत बिलाल ने अर्ज़ किया कि हुजूर, रुमाल, इस रुमाल के एक एक धागे की पाकिजगी पर फरिश्ते रश्क करते हैं, वो इसके सर पर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटी बहरहाल बेटी होती है, दोस्त की हो या दुश्मन की। इसी तरह के मुतअद्दिद वाक़यात इस्लाम की आलमगीर तालीम और नौए इंसानी से इसका लगाव वाज़ेह करते हैं। मुख्तसरन ये कि इस्लाम 7वीं सदी ईस्वी के आगाज़ पर अरब में आया और हैरत अंगेज तौर पर बहुत जल्द फारिस, शाम, फ़लस्तीन, मिस्र और शिमाली अफ्रीका के मुल्कों में फैल गया। इस्लाम में पड़ोसियों के हुकूक़ की ज़बरदस्त वकालत की गई है और पड़ोसियों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसी कोई शर्त या कैद नहीं है। बहर सूरत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लाम की तालीम और पैगाम आज भी इस मुतमद्दिन दुनिया में वो रोशनी का मीनार है। आज इंसान को जिन मसाइल का सामना है इनको हल करने में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका का मुताला बेहद मुआविन है। आपने अखुवत इंसानी, मसावात, तआवुन और इंसानी हमदर्दी के जो सबक दिए, कमज़ोर तबकात और औरत को ताकत और इज़्ज़त का मकाम अता किया। आपने अपनी पूरी उम्र इसी सिलसिले की तालीमात से इंसानों को आगाह कराया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, देखो तुम सब एक आदम की नस्ल से हो, ख्वाह कोई अरब हो या गैर अरब, अगर कोई किसी से अफजल और बरतर होगा तो सिर्फ मोहताज ज़िंदगी और खौफ खुदा की बुनियाद पर होगा। आपने फरमाया, देखो तुम में से किसी की जान और इसके मालो मता पर कब्ज़ा करना या ज़ाय करना इसी तरह ममनू और हराम है जिस तरह ज़िलहिज्जा के मुक़दस महीने और अरफा के मुक़दस दिन और मक्का के मुक़दस शहर की हुरमत को नुकसान पहुँचाना। आपने अख़ुवत और मसावात इंसानी का वो अजीम ऐलान फरमाया जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। आपने अरबों के मजमे में खड़े होकर यह अजीम और मुनसिफाना ऐलान किया कि किसी अरब को गैर अरब पर कोई फोकियत नहीं है सिवाय इसके कि इसमें खुदा का डर ज़्यादा हो। आपकी तालीमात पूरी इंसानियत के लिए हैं

0: आपका सबसे बड़ा एहसान ये है कि आपने इंसानी फ़र्क को दूर करके मसावात की तालीम दी। चुनाचे आपकी तालीमात मजहब और दुनियावी ज़िंदगी का मुश्तरक और एक जामे निज़ाम है। आपने दीन और दुनिया को इस तरह एक प्लेटफॉर्म पर ला खड़ा किया कि किसी एक शख्स की भी हक तलफी ना हो। इस्लाम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का आखिरी दीन है। इंसानी ज़िंदगी की तमाम ज़रूरतों की तकमील का तरीक़ाकार इस्लाम में मौजूद है। कुरान करीम की तालीमात इस बात पर जोर देती हैं कि जिस्मानी और मादी हैसियत से आम नस्ल इंसानी एक ही ख़ानदान है। आज इस तारीख को, जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का योम पैदाइश है, पूरी दुनिया में इस्लामी तालीमात तमाम इंसानों के लिए है। इनका मुताला असर हाजिर की बड़ी ज़रूरत है। आपकी ज़ात ग्रामी वो वाहि शख्सियत थी जो मजहब और सेकुलर सतह पर हर दो जगह इंतहाई कामयाब रही। इस सदी का अजीम मुफक्किर और मौरख टाइन भी लिखता है कि मुसलमानों में नस्ली इम्तियाज का मुकम्मल खात्मा इस्लाम का अजीम कारनामा है। ये अजीब इत्तेफाक है कि 200 साल कबल थॉमस कार्लाइल ने तमाम पैगंबरों में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हीरो मुंतखब किया था, और अब 20वीं सदी के आखिर में अमेरिका के माइकल एच हार्ट ने इन लोगों की फहरिस्त में, जो तारीख आलम में इंसानियत पर सबसे ज़्यादा असरअंदाज होते हैं, आप ही का नाम सर फहरिस्त रखा। मुख्तसरन ये कि इस ज़ात अक़दस का मुताला दुनियाए इंसानियत के लिए मशाले राह है।
1: सीरत रसूल, अभी आप इस मौजू पर जनाब नदीम अहमद सिद्दीकी से उनके ख्यालात सुन रहे थे। समीन, हुजूर अकरम की विलादत से पहले दुनिया जहालत, जुल्मत और अखलाकी पस्ती के अंधेरों में डूबी हुई थी। अरब माशरे में जूदो सखा और शजात जैसी खूबियां तो थीं, मगर वहीं इंसानी हुकूक़ की पामाली और बेटियों को जिंदा दफन करने जैसी मज़मूम रस्में भी आम थीं। ऐसे तारीख दौर में मक्का मुकर्रमा के मौजिस कबीले कुरैश यानी बनु हाशिम के घराने में रसूल अल्लाह की विलादत हुई। आपकी ज़ात मुबारक सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत और कायनात की हर मखलूक के लिए रहमत बनकर आई। आपने दुनिया को अमन, मोहब्बत, मसावात और भाईचारे का दर्स दिया। गुलामों को माशरे में इज्जत का मकाम दिलाया। ख्वातीन को हुकूक अता किए और दुश्मनों को भी गले लगाया। आइए सामने सुनते हैं नाते रसूल पाक।

अभी दरबार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश कर रहे थे सलाउद्दीन और हमनवा। समीन, ईद मिलादुन्नबी के रोज़ मसाजिद और घरों में नात और सीरत की महाफिल मुनाकिद की जाती हैं, जुलूस निकाले जाते हैं, गरीबों, यतीमों और मोहताजों में खाना तकसीम किया जाता है ताकि माशरे का हर तबका खुशी में शरीक हो सके। महज चरागा करना और जुलूस निकालना ही इस ईद का हक अदा नहीं करता, बल्कि इस दिन

0: दिया है। आईएमए का कहना है कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आईएमए ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की पर्ची के बिना एंटीबायोटिक्स न लेने की सलाह दी है। भारत ने इस बात पर बल दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल प्राथमिकता मौजूदा संघर्षों के मानवीय परिणामों को कम करने के लिए कदम उठाना होना चाहिए। जन संकट, वैश्विक और स्थानीय खाद्य संकटों को कम करने में सुरक्षा परिषद की भूमिका विषय पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सुरक्षित, त्वरित और निर्बाध मानवीय सहायता पहुंच के साथ प्रभावी संघर्ष निवारण व्यवस्थाओं के समर्थन का आह्वान किया। ओमान के विदेश मंत्री बदर अल बुसैदी ने कल तेहरान में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात की। उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री के साथ होर्मुस जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों के यातायात प्रबंधन के लिए चरणबद्ध दृष्टिकोण पर चर्चा की। एक संयुक्त बयान में दोनों देशों ने कहा कि प्रस्तावित ढांचे में एक संयुक्त अस्थायी नौवहन गलियारे की स्थापना और जलमार्ग से बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए संयुक्त प्रयास शामिल हैं। इस बीच ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने सरकारी टेलीविजन को बताया कि दोनों देश एक अस्थायी मार्ग पर सहमत हो गए हैं। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासी आज तिरुओणम का पर्व मना रहे हैं। ये पौराणिक राजा महाबली के स्वागत और नई फसल के आगमन की खुशी में सभी केरलम वासियों द्वारा उत्साह के साथ मनाया जाता है। केरलम में आज आधिकारिक आयोजनों सहित बड़ी संख्या में सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारंपरिक खेल आयोजित किए जा रहे हैं। उधर पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी भी आज उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने फॉलो ऑन मिलने के बाद दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 6 विकेट पर 218 रन बना लिए हैं। इससे पहले श्रीलंका की टीम पहली पारी में 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी में 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारतीय टीम श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। More than 100 Indians are among 384 tourists reported missing in Nepal after flash floods in the Bhote Koshi River hit the Rasuwa region this morning. According to the Nepal Tourism Board NTB, the 384 missing tourists include 291 foreign nationals and 93 Nepali citizens. It said the foreign nationals are from several countries, including 105 from India and others from the United Kingdom, Australia, the United States, Malaysia, South Africa, and the Netherlands. Authorities and rescue agencies are continuing efforts to assess the situation and establish the whereabouts of those reported missing. The Nepal Tourism Board has also issued emergency contact numbers for tourists and their families seeking information or assistance. The emergency contacts include the toll-free number 1234, the hotline 1144, and the tourist police number 98512-89445. The Tourism Board urged the tourists in the affected areas to remain calm, stay informed through official channels, and follow all safety instructions issued by the authorities. In view of the situation, Nepali Prime Minister Balendra Shah has consulted with federal parliamentarians from the affected areas, including Rasuwa, Nuwakot, Dharing, Gorkha, and Chitwan. The discussion focused on the damage caused by the earthquake, the condition of coastal settlements, and the rescue and relief efforts. Earlier in the day, Mr. Shah had convened a meeting of the National Council for Disaster Risk Management and Reduction to review the situation in the flood-affected areas and the progress of the rescue, search and relief efforts. Meanwhile, flood concerns have resurfaced in Odisha, with the Mahanadi River swelling following rainfall in its upper catchment areas in Chhattisgarh. More than 1 lakh people remain affected across 6 districts, with 79 rescue teams deployed. The IMD has forecast heavy rainfall will prevail over Bihar, Chhattisgarh, eastern Uttar Pradesh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Odisha, sub-Himalayan West Bengal, Sikkim and northeastern states during the next 2 days. Parts of Delhi are expected to witness generally cloudy sky with possibility of very light to light rain.

0: The Indian Medical Association, or IMA, has urged people to remain vigilant amid a seasonal rise in influenza A, H1N1 cases, saying that the majority of infections are mild and self-limiting and there is no cause for panic. The IMA has advised people not to take antibiotics over the counter for flu symptoms, stressing that H1N1 is a viral infection and antibiotics do not kill viruses. Finance Minister Nirmala Sitharaman has said that India stands as the fastest growing major economy in the world and offers a unique combination of scale, sustained growth, a young population, expanding consumption and rapidly deepening capital markets. Ms. Sitharaman was addressing prominent members of the Indian business community in Toronto.
1: India today stands as the fastest growing major economy in the world. India's transformation is structural. Rapid urbanization, a growing middle class and world-class digital infrastructure are creating new opportunities across virtually every sector of the economy.
0: Union Minister Sitharaman arrived in Toronto yesterday on a four-day official visit to Canada. The Indian Institute of Creative Technologies, IICT, and Netflix have announced scholarships for 100 students to support next generation of Indian storytellers. Under this scholarship scheme, students will be provided up to 80% financial support across six professional programs comprising 2 1-year diploma programs and 4 6-month certificate programs. Keralites across the globe are celebrating Thiruvanam with the festivities beginning with Ona Pukkalam, the traditional floral carpet made to welcome the legendary King Mahabali. This harvest festival is celebrated by Keralites irrespective of caste or religion. Eid Miladun Nabi, the birthday of Prophet Hazrat Muhammad, is also being celebrated today with religious fervour in various parts of the country. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have greeted people on the occasion of Onam and Eid Milad. In men's cricket, hosts Sri Lanka were 218 for 6 against India in their second innings on the fourth day of the second test in Colombo when reports last came in. And that is the end of this news bulletin.
2: आकाशवाणी का ये दिल्ली केंद्र है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर शाम के 4:10 हुए हैं। आइए जानकारी लेते हैं गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित। थाना सूरजपुर कमीशन रेड गौतम बुद्ध नगर से जो पहली सूचना हमारे पास आई है, गुमशुदा का नाम है सोनम अहिरवार, पुत्री रमेश अहिरवार। ये 15 जून 2026 को ग्राम साकीपुर से लापता हैं। इनके ढूंढने की काफ़ी कोशिश की गई लेकिन अभी तक इनके बारे में कुछ पता नहीं चला। 18 वर्ष की सोनम जो एक महिला है, आंख नाक कान औसत, एकहरा जिस्म है, कद 5 फुट है। इन्होंने प्रिंटेड हाफ शर्ट और बैंगनी रंग की पैंट पहनी हुई है। इनके बारे में कोई भी सूचना या जानकारी आपको मिलती है तो आप संपर्क करें प्रभारी निरीक्षक थाना सूरजपुर कमीशन रेड गौतम बुद्ध नगर। अगली जानकारी थाना सूरजपुर कमीशन रेड गौतम बुद्ध नगर से ही मिली है। गुमशुदा का नाम है शिवानी, पुत्री श्री रामपाल। ये ग्राम साकीपुर थाना सूरजपुर की रहने वाली है। 18 वर्षीय महिला शिवानी, जो इनका शरीर हष्ट पुष्ट है, कद 5 फुट 4 इंच है, ये घर से नाराज होकर कहीं चली गई हैं। इनको ढूंढने के काफी प्रयास किए गए लेकिन अभी तक इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। इनसे संबंधित कोई भी जानकारी या सूचना आप रखते हैं, आपने इन्हें कहीं देखा है तो आप संपर्क करें थाना सूरजपुर कमीशन रेट गौतम बुद्ध नगर। थाना सूरजपुर कमीशन रेट गौतम बुद्ध नगर से ही अगली जो जानकारी है, गुपशुंदा का नाम है जीवन परियार। ये द बेडिंग डॉट टेबला में काम करते हैं, देवला में काम करते हैं, सेफ का काम करते हैं। ये 40 वर्षीय पुरुष जीवन, जिनके नाक कान आंख औसत, रंग सांवला, कद 5 फुट 3 इंच, द वेडिंग डॉट देवला में ये सेफ का काम करते हैं। इनके बारे में कोई भी जानकारी या सूचना अब तक है, आपके कोई भी आपने इनको कहीं देखा है तो आप संपर्क करें थाना सूरजपुर कमीशन रेड गौतम बुद्ध नगर। अगली जानकारी थाना सेक्टर 51 नोएडा कमीशन रेड गौतम बुद्ध नगर से मिली है। गुमशुदा का नाम है आयुषी शर्मा, पुत्री शशिकांत। 18 वर्षीय आयुषी, शरीर की बनावट सामान्य, कद 4 फुट 10 इंच है,

नीले कुर्ता और खाकी पैंट पहन रखी है। ये अपने घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं। इनके बारे में कोई भी जानकारी या सूचना आप देना चाहते हैं तो संपर्क करें थाना सेक्टर 51 नोएडा, कमीशन रेट गौतम बुद्ध नगर। अगली जानकारी हमें मिली है थाना बिसरख गौतम बुद्ध नगर से। गुमशुदा का नाम है सतवीर। ये अपने घर पर इन्हें अंतिम बार देखा गया था। सतवीर 37 वर्षीय पुरुष, शरीर की बनावट औसत, कद 5 फुट 1 इंच है। ये घर से बिना बताए कहीं चले गए हैं। इनसे संबंधित जानकारी या सूचना आप रखते हैं, आपने कहीं इन्हें देखा है तो आप संपर्क करें प्रभारी निरीक्षक थाना बिसरख गौतम बुद्ध नगर से। अगली जानकारी भी हमें थाना बिसरख गौतम बुद्ध नगर से मिली है। गुमशुदा का नाम है प्रमोद भड़ाना, पुत्र स्वर्गीय सुखवीर भड़ाना। ये ओ ब्लॉक 460 सेक्टर 2 ग्रेटर नोएडा बेस्ट थाना बिसरख पतवाड़ी थाना बिसरख जनपद गौतम बुद्ध नगर से लापता है। इन्हें अंतिम बार 26 जुलाई को शाम दोपहर 2 बजे के करीब देखा गया था। 47 वर्षीय प्रमोद, जिनका कद 5 फुट 7 इंच है, शरीर की बनावट पतली, चेहरे का रंग गेहुआ, इन्होंने सफेद रंग की टी शर्ट और काली जीन्स पहनी हुई है। इनके चेहरे पर मोटा चश्मा और भारी मूछें हैं। इनसे संबंधित कोई भी सूचना आप देना चाहते हैं तो संपर्क करें थाना बिसरख गौतम बुद्ध नगर। अगली जो जानकारी है हमें मिली है वो थाना फेस 2 जनपद गौतम बुद्ध नगर से मिली है। गुमशुदा का नाम गौरव शुक्ला है, जो कि 26 जुलाई से लापता है। 21 वर्षीय गौरव, जिनका कद 168 सेंटीमीटर, एक कहरा मजबूत शरीर है। इनके बारे में जानकारी आप देना चाहते हैं तो संपर्क करें थाना फेस 2 जनपद गौतम बुद्ध नगर। अगली जानकारी कोतवाली सेक्टर 58 नोएडा से मिली है। गुमशुदा का नाम दुष्यंत कुमार दीक्षित है। ये 25 जून से लापता है। 40 वर्षीय दुष्यंत, 5 फुट 6 इंच इनकी, इनका कद, दोहरा मजबूत बदन है। इनसे संबंधित जानकारी आप देना चाहते हैं तो संपर्क करें कोतवाली सेक्टर 58 नोएडा गौतम बुद्ध नगर। ये थी गुमशुदा से संबंधित जानकारी। हम आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 4:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं युवाओं का प्रोग्राम युवावाणी।

0: नमस्ते दोस्तों, चलिए बुधवार की शाम का करते हैं आगाज। नई सोच, नए सपनों और नए जुनून को साथ लेकर चलने वाला युवाओं का अपना कार्यक्रम युववाणी से। मैं हूं पृथ्वीराज
1: और मैं हूं तेजस्वी। और आज का कार्यक्रम होने वाला है थोड़ा हटके, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कुछ नई और उभरती हुई करियर अपॉर्चुनिटीज की।
0: तेजस्वी और मैं आज लेकर आए हैं एक ऐसी इंडस्ट्री की बात जो क्रिएटिविटी, टैलेंट, पैशन को अपॉर्चुनिटीज से जोड़ती है। मन से माइक्रोफोन में जुड़ेंगे अपने रूट से और जानेंगे आजकल कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपको ढूंढ रही हैं।
1: जी हाँ, आज हम बात करेंगे ऑरेंज इकोनॉमी की और जानेंगे कि आखिर ये ऑरेंज इकोनॉमी है क्या, इसमें कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं और कैसे आप अपनी क्रिएटिविटी को एक करियर में बदल सकते हैं।
0: तो चलिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सुनते हैं एक खूबसूरत और नॉस्टैल्जिक सा गाना, एक तारा फ्रॉम द मूवी वेक अप सिड।

0: मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये गाना बहुत पसंद आया होगा, बिकॉज मेरा तो ये गाना फेवरेट है। पर पृथ्वी, अब वक्त है उस सवाल का जिसका इंतजार शायद हमारे कई लिसनर्स कर रहे होंगे, कि आखिर ये ऑरेंज इकोनॉमी है क्या?
1: पता है तेजस्वी, मुझे भी लगता है कि नाम सुनते ही सबसे पहले सवाल यही आता है, ऑरेंज इकोनॉमी, ये ऑरेंज रंग वाली इकोनॉमी है क्या?
0: बिल्कुल नहीं, ये ऑरेंज इकोनॉमी का सीधा कनेक्शन है क्रिएटिविटी और कल्चर से। इसमें वो सारे काम और इंडस्ट्रीज आती हैं जहां आइडियाज, इमेजिनेशन, टैलेंट और क्रिएटिव स्किल्स की वैल्यू होती है। आप म्यूजिक सुनते हैं, फिल्म देखते हैं, फोटोग्राफी करते हैं और कॉन्टेंट क्रिएट करते हैं, इन सभी के पीछे किसी ना किसी फॉर्म की क्रिएटिव इंडस्ट्री का हाथ होता है।
1: और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज क्रिएटिविटी सिर्फ एक हॉबी नहीं रह गई है, यह एक करियर भी बन सकती है, एक बिजनेस भी। इस इंडस्ट्री में एक्टर, सिंगर या फिल्म मेकर ही नहीं, बल्कि एनिमेटर, गेम डिजाइनर, साउंड डिजाइनर और भी बहुत सारे नए क्रिएटिव करियर्स हैं।
0: मतलब अगर आपके पास कोई आइडिया है या कोई स्किल है तो आप कुछ नया क्रिएट करने का जुनून है, तो आप उस टैलेंट को अपॉर्चुनिटी में बदलने की पॉसिबिलिटी आज कहीं ज्यादा है।
1: तो तेजस्वी, अगर मैं सही समझ रहा हूँ, ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब बेसिकली ये है कि हमारी क्रिएटिविटी की भी कोई इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती है।
0: एग्जैक्टली, यही तो है इस पूरी कॉन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बनाता है।
1: बिल्कुल, आज हम कितने ही लोगों को देखते हैं जिन्होंने अपनी हॉबी में अपने पैशन को जोड़ा और बड़े बड़े पारंपरिक प्रोफेशंस को भी पीछे छोड़ दिया।
0: हम अक्सर बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हॉबी अलग चीज है और करियर अलग, लेकिन आज के टाइम में क्या ये डिफरेंस वैसा रह गया है? इस पर बात करते हैं।
1: तो
0: पर इससे पहले ये जानते हैं कि ये ऑरेंज इकोनॉमी वर्ड की शुरुआत हुई कहां से थी?
1: यही मैं सोच रहा था, शो से पहले तुम बार बार पूछ रही थी, मैंने अपना होमवर्क कर

0: लिया है। तो मैं तुम्हें बताऊं, ये टर्म फेमस हुआ 2013 में आई एक किताब से जिसका नाम था द ऑरेंज इकोनॉमी एंड इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी। इस किताब में कल्चर, टैलेंट, आइडेंटिटी और हेरिटेज की बात की गई थी, और वही से क्रिएटिव इकोनॉमी को ऑरेंज इकोनॉमी कहा जाने लगा।
1: आज तो कोई होमवर्क करके आया है। अच्छा, तुम्हें ये पता है कि इंडिया में पिछले साल ही ये इकोनॉमी 2.8 ट्रिलियन की हो चुकी थी और अगले साल तक तो 3 ट्रिलियन पार कर देगी। अब तुम ही देखो, आज का युवा कितना क्रिएटिव है। पॉडकास्ट, एनिमेशन, ग्राफिक्स जैसी स्किल सेट करके पॉपुलैरिटी और स्टेबिलिटी दोनों पा रहा है। अब जैसे तुम मुझे ही देख लो।
0: हाँ,
1: और इसी के साथ हम सुनते हैं हमारा अगला गाना, जिसका नाम है दिल का जो हाल है। अब पूरा गाना मुझसे ही सुनोगे क्या? इसी के साथ सुनते हैं हमारा आज का गाना दिल का जो हाल है, फ्रॉम द मूवी बेशरम।

0: चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट मन से माइक्रोफोन की तरफ। आज अपना अनुभव साझा कर रहे हैं हरिशरण देवगन जी। हरिशरण देवगन जी देश के जाने माने ऑर्गेनिक फार्मर और एग्रीकल्चरलिस्ट हैं। इस क्षेत्र में करियर के क्या विकल्प हैं, जानते हैं हरिशरण जी से। आइए सुनते हैं ये विशेष बातचीत ऑर्गेनिक फार्मिंग अ ग्रीन करियर। हरिशरण जी के बात हो रही है संतोष द्विवेदी जी से।
1: श्रोताओ नमस्कार, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने माने एग्रीकल्चरिस्ट हरिशरण देवगन जी। हरिशरण देवगन जी, आपका हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हरिशरण जी, जैसे कि देश में आपने एक मुकाम बनाया ऑर्गेनिक फार्मिंग में, एक एग्रीकल्चर की फील्ड में आपने एक अपनी पहचान बनाई, जहां पे एक तरफ हम देखते थे कि पहले लोग डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनने की ही होड़ होती थी, आजकल डॉक्टर इंजीनियरिंग करने के बाद भी बच्चे इस तरफ आ रहे हैं, एग्रीकल्चर की फील्ड में फिर से हाथ आजमा रहे हैं, इस बदलाव को कैसे देखते हैं आप?
2: ये बिल्कुल वैसा ही है, लौट के बुद्धू घर को आए। जब एक नई शुरुआत होती है, हर एक चीज का एक ट्रेंड होता है, कभी डॉक्टर बनने का ट्रेंड है, होड़ होती है आजकल के बच्चों में। माँ बाप ही वो होड़ गिफ्ट करते हैं अपने बच्चों को कि पड़ोसी का बच्चा डॉक्टर बन गया तो तुम वहां रह गए, तो वो भी इंजीनियर बनना चाहता है। IIT के एग्जाम्स हैं, MBBS के एग्जाम्स हैं, डॉक्टरेट के एग्जाम्स हैं, लेकिन एक सारी बढ़ोतरी की तरफ जब आदमी जा रहा होता है तो पीछे एक वर्चस्व छोड़ जाता है, एक विरासत छोड़ जाता है। उस विरासत का नाम है एग्रीकल्चर। और वो जो एग्रीकल्चरिस्ट, एग्रीकल्चर की जो विरासत है, बिकॉज हर डॉक्टर, हर IIT का जो पास आउट है, उसके फादर या उसके दादे का जो काम होगा वो फार्मिंग का ही होगा। मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे फादर जो थे इंजीनियर थे और मेरे दादा इंजीनियर थे और आज मैं इंजीनियर हूँ। उसको मजबूरी है उसका बोलना कि मेरे दादा या मेरे परदादा भी किसान थे। लेकिन किसानी कभी वेलकम नहीं हुई, क्योंकि हमेशा पढ़ाया गया, स्कूलों में पढ़ाया गया, 6th, 7th, 8th, 9th में पढ़ाया गया कि एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ पुअर फार्मर इन अ विलेज। तो जब आदमी सिलेबस में जो पुअरनेस आती है 7th, 8th, जब कवला बच्चा होता है, जब वो पढ़ रहा होता है, जब वो ये पढ़ता है कि एक गांव में गरीब किसान रहता था, तो वो किसान क्यों बनेगा जब उसके अंदर पहला इंप्रेशन ये चला गया कि किसान गरीब होता है। तो इसके लिए कभी उसके माँ बाप नहीं बोलते कि बेटे क्या तू किसान बनेगा, तो बोलेगा नहीं मम्मी मैं तो डॉक्टर बनूंगा, मैं क्रिकेटर बनूंगा, बिकॉज पैसे मिलते हैं, फेम मिलता है, मैं एक्टर बनूंगा, लेकिन मैं खेतीबाड़ी करूंगा, मैं एग्रीकल्चरिस्ट बनूंगा। ऐसी बात उसके मन में बीज बोया ही नहीं जाता। और इसका सारा का सारा जो क्या कहते हैं रीजनिंग कह लो, ब्लेम तो नहीं कह सकते, ये कंप्लायंस की तरफ है, क्योंकि स्टार्ट में ही उनके मन में एक बात बैठ गई कि मुझे किसान नहीं बनना। और जो किसानी ऑलरेडी कर रहे हैं, जो किसान का बच्चा है, वो रोज अपने पिता को रोज जीते और रोज मरते हुए देखता है। रोज देखता है कि मेरे पिता रोज सुबह जाते हैं, रोज शाम को वापस आते हैं, कभी हार्श वेदर की मार है, कभी गवर्नमेंट की सब्सिडी नहीं मिलती है, कभी कर्जे पे जमीन दे रखी है, कभी लोकल जो सुनहरा होता है, जो लोकल ब्याजखोर होते हैं, उसके पास जमीनें गिरवी हैं, सारा किसान का पैसा, सारा गेहूं का पैसा, सारी कमाई ब्याज में चली जाती है। तो वो देखता है कि यार मेरे हाथ में सिर्फ, हमारे घर में सिर्फ एक दो रोटी है खाने के लिए। तो इसके लिए किसान का बच्चा भी किसान नहीं बनना चाहता। वो कहता है कि मैं वॉचमैन बन जाऊंगा, मैं रिक्शा चला लूंगा, मैं ऑटो चला लूंगा, लेकिन मैं किसान नहीं करूंगा। तो जिस दिन उसको अपनी जमीन की कीमत मालूम पड़ेगी, कोई किसान का बच्चा शहर की तरफ मुंह नहीं करेगा, वो अपनी ही जमीन पे शहर में रहने वाले बच्चे से ज्यादा पैसा कमा के दिखा सकता है, बेशर्ते वो अपना मन बनाए।
1: जी बिल्कुल, जैसे समाज में अलग अलग पड़ावों पे हम कई बदलाव देखते हैं, जैसे कि कभी कोविड आ गया तो बहुत सारे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज चले गए, कुछ बदलाव समाज ने देखा, पर जो हमेशा था, है और रहेगा वो तो खेती ही है, क्योंकि व्यक्ति कुछ करे या ना करे या जो भी करे उसको खाना तो खाना ही है। तो देखा जाए तो एग्रीकल्चर तो हमेशा से अस्तित्व में था, अस्तित्व में है और अस्तित्व में रहेगा। हरिशरण जी, हमें बहुत सारे युवा सुन रहे हैं, चूंकि अब आपका सारा काम ही एग्रीकल्चर का है और आपने एक ऐसी शून्य से शिखर पे जहां तक आप पहुंचे हैं, तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें कि अगर आज कोई व्यक्ति, आज का युवा अगर एग्रीकल्चर से जुड़ता है तो उसके सामने क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं।
2: ऑर्गेनिक फार्मिंग आने वाले टाइम का भविष्य है, बिकॉज जितना यूरिया, फर्टिलाइजर, DAP, केमिकल जितना इस्तेमाल हो चुका है हमारे देश की धरती,

0: पे उसको न्यूट्रलाइज करने में कई साल लग जाएंगे, बिकॉज कई सालों से पड़ा हुआ पेस्टिसाइड जो है वो जमीनों के वाटर टेबल में तैर रहा है, उसको बायोलॉजिकली सब्सिडाइज करने में कई साल लगेंगे। लेकिन जब एक पढ़ा लिखा बच्चा या पढ़ा लिखा एक आदमी या पढ़ा लिखा व्यक्ति जब किसानी करना चाहता है, तो वो इस चीज का मेजर करता है कि टॉक्सिक फार्मलैंड को कैसे ऑर्गेनिक लैंड में कन्वर्ट करना है। ये ज़्यादा डीप नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ बेसिक प्रिंसिपल और एक डिसिप्लिन की ज़रूरत है और एक कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, जो आज का लर्नेड बच्चा जानता है, लेकिन एक बच्चा जो अनपढ़ है उसको इसकी कीमत नहीं पता। लेकिन जो लर्नेड बच्चा जो अमेरिका से पढ़ के आता है, जो IIT है, IITN है, या जिसने सारे धक्के खा लिए, उसने सारी कमर्शियल वर्ल्ड को देख लिया है, उसने देख लिया कि कमर्शियल वर्ल्ड सारी लिपस्टिक पाउडर की कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, जो कभी भी बारिश पड़ते ही ये नकाब उतर जाएगा, तो तब उसको महसूस होता है कि जो खेती बाड़ी की जिंदगी है ये सुडोल है, शक्ति से भरी हुई है, नया जीवन देती है, लाइफ बढ़ाती है, पीस देती है, और आने वाले टाइम में पीस फार्मिंग लग्जरी के रूप में देखी जाएगी। बिकॉज कॉन्क्रीट जंगल जो है ये, आप दाएं देखो तो भी कॉन्क्रीट जंगल दिखाई देगा, बाएं देखो तो भी कॉन्क्रीट जंगल दिखाई देगा, पीछे देखो तब भी कॉन्क्रीट जंगल दिखाई देगा। आंखों को हरियाली और खेती बाड़ी देखने के लिए दूर दूर जाना पड़ेगा, लेकिन जब एक IITians या जब भी कोई पढ़ा लिखा आदमी, एक नॉलेजेबल आदमी या कोई फॉरेन रिटर्न आदमी, आपने सुना होगा NRIs आके वापस 10 एकड़ लेके खेती बाड़ी कर रहे हैं, अपने फादर अपने दादा की जमीन जो नहीं बिकी है तो अपनी जमीन को वो रीडेवलप कर रहे हैं, और अगर उनके पास जमीन नहीं है तो खरीद रहे हैं जो पैसा वो कमा के लाए हैं, और जो खरीद नहीं सकते हैं वो लीज पे ले रहे हैं जमीन, लेकिन वो खेती बाड़ी पे स्टिक कर रहे हैं, और विद इन अ स्पैन ऑफ 3-4 ईयर्स वो उसी जमीन से इतना पैसा कमाने लग गए हैं जितना पैसा वो बाहर गुलामी करके कमाते थे। तो आई थिंक आने वाला टाइम जो है वो फार्मिंग का सूर्य उदय है, बेशर्ते इसके मूल मंत्र को आज साध लिया जाए। एक साधे सब सधे, सब साधे कुछ ना सधे।
1: सही बात है। जैसे अब मैं आपको पीछे ले चलता हूँ हरिशरण जी, जैसे आपने कहा कि एक साधे सब सधे, तो जब आप छोटे थे तो कब आपने यह तय किया कि आपको अपना एक तरह से करियर ही कहें, या आपका जो जीवन है आपने समर्पित किया एग्रीकल्चर की फील्ड को, तो ये कब तय किया, कैसे कैसे आप इसमें आगे बढ़े, हमारे श्रोताओं को थोड़ा बताइए।
0: मैं थोड़ा पढ़ाई में अच्छा नहीं था, मतलब पढ़ाई में हमेशा से बैक बेंचर रहा हूँ मैं, तो जब भी मेरी टीचर आती थी सबसे पहले मुझे बाहर निकालती थी, मतलब वो सबसे पहले ये कहती थी कि हरिशरण गेट आउट ऑफ माई क्लास, तो मुझे बड़ा बुरा लगता था। मेरे दो मित्र थे, एक का नाम था डेजी एक का नाम था मारियो, वो जब भी कोई प्रॉब्लम आती तो वो ये बात बोलते कि ओ गॉड हेल्प मी, लंच नहीं लेकर आया मारियो तो वो कहता था ओ गॉड हेल्प मी, तो वो लंच उसके घर से लंच आ जाता था। अगर डेजी कहती ओ गॉड मैंने आज हिंदी का होमवर्क नहीं किया, तो उस दिन हिंदी टीचर नहीं आते थे। तो मेरे दिमाग में एक बात बस गई कि जो गॉड है ये बड़ी पावरफुल चीज है, जब भी ये लोग दोनों बोलते हैं ओ गॉड हेल्प मी, तो वो हेल्प कहीं ना कहीं से घूमती फिरती इनके पास आ जाती है। जिस दिन वो फाइनल एग्जाम हुआ तो PTM जैसे होता है, तो हमारे जमाने में PTM तब नया नया फैशन शुरू हुआ था, कि टीचर ने पूछा कि व्हाट डू यू वांट टू बी, आपको क्या बनना है, हरिशरण व्हाट डू यू वांट टू बी, तो मेरे को कुछ समझ में आया नहीं, बिकॉज पढ़ाई में वैसे नालायक था मैं, मेरे को यही बात पता थी कि डेजी और मारियो यही बोलते थे ओ गॉड हेल्प मी। तो बच्चा था तो जितनी बच्चे की बुद्धि होती है, तो मैंने तो टीचर ने बोला, मैं कहा टीचर आई वॉन्ट टू बी ओ लॉर्ड, टीचर आई वॉन्ट टू बी ओ लॉर्ड, तो सब हंस पड़े, कहते हैं आर यू मैड अबाउट ये वो, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ। तो मेरी माँ जो थी वो पीछे बैठी थी मेरे, तो मेरी माँ ने बहुत प्यार से मेरे सिर पे हाथ फेरते हुए बोला, बेटे तूने ओ लॉर्ड क्यों बनना है। तो मैंने मेरे मदर को बोला कि मम्मी जब भी ये डेजी और मारियो जब भी ओ लॉर्ड का नाम लेते हैं लॉर्ड हेल्प करने आ जाता है, तो मैं भी ना हेल्प करना चाहता हूँ लोगों को, इसके लिए मुझे ओ लॉर्ड बनना है। तो मेरी माँ ने 10 मिनट का मौन रख के, 10 मिनट की चुप्पी के बाद मुझे कहती हैं, तर जो ये ओ लॉर्ड बनने का रास्ता है ना थोड़ा लंबा है, तू ओ लॉर्ड को छोड़, तू ना लैंड लॉर्ड बन, लैंड लॉर्ड भी सबकी मदद करता है, तू खेती बाड़ी कर। तो वो लैंड लॉर्ड मेरे दिमाग में बस गया कि लैंड लॉर्ड पैसा भी देता है, लैंड लॉर्ड हेल्प भी करता है, लैंड लॉर्ड काम भी देता है, लैंड लॉर्ड नौकरी भी देता है, लैंड लॉर्ड बच्चों को पढ़ा भी सकता है, लैंड लॉर्ड स्पॉन्सर भी कर सकता है, लैंड लॉर्ड बच्चों की शादी भी करा सकता है, लैंड लॉर्ड किसी परिवार को मेडिकल हेल्प भी दे सकता है। तो लैंड लॉर्ड के पास बहुत सारे पोर्टफोलियोज एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। तो वो बात बचपन में मेरे दिमाग में ऐसी घर कर गई कि फिर उसके बाद मुझे कोई और प्रोफेशन नजर ही नहीं आया। फिर मैं जहां से भी गुजरता, जहां भी दिखता, तो मुझे सिर्फ जमीन दिखती और खेती दिखती, खेती दिखती और जमीन दिखती। तो ये वजह थी कि मैं एग्रीकल्चरिस्ट के रूप में किसान से फार्मर हुआ और फार्मर से एग्रीकल्चरिस्ट हो गया। तो नाउ आई एम एग्रीकल्चरिस्ट, लेकिन कुछ साल पहले मैं किसान था
1: जी। बिल्कुल, तो किसान से जो एग्रीकल्चरिस्ट बनने की जो आपने ये यात्रा सुनाई, हमें लगता है कि जो युवा सुन रहे हैं उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हरिचरण जी, मैं

0: आपसे जानना चाहूंगा कि आजकल जैसे ना बहुत मिलावट है हर चीज में, उस मिलावट से कैसे बचें? हमारी जो नई पीढ़ी आ रही है उसे शुद्ध खाने को मिले, आपके नजर में क्या होना चाहिए, कहाँ चूक हो रही है?
1: चूक जो है ग्रीड की है। जैसे जैसे लालच बनता है, लालच बड़ा होता है, वैसे वैसे एडल्ट्रेशन की प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। लेकिन इसकी भी ना एक अत होती है, वो अत आज के टाइम पे वो अत वो लिमिट आ चुकी है। इससे ज्यादा अगर हुआ तो आप सीधा का सीधा पॉइजन ग्रहण करते हैं। तो रोड साइड ग्रीडी फार्मर कहलाने की बजाय, अगर आप अपनी किसानी को, अगर आप अपनी फार्मिंग टेक्नोलॉजी को, या आप अपने फार्मिंग सिस्टम को, या फार्मिंग डिसिप्लिन को, या फार्मिंग ब्लेंडिंग को, मतलब एग्रीकल्चर ब्लेंडिंग, अगर आप, कोई किसान अपने आप को ब्लेंड करता है बहुत तरीके से, और एक कैलकुलेटिव यूरिया, कैलकुलेटिव डीएपी, कैलकुलेटिव फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड कैलकुलेटिव डालता है जो फूड ग्रेडेड है, तो शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जब किसान अपने आप को ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, ऑलरेडी कर्जे में डूबा पड़ा है, उसको ब्याज के पैसे देने हैं, उसको बैंक लोन के पैसे देने हैं, उसको ग्राम पंचायत के पैसे देने हैं, उसको ग्रामीण बैंक के पैसे देने हैं, उसने सरकार के जो ट्रैक्टर वो बैंक से लेकर आया है, जो ट्रैक्टर की किस्त देनी है उसके पैसे देने हैं, जब इन सारी ईएमआईज के बोझ तले, सारी किस्तों के बोझ तले वो दबा हुआ होता है, तो वो कोशिश करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड डालूँ, ताकि जहां मैं 10 टन उगाता हूं, और 10 टन के बदले में मेरे पास 15 टन आएगा, तो मैं 15 टन बेचूंगा, तो 15 टन बेच के मैं ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा। लेकिन जो एक आम किसान है, वो ये भूल जाता है कि वो जो और ज्यादा फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स खरीदना चाहता है, जो उसको उधार में मिल रहा है, अगर वो एक लोन उतारना चाहता है, तो उसके जो पेस्टिसाइड और केमिकल सप्लायर है उसके वहां उसका उधार बढ़ रहा है, लेकिन कहीं जहां उतारना चाहता है वहां उतर रहा है, तो वहां एक जगह बढ़ भी रहा है, तो ग्रीड है। एंड सेकेंडली क्या होता है, जब बड़ी फर्टिलाइजर और बड़ी केमिकल फर्टिलाइजर कंपनीज जो होती हैं, इनके बहुत बड़े बड़े वर्कशॉप्स होते हैं, फ्री गिफ्टिंग्स हैं, लालच है, लोभ लालच है, स्टोरी टेलर्स हैं इनके एजेंट्स, दे आर डेंजरस। उनके पास आर्मी है सेल्स की, जो किसी तरीके से बाय हुक बाय क्रुक, साम दाम दंड भेद, किसी भी लालच को दिखा के वो सामान बेचते हैं अपना, और उनका सामान बिकता है, भले वो उधार में बिके, क्रेडिट में बिके, कैश में बिके, या किसी लालच में बिके। इस ट्रैप में जब एक किसान फंसता है, अपनी जमीन की भी हानि करता है, जिसको वो खाना भेज रहा है उसकी भी हानि करता है, अपने देश को नुकसान पहुंचाता है, और इससे सिर्फ एक ही जेब भरी जाती है, वो होती है केमिकल फर्टिलाइजर कंपनियों की। जब तक किसान का मेंटल बैलेंस ठीक नहीं होगा, जब तक उसको सुशिक्षित नहीं किया जाएगा, जब तक उनको एजुकेट नहीं किया जाएगा, और जब तक उनकी वर्कशॉप नहीं चलाई जाएगी टूवर्ड द बेटरमेंट ऑफ द लैंड डेवलपमेंट, टू द बेटरमेंट ऑफ क्रॉप, एंड टू द बेटरमेंट ऑफ रेवेन्यू जनरेशन फ्रॉम हिज क्रॉप, जब तक ये चीज नहीं आएगी तब तक वो रोकना नामुमकिन है। लेकिन आज की सरकार से ये उम्मीद करते हैं, मतलब आज हम ये उम्मीद करते हैं कि शायद आने वाला समय जो है ये किसी ना किसी तरीके से ठीक होगा।
0: जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि जो ग्रीड है इसको कंट्रोल करना होगा, क्योंकि ये सिर्फ खाने पीने की चीजों की बात नहीं है, देश की नस्ल और देश की पीढ़ी, देश का जो भविष्य है उसको तय करने की बात है। हरिशरण जी, जैसे आज हम विकसित भारत 2047 की बात करते हैं, भारत एक ग्राम प्रधान देश है और इसकी आत्मा इसके किसानों में बसती है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार के जो प्रयास हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि भारत को विकसित बनाना है 2047 तक, तो इसमें किसानों का क्या रोल रहने वाला है? तो विकसित भारत 2047 की जो संकल्पना है, सरकार की जो ये ऐसा सोचना है, इसको पूरा करने में किसानों की क्या भूमिका रहने वाली है?
1: किसान इसके अंदर विष्णु अस्त्र का काम करेगा। जिस दिन किसान का विष्णु अस्त्र चलेगा, तो इस भारत को विकसित होने से कोई भी ग्लोबल शक्ति इसको नहीं रोक सकती। अगर किसान एकजुट होके अगर राइट पैरामीटर के हिसाब से, राइट समीकरण के हिसाब से, और अगर ऑर्गेनिक किसानों की अगर संख्या बल बढ़ जाती है, तो हमारा हिंदुस्तान जो है, जिसको हम इंडिया बोलते हैं, ग्लोबली G20 में नहीं, शायद G7 में भी नहीं, G5 और G3 में भी आपको दिखाई देगा, अगर सारे किसान एक साथ जुट गए तो।
0: जी बिल्कुल, और किसान जब एक साथ जुट जाएंगे तो भारत वर्ष का उदय को कोई शक्ति रोक नहीं पाएगी और विकसित भारत 2047 की संकल्पना साकार होकर रहेगी। हरिशरण जी, चलते चलते बस मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, हमें बहुत सारे युवा श्रोता इस समय सुन रहे हैं जो भविष्य के हमारे किसान हो सकते हैं, या आपकी तरह एग्रीकल्चरिस्ट हो सकते हैं, या देश की नीति निर्माण में योगदान दे सकते हैं, उनके आह्वान के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
1: कुछ नहीं, शांत रहें, फोकस्ड रहें, और प्रिसाइज होके एग्रीकल्चर को अगर वो फोकस करते हैं, और किसी प्रकार से भी अगर उनको जरा सा भी अगर अंगूठा रखने का भी मौका मिलता है एग्रीकल्चर की दुनिया में या किसानी की दुनिया में, तो बिना हिचक, बिना शरीर को मिट्टी लगने की परवाह किए, बिना

0: ये सोचे हुए कि बाहर धूप है, बिना ये सोचे हुए कि बाहर गर्मी है, बिना ये सोचे हुए कि बाहर धूल मिट्टी है, किसानी करते टाइम मेरे शरीर पे जो धूल मिट्टी लगेगी, बिना इसके बारे में सोचे हुए अगर वो इसमें कूद जाते हैं तो सॉल्यूशन अपने आप निकलेगा। और ज़रा सा भी अगर वो अपनी ज़मीन से, अपनी खेती से, या एग्रीकल्चरल थियरी से, या थीसिस से, या उस आइडियोलॉजी से प्यार कर बैठते हैं, और ज़रा सा भी वो अपने अंदर भारत का प्रेम प्लस अपनी ग्रोथ को देखते हैं और अपनी इनकम को देखते हैं, तो जो आने वाली लग्जरी है, जो आने वाले समय में लोगों के लिए लग्जरी होगी, अगर आज ये इसको आज के दिन में ही अपना लेते हैं, कल जो लोगों की लग्जरी होगी इनके लिए वो बहुत कॉमन प्लेटफॉर्म होगा, वो लग्जरी जो इन्होंने पहले से इन्होंने पा रखी होगी। और दो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं जो यंग जनरेशन को बोलना चाहता हूँ, जिसके पास ज़मीन है वो तो बिल्कुल डेफिनेटली इस फार्मिंग में आए, और जिनके पास ज़मीन नहीं है वो किसी प्रकार से भी लीज पे लें या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लें, लेकिन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में आके उनके पास बहुत सारे विकल्प खुल जाएंगे। किसानी को लोग आपदा बोलते हैं कि ये आपदा है, प्रॉब्लम है, तो इस आपदा को अवसर में बदलने का सिर्फ यही समय है। अगर ये समय निकल गया तो एग्रीकल्चर विल बी कंट्रोल्ड बाय ऑल लिटरेट पीपल्स, पढ़े लिखे लोग इसको कंट्रोल करेंगे, तो जो लोग ऑलरेडी एग्रीकल्चरिस्ट हैं वो अपना ग्राउंड खो बैठेंगे। इसके लिए अपने ग्राउंड को खोए ना, निराश ना हो, हताश ना हो, और अपने ही ट्रबल शूटिंग को, मतलब जहाँ पर भी उनका परिवार कमज़ोर महसूस करता है, वहाँ अपने पिता के और अपने परिवार का बाहुबल बन के खड़े हों, और किसानी को, किसानी के कल्चर को, उसकी आइडियोलॉजी को और उसके थीसिस को वो कंटिन्यू करते रहें।
1: चलना ही सिखाती है राह की ठोकर, ये सोच लोगे तो मुश्किल सफर ना होगा। हरिशरण
0: बिल्कुल
1: जी, आपने बहुत अच्छे से हमारे युवाओं का मार्गदर्शन किया, और एक बात और जरूर जो आपने कही कि अगर आप अपना साफ सुथरा भविष्य चाहते हैं तो आज अपने कपड़े या अपने शरीर को गंदा होने से न घबराएं, आपका भविष्य बहुत साफ सुथरा होगा।
0: जी
1: हरिशरण जी, आपका आकाशवाणी आने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे इतने महत्वपूर्ण विषय पर बात रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
2: आज मन से माइक्रोफोन सेगमेंट में हरिशरण जी के जीवन में हुई रोचक घटनाओं से हमने जाना फार्मिंग से जुड़ी अपॉर्चुनिटीज, ऑर्गेनिक फार्मिंग के फायदे और एग्रीकल्चर से जुड़ी बहुत सी जानकारियां। चलिए अब सुनते हैं एक एनर्जेटिक सा गाना फिल्म दिल चाहता से, कोई कहे कहता रहे।

0: मुझे लगता है इस गाने से ना हम सभी रिलेट करते हैं कि कोई कहे कहता रहे, यू तो बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, राइट। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है करियर एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो पृथ्वी तुम बताओ, कोई ऐसा अनोखा करियर जिसमें हम ऑरेंज इकोनॉमी का हिस्सा भी बन पाए?
1: तुमने म्यूजोलॉजिस्ट के बारे में सुना है?
0: म्यूजोलॉजिस्ट? भला वो क्या होता है?
1: म्यूजोलॉजिस्ट वो होता है जो म्यूजोलॉजी यानी संग्रहालय की पढ़ाई करता है। संग्रहालयों में करियर के कई विकल्प होते हैं, जैसे क्यूरेटर, एग्जीबिशन डिजाइनर, एजुकेटर, पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर और भी बहुत कुछ। म्यूजोलॉजी की पढ़ाई के बाद इन क्षेत्रों में करियर बनाया जा सकता है।
0: और अगर किसी को भारत में ये करियर और अगर भारत में किसी को ये कोर्स करना होगा तो भला वो कैसे करेगा?
1: भारत में कई संस्थान हैं जहां म्यूजोलॉजी की पढ़ाई की जा सकती है, जैसे नोएडा में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, MS यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ऐसे संस्थान हैं जहां म्यूजोलॉजी से जुड़े पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। तो तेजस्वी, अब तुम जरा ये बताओ, अगर रेडियो में करियर बनाना हो तो कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं?
0: अगर किसी को रेडियो में करियर बनाना है तो वो मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म या मीडिया स्टडीज जैसे कोर्स की शुरुआत कर सकता है। लेकिन सच कहूँ तो सिर्फ डिग्री काफ़ी नहीं है आरजे बनने के लिए, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन, क्लैरिटी, स्टोरी टेलिंग पर काम करना भी उतना ही ज़रूरी है। जैसे रोज रेडियो सुनिए, स्क्रिप्ट पढ़िए और अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके लगातार अभ्यास करते रहिए, क्योंकि रेडियो तो हम सबके अंदर है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग अपनी आवाज़ को माइक्रोफोन तक ले आते हैं तो कुछ सिर्फ शब्दों तक ही सीमित रहते हैं।
1: चलो तेजस्वी, अब जरा जल्दी जल्दी बात करते हैं कुछ ऐसी स्कीम्स की जो हमारे क्रिएटिव युवाओं को अपना पैशन फॉलो करने के लिए प्रोत्साहन देती है।
0: बिल्कुल पृथ्वी, और इसी के साथ शुरुआत करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की यंग आर्टिस्ट स्कॉलरशिप की, जो 400 से ज्यादा यंग आर्टिस्ट को 2 साल का पे ट्रेनिंग पीरियड पाने की अपॉर्चुनिटी देता है।
1: और CCRT की कल्चरल टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप स्कीम भी तो है जो 10 से 14 साल के स्टूडेंट्स को सपोर्ट करती है। इसके अलावा CCRT कैंप्स, वर्कशॉप्स और कल्चरल एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज कराता रहता है।
0: और ललित कला अकेडमी स्कॉलरशिप भी तो है जो हर साल 21 से 35 साल की एज के आर्टिस्ट को 75 स्कॉलरशिप देती है। और इंटरनेशनल एक्सचेंज की बात करती है तो जो द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ग्लोबल इंगेजमेंट स्कीम्स और रिलेटेड इंटरनेशनल कल्चरल इनिशिएटिव्स भी हैं।
1: दोस्तों, हर वेंसडे युवानी में हम बात करते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्कीम्स और करियर अपॉर्चुनिटीज की, तो सुनते रहिए हमें और सुनिए ये प्यारा सा गाना फ्रॉम द मूवी हाईवे, पटाका गुड़ी।

0: जी हाँ, इसी के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है क्विक बज। और जरा क्विकली बात करते हैं कि हमारे आसपास हो क्या रहा है।
1: देखो तेजस्वी, सबसे पहले तो आज ओनम है। ओनम केरल का वो सेलिब्रेशन है जो सारे केरलाइट्स को एक साथ लेकर आता है। घरों के आगे फ्लावर से डेकोरेटेड पोकलम्स, पारंपरिक खाना, संध्या, बोट रेस, म्यूजिक, डांस, पूरा माहौल 10 दिन तक फेस्टिविटीज से भरा होता है।
0: और अगर आप दिल्ली में हैं और ये सोच रहे हैं कि कहाँ जाएं इसे विटनेस करने, तो केरला भवन जा सकते हैं, केरला क्लब जा सकते हैं और दिल्ली मलयाली एसोसिएशन भी जा सकते हैं, और वहां जाकर आप ओनम की वाइब्स को महसूस कर सकते हैं।
1: आज का दिन करियर और अपॉर्चुनिटीज की बातों का भी है, तो दोस्तों, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस और साहित्य अकादमी की कुछ इंटरेस्टिंग वैकेंसी आई है, चेक करना ना भूलिएगा।
0: और हाँ दोस्तों, जब बात अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की हो तो आप सब नेशनल करियर सर्विस पोर्टल को जरूर चेक करना। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की अनोखी पहल है, आपको नई अपॉर्चुनिटीज की अपडेट देते रहते हैं। और इसी के साथ सुनते हैं एक नया गाना जिसका नाम है चन्ना वे।

0: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है टुडे इन हिस्ट्री। आज जानते हैं कि आज की तारीख से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स।
1: तेजस्वी, पता है 26 अगस्त सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। इस दिन हिस्ट्री में राइट्स, इक्वालिटी और ह्यूमैनिटी से जुड़ी कुछ खास घटनाएं हुई थी।

0: बिल्कुल। और सबसे पहले चलते हैं 1920 में, जहां आज ही के दिन में अमेरिका में वुमेन को वुमेन वोटिंग का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिला, मतलब डेमोक्रेसी में उनकी आवाज को ऑफिशियली जगह मिली।
1: और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 50 साल बाद आज ही के दिन 1970 में वुमेन्स दोबारा सड़कों पर उतरी। इस बार डिमांड थी इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज और इक्वल पे की। वुमेन स्ट्राइक फॉर इक्वालिटी हुआ यूनाइटेड स्टेट्स में, जिसने जन्म दिया मॉडर्न फेमिनिज्म को।
0: यानी सिर्फ हक मिलना काफी नहीं होता, उस हक के साथ बराबरी मिलना भी उतनी ही जरूरी है।
1: अरे और पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इंडिया के लिए भी 26 अगस्त एक खास दिन है। 1910 में इसी दिन मदर टेरेसा का जन्म हुआ था, जिन्होंने अपनी जिंदगी जरूरतमंद और बेसहारा लोगों की सेवा में लगा दी।
0: तो देखिए, एक ही डेट लेकिन तीन खास कहानियां, आवाज का हक, बराबरी की आस और इंसानियत का एहसास। तो दोस्तों, उम्मीद है आज हमारी जानकारी से आपको पता चला होगा कि क्रिएटिव लोगों की इकोनॉमी यानी कि ऑरेंज इकोनॉमी किस तरह प्रोग्रेस कर रही है।
1: हाँ तेजस्वी, और आखिर क्रिएटिव लोगों को देर से ही सही एक पहचान तो मिलनी ही थी। करियर सभी अच्छे हैं, लेकिन जहां क्रिएटिविटी का स्कोप हो वहां मजा और भी ज्यादा है।
0: जी हाँ, तो इसी के साथ दोस्तों सुनते रहिए युवानी ठीक इसी समय। उम्मीद है युवानी का आज का कार्यक्रम आप सभी ने एंजॉय किया होगा। हमें हमेशा आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो आप हमें मेल कर सकते हैं yuvanifeedback@gmail.com पर। मैं हूँ तेजस्वी,
1: मैं हूं पृथ्वीराज।
0: नमस्कार।
1: नमस्ते।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम युवावाणी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 5 बजने को है, कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। नेपाल तिब्बत सीमा के पास रसुवा क्षेत्र में आज सुबह भोटे कोशी नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण 384 पर्यटक लापता हैं। इनमें 105 भारतीय शामिल हैं। लापता लोगों में 291 विदेशी नागरिक और 93 नेपाली नागरिक हैं। इनमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के नागरिक भी शामिल हैं। ये शुरुआती आंकड़े हैं और ट्रैवल एजेंसियों, स्थानीय प्रशासन तथा अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ इनका सत्यापन किया जा रहा है। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। बाढ़ के कारण अब तक 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। लोग हेल्पलाइन नंबर 9779851316807 और 9779701075000 पर संपर्क कर सकते हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारत नेपाल को जल्द से जल्द राहत सामग्री भेजने की तैयारी कर रहा है। इधर बिहार में नेपाल में आई अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। गंडक नदी से लगे 6 जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष निगरानी रखी जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिमी चंपारण के बगहा और वैशाली के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। गंडक नदी में पानी बढ़ने की आशंका को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की एक टीम गोपालगंज और बेतिया में तैनात की गई है। साथ ही एक अन्य टीम को मुजफ्फरपुर में तैयार रखा गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है।
2: उस पर हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी बाल्मीकिनगर जाऊंगा।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृहमंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। श्री शाह ने कहा कि स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को तैनात किया जा रहा है। इस बीच नेपाल में आई बाढ़ के कारण हुई जानहानि पर प्रधानमंत्री

0: परिवर्तन है। तेजी से हो रहा शहरीकरण, बढ़ता मध्यम वर्ग और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचा अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र में नए अवसर पैदा कर रहे हैं।
1: क्रॉस वर्चुअली एवरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी।
2: दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रथम 2500 पात्र महिला लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र सौंप दिए। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि ये महिलाओं के सशक्तिकरण, कल्याण और सम्मान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। भारतीय चिकित्सा संघ ने इन्फ्लुएंजा ए H1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। संघ ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। संस्था ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टरों की पर्ची के बिना एंटीबायोटिक्स ना लेने की सलाह दी है। दुनिया भर में रह रहे केरलमवासी आज तिरु ओणम का पर्व मना रहे हैं। ये पौराणिक राजा महाबली के स्वागत और नई फसल के आगमन की खुशी में केरलावासियों द्वारा उत्साह के साथ मनाया जाता है। उधर पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी भी आज उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने फॉलो ऑन मिलने के बाद दूसरी पारी में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 229 रन बना लिए। इससे पहले श्रीलंका की टीम पहली पारी में 290 रन पर सिमट गई। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. More than 100 Indians are among 384 tourists reported missing in Nepal after flash floods in the Bhotkoshi River hit the Rasuwa region near the Tibet border this morning. According to the Nepal Tourism Board, NTB, the 384 missing tourists include 291 foreign nationals and 93 Nepali citizens. It said the foreign nationals are from several countries, including 105 from India and others from the United Kingdom, Australia, the United States, Malaysia, South Africa and the Netherlands. However, the NTB clarified that the figures are preliminary and are currently being verified and cross-checked with travel agencies, local authorities and other concerned agencies. According to local media reports, 7 people have died following the massive flash flood. The Nepal Tourism Board has also issued emergency contact numbers for tourists and their families seeking information or assistance. The emergency contacts include the toll-free number 1234, hotline 1144 and the tourist police number 9851-289-445. The Indian Embassy in Kathmandu also issued emergency numbers for assistance and information regarding Indian nationals affected by the flash floods in Nepal. The embassy said people requiring assistance can contact the embassy on helpline plus 977-985-131-6807 and plus 977-970-910-7500. According to official sources, India is preparing to send relief material as soon as possible to Nepal. Prime Minister Narendra Modi today spoke to his Nepalese counterpart Balendra Shah and conveyed condolences at the loss of lives due to the floods in Nepal. In a social media post, Mr. Modi said the people of India stand in solidarity with their sisters and brothers in Nepal at this difficult time. He said, India is ready to provide all possible humanitarian assistance to Nepal. The Prime Minister said our teams are coordinating closely on rescue and relief efforts. Bihar has stepped up flood preparedness following flash floods in Nepal. 6 districts of the state, West Champaran, East Champaran, Gopalganj, Saran, Muzaffarpur and Vaishali, have been placed under heightened vigilance along the Gandak River system. People living in low-lying areas of Bagaha in West Champaran and Vaishali districts have been urged to move to safer places at the earliest. In view of the possibility of increased water flow in the Gandak River, an NDRF team has been deployed in Gopalganj and Bethia, while another team has been kept on standby in Muzaffarpur. Chief Minister Samrat Chaudhary said a high-level

0: लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोकरंजनी सुनने वाले हमारे सभी साथियों को नमस्कार।
1: नमस्कार
0: अश्विनी भाई
1: जी,
0: कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं और ये कार्यक्रम बहुत ही कहते हैं ना कि समय के अनुसार होता है। जैसे कि मौसम बदलता है तो हमारा जो लोक संगीत है वो भी बदलता है।
1: वो कहते हैं ना कि कानों तक आवाज़ें पहुंचती तो हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिल तक उतर जाती हैं। ऐसे लोक संगीत हमारा ऐसा है, इनमें खेतों की महक, मिट्टी की सादगी, आंगन की चहल पहल और गांव के रिश्तों की गर्माहट। शायद वही वजह है कि अब बरसों पुराने कोई भी लोकगीत सुनकर मन करता है कि कहीं ना कहीं लौट चले उस गांव की तरह, जहां पर जन्म लेकर आज शहरों की भागती दौड़ती दुनिया में हम इतना बिजी हो गए हैं कि। लेकिन लेकिन प्रीति, यहाँ पर ये भी बात मैं कहूँगा, कभी जब भी हम लोकगीत सुनते हैं ना तो कहीं ना कहीं थकान दूर होती है, और ये मन में जहन में ये बात हमें ज़रूर याद आती है कि एक बारी गांव की वो लहराती हुई फसल जो हरी हरी आंखों को देख रहे हैं, बड़ी असमंजस लगती है, क्योंकि शहरों में तो आप देखती है ना ऐसा ऐसा
0: बिल्कुल
1: कुछ है ही नहीं,
0: ठीक।
1: क्योंकि
0: हाँ,
1: जी
0: शहरों की बात जब आपने कही तो भाई सीमेंटेड घर हैं और मुझे लगता है ना बोली भी बदल जाती है। जब आप
1: बिल्कुल
0: गांव देहात में जाते हैं तो ग्रामीण अंचल में आपके शब्द भी बदल जाते हैं,
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: इन्हीं
1: जी
0: शब्दों को प्रियंका शर्मा ने इतने अच्छे से सलीके से पिरोया है कि भाई उन्होंने अपनी कमर की बात की है।
1: बिल्कुल।
0: तो
1: तो
0: आइए सुनते हैं ये लोकगीत।
1: बिल्कुल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, बातचीत और भी अपने साथियों के साथ करते रहेंगे, लेकिन सुनते हैं प्रियंका शर्मा की आवाज़ में ये प्यारा सा लोकगीत।

0: भाई अश्विनी भाई,
1: जी
0: लोकगीतों की ये खासियत होती है, या कहें कि बड़े मौके की बात होती है, कि वो शब्दों के माध्यम से अपनी कहानी को इठलाते हुए कह देती हैं। अब यहाँ नाड़ी की बात है और कमर पतली की बात है, तो मतलब फैशन भी कम नहीं
1: बिल्कुल।
0: है
1: और
0: ना?
1: देखिए ना, खासकर ये बड़ी जैसे लोकगीतों की खासियत है, जिन्हें लिखने के लिए किसी कागज़ और पेन की ज़रूरत नहीं है। दादी माँ से माँ तक, माँ से बेटी तक, और पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी और तक, ये सफ़र यूं ही तय करते रहते हैं। इसमें खुशी खुशी भी है, बिगा भी है, मेहनत भी है, उम्मीद भी है, जीवन की अनंत रंग हैं। देखिए ना, कितने सारे रंग ये इन्होंने ब्रिंकेश्वर मैंने बिखेरा है, जहाँ पर आप भी झूम रहे थे। कहीं ना कहीं पढ़ी लिखी महिला होने के बाद भी कहीं ना कहीं
0: जी
1: इस
0: बिल्कुल,
1: लोकगीत को आप इंजॉय कर रहे हैं स्टूडियो में बैठ कर। ये सबसे बड़ी खासियत है हमारे लोकगीतों की, कि कहीं ना कहीं स्ट्रेस भूल कर
0: हाँ,
1: आप उस प्रेम को, उस
0: मौके
1: गीत
0: की
1: को
0: नज़ाकत को
1: अंकित।
0: समझने लग जाते हैं।
1: बिल्कुल
0: और ऐसा ही एक गीत है जिसे बबीता चौधरी गा रही हैं, और उन्होंने ना बड़ी कहते हैं शरारती अंदाज
1: जी
0: में
1: जी
0: अपनी
1: जी
0: ननद को छेड़ा है।
1: और तेरी तो
0: तो
1: चलिए
0: आइए
1: ना,
0: सुनते हैं ये
1: बिल्कुल
0: लोकगीत।
1: बिल्कुल।

0: तो अभी आपने सुना माफ कीजिएगा, बबीता चौधरी की आवाज़ में ये लोकगीत, और
1: जी
0: जो कि एक थोड़ा सा ठिठोली वाले अंदाज में था।
1: बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन
0: बिल्कुल
1: भाई भाई ये यहाँ पर ऐसा लगता है कि भाई प्रेम कहीं, जब कहीं कहीं प्रेम है ना प्रीति, तो वहाँ पर तो कुछ ना कुछ
0: तकरार होनी ही
1: तकरार
0: है।
1: होनी है। या मजे की बात ये है कि मतलब कि दोनों के बीच में एक घनिष्ठ प्रेम भी जरूर होगा। ननद और भाभी के अंदर प्रेम होता है, देखिए वो
0: बिल्कुल
1: एक दूसरे की परछाई माने जाती हैं। तो
0: जी,
1: कहीं ना कहीं भाई चुनरी खरीद के लाई है मार्केट से
0: और छेड़ना भी है।
1: छेड़ना भी है।
0: हाँ तो भाई छेड़ना भी है, तो फिर ननद से बेहतर मुझे लगता है विकल्प कोई दूसरा होता
1: बिल्कुल
0: नहीं है ना
1: बिल्कुल
0: भाभी के पास।
1: बिल्कुल
0: तो ऐसा ही ना एक और

0: गीत है,
1: बिल्कुल जी, बताइए
0: क्योंकि अब है त्योहारों का टाइम
1: जी
0: है ना,
1: जी
0: हर बहन जो है भाई के घर जाएगी तो कहीं ना कहीं बलन से बिगड़ेगी भी तो। तो
1: बिल्कुल
0: आइए सुनते हैं ये सविता शर्मा की आवाज में, ये गाना है ऐसा जो आपको थोड़ा सा हंसा भी
1: जी
0: देगा और थोड़ा सा शिकायत का अंदाज भी देगा।
1: बिल्कुल, तो आइए सुनते हैं सविता शर्मा की आवाज में प्यार सा लोकगीत।

0: और पति से बिगड़ गई है, तो वो उसको कैसे गा कर बता रही हैं। और यही अंदाज हमारे लोक संगीत का एक बहुत ही कहते हैं ना आधारभूत ज़रूरत होती है, जिसे वो अपने संगीत के साथ, अपने बोल के साथ ऐसे पिरो देती हैं और रख देती हैं सामने कि आपने शिकायत भी कर दी, अपनी बात भी कह दी और एक गाना भी आ गया।
1: बिल्कुल, जो देखिए ना, अब समय समय भी बदलता चला जा रहा है। जैसे हम बात कर लगातार बात भी कर रहे हैं, पहले चिट्ठियाँ हुआ करती थी ना, अब उसकी जगह मोबाइल फ़ोन ने ले ली। जो जो गीत कभी हमारी दादी ने गाया था, वही गीत आज भी हमारी किसी ना किसी बेटी, हमारे कलाकार की आवाज़ में आप ये गीत सुनते ही हैं। और कहीं ना कहीं लगता है कि हमें, कि जब भी हमें, मतलब खासकर मुझे जो लगता है प्रीति, कि कहीं ना कहीं एक बार एक गांव की तरफ हो जाए, या कहीं ऐसे ऐसी जगह मिल जाए जहां पर खेत हो, खलियान हो, जहां पर बाग हो, बगीचे हो, तो कहीं ना कहीं जहां मन हमारा
0: एक जुड़ाव सा
1: मन
0: महसूस
1: हमारा
0: होता
1: हमारा
0: है
1: मन लगता है। और गजेंद्र
0: जी।
1: सिंह लगातार हमें ये बोल रहे हैं, प्रीति बोल रही है कि लोक रंजनी कार्यक्रम की कमी है, समय समाप्त होने वाला है, लेकिन मन नहीं करता है कि कार्यक्रम को छोड़ के जाएं। बात लगता है कि और बातें करें, समय और आपसे जुड़ने का, बातें करने का, लेकिन फिर भी घड़ी की सुई लगातार बोल रही है। और प्रीति भी बोल रही है कि कार्यक्रम समय यहीं पर समाप्त होने जा रहा है। उस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं वो शिवनंदन लाल हैं,
0: प्रस्तुत करता तुषार पराशर। तो इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंजनी और आइए प्रस्तुत है कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।
2: खेल खिलाड़ी सुनने वाले सभी श्रोताओं को नवीन कुमार शर्मा का नमस्कार। नमस्कार रेणु, आज हमारे साथ जो हमारे सहयोगी हैं रेणु गुप्ता। और
3: नमस्कार नवीन, और खेल जगत से जुड़ी क्या खास खबरें हैं आज हमारे श्रोताओं के लिए?
2: जी हाँ, आज की खेल पिटारे में बहुत कुछ है और बात हॉकी विश्व कप की होगी, जहां भारतीय और महिला और पुरुष टीम दोनों वर्गों में अभी क्लासिफिकेशन मुकाबले खेलेंगी और वहां उनके पास जीत के साथ अपना जो अभियान है उसे समाप्त करने का मौका रहेगा। दोनों ही वर्गों में सेमीफाइनल लाइनअप भी तय हो चुकी है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और इसके अलावा बात क्रिकेट की करें तो भारतीय टीम जीत की दस्तक दे रही है कोलंबो में दूसरे टेस्ट में। पहला टेस्ट भारतीय टीम ने 165 रन से जीत लिया था और दूसरे टेस्ट में स्थिति यह है कि भारतीय टीम ने फॉलो ऑन के बाद 6 विकेट ले लिए हैं 239 रन पर श्रीलंका के, और अभी श्रीलंका की बढ़त 16 रन की हुई है। चौथा दिन है, कल पांचवा दिन है और भारतीय टीम के पास यहां 2-0 से श्रृंखला जीतने का मौका है। दिलीप ट्रॉफी की भी बात करेंगे, जहां नॉर्थ जोन की टीम और ईस्ट जोन की टीम जीतने में सफल रही है दिल्ली प्रीमियर लीग। और
3: साथ ही साथ बात करेंगे चेस की और सुब्रतो कप की भी, और स्क्वैश से भी कुछ खास खबरें आज हमारे पास हैं।
2: तो क्यों ना रेणु, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हॉकी विश्व कप से, और इस रिपोर्ट में क्या लाइनअप है, सेमीफाइनल लाइनअप दोनों टीमों की, और भारतीय टीम को दोनों वर्गों में अब क्लासिफिकेशन के लिए किसका सामना करना है? नीदरलैंड और बेल्जियम में चल रहे हॉकी विश्व कप में भारत की पुरुष और महिला टीमों का सफर सेमीफाइनल से पहले थम गया। अब उम्मीदें क्लासिफिकेशन मुकाबलों पर टिकी हैं, जहां हरमनप्रीत की कप्तानी वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम को 7वें से 8वें स्थान के लिए मेजबान बेल्जियम से भिड़ना है, तो सलीमा टेटे की अगुवाई वाली महिला हॉकी टीम को 5वें से 6थे स्थान के लिए जर्मनी की टीम का सामना करना है। पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंची चार टीमें नीदरलैंड, स्पेन, जर्मनी और अर्जेंटीना है। नीदरलैंड ओलंपिक चैंपियन टीम है, जिसने भारत को 3-1 से हराया और फिर इंग्लैंड से 2-2 से ड्रॉ खेलकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। मौजूदा विश्व चैंपियन जर्मनी की टीम ने दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया को 4-2 से हराकर अपनी ताकत दिखाई, बाद में स्पेन को 4-1 से पराजित किया। अर्जेंटीना की टीम ने ग्रुप ई में भारत को 5-3 से मात देकर सेमीफाइनल का टिकट बुक कराया। स्पेन की टीम को जर्मनी के खिलाफ 1-2 से हार मिली, लेकिन उसने मजबूत बेल्जियम को 1-1 से ड्रॉ पर खेलकर उसे जरूर सेमीफाइनल की रेस से बाहर कर दिया। अब सेमीफाइनल में नीदरलैंड के सामने स्पेन की टीम होगी, जबकि दूसरा सेमीफाइनल जर्मनी और अर्जेंटीना के बीच होगा। भारत बेल्जियम क्लासिफिकेशन मैच बेल्जियम के बेल्बस स्टेडियम में होगा। लगातार 2 ओलंपिक से पदक जीत रही भारतीय पुरुष हॉकी टीम से इस बार विश्व कप में पोडियम फिनिश की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन सूरत हाल यह है कि अब क्लासिफिकेशन मुकाबले में 28 अगस्त को 7वें से 8वें स्थान के लिए बेल्जियम से भिड़ेगी। पूल ई के अपने अंतिम मुकाबले में भारत को अर्जेंटीना के खिलाफ बड़ी जीत की जरूरत थी, लेकिन अर्जेंटीना ने उसे 5-3 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचने

0: की उम्मीदें धो डाली। भारत को पहले चरण के पूल डी में रखा गया था। पहले दौर में टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया भी था, जब वेल्स को 3-1 से हराया और पाकिस्तान को 5-3 से मात दी। इंग्लैंड के खिलाफ जरूर 2-4 से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम दूसरे स्थान पर रह दूसरे चरण के पूल ई में पहुंची। दूसरे चरण में टीम लय कायम नहीं रख सकी। नीदरलैंड ने 3-1 से हराया और अर्जेंटीना से 3 गोलों के मुकाबले 5 गोलों से हार गए। दरअसल नीदरलैंड के खिलाफ 1-3 की हार ने गोल अंतर और अंक दोनों के लिहाज से भारत के लिए स्थिति बेहद कठिन कर दी। जब अर्जेंटीना के खिलाफ 2 गोलों के अंतर से जीत की जरूरत थी, तब 6 मिनट के अंदर 2 गोलों से पिछड़ गए। यानी मनोवैज्ञानिक रूप से टीम बेहद दबाव में आ गई और अर्जेंटीना की बढ़त पूरे मैच में कायम रही। हमने 3 गोल किए जरूर, लेकिन अहम मैच में 5 गोल टीम पर होना रक्षक पंक्ति की कमजोरी को भी उजागर करता है। सेमीफाइनल का सपना टूट चुका है, अब 7वां स्थान हासिल कर जीत से विदाई का लक्ष्य होगा। हालांकि मेजबान बेल्जियम के खिलाफ भी मुकाबला आसान नहीं है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के प्रदर्शन पर पूर्व ड्रैग फ्लिकर रुपेंद्र पाल सिंह कहते हैं,
1: बिल्कुल रिजल्ट देखा जाए डिसअपॉइंटिंग है। हर कोई ये चाहता था कि इंडिया का मेडल आए वर्ल्ड कप में, है ना। सबसे ज्यादा तो प्लेयर ही हार्ड वर्क कर रहे थे, वो चाहते थे कि यार इतना वो मेहनत कर रहे थे कि वर्ल्ड कप में कुछ ना कुछ करें, लेकिन उसके लिए वो रिजल्ट हमारा डिसअपॉइंटिंग रहा है, क्योंकि काफी चीजें हैं जिसके ऊपर अभी हमें काम करने की जरूरत है। तो ओवरऑल जो सेकेंड फेज था, वो दोनों टीमें हम बोल सकते हैं काफी एक तो हाई रैंकिंग टीम्स थी, और जैसे हमें पता है हॉलैंड वन ऑफ द टॉप टीमों में से है। तो वो एक हमारा एक मैच था जहाँ पे मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा परफॉर्मेंस को लैग करके गए हैं, ज्यादा परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं था हमारा। सेम विद अर्जेंटीना, सो अर्जेंटीना के साथ ऐसे था कि हमें पता था कि इंडिया को हमको लाइक स्पेशली 2-3 गोल का डिफरेंस चाहिए था, इसलिए वो स्टार्टिंग में ही अटैकिंग हॉकी खेलने के लिए गए, जिसकी वजह से स्टार्टिंग में वो हमने गोल वो कंसीड कर लिया ना। तो ये एक प्रेशर वाला टूर्नामेंट है डेफिनेटली, है ना। वर्ल्ड कप इजी नहीं है, हर टीम प्रिपेयर होके आती है यहाँ पे आने वाले। आई थिंक ऐसा है कि अभी जो 7th-8th के लिए खेल रहे हैं, आई होप कि वो बेल्जियम के साथ खेल अच्छा मैच होगा और एटलीस्ट जो लास्ट मैच है वो विनिंग नोट के साथ वर्ल्ड कप का जो अपना जर्नी था वो खत्म करेंगे।
0: कहते हैं बीती ताई बिसार आगे की सुधले, अब अगले महीने एशियाई खेल होने हैं, ऐसे में विश्व कप की खामियों पर काबू पाकर ओलंपिक का टिकट पाने का लक्ष्य होगा। भारत ने पिछली बार 2022 हांगजोंग में स्वर्ण पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक का टिकट हासिल किया था। अब जापान के आइची नगोया में अपनी एशियाई बादशाहत को कायम रखने की चुनौती होगी। बात भारतीय महिला टीम की करें तो उसे जर्मनी के खिलाफ 5वें से 6ठे स्थान के लिए खेलना है। यह मुकाबला कल खेला जाएगा। अगर भारतीय टीम यह मैच जीतने में सफल रहती है तो विश्व कप इतिहास में अपनी दूसरी श्रेष्ठ पोजीशन हासिल कर सकती है। भारतीय महिला टीम 1974 में 4थे स्थान पर रही थी और इस बार उसके पास अपना श्रेष्ठ स्थान दोहराने का मौका भी था और टीम उसके काफी करीब तक पहुंची भी, लेकिन दूसरे चरण के अपने अंतिम मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गोल रहित ड्रॉ के बाद गोल अंतर से पिछड़ कर इतिहास दोहराने से वंचित रह गई। भारतीय महिला टीम को पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ रखा गया था। भारतीय टीम ने चीन के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ खेला और इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 6-1 से जीतने में सफल रही। 2 ड्रॉ और 1 जीत के साथ पहले चरण में 5 अंक लेकर भारतीय महिला टीम अगले चरण यानी पूल ई में पहुंची। पूल ई में ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड ने भारतीय टीम को 2-0 से हराया। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला सेमीफाइनल की दौड़ के लिए निर्णायक हो गया। भारत को हर हाल में जीत की दरकार थी, जबकि ऑस्ट्रेलिया के लिए महज ड्रॉ ही काफी था। भारत और ऑस्ट्रेलिया में कड़ी टक्कर हुई, लेकिन कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। मुकाबला गोल रहित ड्रॉ पर छूटा। दूसरे चरण की समाप्ति पर भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों के 2-2 अंक थे। गोल अंतर भी -2 का था। ऐसे में इस पूल से सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम का निर्णय ज्यादा गोल करने के आधार पर हुआ और 1 गोल अधिक होने के कारण ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच गया। अब सेमीफाइनल मुकाबलों में नीदरलैंड महिला हॉकी टीम की टक्कर बेल्जियम से कल 27 अगस्त को रात 9:30 बजे होगी, जबकि अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला रात 12 बजे खेला जाएगा। भारतीय हॉकी टीम 5वें से 6ठे स्थान के क्वालिफिकेशन के लिए जर्मनी के साथ कल शाम 6:30 बजे एम्स्टलविन के वैगनर हॉकी स्टेडियम में खेलेगी। कप्तान सलीमा टेटे की भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रदर्शन खराब नहीं रहा। कुल 5 मैच खेले, जिनमें चीन, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से ड्रॉ खेले और एकमात्र हार नीदरलैंड के खिलाफ मिली। हालांकि जीत भी खाते में आई, जब दक्षिण अफ्रीका को 6-1 से हराया। भारतीय टीम का रक्षण मजबूत रहा। रक्षक पंक्ति में ज्योति, इशिका और सुशीला चानू के अलावा गोलकीपिंग में सविता और बिच्छू देवी ने अच्छी मुस्तैदी दिखाई। मध्य पंक्ति में नेहा, निकी प्रधान और सुनीलिता टोपो की मदद से गोल करने के अवसर तो जुटाए, लेकिन फिनिशिंग टच नहीं दे पाए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अहम मुकाबले में 1 पेनल्टी कॉर्नर ही अर्जित किया था। भारतीय महिला हॉकी टीम के प्रदर्शन से रुपेंद्र पाल काफी हद तक संतुष्ट हैं और उन्हें लगता है कि 5वां स्थान अगर टीम हासिल करती है

0: तो यह है एक अच्छा प्रदर्शन होगा।
1: आई थिंक वुमेन्स टीम ने तो अच्छा किया है यार, क्योंकि जो उनकी परफॉर्मेंस जो देखी जाए, इवन टीम इवन द कोचिज आर लाइक काफी खुश होंगे, क्योंकि उन्होंने हॉलैंड के साथ जो हो रहा था आई थिंक ना, एंड देन जो हम फर्स्ट पिक थे इसका वहां पर भी अच्छा खेली है लड़की। आई फील ओवरऑल काफी इम्प्रूवमेंट है लड़कियों की, और जैसे मैंने बोला है पहले कि वर्ल्ड कप एक ऐसा टूर्नामेंट है कि एक एक मैच एक एक गोल आपको रैंकिंग में, जो पूल रैंकिंग होती है उसके उसमें स्टैंडिंग आपकी जो होती है उसमें डिफरेंस डालती है। आई थिंक वो छोटी छोटी चीजें हैं, आई थिंक दे नीड टू वर्क ऑन जो डिटेल्स के ऊपर काम करने की जरूरत है। और आई एम श्योर लाइक जो दोनों टीम्स हैं, वुमेन्स टीम या मेन्स टीम, उनको पता है किस चीज के ऊपर काम करना है, कौन सी चीजें इम्प्रूव करनी है बिफोर एशियन गेम्स। आई थिंक दे विल बी इन बेटर स्पोर्ट्स। कब में वुमेन्स में कंपटीशन आपको पता ही है, सभी टीमें बहुत अच्छी हैं वैसे भी ना, तो पांचवें नंबर पे आना एक छोटी बात नहीं है वर्ल्ड का वर्ल्ड हॉकी में। तो वुमेन्स के लिए ये भी एक बड़ा स्टेप है, क्योंकि जितने वो मैचेस खेले हैं हर मैच अच्छे खेले हैं, तो आई एम श्योर मैच जीतेंगी तो वो एक उनके लिए बहुत ज्यादा बड़ा बूस्टर होगा बिफोर द एशियन गेम्स की। वर्ल्ड कप में उन्होंने फिफ्थ फिनिश किया है, एंड देन नेक्स्ट मैच के लिए रेडी रहेंगे वो।
0: जी हाँ बिल्कुल, और पुरुष हॉकी टीम की अगर बात करें तो सातवें से आठवें स्थान के लिए बेल्जियम के साथ मुकाबला 28 अगस्त को रात 9:45 बजे से शुरू होगा। नीदरलैंड स्पेन सेमीफाइनल में होंगे और जर्मनी और अर्जेंटीना के बीच सेमीफाइनल होगा। फाइनल 30 अगस्त को है।
2: तो नवीन, ये तो बात हुई हॉकी के बारे में, और भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट जो है खेला जा रहा है, उसके क्या अपडेट्स हैं हमारे श्रोताओं को बताइए।
0: जी हाँ, कोलंबो में ये मैच चल रहा है और भारतीय टीम ने, जैसा कि श्रोताओं को पता है, पहली पारी में 9 विकेट पर 503 रन बनाए थे, और जिसमें तीसरे क्रम पर इनफॉर्म बल्लेबाज देवदत्त पड्डीकल ने 117 रन की पारी खेली, जबकि ध्रुव जुरेल ने भी 115 रन नाबाद बनाए थे। ऋषभ पंत ने 63 रन का योगदान दिया था। श्रीलंका की पहली पारी 79.4 ओवर में 290 रन पर सिमट गई थी। सोनल दिनुषा ने सर्वाधिक 103 रन बनाए थे। उसके जहां तक भारतीय गेंदबाजों की बात है, पेसर प्रसिद्ध कृष्णा और स्पिनर मानव सुधार ने तीन तीन विकेट बांटे थे। सारांश जैन ने भी 2 विकेट लिए थे और रविन्द्र जडेजा को 1 विकेट मिला था। श्रीलंका ने दूसरी पारी में फॉलो ऑन के बाद चौथे दिन 72.4 ओवर में 6 विकेट पर 229 रन बना लिए हैं, यानी उसके पास कुल 16 रन की अभी बढ़त हुई है। पहली पारी में 80 रन बनाने वाले पासुंदा सूर्या वंदारा ने दूसरी पारी में 92 रन बनाए। कामेंदू मेंडिस ने भी 55 रन का योगदान दिया। मानव सुधार अभी तक 2 विकेट ले चुके हैं, 1-1 विकेट सिद्ध कृष्णा, सिराज, सारांश जैन और जडेजा के खाते में आया है। बहरहाल जिस तरह का प्रदर्शन है, भारतीय टीम पहला टेस्ट जीती थी और उसके बाद दूसरे टेस्ट में जीतकर श्रृंखला जो है 2-0 से अपने नाम करने का मौका है। हमने एक खास बातचीत की भास्कर पिल्लई, जो कि भारत के जाने माने क्रिकेटर हैं, और क्या कहा उन्होंने भारतीय टीम के प्रदर्शन पर, खासतौर पर मानव सुथार जो कि एक युवा स्पिनर हैं 24 साल के और लगातार अच्छा प्रदर्शन किए हैं। दूसरा 2 टेस्ट खेल चुके हैं, तीसरा टेस्ट खेल रहे हैं, अफगानिस्तान के खिलाफ अच्छा किया, पहले टेस्ट में उन्होंने अच्छा किया, अब यहां भी वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या कहा मानव सुथार पर, आइए जानते हैं।
3: देखिए, भारत को तलाश थी एक स्पिनर के लिए, जो क्योंकि रविंद्र जडेजा अब ऑलमोस्ट अपने लास्ट उसमें चरण में हैं, और कहीं शायद उनकी कोई स्टेटमेंट भी आई है कि वो शायद बड़ी जल्दी अपना रिटायरमेंट अनाउंस करेंगे, तो ऐसे में भारत को एक तलाश थी एक लेफ्ट आर्म स्पिनर के लिए। अक्षर पटेल हैं जो वाइड बॉल क्रिकेट में ज्यादा अच्छा प्रदर्शन देते हैं, और ऐसे में सुधार जो डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, उनको मौका मिला और उन्होंने इस मौके का पूरा पूरा फायदा उठाया। जैसे हमने देखा कि पहले मैच में भी 10 विकेटें ली और अभी कर रहे हैं। उनके हाथ में वो आर्ट है, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर का जो ड्रिफ्ट होना चाहिए, जो अंदर की जो ड्रिफ्ट होके फिर बॉल टर्न होता है, तो ऐसा कहना गलत होगा कि फ्रेंडली स्पिनर फ्रेंडली विकेट्स में ही अच्छा बॉल डालते हैं, ऐसा नहीं है। इनमें वो क्षमता है और आने वाले जो अच्छे सीरीज जो आएंगी उसमें भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे।
0: तो सारांश जैन भी घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा करते रहे हैं, अब उन्हें मौका मिला है और वो कुछ हद तक वो भी अब काफी सफल हैं, तो अब ये है कि आपके पास अगर आप प्रदर्शन करते हैं तो वो उसका एक इनाम भी आपको मिलता है।
3: बिल्कुल सही बात है। देखिए, कुछ लोग लकी होते हैं जिनको

0: मिल जाता है। सरान जैन भी कोई यंगस्टर नहीं है, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 33 साल के हैं वो।
1: जी
0: और पर अच्छा है, बड़ी अच्छी बात है कि भाई उनके जो उनको उनकी जो घरेलू प्रदर्शन जो उन्होंने किया है रणजी ट्रॉफी में और बाकी फॉर्मेट्स में, उससे हिसाब से एक मौका मिला है। और इन्होंने थे, टैलेंट तो था ही उसमें, पर कभी ऐसा होता है, परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें अच्छे टैलेंटेड जो घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको मौका मिलता नहीं है। इनको मिला है, काफी चाहे भले लेट मिला है, गंभीर को इन पे बड़ा ट्रस्ट था, इनमें इनमें काफी कॉन्फिडेंस था, तो इसलिए उन्होंने उनको मौका दिया, जबकि एज उनके पक्ष में नहीं है। तो कि अगर ये अगर सेटल हो भी जाते हैं इंडियन टीम में तो कितने साल और अपना ये अपना सहायता देंगे हिंदुस्तान को। तो ऐसे में चयनकर्ता का ये होता है कि भाई के एक यंगस्टर को चांस दें और उनको ग्रूम करें ताकि वो लंबे अरसे तक आपको आपके लिए सहायता करें।
1: जी बिल्कुल। और अगर बल्लेबाजी की बात करें तो जिस तरह साई सुदर्शन चोटिल हो गए थे, ऐसे में तीसरा क्रम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। और देवदत्त पड्डीकल ने दिखाया है कि मौके पर चौके वाली बात है कि लगातार 2 शतक वो लगा चुके हैं।
0: बिल्कुल, देखिए मैं थोड़ा सा एनसीए में मेरे साथ एक कैंप में थे ये, तब भी ये जब ये अंडर 19 के थे तभी इनका जो टैलेंट था वो साफ दिखाई देता था, पड़ता था। इट वाज अ मैटर ऑफ टाइम के भाई ये कब जो है मेन स्ट्रीम में आएंगे, जब ये दस्तक देंगे इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे को। और इनको मौका मिला, आपने सही कहा, साई सुदर्शन के इंजरी होने से इनको एक मौका मिला। और इन्होंने देखो आईपीएल में बड़ा अच्छा किया है, आरसीबी से खेलते हैं और वहां तो व्हाइट बॉल में तो अच्छा कर ही रहे थे, और कर्नाटक लगे बड़ा प्रोलिफिक स्कोरर है ये। तो ऐसे में चयनकर्ताओं ने सही टाइम पे इनको मौका दिया है, सही टाइम पे इन पे ट्रस्ट रखा है और वो ट्रस्ट पे खरे उतरे हैं। 202 शतक बनाए हैं इन्होंने और आने वाले सालों में और भी शतक बनाएंगे।
1: जी बिल्कुल। और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज है और भारतीय टीम पहले टेस्ट मैच जीत चुकी है, दूसरे में बिल्कुल एक पलड़ा उसका भारी है। तो अभी आपको लगता है कि ये विश्व टेस्ट चैंपियनशिप है और यहाँ शुभमन गिल जैसे युवा कप्तान के लिए ये एक, अगर 2-0 से हम जीतने में सफल रहते हैं तो टेस्ट चैंपियनशिप में भी एक इजाफा होगा पोजीशन में और एक कॉन्फिडेंस भी, टीम का स्टेट ऑफ माइंड भी बदलता है।
0: देखिए कुछ सालों में कुछ महीनों में हमारे टेस्ट में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। एक बिल्डअप फेज था, एक युवा यंग शुभमन गिल को कप्तानी सौंपी गई थी और देखो थोड़ा टाइम लगता है किसी भी टीम को मैच्योर होने में और एक अच्छा सही कॉम्बिनेशन बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। और मैं ये समझता हूँ अब वो टाइम आ गया है जब वो अपना वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपना, अभी तो शायद मेरे ख्याल चौथे या पांचवें नंबर पे हैं, तो आगे आने वाले जो टेस्ट सीरीज होंगी अगर ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका के साथ होगा तो उसमें ये अच्छा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि अब ये थोड़े से एक कॉम्बिनेशन बन गया है बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी और बैटिंग डिपार्टमेंट में। तो जिसका जो एक ट्रांजिशन फेज था जिसमें ये नए खिलाड़ियों को चांस दे रहे थे और एक कॉम्बिनेशन बना रहे थे, तो मैं समझता हूँ ये सही टाइम है, इस वक्त सही अच्छा खेल रहे हैं। श्रीलंका में जाके श्रीलंका को हराना बड़ा कठिन काम है, और चाहे वो जितने भी कैसे भी टीम हो, बट होम सीरीज में श्रीलंका हमेशा अच्छा करती है, जैसे हमने कई साल देखा है वहां पे। तो ये जो है ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा और आने वाले सीरीज में अच्छा टेस्ट में प्रदर्शन करेंगे ये।
1: जी बिल्कुल, टेस्ट में कहते हैं टेस्ट होता है और युवा टीम ने श्रीलंका को श्रीलंका की जरजमी पर एक दबदबा बना के अपना और शानदार पहले टेस्ट में जिस तरह जीत हासिल की दूसरे में दबदबा बना रखा है, तो निश्चित रूप से ये आने वाले समय में भारतीय टीम के लिए एक लाभकारी श्रृंखला रहेगी। आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भास्कर पिल्लई साहब, थैंक यू वेरी मच।
0: धन्यवाद।
1: बिल्कुल, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की बात हो रही थी और पांचवें स्थान पर है भारत। पॉइंट परसेंटेज की बात करें तो भारत का पॉइंट परसेंटेज 53.33 है, कुल 64 पॉइंट है और यहां निश्चित रूप से अगर जीत मिलती है तो इसका फायदा होगा। टॉप पर ऑस्ट्रेलिया चल रही है, उसके बाद साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें भारतीय टीम से आगे हैं, लेकिन अब यहां अच्छा प्रदर्शन निश्चित रूप से भारतीय टीम के लिए फायदेमंद होगा।
2: आइए अब रुख करते हैं दिलीप ट्रॉफी का, जहां घरेलू क्रिकेट की प्रतिस्पर्धा में छिपी है भारतीय क्रिकेट के भविष्य की झलक।
1: बेंगलुरु में चल रहे दिलीप ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में नॉर्थ जोन ने वेस्ट जोन को 52 रन से हरा दिया। नॉर्थ जोन के आबिद मुश्ताक को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, जिन्होंने पहली पारी में 39 रन देकर 5 विकेट लिए और दूसरी पारी में 60 रन पर 4 विकेट अपनी झोली में डाले। नॉर्थ जोन ने पहली पारी में 251 रन बनाए थे, लेकिन वेस्ट जोन की टीम

0: 87 रन ही बना सकी। दूसरी पारी में नौजवान ने 222 रन बनाए। पहली पारी में शानदार पारी खेलने वाले 51 रन बनाकर आयुष बडानी ने दूसरी पारी में भी 50 रन बनाए कर एक अच्छा योगदान दिया। वेस्ट जोन को 287 रन का लक्ष्य मिला लेकिन टीम 234 रन ही बना सकी। मुशीर खान ने 96 और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की 66 रन का योगदान दिया लेकिन दोनों की अच्छी पारी वेस्ट जोन को हार से ना बचा सकी। अन्य क्वार्टर फाइनल में ईस्ट जोन ने नॉर्थ ईस्ट जोन को पारी और 210 रन से पराजित कर दिया। शाहबाज अहमद ने 167 रन बनाए थे और मैच में 4 विकेट लिए थे, वो प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। ईस्ट जोन ने 467 रन बनाए और लेकिन नॉर्थ ईस्ट जोन 111 और फॉलो ऑन के बाद 146 रन नहीं बना सकी। शाहबाज अहमद का प्रदर्शन शानदार रहा, 167 रन और मैच में कुल 4 विकेट।
1: और अब बात करते हैं 64 खाने 32 मोहरे और एक खिताब की। सेंट लुइस में बिछी शतरंज के बिसात पर इस वक्त हर चाल की अपनी कहानी है। एक तरफ भारत का युवा सितारा आर प्रज्ञानानंदा तो दूसरी तरफ अनुभव और रणनीति के महारथी डिफेंडिंग चैंपियन फेबियानो करुआना। आइए जानते हैं विस्तार से। शतरंज की दुनिया में इस समय सभी की नजरें ग्रैंड चेस टूर फाइनल्स 2026 पर हैं, जहां भारत के युवा ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंदा खिताब के लिए अमेरिका के अनुभवी और डिफेंडिंग चैंपियन फेबियानो कारुआना के सामने हैं। सेंट लुइस चेस क्लब में मंगलवार 25 अगस्त को दोनों खिलाड़ियों के बीच फाइनल का पहला क्लासिकल गेम खेला गया। इस मुकाबले में फेबियानो कारुआना ने सफेद मोहरों से खेलते हुए प्रज्ञानानंदा को हराया और मैच में 6-0 की बढ़त बना ली। प्रज्ञानानंदा ने काले मोहरों से मुकाबला शुरू किया। दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अपेक्षाकृत अनकन्वेंशनल इटालियन ओपनिंग देखने को मिली। शुरुआती दौर के बाद पोजीशन जटिल होती गई और लंबे समय तक मुकाबला काफी संतुलित रहा। प्रज्ञानानंदा ने कई मौकों पर सटीक चालें चलते हुए कारुआना को आसान बढ़त हासिल नहीं करने दी। मुकाबले का निर्णायक मोड़ 28वीं चाल पर आया। प्रज्ञानानंदा की 28वीं चाल के बाद कारुआना को टेक्टिकल अपॉर्चुनिटी मिली। अमेरिकी ग्रैंड मास्टर ने तुरंत इसका फायदा उठाया और एक पॉन हासिल कर लिया। इसके बाद कारुआना ने अपनी बढ़त को बेहद सटीक तरीके से आगे बढ़ाया और अंततः जीत दर्ज की। यह जीत कारुआना के लिए खास महत्व रखती है। ग्रैंड चेस टूर फाइनल्स में यह उनकी पहली क्लासिकल गेम विक्ट्री रही। कारुआना इससे पहले 2018 और 2025 में भी ग्रैंड चेस टूर फाइनल्स में खेल चुके हैं और 2025 में उन्होंने खिताब अपने नाम किया था। 2026 के फाइनल उनकी शुरुआत 6 अंकों के साथ हुई थी। अब आज यानी 26 अगस्त दोनों खिलाड़ियों के बीच फाइनल का दूसरा क्लासिकल गेम खेला जाएगा। ग्रैंड चेस टूर के कार्यक्रम के अनुसार ये मुकाबला सेंट लुइस में दोपहर 12 बजे से शुरू होगा, जो भारतीय समय के अनुसार 10:30 है। आज प्रज्ञानानंदा के पास सफेद मोहरे होंगे और कारुआना काले मोहरों से खेलेंगे। प्रज्ञानानंदा इस समय 0-6 से पीछे हैं। ऐसे में आज की बाजी उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। सफेद मोहरों के साथ उनके आक्रामक लेकिन नियंत्रित शुरुआत की उम्मीद की जा सकती है। उन्हें ओपनिंग प्रिपरेशन का लाभ उठाते हुए कारुआना पर शुरुआती दबाव बनाने और किसी भी टैक्टिकल गलती से बचने की कोशिश करनी होगी। दूसरी ओर कारुआना की कोशिश अपनी बढ़त को सुरक्षित रखने की होगी। 6 अंकों की बढ़त के बावजूद मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि फाइनल में क्लासिकल के बाद रैपिड और ब्लिट्स गेम भी खेले जाने हैं। ग्रैंड चेस टूर के इस फॉर्मेट में क्लासिकल जीत के 6 अंक, ड्रॉ के 3 अंक और हार के 0 अंक मिलते हैं। रैपिड में जीत के 4 और ड्रॉ के 2 अंक, जबकि ब्लिट्स में जीत के 2 और ड्रॉ के 1 अंक मिलते हैं। इसलिए अगर प्रज्ञानानंदा आज क्लासिकल गेम जीतते हैं तो उन्हें 6 अंक मिलेंगे और मुकाबला 6-6 से बराबर हो जाएगा। अगर बाजी ड्रॉ रहती है तो दोनों खिलाड़ियों को 3-3 अंक मिलेंगे और कारुआना 9-3 की बढ़त बनाए रखेंगे। वहीं कारुआना की दूसरी जीत उन्हें और मजबूत स्थिति में पहुंचा देगी। फाइनल में 2 क्लासिकल, 2 रैपिड और 4 ब्लिट्स गेम्स का फॉर्मेट है। 27 अगस्त को रैपिड और ब्लिट्स चरण खेले जाएंगे, इसलिए आज की क्लासिकल बाजी के बाद भी खिताब की दौड़ पूरी तरह समाप्त नहीं होगी। भारतीय प्रशंसकों की निगाहें अब प्रज्ञानानंदा पर हैं। क्या भारतीय ग्रैंड मास्टर आज शानदार वापसी करते हुए कारुआना की बढ़त को खत्म कर पाएंगे या डिफेंडिंग चैंपियन अपनी बढ़त को और मजबूत करेंगे? इस सवाल के जवाब के लिए आपको इंतजार करना होगा आज के मुकाबले का। तो बने रहिए आज के मुकाबले के लिए।
0: जी हाँ, बिल्कुल। बात अब स्क्वैश की करते हैं रेनू, और वेलवन सेंथिल कुमार और वीर चौटरानी ने बुडापेस्ट ओपन स्क्वैश के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। दुनिया में 54वें नंबर के खिलाड़ी वेलवन ने 44वें नंबर की जर्मनी की राफेल को 3-1 यानी कि 11-9, 6-11, 11-7, 11-2 से पराजित किया। वीर चौटरानी ने 3-1 से बाजी मारी और उन्होंने पुर्तगाल के रुई सोरेस को हराया। पहले दौर में वीर को बाई मिली थी, तो वीर ने जो अपना प्री क्वार्टर

0: का मुकाबला था रुइस सोरेस के खिलाफ, वो 3-1 से जीता, जिसमें स्कोर ब्रेकअप रहा 13-11, 12-14, 11-9 और 12-16। बहरहाल जिस तरह स्क्वैश का प्रदर्शन है, और स्क्वैश अब काफी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि जो लॉस एंजलिस ओलंपिक होने हैं 2028 में, वहां स्क्वैश को पहली बार ओलंपिक आंदोलन में शामिल कर दिया है, ओलंपिक खेलों में उसे प्रवेश मिल गया है। और ऐसे में कई जो युवा खिलाड़ी हैं हमारे हमारे पास युवा जो खिलाड़ी है, युवा जूनियर विश्व चैंपियन है अनहत, वो दुनिया की सबसे युवा है 18 साल की। और जब अनहत उनकी निगाहें अब एशियाई खेलों पर है, अगर वहां वो अच्छा प्रदर्शन करती हैं तो उन्हें लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए सीधे प्रवेश पाने का एक चांस है। पहले हमने जब अनाहत से मुलाकात की और विश्व जूनियर की उन्हें बधाई, चैंपियन बनने की बधाई दी, और जाना कि अब एशियाई खेल हैं, उनकी क्या तैयारी है, तो क्या कहा उन्होंने, आइए जानते हैं।
1: Gonna do anything too different. It's just gonna be the same as what I do for every other event. I'll go to Prague where my coach lives and I'll train with him. I have two other PSA tour events as well coming up, and I think I'm just gonna be, you know, focusing on that as well and, you know, use that as match practice for the Asian Games.
2: आपने पिछले एशियाई खेलों में 2 मेडल जीते थे, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। इस बार अपना क्या अपने टारगेट लिया है, आप पदक का रंग बदलना है, चेंज द कलर ऑफ मेडल?
1: आई मीन ऑफ कोर्स आई लव टू चेंज द कलर ऑफ द मेडल, इट्स इट विल बी ग्रेट टू, यू नो, बी एबल टू गो अप अ स्टेप, बट ऑफ कोर्स द कॉम्पिटिशन इज अ लॉट, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंट प्लेयर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज हु आर इन द टॉप इन द वर्ल्ड राइट नाउ, बट आई मीन होपफुली आई एम एबल टू डू समथिंग एंड आई एम एबल टू ट्रेन हार्ड टुवर्ड्स द एशियन गेम्स एंड डू वेल।
2: तो अभी एशियन गेम्स से पहले किसी इवेंट में?
1: हां, लंदन क्लासिक एंड द कतार क्लासिक coming up, which is before the Asian Games, so those are also two really big events coming up, so I mean even focusing on that before the Asian Games.
2: Kuch kehna chahenge coaches ke liye?
1: Yeah, I mean everyone that I thanked, I mean there's 20-25 people that have been there throughout my whole journey from the beginning till now, and I think, I mean, I wouldn't be able to do what I've done till now, I mean, without my family, my friends, my coaches, and like everyone who's been there throughout.
2: तो आपने फैमिली का जिक्र किया, तो फैमिली का किस तरह कॉपरेशन रहता है जिस तरह आप अपनी तैयारी करती हैं, फैमिली का क्या रोल रहता है खासकर पर्टिकुलरली योर मदर इज हियर?
1: I mean, my mom and dad, my grandparents are also here. I mean, they've supported me throughout my entire journey. If I ever need anything, they watch every single one of my matches, and my parents travel with me a lot as well for my tournaments. So yeah, I mean, it's great.
3: उम्र नहीं देखते, बस एक मैदान देखते हैं। आज उसी मैदान पर दौड़ रहे हैं देश के नन्हे फुटबॉल सितारे। किसी के पैरों में तेजी है, किसी की नजर गोल पोस्ट पर है, तो किसी के दिल में है देश के लिए खेलने का सपना। हम बात कर रहे हैं सुब्रतो कप की, आइए जानते हैं। बात करते हैं देश के सबसे प्रतिष्ठित स्कूल लेवल फुटबॉल टूर्नामेंट्स में से एक, सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट की। इस वर्ष सुब्रतो कप का 65वां संस्करण खेला जा रहा है और इसकी जूनियर गर्ल्स अंडर 17 कैटेगरी का फाइनल 27 अगस्त को नई दिल्ली के डॉक्टर बीआर अंबेडकर स्टेडियम में खेला जाएगा। इस खिताबी मुकाबले में मिजोरम का प्रतिनिधित्व कर रही एनसीसी स्कूल अंडर 17 गर्ल्स टीम और झारखंड आमने सामने होंगी। मुकाबला शाम 5 बजे शुरू होना निर्धारित है। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि इस फाइनल मुकाबले का सजीव प्रसारण आकाशवाणी से किया जाएगा। मिजोरम एनसीसी की टीम ने फाइनल तक पहुंचने के सफर में शानदार प्रदर्शन किया है। सेमीफाइनल में मिजोरम ने छत्तीसगढ़ को 2-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इस टीम का प्रतिनिधित्व एजवाल स्थित स्प्रिंगफील्ड हायर सेकेंडरी स्कूल की एनसीसी स्कूल अंडर 17 गर्ल्स टीम कर रही है और यह शिलोंग बेस्ड एनसीसी डायरेक्टरेट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का प्रतिनिधित्व कर रही है। फाइनल में मिजोरम के सामने होगी झारखंड की टीम। झारखंड की स्कूल गर्ल्स फुटबॉल में पहले से मजबूत पहचान रही है। इस कैटेगरी में झारखंड की टीमें पिछले वर्षों में भी शानदार प्रदर्शन कर चुकी हैं। इस बार सुब्रतो कप में देश भर की युवा फुटबॉल प्रतिभाओं को बड़ा मंच मिला है। 65वें संस्करण में 160 टीम्स हैं 3 कैटेगरीज में जो भाग ले रही हैं, जूनियर गर्ल्स अंडर 17, जूनियर बॉयज अंडर 17 और सब जूनियर बॉयज अंडर 15। प्रतियोगिता को 8 ग्रुप्स में विभाजित किया गया है और ग्रुप स्टेज के बाद टीम्स नॉकआउट चरण में पहुंचती है। प्रतियोगिता का आयोजन नई दिल्ली, एनसीआर और बेंगलुरु में किया जा रहा है। विभिन्न राज्यों के साथ इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन भी इस टूर्नामेंट की विशेषता है। सुब्रतो कप सिर्फ एक फुटबॉल टूर्नामेंट नहीं है, यह भारत में ग्रास रूट्स फुटबॉल के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि इस टूर्नामेंट की शुरुआत 1960 में हुई थी और इसका नाम भारत के पहले चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। शुरुआत में इसमें लगभग 50 दिल्ली बेस्ड स्कूल टीम्स ने भाग लिया था। आज देश के विभिन्न हिस्सों से हजारों स्कूल टीम्स स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स में भाग लेती हैं और उनमें से सर्वश्रेष्ठ टीम्स मुख्य सुब्रतो कप तक पहुंचती हैं। टूर्नामेंट ने समय के साथ अपना दायरा भी बढ़ाया है। सुब्रतो कप का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि स्कूल फुटबॉल से निकलने वाले कई खिलाड़ी

0: आगे चलकर स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल स्तर तक पहुंच सकते हैं। तो तैयार रहिए छोटी उम्र और बड़े सपनों के साथ मैदान में उतरने वाले इन युवा खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए। बात करते हैं देश के
1: जी हाँ, बात अब दिल्ली प्रीमियर लीग की करते हैं। तो साउथ दिल्ली सुपरस्टार और सेंट्रल दिल्ली किंग्स के बीच मुकाबला चल रहा है। साउथ दिल्ली ने 7 विकेट पर 193 रन बनाए थे और ताजा अपडेट 13 ओवर तक की है हमारे पास, जहां सेंट्रल दिल्ली ने 5 विकेट पर 102 रन बना रही है। उसे 42 गेंदों में 92 रन की जरूरत है। महिला लीग भी चल रही है, डीपीएल महिला लीग में कल ईस्ट दिल्ली राइडर्स को नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने 3 विकेट से हरा दिया। ईस्ट दिल्ली ने 7 विकेट पर 140 रन बनाए थे, नॉर्थ दिल्ली ने एक गेंद पहले 7 विकेट पर 141 रन बना लिए। नजमा, शिवी शर्मा और समायरा ने 34-34 रन की पारी खेली। ईस्ट दिल्ली के लिए सिमरन बहादुर, तमन्ना सिंह ने 2-2 विकेट लिए। और बात अन्य खेलों की करें अगर, तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप हाल में संपन्न हुई दिल्ली में। भारत ने त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद की मदद से कांस्य पदक जीता और ये 15 साल बाद इस महिला युगल में कांस्य पदक मिला है और इसका फायदा उन्हें मिला है, त्रिशा और गायत्री को। उन्होंने 12 स्थानों की छलांग के साथ विश्व रैंकिंग में 27वें पायदान पर जगह बना ली है। घड़ी की सुइयां हमें ज्यादा अनुमति प्रदान नहीं कर रही हैं। तो कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मुझे यानी नवीन कुमार शर्मा को अपनी सहयोगी
0: रेणु गुप्ता को दीजिए अनुमति।
1: नमस्कार।
2: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। नेपाल तिब्बत सीमा के पास रसुवा क्षेत्र में आज सुबह भोटे कोशी नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण 384 पर्यटक लापता हैं। इनमें 105 भारतीय शामिल हैं। लापता लोगों में 291 विदेशी नागरिक और 93 नेपाली नागरिक हैं। इनमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के नागरिक भी शामिल हैं। ये शुरुआती आंकड़े हैं और अभी इनका सत्यापन किया जा रहा है। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। बाढ़ के कारण अब तक 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर हैं 9779851316807 और दूसरा नंबर है 9779709107500। दूतावास ने बताया कि वो बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारत नेपाल को जल्द से जल्द राहत सामग्री भेजने की तैयारी कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस कठिन समय में भारत के लोगों की संवेदनाएं नेपाल के लोगों के साथ हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। नेपाल में ग्लेशियर फटने से बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। गंडक नदी से लगे 6 जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष निगरानी रखी जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिमी चंपारण के बगहा और वैशाली के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। गंडक नदी में पानी बढ़ने की आशंका को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की एक टीम गोपालगंज और बेतिया में तैनात की गई है। साथ ही एक अन्य टीम को मुजफ्फरपुर में तैयार रखा गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृह मंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। श्री शाह ने कहा कि स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को तैनात किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रथम 2500 पात्र महिला लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र

0: हिंदी वार्ता कार्यक्रम के इस अंक में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है नारी शक्ति समान अधिकार से राष्ट्र नेतृत्व तक। वार्ताकार हैं महिला उद्यमी और फैशन डिजाइनर डॉक्टर नीतू सिंह। नीतू सिंह जी, आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका संतोष जी मुझे यहाँ निमंत्रण के लिए।
0: नारी शक्ति समान अधिकार से राष्ट्र नेतृत्व तक, इस विषय पे हम आपका विचार जानना चाहेंगे कि आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप इसको कैसे देखती हैं।
1: वर्ष 2026 में मैं नारी शक्ति समान अधिकार से राष्ट्र नेतृत्व तक को केवल महिलाओं का अधिकार देने के विषय में नहीं, बल्कि भारत के विकास की यात्रा में महिलाओं के लिए समान अवसर, समान भागीदारी और समान नेतृत्व के अवसर के रूप में देखती हूँ। आज भारतीय महिला केवल परिवार की जिम्मेदारियों तक ही सीमित नहीं है, वो साइंटिस्ट भी हैं, एयरफोर्स में हैं, नेवी में हैं, देश की सेवा कर रही हैं, फाइटर पायलट हैं, खिलाड़ी हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, पॉलिसी मेकर हैं। तो महिलाएं देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में बराबर की भागीदारी बन रही हैं। लेकिन मेरे लिए वुमन एम्पावरमेंट का मतलब केवल यह नहीं है कि कुछ महिलाएं बहुत ऊंचे पदों तक पहुंच जाएं। असली बदलाव तो तब होगा जब हर लड़की को अपनी कैपेबिलिटीज को पहचानने का, अच्छी एजुकेशन पाने का, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने का और जिस क्षेत्र में वो एक्सेल करना चाहती है उसमें आगे बढ़ने का समान अवसर मिले। तो आज हम केवल राइट्स की बात से आगे बढ़कर अपॉर्चुनिटीज और लीडरशिप की बात कर रहे हैं। जब महिलाएं निर्णय लेने की प्रक्रिया में बराबर की भागीदार बनेंगी तभी उनकी शक्ति का पूरा उपयोग राष्ट्र निर्माण में होगा और यही बदलाव हमारे नए भारत को एक अधिक इंक्लूसिव, प्रोग्रेसिव और पावरफुल नेशन बनाएगा।
0: जी बिल्कुल, जैसे आपने भी कहा कि आज महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, खेल, उद्यमिता और प्रशासन से लेकर के देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच रही हैं। कैसे देखती हैं आप भारतीय समाज के इन बदलावों को?
1: मैं इसे भारत के सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस के सबसे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में से एक मानती हूँ। मैं स्वयं ही एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ, जैसा कि आपने मेरा परिचय कराया, इसलिए मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ कि जब कोई महिला अपने सपने को रियलिटी में बदलने का निर्णय लेती है तो उसे केवल मार्केट कंपटीशन का ही सामना नहीं करना पड़ता है, बल्कि कई बारी ऑर्थोडॉक्स सोशल माइंडसेट और ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस को भी चुनौती देनी पड़ती है। लेकिन आज भारत का जो सोशल लैंडस्केप तेजी से बदल रहा है, वहाँ बेटियां सिर्फ नौकरी पाने का सपना नहीं देख रही हैं, बल्कि नौकरी देने वाली बनने का भी सपना देख रही है। वो एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, साइंस है, स्पोर्ट्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है या एंटरप्रेन्योरशिप, हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहे हैं। तो जो आपने बदलाव की बात की, वो बदलाव मुख्य रूप से तीन स्तरों पर दिखाई देता है: एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि आज समाज में महिला की सफलता केवल उसकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि परिवार और राष्ट्र की प्रोग्रेस के रूप में देखा जाने लगा है।
0: जी बिल्कुल नीतू जी, जैसे

0: कई बार देखने में आया है कि कानून और संविधान महिलाओं को समान अधिकार देते हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में समानता की यह तस्वीर कई बार इससे इतर भी होती है। जनमानस की सोच में वास्तविक बदलाव आए, आपके हिसाब से इसमें और क्या किया जाना चाहिए?
1: क्योंकि महिलाओं को बराबरी देने के लिए कानून बनाना जरूरी है, लेकिन कानून बनाने से लोगों की सोच नहीं बदलती है। असली बदलाव तब आएगा जब परिवार, स्कूल और समाज मिलकर महिलाओं को बराबरी का सम्मान और अवसर देंगे, क्योंकि बेटियों को ये विश्वास देना होगा कि वे किसी से कम नहीं हैं, और बेटों को भी ये सिखाना होगा कि महिलाओं के साथ बराबरी का मतलब उनसे मुकाबला करना नहीं होता है, बल्कि उनका सम्मान करना और उनके साथ मिलकर आगे बढ़ना होता है।
0: जी बिल्कुल, बिजनेस शुरू करने के विचार से लेकर इसे आज जहाँ तक ये पहुँचा है, या यूँ कहें कि आपकी शून्य से शिखर की जो बिजनेस की यात्रा है, उसे अपने अनुभव के आधार पर हमारे श्रोताओं के साथ साझा कीजिए।
1: जरूर संतोष जी, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि मेरी जर्नी सिर्फ बिजनेस बनाने की जर्नी नहीं रही है, बल्कि खुद पर विश्वास करने की जर्नी भी रही है। जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था, तब मेरे सामने न कोई रेडीमेड रास्ता था और न ही कोई फैमिली बिजनेस लेगेसी। मुझे सब कुछ खुद सीखते हुए आगे बढ़ना पड़ा। मार्केट को समझना, खासकर इंटरनेशनल मार्केट को, कस्टमर्स की जरूरत को समझना, टीम बनाना, फाइनेंशियल डिसीजंस लेना, और सबसे इम्पोर्टेंट, मुश्किल परिस्थितियों में सही डिसीजन लेना। तो मेरी सबसे बड़ी लर्निंग यही रही है कि बिजनेस में सक्सेस केवल बड़े कैपिटल लगाने से नहीं मिलती है, बल्कि इसके लिए विजन, डिसिप्लिन, पेशेंस और कंटिन्यूअस लर्निंग भी बहुत जरूरी है। मेरे रास्ते में भी फेलियर्स बहुत आए, कई डिफिकल्टीज भी आई, लेकिन मैंने हर चैलेंज को एक लेसन की तरह लिया और उससे कुछ नया सीखा। आज भी मैं ये मानती हूँ कि किसी भी वुमन को एम्पावर करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है उसे नॉलेज, स्किल्स और अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज देना।
0: जी बिल्कुल, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि जब इस तरह की संवैधानिक पोस्ट पर, सर्वोच्च पद पर एक महिला पहुँचती है, ये देश की जो युवा बेटियां हैं, जो बेटियां आपको सुन रही हैं, आपको क्या लगता है उनके मनोविज्ञान पर, उनका जो आत्मविश्वास है, उसको कैसे प्रभावित करता है?
1: संतोष जी, बहुत गहराई से प्रभावित करती है, क्योंकि जब एक लड़की देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर किसी महिला को देखती है, उसके मन में सबसे पहला जो संदेश जाता है वह आता है कि अगर वह कर सकती हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। तो लीडरशिप की सबसे बड़ी ताकत भी तो यही है कि वो सिर्फ वर्तमान को नहीं बदलती, बल्कि अगली पीढ़ी की कल्पना को भी बदल देती है। तो आज की युवा बेटी अपने लिए बड़े सपने देखने लगी है। वो यह नहीं पूछती क्या मैं यह कर सकती हूँ, बल्कि वो पूछती है कि इतना बड़ा करने के लिए मुझे क्या सीखना होगा। और यही जो आत्मविश्वास है, नए भारत की सबसे बड़ी पूंजी है। जब एक यंग गर्ल देश के हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर किसी वुमन को देखती है, तो उसके मन में सबसे पहला थॉट आता है, अगर वह कर सकती हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। तो मेरे विचार से लीडरशिप की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह सिर्फ आज को नहीं, बल्कि आने वाली जनरेशन के ड्रीम्स और उनके सोच को भी बदल देती
0: है। नीतू जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है नारीवाद, जिसपे की कई तरह की विसंगतियां, भ्रांतियां भी तरह तरह से सामने देखने को आती हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, समाज में देखा जाए तो पुरुष और जो नारी है वो आपस में विरोधी नहीं है, बल्कि सहयोगी है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसे ही शायद वास्तविक नारीवाद कहा भी जाना चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपकी नजर में वास्तविक नारीवाद क्या है, क्या मायने, आप कैसे देखती हैं, पुरुष और स्त्री आपस में विरोधी हैं या एक दूसरे के सहयोगी हैं?
1: संतोष जी, ये सवाल मेरे बहुत दिल के करीब है, मैं इस पर सोचती भी हूँ, इसलिए मेरा विचार जो है मैं व्यक्त करना चाहूंगी। मैं नारी सशक्तिकरण को पुरुषों के विरोध के रूप में बिल्कुल नहीं देखती। मेरे लिए इसका अर्थ है महिलाओं को समान अधिकार, समान अवसर, सम्मान और अपनी पहचान बनाने की स्वतंत्रता मिले। पुरुष और महिला एक दूसरे के विरोधी बिल्कुल नहीं है, बल्कि वे एक दूसरे के सहयोगी भी हैं और समाज के साझेदार हैं। मेरे लिए सच्चा नारी सशक्तिकरण, वुमन एम्पावरमेंट, वही है जहाँ पर महिला को अपने फैसले लेने की आजादी है और पुरुष उसके उस फैसले में उसके साथ खड़ा हो। क्योंकि जब पुरुष और महिला मिलकर आगे बढ़ते हैं तो परिवार मजबूत होता है, परिवार मजबूत होता है, एक अच्छे समाज का निर्माण होता है और फिर राष्ट्र मजबूत बनता है।
0: तो उन युवा श्रोताओं के लिए, विशेषकर आज महिला समानता दिवस पर, विशेषकर उन युवतियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो हमें सुन रही हैं?
1: सबसे पहला मैसेज ये है कि अपने सपनों को छोटा मत कीजिएगा। आपकी शुरुआत चाहे जितनी भी छोटी

0: आपकी दिशा और आपका डिटर्मिनेशन आपकी मंजिल तय कर सकते। दूसरी बात कि स्किल को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाइए। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, टेक्नोलॉजी हो, एआई हो, एंटरप्रेन्योरशिप और ग्लोबल कंपटीशन के इस दौर में लगातार सीखते रहना सबसे जरूरी है। तीसरी बात यह है कि सफलता को केवल अपने लिए मत देखिए। जब आप आगे बढ़ें, अपने साथ कम से कम कुछ और लोगों को भी आगे बढ़ाइए। तो अपने सपनों पर विश्वास रखिए, मेहनत कीजिए, असफलताओं से सीखिए और अपने चरित्र तथा मूल्यों से कभी समझौता मत कीजिए।
1: नीतू जी, महिला समानता दिवस के अवसर पर आकाशवाणी स्टूडियो आने के लिए, आपके बहुमूल्य विचार साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपको भी धन्यवाद। जय हिंद।

0: वर्तते। अद्यनवदिल्ल्याम् एकं वार्ताहर सम्मेलनं सम्बोधयन्ती बांसुरी स्वराजः अवदत् यत् केन्द्रसर्वकारेण महिलानां सशक्तिकरणस्य उद्देश्येन लोकसभायां नारीशक्तिवन्दनाधिनियमः समुपस्थापितः। सा आरोपितवती यत् कांग्रेसदलेन अस्य विधेयकस्य विरोधः कृतः, सदने च अस्य अनुमोदनमार्गे विघ्नः उत्पादितः। हजरत पैगम्बर मोहम्मद वर्यस्य पावन जन्मजयन्ती ईद ए मिलाद उन नबी अद्य समग्रे राष्ट्रे महता धार्मिक उल्लासेन समारभ्यते। अस्मिन् पर्वणि तस्य दिव्य सन्देशान् विचारयितुं विविधगोष्ठ्यः शोभायात्राश्च अनुष्ठीयन्ते। कोलम्बोनगरे द्वितीयान्तिमनिकषद्वन्द्वे भारतं विरुध्य फॉलो ऑन इत्यस्यानन्तरं चतुर्थदिनस्य क्रीडाविरामपर्यन्तं श्रीलंकादलेन द्वितीयपर्याये षट्क्रीडकानां हानौ एकोनत्रिंशदधिकद्विशतं धावनांकाः सम्पादिताः इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का हिंदी प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: कार्यक्रम ग्राम संसार सुनने वाले हमारे सभी भाइयों बहनों को राम
1: राम
0: राम।
1: राम
0: तो अश्विनी भाई,
1: जी प्रीति,
0: कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं। और क्योंकि हमारा देश जो है वो त्योहारों का देश है, और हमेशा हर तीसरे महीने में कोई ना कोई ऐसा बड़ा त्योहार आ जाता है जिसमें हम मगन हो जाते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो
1: जी,
0: ऐसे ही आज भी है ओणम, जो है केरल का बहुत ही प्रमुख पारंपरिक त्यौहार है। और कहते हैं कि ये मुख्य रूप से राजा महाबली के स्वागत और उनकी स्मृति में मनाया जाता है ना। और ये भी मान्यता है कि महाबली वर्ष में एक बार अपनी प्रजा से मिलने के लिए केरल आते हैं।
1: जी। और देखिए ना, सबसे इसका जो ओणम का जो सामाजिक संदेश है ना प्रीति, वो है कि जैसे आपने बताया कि राजा बलि से ये एक समाज की कल्पना देती है जहाँ समानता, न्याय, प्रेम और खुशहाली का संदेश देता है। ओणम हमें याद दिलाता है प्रीति कि असली जो समृद्धि केवल धन दौलत से नहीं होती, असली जो मान सम्मान है जब मिलता है, जब कोई भूखा ना सोए, किसान खुशहाल हो,
0: बिल्कुल
1: परिवार में प्रेम हो, समाज में भाईचारा हो, प्रकृति की सुरक्षा सुरक्षा हो। ये एक संदेश ऐसा है ओनम, उसमें आता है कि हम सभी कोई ना कोई त्यौहार हर एक ऐसा संदेश जरूर छोड़ता है अपने अंदर कि हम आपस में प्रेम करें, भाईचारा रहे हम हमारे इसमें। तभी तो कहीं ना कहीं आप अगर हम छोटे स्तर पर बात करें तो तभी तो गांव से लेकर शहरों तक अगर हम बात करें तो अगर जब हम गांव का विकास करेंगे धीरे धीरे करके, तभी तो शहर शहर का विकास होगा,
0: जी
1: और शहरों का विकास अगर होगा तो कहीं ना कहीं पूरे देश का विकास, आप वो
0: बिल्कुल
1: कहीं
0: होगा।
1: रात चौगनी और दिन चौगनी ऐसे बोलते हैं ना, वैसा ही देश हमारा आगे की तरफ बढ़ेगा।
0: और कहते हैं कि ये 10 दिनों तक मनाया जाता है,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि 10 दिन तक मिलने आते हैं अपनी प्रजा से।
1: जी,
0: और इसमें लोग इतना खुश होते हैं कि वो अपने घरों को सजाते हैं, रंगोली बनाते हैं, और जैसा कि आपने कहा कि आपसी भाईचारा बना रहे, यही इसका संदेश है। समृद्धि और खुशहाली का पर्व इसे कहते हैं।
1: बिल्कुल
0: और ऐसा ही एक और दिन है आज, जो खास है, ईद मिलाद, यानी कि मिलाद उन नबी पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्म की स्मृति में मनाया जाता है, जो कि आज है। और इसे इस्लामी कैलेंडर के रबी अल अव्वल महीने में मनाया जाता है।
1: जी
0: उनके जीवन, यानी पैगंबर मोहम्मद के जीवन, उनके संदेश और शिक्षाओं को आज के दिन याद किया जाता है। और मस्जिदों में, घरों में धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। और इस दिन शांति, दया, भाईचारे और जितने भी ज़रूरतमंद हैं
1: जी
0: उनकी मदद करने का भी संदेश इसमें शामिल है।
1: बिल्कुल। लेकिन और कहीं ना कहीं आ, आ, आ, सच्चाई भी है कि हम सच्चाई का साथ दें, जरूरतमंदों की मदद करें, दूसरों का सम्मान और ध्यान रखें, नफरत और अफवाहों से दूर रहें, और अपने देश में प्रेम और शांति, भाईचारे और सद्भाव का मजबूत

0: करें, यही एक संदेश यहाँ पर हमें देखने को मिलता है।
1: और एक और शख्सियत हैं जिन्हें हम बड़े ही आदर और सम्मान के साथ याद करते हैं, वो हैं मदर टेरेसा, जो मानव सेवा और गरीबों की मदद के लिए दुनिया भर में जानी जाती हैं।
0: बिल्कुल
1: और आज उनका जन्म दिवस है, और कहते हैं कि उन्होंने गरीबों को गले से लगाया, उनकी बीमारियों को न सिर्फ ठीक किया बल्कि एक कहते हैं ना समाज में
0: जी
1: एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया कि लोगों की मदद करना सबसे कहते हैं बहुत ही अच्छी बात है कि आप किसी की मदद कर रहे हैं।
0: जी
1: और उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। 1962 में उनको पद्मश्री और 1980 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था उनको।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और उनका जीवन हमें एक बहुत सरल सरल है लेकिन गहरा संदेश देता है। मानवता की सेवा के लिए बहुत धन नहीं चाहिए बल्कि स्वदयशीलता, हृदय, मदद करने की इच्छा, आपका इच्छा होनी चाहिए। जैसे प्रीति बहन लगातार आपको बता रही हैं कि अगर आपके अंदर वो भावना है लोगों की मदद मदद करने की, तो मुझे लगता है धन सेकेंडरी चीज़ है कि धन का बाद में
1: नाम आता
0: नाम
1: है
0: आता है। पहले आपकी इच्छा इच्छा शक्ति का ध्यान हमें सबसे पहले आता है कि अगर मुझे कुछ करना है दूसरों के लिए तो मेरी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, फिर कहीं ध्यान ध्यान जाता है धन की तरफ। क्यों? क्योंकि उनके उत्थान के लिए आपको धन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे ऐसे जो हमारी मदर टेरेसा मैडम हैं, उनको बहुत सारी जयंती पर मानव सेवा संदेश के लिए जाना जाता है। तो यही उनकी एक सबसे बड़ी उपलब्धि रही।
1: और उनकी उपलब्धि को हम आज भी याद करते हैं और
0: बिल्कुल
1: उनके जीवन को हम आज भी अपने साथ लेकर चलते हैं। उनकी सिखाई हुई सीख को अगर हम अमल में लाते हैं तो जाहिर तौर पर एक अच्छे समाज का हम निर्माण कर पाएंगे। तो
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: इसी के साथ अब हम सुनवाते हैं अपने साथियों को महाभारत के किस्से से, राजेश कुमार अट्टा की आवाज़ में, माफ़ कीजिएगा, रामायण के किस्से से, ये राजेश कुमार के अट्टा के आवाज़ में ये रागिनी।

0: तो अभी आप सुना राजेश कुमार रट्टा की आवाज़ में ये रागनी और किसा रहा
1: रामायण से।
0: रामायण से। जी
1: और अब हम सुनवाते हैं बातचीत। जैसा कि हमारे कार्यक्रम में कहा जाता है कि हम जानकारी दिलवाते हैं, तो
0: जी
1: ऐसी ही एक जानकारी है पर्यावरण संरक्षण विषय पर। आकाश वशिष्ठ से कमल किशोर बातचीत कर रहे हैं, आइए जानते हैं कि क्या है खास इसमें।
0: जी आप सभी साथियों को कमल किशोर का नमस्कार। साथियों, पर्यावरण का जिक्र

0: होते ही हरे भरे खेत, पर्वत, पहाड़, स्वच्छ हवा, पानी, इन सब का ख्याल आ जाता है। मगर शहरों का ख्याल करते ही वायु, जल, ध्वनि, ये कई प्रकार के प्रदूषण हमारे जहन में कौंच जाते हैं, क्योंकि पर्यावरण हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा आधार है। स्वच्छ हवा, निर्मल जल, उपजाऊ मिट्टी, वन और जैव विविधता, ये सभी इंसान के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन बढ़ता प्रदूषण, प्लास्टिक का कचरा, वनों की कटाई, अंधाधुंध कटाई, जल संकट, जलवायु परिवर्तन, आज पूरी दुनिया के सामने एक चुनौती बनकर उभरा है। पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार या संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि आम नागरिक की भी जिम्मेदारी है। हमारे छोटे छोटे प्रयास मिलकर हम काफी बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं। आज हम इन्हीं विषयों पर, यानी कि आम आदमी किस प्रकार पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी हो सकती है, इस विषय पर आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आकाश वशिष्ठ जी, आप एनवायरमेंटलिस्ट और एक लॉयर हैं। हम आपका स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, एक आम नागरिक की क्या जिम्मेदारी बनती है, संवैधानिक जिम्मेदारी क्या है पर्यावरण संरक्षण के प्रति?
1: कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में आर्टिकल 51 क्लॉज ए जी है, जो ये कहता है कि हर एक सिटीजन पे ड्यूटी कास्ट की हुई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नेचुरल जो एनवायरनमेंट है उसको इम्प्रूव करने का, इम्प्रूव करे, प्रोटेक्ट करे, जिसमें सारे लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एटसेट्रा सब कुछ है, और जितने भी जीव हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्रिएचर्स के प्रति वो कंपैशनेट रहे, उसके मन में करुणा रहे। ये आर्टिकल 51 ए जी में स्पेसिफिक ड्यूटी कास्ट की गई है, फंडामेंटल ड्यूटीज के,
0: जो जीव जंतु है उनके प्रति एक संवेदना होनी चाहिए, एक दया भाव होनी चाहिए। एक बहुत बड़ा विषय है पर्यावरण की बात के, पर्यावरण में जैव विविधता की बात होती है, पेड़ पौधे भी हैं, जीव जंतु भी हैं, प्लांटेशन कुछ कम हुए हैं, हो रहे हैं, या फिर वनों की अंधाधुंध कटाई होती है, इसके विषय में क्या कहेंगे आप?
1: बिल्कुल, ये बात सही है कि बहुत बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई, जंगलों के अंदर और इवन जंगलों के बाहर, शहरों में भी और गांव में भी, हर जगह अलग अलग कारणों की वजह से जंगलों की कटाई जारी है। ये बहुत चिंताजनक विषय है। जो सबसे बड़ा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, जो कार्बन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, वो वृक्ष करते हैं अपने अंदर। आजकल के मौसम में आप देख रहे हैं, कहीं कहीं बारिश का जो है कहीं पे कम है, कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे बहुत ज्यादा है, बाढ़ आ रही है और कहीं पे बारिश बहुत कम है। जब बादलों का जो फॉर्मेशन होता है, क्लाउड फॉर्मेशन, अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे, ट्रीज नहीं रहेंगे, जंगल कम होंगे, फॉरेस्ट कम होंगे, तो वो जो क्लाउड फॉर्मेशन है वो बहुत कम हो जाएगा और प्रेसिपिटेशन अपने आप में कम हो जाएगा। ये डायरेक्ट उसका कॉन्सिक्वेंस है। ये बिल्कुल बहुत चिंताजनक विषय है कि वृक्षों कटाई है, उससे होने वाले जितना जो तापमान बढ़ रहा है, हीट वेव, आज 12 में से करीब 7-8 महीने तक हीट वेव के प्रभाव प्रकोप जारी रहता है।
0: प्लांटेशन की जब भी बात होती है और जब कहा जाता है कि विकास की बात हो रही है, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, कंक्रीट के जंगल बढ़ रहे हैं और कहा जाता है कि विकास हो रहा है, तो इसमें एक आम व्यक्ति किस प्रकार से अपनी जिम्मेदारी को, अपनी ड्यूटीज को पूरी कर सकता है?
1: पहले मैं ये कहूंगा कि जो एक जिम्मेवार नागरिक की तरह हर एक नागरिक को अधिक से अधिक जितना भी वो कर सकता है, ग्रीनरी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वो जो भी इतना पेड़ लगा सकता है, और अगर उसके पास आसपास जगह नहीं है तो कम से कम एक या दो या तीन या चार वृक्षों की कम से कम वो जिम्मेवारी ले, या अगर कोई और भी कर रहा है तो उसको सपोर्ट करे जब तक वो वृक्ष बड़ा नहीं हो पाता। हम आप देखिए कि हमारे इतने अपने खर्चे होते हैं, लेकिन हम एक वृक्ष के लिए एक उसका मिनिमम 2 से 3 साल तक, जब तक वो पौधा होता है, हम उसकी पानी का हम उसके कम से कम मेंटेन कर सकते, हम उसको फंड कर सकते हैं, या ट्री गार्ड्स के माध्यम से उसकी सुरक्षा करवा सकते हैं। ये चीज है। और अपने टेरेस वगैरह पे जहां आसपास है हम खूब प्लांट्स लगा सकते हैं। और मैं ये भी कहूंगा, शहरों में या कहीं और भी अगर अवैध कटान कहीं पे हो रहा है, तो हम जिम्मेदार नागरिक की तरह उस पता करें कि ये लीगल हुआ, इलीगल हुआ। अगर वो अवैध रूप से कटा है वृक्ष, तो उसकी संबंधित विभागों में उसकी शिकायत करनी चाहिए।
0: जी, अगर कोई लीगली भी अगर कोई पेड़ की कटाई करता है, अगर किसी ने एक पेड़ की कटाई की है, लीगली भी किया है, तो उसको एक पेड़ कम से कम लगा देनी चाहिए, जिससे कि जो पेड़ की जो कमी है वो कमी पूरी की जा सके।
1: मैं सबसे अच्छा उदाहरण दूंगा कि एक पेड़ माँ के नाम का जो प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है, ये एक बहुत बड़ा है, और मास्क से हमारा जुड़ाव होता है, ऐसे ही हम वृक्ष से, जैसे हमारा एक इमोशनल अटैचमेंट होता है।
0: ये भी हो सकता है, कई बार क्या देखा जाता है कि लोग गिफ्ट देते हैं जन्मदिन पर, शादी विवाह के एनिवर्सरी पर गिफ्ट देते हैं, अगर उसकी जगह पर एक पौधा गिफ्ट दिया जाए, उनके नाम पे जन्मदिन के अवसर पर एक पौधा लगा दिया जाए, तो एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है।
1: बड़ा अच्छा उदाहरण है। किसी न किसी मेडिसिनल चीज का इस्तेमाल होता है, जैसे चाहे वो तुलसी हो, चाहे एलोवेरा हो, ऐसे बहुत सारी हर्ब्स हैं जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जो हम अपने फ्लावर पॉट्स में या गमलों में हम उगा सकते हैं। अगर आपका घर है तो सामने, अगर रोड के आसपास कहीं जगह है तो वहां पे भी आप लगा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि एक आने वाले टाइम में शहरों में एक कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में एक नया उद्योग खड़ा होगा, और ये बहुत अनोखा कॉन्सेप्ट है कि आपको

0: केवल वो हर्ब्स हरिद्वार में या पहाड़ों पे या हिमाचल प्रदेश में नहीं मिल रही, वो आप आसपास लगाएंगे, एक लोकलाइज्ड कॉटेज इंडस्ट्री खड़ी होगी, एक वहां की जो लोकल बायोडाइवर्सिटी है, जैविक विविधता है, वो संरक्षित रहेगी।
1: जी, आजकल देखा जा रहा है कि प्लास्टिक का कचरा जो है वो पर्यावरण के संरक्षण में बहुत बड़ी बाधा बन रही है। नदी नालों की बात करें, शहरों में गलियों की बात करें, कहीं पर भी प्लास्टिक का कचरा बहुत ज्यादा फैलने लगा है। तो इसको कम करने के लिए एक आम नागरिक क्या कर सकता है?
0: हर एक अच्छा कार्य हम घर से शुरुआत होती है, तो हम घर से ही कोशिश करें, अधिक से अधिक ये प्रयास हमारा ये हो, घर पे ही सेग्रीगेशन एट सोर्स, जो बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल है हम उसी को अलग करें, और जो घरों में शहरों में ज्यादातर कलेक्शन का मैकेनिज्म है, एक प्रणाली है, गाड़ी आती है तो हम सेग्रीगेटेड वेस्ट ही उसमें डालें। तो इस तरीके से अगर हम सेग्रीगेशन करते हैं तो एक बहुत जो कॉन्सिक्वेंस है, जो फुटप्रिंट है वो बचेगा। तो मैं समझता हूँ कि अवेयरनेस यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हम कहीं भी जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हमने अपना कूड़ा वहां डाल दिया, अब नगर निगमों की या निकायों की जिम्मेदारी है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें जिम्मेदार नागरिक की तरह हम अपनी भूमिका निभानी चाहिए कि हम कम से कम वेस्ट जनरेट करें, जो प्रॉपर डस्टबिन है या जहां पे उनका कलेक्शन प्रणाली है हम वहीं पे वो वेस्ट डालें।
1: हम सभी जानते हैं कि मानव सभ्यता का विकास जो हुआ है नदी घाटियों में ही हुआ है, सिंधु घाटी की सभ्यता। बहुत सारी ऐसी सभ्यताएं हैं जो कि मानव सभ्यता का विकास हुआ है। ये भी देखा गया है कि नदियों किनारे जो शहर बसे हैं वो नदियां काफी ज्यादा प्रदूषित हो चुकी हैं। उन नदियों को संरक्षित करने के लिए, जल प्रदूषण को खत्म करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं?
0: आप देखेंगे कि नदियां जिन जिन शहरों से भी पास होती थीं, तो कम से कम वो नदियां गुजर रही थीं शहरों से, शहर उस पे बसे हुए थे, शिक्षित थे, उनको इस चीज का एहसास था। अब इतने अवैध निर्माण बन गए हैं तो ये जो अतिक्रमण है सबसे पहले हमें ये रोकने पड़ेंगे।
1: ये भी अनुभव किया है कि जहां पर जलप्रपात है, फॉल्स हैं, वहां पर भी एनक्रोचमेंट बहुत ज्यादा होने लगा है।
0: देखिए, जल के स्रोत जो पहाड़ों की बात करते हैं, तो जो जितने एक्वीफायर्स हैं वो एक्वीफायर्स अगर आप या स्प्रिंग्स हैं या जितने गार्ड गडेरे हैं आप उनको ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे, वहां इंक्रोच कर देंगे, तो वो स्प्रिंग, क्योंकि वही वहां का पानी का जल का स्रोत है, अगर वो
1: जी
0: खत्म हो जाएंगे तो कहीं कोई जल का ना प्रवाह हो सकेगा, और उद्गम आप रोक देंगे उसको तो वो स्प्रिंग हमेशा हमेशा के लिए डेड हो जाता है, और ये बहुत चिंताजनक विषय है।
1: आकाश जी, पर्यावरण संरक्षण की बात होती है, प्रदूषण की बात होती है, तो जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण की बात जरूर होती है। यहाँ पर वायु प्रदूषण को लेकर के एक आम नागरिक की भूमिका क्या हो सकती है?
0: सबसे बड़ी बात तो मैंने कहा कि जितना अधिक से अधिक एग्रो फॉरेस्ट्री, एक है एग्रो फॉरेस्ट्री प्रमोट हो, जो विंड्स की, जो हवाओं की डायरेक्शन है वो करीब करीब, चाहे वो वेस्टर्ली हो, वेस्ट से ईस्ट की तरफ हो या ईस्टर्लीज हो, ईस्ट से वेस्ट हो, जितने एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं, एग्रीकल्चरल फील्ड्स ही एक एक फॉरेस्ट की तरह काम करेंगे, कार्बन सिंक होगा, हवा में जो पॉल्यूटेंट्स होंगे तो वो सारा का सारा उसको एब्जॉर्ब करेंगी, एयर का प्यूरिफिकेशन बहुत अच्छी तरीके से हो सकेगा।
1: किस प्रकार इसे रोका जा सके? कई जगह पराली जलाने की समस्या आती है जिसकी वजह से प्रदूषण की मात्रा बढ़ती चली जाती है हवाओं के जरिए।
0: पराली का एक बड़ा फैक्टर माना गया है, खासकर दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण में, क्योंकि किसानों को ये समझने की जरूरत है कि जो पराली है वो पराली एक उनके लिए एग्रीकल्चरल बेनिफिट है, वो अपने उसमें दोबारा से मिट्टी में मिला के अपनी मिट्टी को ठीक कर सकते हैं, और उससे जो होने वाला, आप समझिए कि मीथेन का जो जनरेशन होता है वो मीथेन का वार्मिंग पोटेंशियल 21 गुना होता है कार्बन डाइऑक्साइड से। सारी जब आपकी गैसेस, मैं समझता हूँ कि जो PM 2.5 की हम बात करते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में वो कम हो जाएगा। इस तरीके से पराली का एक फैक्टर है, एग्रो फॉरेस्ट्री मैंने जैसा बताया था बहुत एक प्रभावी तरीका है। शहरों की तरफ आप देखेंगे तो हर कार पूलिंग यूज होनी चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अधिक से अधिक इस्तेमाल हो।
1: हमारी जो जीवन शैली है उसको लेकर के भी पर्यावरण पर जरूर असर होता है, तो किस प्रकार की जीवन शैली अपनानी चाहिए पर्यावरण के संरक्षण में?
0: पॉलिथिन का कम से कम उपयोग करें, वाटर कंजर्वेशन जितना भी हम हो सकता है हार्वेस्टिंग सिस्टम से जहां तक हो सकता है हम इंस्टॉल करनी चाहिए सभी हाउसिंग सोसाइटीज को, सभी इंडिविजुअल यूनिट्स को भी, और जो वेस्टेज है पानी का, पीने के पानी का जो वेस्टेज है, मिसयूज है, हमें वो अवॉइड करनी चाहिए। एक रिसाइकिल रियूज का हमें पद्धति जो वो हमें एडॉप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि रिसाइकिल रियूज, अगर हम फ्रेश पानी, अगर हम जो रोड साइड का भी प्लांटेशन है अगर हम उसको ट्रीटेड वाटर से यूज करेंगे तो हम समझते हैं कि जो पानी है वो भारी मात्रा में रुकेगा। लॉ का पालन करते हुए, कानून कंप्लायंस करते हुए ये सब पद्धतियां हमें अपनानी चाहिए, और जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है ज्यादा से ज्यादा हम उसको इस्तेमाल करें, हम केमिकल से कोशिश करें कि दूर रहें, घर में ही कंपोस्ट बनाने की कोशिश करें,
1: यानी कि हम
0: यूज
1: ये कह
0: करें।
1: सकते हैं कि मिट्टी के प्रदूषण को भी हमें ध्यान में रखना होगा, जिससे कि पेड़ पौधे अच्छी तरह से उग सके, बड़े हो सके, और ये बड़े होकर के हमारे पर्यावरण संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: हम कम से कम पानी यूज करें, थोड़ा जरूरत है कि हम बच्चों को भी ले जाके दिखाएं नदियां ऐसी हैं हमारी,
1: उनको बताया जाए कि ये किस प्रकार से प्रदूषित हो रही है, उनको किस प्रकार से बचाया जा सकता है।
0: बिल्कुल।
1: साथियों,

0: पर्यावरण संरक्षण किसी एक दिन, किसी एक विशेष दिन, एक अभियान तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। ये हमारी दैनिक जीवन शैली, सामाजिक जिम्मेदारी का हिस्सा बनना चाहिए। आकाश वशिष्ठ जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और अपने विचार साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने सुना पर्यावरण संरक्षण विषय पर आकाश वशिष्ठ से कमल किशोर की बातचीत। देखिए, कमल किशोर ने बहुत बेहतरीन से सवाल पूछे जो इस विषय पर पूछे जाने चाहिए थे। उन्होंने उन्होंने वो हर जो जहन में या मेरे और मेरे या प्रीति के जहन में आने चाहिए सारे के सारे वो सवालों की जड़ी लगाकर पर्यावरण संरक्षण विषय पर बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब से दिलवाई। और हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि जब उन्होंने बोला कि घर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, अपनी जिम्मेदारियाँ समझनी होगी, कूड़ा एक एक जगह पर डालना ही होगा, साफ़ सफाई का ध्यान रखना ही होगा, हर जब वो बारीक उस पर ध्यान दिलाते हुए कमल किशोर जी ने इसको पूछा है और बहुत अच्छी जानकारी आकाश वशिष्ठ जी ने दी है। और कार्यक्रम हमारा हम और आगे बढ़ाते हैं और हम एक और जो
2: रागनी सुनवाते हैं जयवीर भाटी से, और किस्सा रहेगा महाभारत से।
1: जी।

0: तो अभी आपने जयवीर भाटी से सुनी ये रागनी, किस्सा था महाभारत से। और इसी के साथ कार्यक्रम ग्राम संसार यहीं संपन्न होता है। सुनने वाले हमारे सभी साथियों को राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर शाम के 7 बजने को है। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। नेपाल तिब्बत सीमा के पास रसुआ क्षेत्र में आज सुबह भोटे कोशी नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण 384 पर्यटक लापता हैं। इनमें 105 भारतीय शामिल हैं। लापता लोगों में 291 विदेशी नागरिक और 93 नेपाली नागरिक हैं। इनमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड के नागरिक भी शामिल हैं। ये शुरुआती आंकड़े हैं और अभी इनका सत्यापन किया जा रहा है। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। बाढ़ के कारण अब तक 22 लोगों के मारे जाने की खबर है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार भूकंप के कारण हिमस्खलन हुआ, इसमें पिघली हुई बर्फ का पानी कोशी नदी में आ गया और अचानक बाढ़ आ गई। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। लोग हेल्पलाइन नंबर 9779851316807 और 9779701075000 पर संपर्क कर सकते हैं। दूतावास ने बताया कि वह बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारत नेपाल को जल्द से जल्द राहत सामग्री भेजने की तैयारी कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस कठिन समय में भारत के लोगों की संवेदनाएं नेपाल के लोगों के साथ हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। नेपाल में ग्लेशियर फटने से बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। गंडक नदी से लगे 6 जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष निगरानी रखी जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिमी चंपारण के बगहा और वैशाली के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। गंडक नदी में पानी बढ़ने की आशंका को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की एक टीम गोपालगंज और बेतिया में तैनात की गई है। साथ ही एक अन्य टीम को मुजफ्फरपुर में तैयार रखा गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है।
1: उस पर हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूँ। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी बाल्मीकिनगर जाऊंगा।
0: इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृह मंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को तैनात किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रथम 2500

पर 229 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही श्रीलंका ने 16 रन की बढ़त बना ली है। श्रीलंका की पहली पारी में 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारतीय टीम श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़। शाम के 7:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले हमारे सभी भाइयों बहनों को राम
1: राम
0: राम।
1: राम
0: जो हमारे किसान भाई हैं
1: जी।
0: वो कार्यक्रम सुनने के लिए बैठे होते हैं और उन्हें इस कार्यक्रम में हम उपदेश सुनवाते हैं, भजन सुनवाते हैं और साथ में देते हैं जानकारी। तो इस कार्यक्रम का उन्हें बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतजार रहता है।
1: बिल्कुल
0: क्यों अश्विनी भाई?
1: बिल्कुल
0: और आज भी ऐसा ही है कि हम जानकारी भी लेकर आए हैं, साथ में मनोरंजन भी लेकर आए हैं।
1: जी।
0: और क्योंकि बरसात का समय है और जो हमारा पशुधन है उसकी तरफ हमारे किसान भाई बहुत ध्यान देते हैं। वैसे तो वो बहुत बुद्धिमान हैं, उन्हें पता होता है कि उनके जो पशुधन है उनको कैसे रखें कि उनको बीमारी ना हो। लेकिन फिर भी हम कुछ बातें ऐसी हैं जो हम बताना चाहते हैं, जैसे कि अगर जहाँ पर हमारा पशुधन होता है वहाँ पर पानी की जो निकासी है उसका रास्ता बना के रखें जिससे कि वहाँ पानी ना इकट्ठा हो, क्योंकि अगर पानी इकट्ठा होगा तो वहाँ फिर मच्छर भी होंगे और उनसे जो छोटे मोटे कीटाणु होते हैं उनसे हमारे जो पशु हैं वो बीमार पड़ जाते हैं।
1: जी
0: और जब वो बीमार पड़ते हैं तो फिर उसका जो नुकसान होता है वो हमारा किसान ही उठाता है। तो बेहतर यही है कि उनका ध्यान रखें, और अगर मच्छर हैं भी तो नीम की पत्तियां जला करके जो धुआं करते हैं उससे भी उन्हें राहत मिलती है। और बारिश का टाइम है तो जहाँ पर भी वो हैं उनकी जो छत है, शेड है और साथ में जैसे बोरी के जो पर्दे लगे होते हैं उनका भी ध्यान रखें कि उन्हें धूप लग जाए, क्योंकि अगर कभी धूप लगेगी तो उनमें जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं वो चले जाते हैं। तो ऐसे आप अपने पशुओं का ध्यान रख सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल प्रीति बहन, आपने बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं। कुछ बातें मैं भी जोड़ना चाहता हूँ यहाँ पे कि देखिए, लगातार बारिश का मौसम चल ही रहा है, हम देख ही रहे हैं। और किसानी खेती के साथ साथ हमारे पशुधन भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितनी हमारी खेती महत्वपूर्ण है।
0: जी
1: और हमारी गाय भैंस हैं, बकरी हैं, हमारी मुर्गी पालन है, हमारा ऐसे जो जितने भी हमारे ये जो जानवर हैं। और इस मौसम में देखिए, कभी कभी जानवर क्या है, खासकर पानी का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ताज़ा पानी पिलाना है। कई बार क्या होता है कि रखा हुआ पानी पशु नहीं पी पाता है, और वो उसके लिए आप उसका पानी का इंतज़ाम ज़रूर रखें, और खान पान का ज़रूर ध्यान रखें। जहाँ पर चारा और ये आप डालते हैं वहाँ पर रोज़ाना उसकी साफ़ सफ़ाई होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि लगातार इन सब सब चीज़ों को डालने से वहाँ पर थोड़ी स्मेल आने लग जाती है, जीवाणु पैदा हो जाते हैं। उन उसका जो जो यहाँ पर खान पान आप डाल रहे हैं उसका भी निरंतर अगर आप साफ़ सफ़ाई रखेंगे तो आपको ही भविष्य में फ़ायदा होने वाला, क्योंकि आपका पशु बीमार नहीं होगा तो आपका खर्चा नहीं होगा, खर्चा नहीं होगा तो आपको आपको जो लाभ मिल रहा है पशु से वो लगातार बढ़ता चला जाएगा और लाभ लाभ मिलेगा। और जहाँ पर आपने पशुओं को बांधा हुआ है वहाँ पर आप जैसे पशु पेशाब कर देता है या कुछ और, तो लगातार उनमें दिन में 2 बार वहाँ उस जगह को साफ करना है लगातार। आपको जैसे प्रीति ने बताया है कि वो वहाँ पर नमी पैदा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अगर नहीं नमी पैदा होगी तो वहाँ पर खुरपका का रोग होने की संभावना वहाँ पर बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ पर जीवाणु पनपेंगे। और फिर वहीं पर वो बात आती है कि फिर आपका खर्चा बढ़ेगा, क्योंकि डॉक्टर को आप बुलाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका खर्चा ज़रूर बढ़ेगा। तो छोटी छोटी बातें हैं जो जानवरों को लेकर आपको सचेत रहना चाहिए, हरदम सीधे रहना चाहिए। और जिस कोटरी में आप जानवरों को बांध रहे हैं, रोशनदान से हवा का जो हेर फेर है वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर बारिश हो रही है या कुछ और हो रहा है तो वहाँ पर थोड़ी देर के लिए अगर पूरी बोरी या कुछ और आपने आपने बांध सकते हैं, लेकिन बारिश होने के बाद वो उन सब चीज़ों को हटा दें जिससे जानवर के तक वो स्वच्छ हवा पहुँचे। और एक बात यहाँ पर प्रीति मैं और जोड़ना चाहूँगा यहाँ पर
0: जी
1: कि जहाँ पर आप बांधते हैं वहाँ पर आप देखिए, वहाँ पर कीचड़ वीचड़ भी पैदा हो जाते हैं कई बार, वो बहुत सारी समस्या देखी देखी जाती है इस बरसाती मौसम के अंदर वहाँ पर।

0: पर आप बांध रहे हैं, कमरे के अंदर बांध रहे हैं, तो वहाँ पर छोटे छोटे छेद हैं, तो वहाँ पर सीमेंटेड करके समतल बना दें, जहाँ पर छोटे छोटे जो छेद हैं वो बंद हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं पशु इस जो चिचड़ी विचड़ी से की समस्या से दूर निजात मिलेगी, और पशु आपका स्वास्थ्य दिखेगा, स्वस्थ दिखेगा, तो आप उत्पादन उसका अच्छा होगा, और कहीं ना कहीं आपको खेती के साथ साथ उत्पादन अधिक मिलेगा, तो आप किसान मजबूत होगा। जैसे माननीय प्रधानमंत्री साहब भी कहते हैं कि आय कैसे बढ़ा सकते हैं, तो ये भी एक सोर्स है कि आय को बढ़ाना, कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करना, या कुछ और भी अगर आप कुछ और धंधा करना चाहते हैं, तो ये सब चीज़, क्योंकि आधी चीज़ें तो हमें खेती से मिल जाती हैं। प्रीति
1: जी
0: बहन,
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, ये तो रही जानकारी हमारा पशुधन कैसे हम उनका ध्यान रखें। अब हम जानकारी देंगे कृषि विद्यालयों के कुलपतियों का 36वां सम्मेलन जिसका आयोजन हुआ था। इसका विषय रहा विकसित भारत एट द रेट 2047 के लिए कृषि उच्च शिक्षा की पुनर्कल्पना। इस पर हमारे माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने कुछ मुख्य बातें कही हैं। आइए जानते हैं कि उनका मुख्य संदेश क्या है।
2: ये 36वां वार्षिक सम्मेलन है। स्वाभाविक रूप से मन में सवाल उठता है कि 35 में क्या तय किया, क्या डिस्कशन हुआ, और डिस्कशन के बाद कोई अमल हुआ क्या। साल में एक वीसीज कॉन्फ्रेंस होना है, लेकिन सवाल यही है कि जो डिस्कशन हम करते हैं, अब डिस्कशन हम जो करते हैं उसकी सब चीजें हमारी मुट्ठी में नहीं होती कि हम सब कर दें। कुछ के लिए वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता होती है, कुछ के लिए सरकार को निर्णय करना पड़ता है, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जो हम खुद भी कर सकते हैं, और हम लोग इसमें से तय करेंगे कौन से ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटीज खुद कर सकती हैं, कौन से ऐसे हैं जो आईसीएआर के सहयोग से कर सकते हैं। कई चीजें ऐसी है कि जिसके लिए बड़े निर्णयों की आवश्यकता नहीं है, केवल सोच को कर्म में बदलने की जरूरत है। आज कृषि में अगर क्रांति हुई है, चाहे हरित क्रांति हो, चाहे श्वेत क्रांति हो, चाहे नीली क्रांति हो, आईसीआर का और हमारी यूनिवर्सिटीज का योगदान तो है, लेकिन मित्रों ये योगदान और बड़ा हो सकता है। अब आज आपने जो विषय रखा कृषि उच्च शिक्षा की पुनर्कल्पना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुल कितने विद्यार्थियों को हमने शिक्षा दी, और शिक्षा देने के बाद उस शिक्षा का उपयोग कितनों ने किया, कितने विद्यार्थियों की जिंदगी बदली, और उन्होंने किसानों की कितनी जिंदगी बदली, और इसी से कृषि शिक्षा का आकलन होगा। इसके लिए मुझे लगता है गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। ये बात सही है कि हमारी कृषि शिक्षा व्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी व्यवस्थाओं में से एक है। एक तरफ बड़ी बड़ी चुनौतियां जिसकी चर्चा आप लोग कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज का खतरा है, पानी की कमी है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो रही है, प्राकृतिक खेती कितनी आवश्यक है, ऑर्गेनिक कार्बन कम हो रहा है, नई नई बीमारियां, नए कीट, खेती की लागत भी बढ़ रही है और बाजार भी तेजी से बदल रहा है, किसान को मिलने वाली कीमत और उपभोक्ता को जिस दाम पर मिलती चीजें, उस अंतर को कैसे कम करें। दूसरी तरफ कृषि को अगर बदलना है तो हमारी शिक्षा में एआई आज बहुत महत्वपूर्ण हो गई, डिजिटल टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जीनोमैक्स, रोबोटिक्स और ड्रोन, अब ये सब चीजें हैं। क्या हमारी शिक्षा की व्यवस्था जो आधुनिक आवश्यकता उनको पूरा कर पा रही है। सवाल ये कि ये सब चीजें तो, लेकिन जो नौजवान विद्यार्थी हमारे बैठे, क्या उनको हम इसके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध करा पा रहे हैं। अब इस पर भी हमको विचार करना होगा। खेती के लिए कक्षा के अलावा सोचने का बहुत जरूरत है। सवेरे कक्षा में बैठे, दोपहर में खेत में जाए, वहां प्रैक्टिकल करे, शाम को खेले कूदे, किसानों के बीच बैठे उनके साथ चर्चा करे, प्रैक्टिकल भी करे, बातचीत करे, समझे समझाए, किसी स्टार्टअप के साथ वो काम करे। मुझे लगता है कि हमारे कृषि विश्वविद्यालय को एग्री स्टार्टअप्स के सबसे बड़े केंद्र बनना होगा। विद्यार्थी केवल डिग्री लेकर नहीं, एक विचार लेकर निकले, एक समाधान लेकर निकले, केवल लेक्चर देने के लिए नहीं, वो मार्गदर्शक तो है लेकिन विद्यार्थी का मित्र भी हो। मैं तरीके बदलने की बात कह रहा हूं, इसलिए हम लोग सोचें और क्या तरीके हो सकते हैं। अगर इनफॉर्मल अनौपचारिक संबंध होंगे तो उसमें से कई चीजें विद्यार्थी सीखेंगे, और कसौटी क्या है अपने विश्वविद्यालय की सफलता की, उसको भी

0: में देखना पड़ेगा, यह नहीं है कि कितनी डिग्री बांट दी। कसौटी सचमुच में यह होनी चाहिए कि उससे कितने किसानों की जिंदगी बदली। पेटेंट मंजिल नहीं है केवल हमारी, रिसर्च खेत तक कैसे पहुंचे, रियल टाइम में कैसे पहुंचे। हमने पिछले साल एक महाअभियान चलाया था, इस बार भी खेत बचाओ अभियान चला, उसने काफी चीजें ले जाने में सफलता प्राप्त की, लेकिन इसको निरंतर कैसे यूनिवर्सिटीज के माध्यम से हम जारी रखें। और मुझे लगता है कि ये जो अलग अलग हमारे डिविजन्स हैं, इनकी भी दीवारें तोड़नी पड़ेगी हमको, एकीकृत रूप से विचार करना पड़ेगा। नहीं तो एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, मौसम का विज्ञान अलग है, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इनको सबको एक साथ मिला के हमको सोचना पड़ेगा। मूल प्रश्न यही है कि डिग्री के बाद क्या, और इसलिए हर विश्वविद्यालय के पास उसका स्पष्ट आंकड़ा हो कि जो विद्यार्थी डिग्री प्राप्त करके निकले वो पहुंचे कहां। असली कसौटी तो ये नहीं, तो डिग्री लेके अगर वो काम ही ढूंढते रहे, पढ़ाई व्यर्थ हो जाए। शिक्षा के तीन उद्देश्य है, ज्ञान देना, दूसरा कौशल देना, तीसरा नागरिकता के संस्कार देना। ज्ञान में किताबी ज्ञान, व्यावहारिक ज्ञान दोनों शामिल है। कौशल में कम से कम हम उसको इतना काबिल तो बना दें कि उसको रोजी रोटी के लिए संघर्ष ना करना पड़े। जाट साहब मैं बधाई देना चाहता हूँ, प्लेसमेंट का जो काम प्रारंभ किया है, प्लेसमेंट हुआ, ये काम है। अभी बच्चों को हमने स्कॉलरशिप सीधे सिंगल क्लिक के माध्यम से उनके खातों में पहुंचाने का काम, और नहीं तो यहाँ से यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से कॉलेज, स्कॉलरशिप मिले तब तक पता चला कि परीक्षा रिक्षा सब हो गई। ये सुधार कई हो रहे हैं, लेकिन आप लोग विचार करें, क्योंकि आप एक्सपर्ट्स हैं, कि हम और क्या क्या करें। कुछ संकल्प आपकी इस कॉन्फ्रेंस से निकलना चाहिए। मुझे लगता है भविष्य के लिए तैयार स्नातक ये कल की खेती के लिए कैसे मानव संसाधन बने। हमें डिग्री आधारित शिक्षा से दक्षता आधारित शिक्षा की तरफ बढ़ना पड़ेगा, ज्ञान के प्रसार से नवाचार और समस्या की समाधान की ओर बढ़ना पड़ेगा। बच्चे नौकरी ढूंढने वाले ना बने केवल, नौकरी सृजित करने वाले और देने वाले कैसे बने। एक विश्वविद्यालय, क्या एक विश्वविद्यालय एक जिले की खेती बदलने का संकल्प ले सकता है? हम ज्यादा दूर की बात नहीं करते, केबीके, एफपीओ, बाकी सबके साथ मिलकर एक यूनिवर्सिटी एक जिला बदले। हम जलवायु अनुकूल खेती के बारे में कोई काम कर, ये हमारे सामने बड़ी चुनौती है। प्राकृतिक खेती, विश्वविद्यालय, उद्योग और किसानों के बीच स्थायी तालमेल कैसे हो सकता है, इस पर आप विचार कीजिए। पारदर्शी लक्ष्यों के साथ संस्थान कैसे मजबूत बने, हमारा ज्ञान ट्रेनिंग के माध्यम से सीधे किसानों तक कैसे पहुंचे और कैसे वहां की खेती बदले। मैं सोचता हूँ अगर जिले की बात की तो हम वहां तो कैसे सैचुरेट कर सकते हैं उसको, उस पर विचार कीजिए। जो संकल्प है प्रधानमंत्री जी का, विकसित भारत के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान, उसको पूरा करने में यूनिवर्सिटीज क्या रोल अदा कर सकते। अंत में केवल इतनी कहना चाहता हूं कि इस कॉन्फ्रेंस में से आप लक्ष्य तय कीजिए, लक्ष्य प्राप्ति का रोड मैप बनाइए, और अगले साल जब वीसी कॉन्फ्रेंस हो तो उसमें ये आना चाहिए हिसाब किताब के, पिछले साल ये तय किया था, इतना काम उसमें हो गया, अब अगले साल ये करेंगे।
1: कृषि विद्यालयों के कुलपतियों का 36वां सम्मेलन, जिसका आयोजन हुआ था और विषय था विकसित भारत @2047 के लिए कृषि उच्च शिक्षा की पुनर्कल्पना, और इस पर जानकारी दे रहे थे हमारे माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही कि कैसे किसानों के लिए और तरक्की करने के रास्ते हम निकाल सकते हैं। और इसी के साथ अब हम आपको सुनवाते हैं विनोद कुमार की आवाज में ये उपदेश।
2: जी,

करे ओरे पुचकारे ओरे देनी गाली ना चाहिए, प्यार करे ओरे पुचकारे ओरे देनी गाली ना चाहिए। ए रे वीर भाग जा बड़े बड़ों की हो, वीर भाग जा।

0: कितनी अच्छी बात कही है इस उपदेश में कि निर्दोषी मानस को दोष नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये सही बात है कि जब कोई दोषी नहीं होता और उस पर दोष लगता है तो ये बहुत ही कष्टकारी होता है।
1: उसकी मान जो मानसिक स्थिति है या मान दिमाग की, उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए
0: जी,
1: किसी भी
0: निर्दोषी मानस को कभी भी दोष ना लगाएं।
1: बिल्कुल
0: ये सुना आपने विनोद कुमार से उपदेश, और अब हम बढ़ते हैं आगे और सुनवाते हैं मस्तराम यादव की आवाज़ में ये कृष्ण भजन।

0: तो अभी आपने सुना मातरम की आवाज़ में ये भजन, और भजन के साथ साथ हमारे कार्यक्रम का ही समय यहीं पर समाप्त होने जा रहा है। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है तुषार पराशर और संयोजक चंदन लाल। और अब घड़ियों की सुई लगातार बोल रही हैं कि कृषि जगत कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होने जा रहा है। कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को
1: राम
0: राम
1: राम,
0: राम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स पर आप हमें सुन रहे हैं। शाम के 7:35 हुए हैं और कसलों पर केंद्रित, आइए सुनते हैं कार्यक्रम। पहली गज़ल जो है वो चित्रा सिंह की आवाज़ में है।

श्रोताओं, आप जुड़े हुए हैं गज़लों के कार्यक्रम से। अभी आपने चित्रा सिंह की आवाज़ में सुनी ये गज़ल। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और रूमा लैला की आवाज़ में सुनते हैं ये अगली गज़ल।

0: सिंह की आवाज़ में ये गज़ल। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार वक्त शाम के 7:45 होने को है। अब से कुछ ही दिन में प्रसारित किए जाएंगे प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4000 से अधिक महिलाओं को स्वीकृति पत्र सौंपे। दिल्ली चिकित्सा संघ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्वाइन फ्लू H1N1 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु ने जलभराव की स्थिति की समीक्षा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने मोटापे से जूझ रहे मरीजों में लीवर फाइब्रोसिस की जांच का नया तरीका विकसित किया और दिल्ली पुलिस ने अवैध शराब तस्करी मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 4000 से अधिक पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। इनमें से 2500 स्वीकृति पत्र एक औपचारिक समारोह में प्रदान किए गए। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने कहा कि यह पहल महिला कल्याण, सशक्तिकरण और गरिमा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने और देश के सामाजिक तथा आर्थिक विकास में उन्हें उनका उचित स्थान सुनिश्चित करने के महत्व पर भी बल दिया। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह मासिक सहायता महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा, रोजमर्रा के निर्णय लेने की क्षमता और आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगी।
2: वित्तीय सहायता वितरित करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक योजना बनाई है। पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रूपए डिजिटल वॉलेट के माध्यम से दिए जाएंगे, जबकि 1500 रूपए की राशि फिक्स डिपॉजिट में जमा की जाएगी। इस पर मिलने वाले ब्याज का वहन सरकार करेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह पहल महिला कल्याण, सशक्तिकरण और गरिमा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि योजना के लिए करीब 9,13,000 महिलाओं ने पंजीकरण कराया है, जबकि 6,52,000 से अधिक आवेदन जमा किए गए हैं।
3: दिल्ली लक्ष्मी योजना में पहली 2500 बहनों को हमने अप्रूवल सर्टिफिकेट सौंपा है, क्योंकि ये पहली 2500 बहने हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है।
2: दिल्ली सरकार ने कहा है कि महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में वित्तीय सहायता अगले महीने की पहली तारीख से सीधे जमा की जाएगी। दिल्ली के वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रूपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है। योजना को मिली प्रतिक्रिया दिल्ली की महिलाओं के इस पहल में विश्वास को दर्शाती है और राजधानी में अवसर तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के सरकार के संकल्प को और मजबूत करती है। प्रादेशिक समाचार के लिए अमन यादव।
1: चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि लक्ष्मी योजना से महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार होगा।
4: लक्ष्मी योजना के जरिए 2500 रूपए की राशि सभी महिलाओं को दी जा रही है, तो निश्चित रूप से इससे उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा और इस ये वादा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है महिला सशक्तिकरण का, उसकी ओर एक बड़ा कदम है दिल्ली सरकार का।
1: दिल्ली चिकित्सा संघ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्वाइन फ्लू H1N1 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। अब तक इसके 2000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं।
5: दिल्ली चिकित्सा संघ दिल्ली में इन्फ्लुएंजा की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। इन्फ्लुएंजा के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने और बचाव के जरूरी उपाय अपनाने की अपील की गई है। भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने इन्फ्लुएंजा H1N1 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। IMA का कहना है कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। IMA ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की पर्ची के बिना एंटीबायोटिक्स न लेने की सलाह दी है। IMA ने बताया कि H1N1 में आमतौर पर अचानक तेज बुखार, ठंड लगना, लगातार सूखी खांसी, गले में खराश, मांसपेशियों में तेज दर्द और थकान जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। संक्रमण से बचने के लिए साबुन और पानी से बार बार हाथ धोएं या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। दिल्ली चिकित्सा संघ के अनुसार दिल्ली सरकार ने इन्फ्लुएंजा के मामलों से निपटने के लिए अस्पतालों को तैयार रखने का निर्देश दिया है। प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
1: स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि अस्पतालों में आइसोलेशन

0: बेड तैयार किए गए हैं ताकि H1N1 के किसी मरीज के आने पर उसे आपात स्थिति में सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
1: आइसोलेशन बेड बनाया गया है, उस आइसोलेशन बेड को इस रखा है कि कोई H1N1 का पेशेंट आए तो उसके लिए एक इमरजेंसी के रूप में उसकी हर चीज सुविधा रहे, फ्लूइड्स रहे, ऑक्सीजन रहे, मेडिसिन रहे अवेलेबल, डॉक्टर्स उसमें रहे। अगर पेशेंट्स में सिम्टम्स दिखते हैं कि हाई ग्रेड फीवर के साथ आया और उस एक्सरे में कुछ पैच वर्क दिखा तो उसका ट्रीटमेंट अच्छे से हो सके, इसलिए हमने आइसोलेशन फॉर द इमरजेंसी रखा गया।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने जल जमाव की स्थिति की समीक्षा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उपराज्यपाल ने निर्देश दिया कि इस स्थिति को एक आपदा माना जाए और इससे निपटने के लिए युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी विभागों और एजेंसियों को अलग अलग काम करने के बजाय पूरी तरह से तालमेल के साथ काम करना चाहिए। इसके अलावा सभी विभागों और एजेंसियों के प्रमुखों को जमीनी स्तर पर सक्रिय रूप से मौजूद रहने और मीडिया, सोशल मीडिया तथा अन्य मंचों के माध्यम से नागरिकों द्वारा उठाई गई चिंताओं का तुरंत समाधान करने को कहा गया है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने कहा कि इस बार बारिश उम्मीद से कुछ अधिक हुई है। उन्होंने कहा कि परिषद लंबे समय की योजना के तहत जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान पर तेजी से काम कर रही है। मीडिया से बातचीत में श्री चहल ने बताया कि परिषद ने नालियों से गाद हटाने के साथ साथ पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार किया है।
2: हमारे यहाँ कुछ ड्रेनेज ऐसी हैं जो ब्रिटिश काल से की भी है, जो ब्रिक बैरल्स हैं, उस बाकी सब चीजें जिनको हमने काफी कुछ ठीक भी किया है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम NDMC की जनता को 100% वाटर लॉगिंग फ्री एरिया दें, तो उसको लेके हम हमेशा तत्पर रहते हैं।
0: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के शोधकर्ताओं ने मोटापे से जूझ रहे मरीजों में लीवर फाइब्रोसिस का पता लगाने के लिए एक नया तरीका विकसित किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एम्स ने जानकारी दी कि इसके लिए इनवेसिव बायोस्पी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और मोटापे और फैटी लीवर वाले 189 मरीजों पर किए गए एक शोध में लीवर की शक्ति, एक खास ब्लड टेस्ट और प्लेटलेट काउंट से लीवर की सेहत का पता चला। एम्स ने बताया कि शुरुआती पहचान और आसान डायग्नोसिस से लीवर की बेहतर सेहत में मदद मिल सकती है। दिल्ली भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस उपायुक्त को भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के संबंध में कांग्रेस पार्टी और अन्य के द्वारा सोशल मीडिया पर चलाई जा रही एक झूठी तथा भ्रामक पोस्ट को लेकर एक शिकायत पत्र सौंपा। सांसद रामवीर सिंह बिदुड़ी ने कहा कि यह दुखद है कि राजनीतिक रूप से भाजपा का मुकाबला करने में अक्षम कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी जैसे अन्य दल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करके भाजपा और उसके नेताओं पर आक्षेप लगा कर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष कितनी भी कोशिश कर ले पर उसका कुप्रचार कभी सफल नहीं हो सका। नगर निगम ने दिल्ली को कूड़े से आजादी अभियान के अंतर्गत पश्चिम और सेंट्रल नॉर्थ जोन की पशु चिकित्सा सेवा टीमों ने दिल्ली पुलिस के सहयोग से विभिन्न इलाकों में आवारा मवेशियों को पकड़ने का अभियान चलाया। इस दौरान पीतमपुरा, हर्ष विहार, रानीबाग, ओम विहार और आसपास के क्षेत्रों में कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान कुल 16 आवारा मवेशियों को पकड़कर निगम ने अपने कब्जे में ले लिया। निगम ने कहा कि सड़कों पर आवारा मवेशियों की मौजूदगी से होने वाली घटनाओं और यातायात संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जारी निर्देशों पर हुई प्रगति का जायजा लिया गया और चल रही पहलों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने और प्रभावी ढंग से आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को हर स्तर पर मजबूत बनाने पर लगातार ध्यान दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी UGC नेट, CSIR नेट तथा ICAR, AIEEA PG और AICE पीएचडी 2026 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी और परिणाम

0: इस सप्ताह जारी करेगी। एजेंसी ने बताया कि परिणाम और अंतिम उत्तर कुंजी उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करने को कहा है। दिल्ली पुलिस ने अवैध शराब तस्करी मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि वेलकम, खजूरी खास, सोनिया विहार और नंद नगरी पुलिस स्टेशन की टीमों ने अवैध शराब तस्कर के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की। 5 अलग अलग मामलों में 2 महिला शराब तस्करों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया। पुलिस ने बताया कि सभी मामलों में आगे की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस ने एक साइबर धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बताया कि गिरोह फर्जी QR कोड के माध्यम से विक्रेताओं के साथ पैसों के लेनदेन में हेराफेरी करते थे। मीडिया से बातचीत में उत्तरी जिले की पुलिस उपायुक्त निहारिका भट्ट ने बताया कि अब तक इससे जुड़े 8 मामले सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि धोखाधड़ी में इस्तेमाल किए गए फर्जी अकाउंट्स को भी बंद किया गया है।
1: इस अभियुक्त का नाम निखिल है, जो 22 साल का है और सब्जी मंडी का रहने वाला है, और इसके 8 केसेस सामने आए हैं अभी तक। इसके 8 केसेस में 2 केसेस बॉम्बे के हैं, मुंबई के हैं, और 6 केसेस दिल्ली के हैं। के जो म्यूल अकाउंट होल्डर्स हैं उनको बाउंड डाउन किया।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ओणम के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि समृद्धि और एकजुटता का यह त्यौहार हर घर में शांति, खुशहाली और खुशियां लाए। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी आज से देश के विभिन्न भागों में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। इसके लिए जगह जगह सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सभी को शुभकामनाएं दी। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज पैगंबर हजरत मोहम्मद के जीवन का उल्लेख करते हुए कहा कि उनका जीवन ईमानदारी, विश्वसनीयता, करुणा, धैर्य और क्षमा का शाश्वत संदेश देता है। उन्होंने बाड़ा हिंदू राव में ईद मिलाद उन नबी के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में यह बात कही। इस कार्यक्रम में बल्ली मारान विधानसभा क्षेत्र से विधायक इमरान हुसैन और ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य इमाम डॉ इमरान उमर अहमद इलियासी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। रक्षाबंधन के अवसर पर हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य परिवहन की साधारण बसों में महिलाओं के लिए निशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की है। यह निशुल्क यात्रा सुविधा कल दोपहर 12 बजे से शुरू होकर 28 अगस्त की मध्य रात्रि तक प्रभावित रहेगी। इन महिलाओं के साथ यात्रा करने वाले 15 वर्ष तक के बच्चे भी बसों में बिना किराए दिए यात्रा कर सकेंगे। यह सुविधा दिल्ली और चंडीगढ़ सहित किसी भी स्थान की यात्रा के लिए मान्य होगी। उत्तर रेलवे के लिए 8 प्रतिभाशाली खिलाड़ी एशियन खेल 2026 में भारतीय टीमों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इन खिलाड़ियों का चयन कबड्डी, हॉकी और मुक्केबाजी के लिए किया गया है। उत्तर रेलवे में खेलों के इस निरंतर प्रगति के पीछे खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत, प्रशिक्षकों का मार्गदर्शन और उत्तर रेलवे खेलकूद संघ के पदाधिकारियों का सहयोग है। राजधानी दिल्ली में आज भी कई इलाकों में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि कल बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4000 से अधिक महिलाओं को स्वीकृति पत्र सौंपे। दिल्ली चिकित्सा संघ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्वाइन फ्लू H1N1 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने जलभराव की स्थिति की समीक्षा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने मोटापे से जूझ रहे मरीजों के लिए लीवर फाइब्रोसिस की जांच का नया तरीका विकसित किया और दिल्ली पुलिस ने अवैध शराब

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, वक्त रात्रि के 8 बजे हैं और ये समय है कार्यक्रम गीत मालिका का।

जी हाँ श्रोताओं, समय घड़ी के अनुसार, जी हाँ स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 8:03 हो चुके हैं और कार्यक्रम का पहला गीत हमने आपके लिए पेश कर दिया है श्रेया घोषाल और तोशी रैना की आवाज़ में। उम्मीद करते हैं कार्यक्रम का पहला गीत आपने ज़रूर पसंद किया होगा। आज के कार्यक्रम में, जी हाँ गीत मालिका के कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी दोस्त चेतना। घड़ी में 8 बज चुके हैं और कुछ लोग जो होंगे ना, वो इस वक्त ट्रैफिक में फंसे होंगे, या फिर कुछ लोगों के हाथ में चाय का कप होगा, कुछ बालकनी में खड़े होंगे, कुछ टेंशन में अपना सिर पकड़ कर खड़े होंगे। ऐसा ना हो, हम तो यही चाहते हैं, लेकिन हम आपके साथ रहेंगे इन 50 मिनट तक लगभग और करेंगे बेहद बहुत सारी बातें। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे, जी हाँ, कुछ ऐसी पुरानी याद के बारे में जो आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लेके आ जाए। शाम जो है ना, वो इशारा करती है कि भाई अब जो पुराने पूरे दिन की जो बस्ती

जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे थे उन पुरानी यादों की, जी हाँ, जो हमारी कहीं ना कहीं पिटारे में रहती है और हमें कभी ना कभी थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है और कभी कभी बहुत सुकून भी देती हैं ये यादें। आपको भी कोई ऐसी याद होगी जो किसी के करीब ले आए? क्या बात है, दिल तो धड़क ही रहा होगा और साथ में यादों का पिटारा है ना, वो भी धीरे धीरे खुल रहा होगा। और दोस्तों, आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम अक्सर वो छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं जो हमें खुशी देती है, जैसे बचपन में बारिश के पानी में कागज़ की नाव चलाना, या फिर स्कूल की घंटी बजते ही एकदम टिफ़िन ख़त्म करके दौड़ना। बहुत सारी ऐसी यादें होती हैं जो हमें सुकून देती हैं, हमारे चेहरे पर मुस्कान लाती है।

जी हाँ दोस्तों, ये गीत रहा फिल्म फितूर से सुनीति चौहान और जुबिन नौटियाल की आवाज़ में, और इस गीत को संगीत दिया अमित त्रिवेदी ने। और कभी फुर्सत में बैठो तो इसे खोल कर देखना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यादों के पिटारे की। इसमें बीते हुए लम्हों की महक बाकी है, बचपन की वो नादानियाँ, वो बेफिक्री सी हंसी। इस पिटारे में हर एक खुशी की चमक बाकी है। आप जुड़े हुए हैं कार्यक्रम गीत मालिका से, और आज के कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ चेतना।

आकाशवाणी दिल्ली का, जी हाँ, इंद्रप्रस्थ चैनल और समय स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 8:15 हो चुके हैं। कार्यक्रम है आपका अपना फेवरेट कार्यक्रम गीत मालिका, और आज के कार्यक्रम में मैं हूँ चेतना आपके साथ। और जिंदगी के उलझनों में कभी कभी हम इतने थक जाते हैं कि इतनी तन्हाई, इतनी अकेलापन लगता है कि हम थोड़ा सा मुस्कुराना भी कभी कभी ना भूल जाते हैं, और कभी कभी ऐसा लगता है कि बिल्कुल अकेले हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों, कहूँ कि ज़िंदगी की उलझनों से जब थक जाता हूँ, अपनी तन्हाई में ज़रा मुस्कुरा लेता हूँ, ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे किसी सहारे की, जब मैं अपनी यादों का पिटारा खोल कर अपने साथ बैठ जाता हूँ।

जी हाँ दोस्तों, रूट फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे हैं और इस गीत को वासी विनोद राठौर ने और साथ में सुनिधि चौहान और संगीत अन्नू मलिक का। और वाकई में ना कल की फिक्र होनी चाहिए ना गुजरे कल का मलाल होना चाहिए। हम तो भाई अपनी ही धुन में मस्त रहने वाले हैं और दुनिया क्या सोचेगी ये सोचकर वक्त को बिल्कुल ना गंवाएं। हमारा तो एक ही अंदाज़ है, बेफिक्र और बेमिसाल।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से और मीडियम वेव 366.3 मीटर पर आप हमें सुन रहे हैं। समय स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 8:25 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत मालिका और हम बात कर रहे थे उन यादों के पिटारों की। जी हाँ, फिलहाल आपको ये बता दें कि जो गीत अभी आप सुन रहे थे वो सोनू निगम की आवाज़ में फिल्म मुसाफिर से रहा और संगीत दिया विशाल शेखर ने इस गीत को।

जी हाँ दोस्तों, हमने भी सीख लिया है हवाओं के साथ बहना। हर बात पर दिल को दुखाना छोड़ दिया है अब हमने। जब से अपनाया है बेफिक्री का मज़ा, हमने ज़माने की फ़िक्र में मुस्कुराना नहीं छोड़ा है।

सोनू निगम की आवाज़, साथ में सुखविंदर सिंह और कुणाल, और इस गीत को लिखा समीर ने। फिल्म रही खाकी। हम बात कर रहे थे उन यादों के पिटारों की। जी हाँ, जो यादें कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक सबक तो हमें ज़िंदगी का बिल्कुल देती हैं ये यादें। लेकिन यादें अच्छी हों या बुरी, भाई हमने बात की थी कि बेफिक्री से जीवन जीना बेहद ज़रूरी है। टेंशंस और समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होती जीवन में, और सिर्फ कोशिश करनी चाहिए कि अच्छी यादें ही हमारे पिटारे में बनती चली जाए। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि वक्त की रफ्तार जो है ना, वो सब कुछ बदल देती है।

वक्त एक ऐसी चीज़ है जो हर घाव को भर देता है। आज जो है वो कल हो जाएगा। ज़्यादा फिक्र करके, टेंशन लेके, आज की कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ समय ज़ाया करने वाली बात है। समय बुरा हो या अच्छा, बीत ही जाता है।

अभी आपने की सुना अदनान सामी की आवाज़ में लकी नो टाइम फॉर लव। जी हाँ, ये था फिल्म और ये सोनू निगम की आवाज़ भी साथ में। और समय जो है ना स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 8 बजकर

हो चुके हैं 40 मिनट, और जाना होगा आपसे, इस कार्यक्रम से विदा लेनी होगी, लेकिन इस वादे के साथ छोड़े जा रहे हैं आपको 11:10 पर फिर मिलेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत में। फिलहाल अपनी दोस्त चेतना को अनुमति दें इस कार्यक्रम से। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार वक्त रात्रि के 8:44 और पूरे 50 सेकंड हुए हैं। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक भीषण बाढ़ में 46 लोगों की मौत, 100 से अधिक भारतीयों सहित लगभग

0: 500 लोग लापता। भारत ने नेपाल में बचाव और राहत कार्यों में तेजी आने के साथ ही हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। बिहार और उत्तर प्रदेश ने पड़ोसी देश में बाढ़ के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए तैयारियां तेज की। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। पेचिंग में सीमा वार्ता के 25वें दौर में 8 सूत्री सहमति बनी। ओणम और ईद मिलाद हर्षोल्लास से मनाया गया। और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका ने फॉलो ऑन के बाद चौथे दिन दूसरी पारी में 6 विकेट पर 229 रन बनाए। मैच पर भारत की पकड़ मजबूत। और अब समाचार विस्तार से। नेपाल तिब्बत सीमा के भोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ से अब तक 105 भारतीयों और 37 प्रवासी भारतीयों सहित करीब 500 लोग लापता हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 46 शव बरामद किए गए हैं और 93 लोगों को बचाया गया है। अधिकांश भारतीय तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। अचानक आई बाढ़ से रसुवा तथा धादिंग जिले प्रभावित हुए। बाद में इसका असर नुवाकोट और चितवन तक पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: लापता लोगों में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के नागरिक भी शामिल हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ये शुरुआती आंकड़े हैं। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। प्रारंभिक जांच के अनुसार भूकंप के कारण हिमस्खलन हुआ, इससे पिघली हुई बर्फ का पानी कोशी नदी में आ गया और अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ से रसुवा क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने रसुवा, नुवाकोट, धादिंग, गोरखा और चितवन के प्रभावित क्षेत्रों के सांसदों के साथ स्थिति पर चर्चा की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर हैं 9779851316807 और दूसरा हेल्पलाइन नंबर है 9779091075000। दूतावास ने बताया कि वो बाढ़ प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारत नेपाल को जल्द से जल्द राहत सामग्री भेजने की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। उन्होंने कहा कि भारत इस आपदा से प्रभावित लोगों के लिए नेपाल सरकार के राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: नेपाल में बाढ़ के बाद गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए बिहार के 6 जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार और करीबी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम चंपारण के बगहा और वैशाली जिले के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि फिलहाल गंडक नदी का जलस्तर अपेक्षाकृत कम है, जो कि एक सकारात्मक स्थिति है। हालांकि स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए संभावित जल प्रवाह को देखते हुए वाल्मीकि नगर बराज से 2.5 लाख क्यूसेक तक पानी छोड़े जाने की संभावना है। सविता पारी का आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है।
3: उस पर हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
0: आपदा मोचन बल के कमांडेंट हितेंद्र पाल सिंह कंडारी ने बताया कि बिहार में 9 टीमें तैनात हैं और कई अन्य टीमें अलर्ट पर हैं।
4: मानसून के सीजन में हमारी कुछ टीमें पहले से ही प्रिपरेशन थी। अभी जो संभावना जताई जा रही है कि फ्लड का पानी जो नेपाल में है वो इंडिया में एंटर करेगा, तो उसके बाद यहाँ पे भी फ्लड की सिचुएशन बन सकती है। उसके मद्देनजर हमारी टीमों को वहाँ पे भेजा गया है।
0: इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृह मंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।

0: वहीं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। नेपाल में अचानक बाढ़ के कारण दोनों जिलों में गंडक और नारायणी नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से हुई तबाही पर चिंता व्यक्त करते हुए महाराजगंज और कुशीनगर के स्थानीय प्रशासन को सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इधर मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण कल दक्षिण उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा की संभावना है। कल दिल्ली में भी वर्षा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर कल पेचिंग में आयोजित किया गया। चीन के विशेष प्रतिनिधि सीपीसी केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय विदेश आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग यी तथा भारत के विशेष प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भारत चीन सीमा मुद्दे पर गहन विचार विमर्श किया और 8 बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दे के समाधान के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु वार्ता को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर बल दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि व्यस्ततम रेल लाइनों को 4 लेन में बदलने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि देश में 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं जो तकरीबन 11,000 किलोमीटर तक फैले हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली हावड़ा, हावड़ा चेन्नई, चेन्नई मुंबई, मुंबई दिल्ली, दिल्ली चेन्नई, मुंबई हावड़ा और दिल्ली गुवाहाटी 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जारी निर्देशों पर हुई प्रगति का जायजा लिया गया और चल रही पहलों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। श्री जोशी ने समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने और प्रभावी ढंग से आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने की जरूरत पर बल दिया। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रथम 2,500 पात्र महिला लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र सौंपे। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि ये महिलाओं के सशक्तिकरण, कल्याण और सम्मान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि देश की प्रगति के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है।
1: 1 अगस्त से लेकर के आज तक 9,22,000 बहनों ने इस योजना में अपना नाम रजिस्टर किया। इस दिल्ली लक्ष्मी योजना में पहली 2,500 बहनों को हमने अप्रूवल सर्टिफिकेट सौंपा है, क्योंकि ये पहली 2,500 बहनें हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है।
0: मुंबई पुलिस ने एमपीएससी की ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा का प्रश्न पत्र कथित तौर पर लीक होने के मामले में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के 3 अधिकारियों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। अदालत ने सभी 6 आरोपियों को बुधवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति कल रायपुर में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित करेगी। इस विषय पर व्यापक विचार विमर्श के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 200 लोगों को आमंत्रित किया गया है। मेघालय सरकार ने स्कूली बच्चों में बुनियादी पठन कौशल को बेहतर बनाने और सीखने की कमियों को दूर करने के लिए सीएम इंपैक्ट रीड एंड राइज मेघालय कार्यक्रम शुरू किया है। इसका लक्ष्य है कि हर बच्चा 7 वर्ष की आयु तक पढ़ना और लिखना सीख सके। भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने इन्फ्लुएंजा AH1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। आईएमए ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। चिकित्सा संघ ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक्स नहीं लेने को कहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासी आज तिरुओणम का पर्व मनाया। हमारे संवाददाता ने बताया।

0: कि ये पौराणिक राजा महाबली के स्वागत और नई फसल के आगमन की खुशी में सभी केरलम वासियों द्वारा उत्साह के साथ मनाया जाता है।
1: तिरुवोणम के अवसर पर केरलम में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। ओणम पर्यटन सप्ताह के अंतर्गत राज्य के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक कार्यक्रम जारी हैं। जिला मुख्यालयों के साथ साथ प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केरलम का सबसे बड़ा फसल उत्सव ओणम अब समापन की ओर है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
0: इस बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने केरलम मंडल में लगभग 4,40,000 पेंशन भोगियों को आज अगस्त 2026 की पेंशन उनके खातों में भेज दी। सामान्य तौर पर पेंशन का वितरण महीने की अंतिम तिथि को होता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी भी आज उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कश्मीर घाटी में इस अवसर पर विभिन्न मस्जिदों और दरगाहों में हजारों श्रद्धालु जुटे और विशेष नमाज अदा की।
2: ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में पूरी घाटी में हजारों की तादाद में अकीदतमंद मस्जिदों और दरगाहों में जमा हुए और खसूसी नमाजों और मजहबी मजलिसों में शामिल हुए। सबसे बड़ी मजलिस श्रीनगर के दरगाह हजरत बल में हुई, जहां पर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास निशानी को लोगों के सामने नुमाया किया गया और उनकी जिंदगी पर रोशनी डाली गई। ऐसी ही मजलिसें घाटी के दीगर इलाकों में भी हुई, जहां पर लोगों ने जम्मू कश्मीर और पूरे मुल्क की खुशहाली के लिए दुआएं की। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में छड़ी मुबारक यात्रा आज धार्मिक और आध्यात्मिक उल्लास के साथ संचालित की गई। इसके साथ ही श्री बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा के समापन की औपचारिक शुरुआत हो गई। यात्रा समापन रक्षाबंधन के दिन होगा। भारत ने बाढ़ से जूझ रहे नेपाल की सहायता के लिए 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री तथा आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत इस संकट की घड़ी में नेपाल और वहां के लोगों के साथ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पत्रा देवी हुतात्मा स्मारक राष्ट्रीय एकता, साहस और बलिदान का प्रतीक है, जिसने गोवा की मुक्ति में योगदान दिया था। श्री सिंह ने स्मारक के उद्घाटन समारोह में कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों से लोग गोवा आए और इसकी स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। और अब खेल खबरें। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने फॉलो ऑन मिलने के बाद दूसरी पारी में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 229 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही श्रीलंका ने 16 रन की बढ़त ले ली है। श्रीलंका की पहली पारी में 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारतीय टीम श्रृंखला में 1-0 से आगे है। हंगरी में पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में वीर चोटरानी और विल्वन सेंथिल कुमार सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। चोटरानी ने क्वार्टर फाइनल में मिस्र के मोहम्मद अल शेरबिनी को और विल्वन सेंथिल कुमार ने मलेशिया के एन यो एनजी को हराया। अब सेमीफाइनल में ये दोनों खिलाड़ी आमने सामने होंगे। मुंबई में एशियाई जूनियर क्लासिकल शतरंज चैंपियनशिप में मयंक चक्रवर्ती ने ओपन और प्रतीति बोरदोलोई ने लड़कियों के वर्ग का खिताब जीत लिया है। ओपन वर्ग का कांस्य पदक भारत के ही दक्ष ने हासिल किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक भीषण बाढ़ में 46 लोगों की मौत, 100 से अधिक भारतीयों सहित लगभग 500 लोग लापता। भारत ने नेपाल में बचाव और राहत कार्यों में तेजी आने के साथ ही हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। बिहार और उत्तर प्रदेश ने पड़ोसी देश में बाढ़ के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए तैयारियां तेज की। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। पेचिंग में सीमा वार्ता के 25वें दौर में 8 सूत्री सहमति बनी। ओणम और ईद मिलाद हर्षोल्लास से मनाया गया। और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका ने फॉलो ऑन के बाद चौथे दिन दूसरी पारी में 6 विकेट पर 229 रन बनाए। मैच पर भारत की पकड़ मजबूत। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Massive flash flood hits Nepal-Tibet border, claiming

0: शिकस्त मजबूत कर ली है। फॉलो ऑन के बाद चौथे दिन का खेल खत्म होने तक मेजबान श्रीलंका ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 6 विकेट पर 229 रन बना लिए थे। अब खबरें तफसील से। नेपाल में आज सुबह भोटेकोशी दरिया में अचानक सैलाब आने से तिब्बत सरहद के नजदीक रसुवा खित्ता इसकी जद में आ गया। तकरीबन 500 अफराद के लापता होने की इत्तला मिली है। इनमें 100 से ज्यादा भारतीय शहरी भी शामिल हैं। सिक्योरिटी एहलकारों ने बताया है कि सैलाब से मुतासर इलाकों से अब तक 46 लाशें मिली हैं। इन एहलकारों ने बताया कि मुतासर इलाकों के मुख्तलिफ हिस्सों से कम अज कम 93 अफराद को बचाया गया है। नेपाल के सियाहती बोर्ड के मुताबिक लापता अफराद में गैर मुल्की सयाह और नेपाली शहरी शामिल हैं। हुक्काम ने कहा है कि लापता अफराद में कम अज कम 105 भारतीय शहरी और 37 गैर मुकीम भारतीय अफराद शामिल हैं। इनमें से बेशतर लोग तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। हुक्काम के मुताबिक लापता गैर मुल्की शहरियों में कई मुल्कों के अफराद हैं। इनमें बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, मलेशिया, जनूबी अफ्रीका और नीदरलैंड शामिल हैं। नेपाल के वजीर आजम बालिंदर शाह ने मुतासरा जिलों के हुक्काम और विफाकी अरकान पार्लियामेंट के साथ मीटिंग में सूरत हाल और बचाव और राहत कार्रवाई का जायजा लिया। मुतासरा लोगों के बारे में जानकारी फराहम करने के लिए इमरजेंसी इमदाद की खातिर टोल फ्री नंबर 1234 जारी किया गया है। इसके अलावा हॉटलाइन नंबर 1144 और टूरिस्ट पुलिस नंबर 9851289445 पर भी जानकारी हासिल की जा सकती है। काठमांडू में भारतीय सिफारतखाने ने नेपाल में अचानक सैलाब से मुतासर होने वाले भारतीय शहरियों के बारे में जानकारी फराहम करने के लिए इमरजेंसी नंबर जारी किए हैं। सिफारतखाने ने कहा है कि इमदाद हासिल करने के लिए आप हेल्पलाइन नंबर +9779815131 और 6807 और +9779701071500 पर सिफारत खाने से राबता कायम कर सकते हैं। भारतीय सिफारत खाने ने कहा है कि वह अचानक सैलाब से मुतासर होने वाले भारतीय शहरियों के लिए जल्द बचाव और राहत की खातिर नेपाल सरकार के मुतालिका हुक्काम के साथ राबता कायम किए हुए है। इधर सरकारी जराये के मुताबिक भारत जितना जल्द मुमकिन हो सके नेपाल के लिए इमदादी सामान भेजने की तैयारी कर रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नेपाल में जबरदस्त सैलाब से लोगों की अमवात और नुकसान होने पर दुख का इजहार किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नेपाल के अपने हम मनसब बालिंदर शाह से फोन पर बात की और वहां सैलाब की वजह से लोगों की मौत होने पर ताजियत का इजहार किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि भारत के अवाम मुश्किल की इस घड़ी में नेपाल की अपनी बहनों और भाइयों के साथ खड़े हैं। वजीर आजम ने कहा कि भारत नेपाल को इंसानी हमदर्दी की हर मुमकिन इमदाद फराहम करने के लिए तैयार है। जनाब मोदी ने कहा कि हमारी टीमें बचाव और राहत कोशिशों में करीबी इश्तराक के साथ तालमेल कायम कर रही हैं। हिमालयाई मुल्क नेपाल में आए जबरदस्त सैलाब और गंडक दरिया में पानी की सतह में अचानक बढ़ोतरी के खदशे के पेश नजर बिहार में सूरत हाल से निमटने के लिए तैयारियों में तेजी आ गई है। गंडक के करीब वाक़ 6 जिलों मगरबी चंपारण, मशरकी चंपारण, गोपालगंज, सारंग, मुजफ्फरपुर और वैशाली को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वजीर आला सम्राट चौधरी ने बताया कि सूरत हाल पर कड़ी नजर रखने और राहत नीस तैयारियों के इकदाम के लिए तालमेल कायम करने की गरज से आला सतह की एक कमेटी तश्कील दी गई है।
1: उस पर हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी DGP इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
0: इस सिलसिले में मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: सीतामढ़ी, शिवहर और दीगर जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हिदायत दी गई है कि वो सूरत हाल पर कड़ी और मुस्तकिल नजर रखें। मगरबी चंपारण के बगाहा वैशाली जिले के नशेबी इलाकों में रहने वाले लोगों से जोर देकर कहा जाता है कि वो जल्द से जल्द महफूज मकाम की जानी पेशरफ्त करें। इधर नायब वजीर आला और आबी वसाइल के वजीर विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि गंडक दरिया में पानी की मौजूदा सतह निस्बतन कम है, जो कि एक मुस्बत पहलू है। पटना से सविता पारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज पड़ोसी मुल्क में सैलाब की सूरत हाल के तनाजुर में फोन पर वजीर आला सम्राट चौधरी से बातचीत की। जनाब शाह ने रियासती सरकार को पैदा होने वाली सूरत हाल से निमटने के लिए हर मुमकिन तआवुन फराहम करने की यकीन दहानी कराई। उन्होंने मजीद कहा कि कुदरती आफात की सूरत में बंदोबस्त करने वाली फोर्स को सूरत हाल से निमटने के लिए वहां भेजा जा रहा है। नेपाल के रसुवा खित्ते में भोटे कोशी दरिया में

0: दो सबसे बड़ी आबादी वाले देश, दो प्राचीन सभ्यताएं, दो उभरती हुई वैश्विक शक्तियां, लेकिन इनके रिश्तों का सबसे संवेदनशील बिंदु है सीमा। साल 2020 के बाद पूर्वी लद्दाख में पैदा हुआ तनाव, गलवान की हिंसक झड़प, भारी सैन्य तैनाती और कई वर्षों तक चला गतिरोध, इन सब ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि भारत और चीन के बीच सीमा पर शांति केवल सीमा तक सीमित मुद्दा नहीं है। सीमा पर तनाव बढ़ता है तो उसका असर व्यापार पर पड़ता है, कूटनीति पर पड़ता है, राजनीतिक विश्वास पर पड़ता है और पूरे द्विपक्षीय संबंधों की दिशा बदल जाती है। अक्टूबर 2024 में देपसांग और डेमचौक सहित 2020 के फ्रिक्शन पॉइंट्स पर डिसएंगेजमेंट और पेट्रोलिंग व्यवस्था को लेकर समझौते के बाद दोनों देशों के बीच बीजिंग में हुई भारत चीन विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं दौर की वार्ता एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में उभरी है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई इस मुलाकात का केंद्रीय बिंदु यही रहा कि सीमा पर शांति और स्थिरता ही द्विपक्षीय संबंधों के विकास का मुख्य आधार है। आज की चर्चा में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्या 25वें दौर की ये बातचीत सीमा विवाद के स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस आधार तैयार कर पाई है या फिर ये प्रक्रिया केवल विश्वास की बहाली तक ही सीमित है। इस गंभीर और रणनीतिक मुद्दे पर गहन विश्लेषण के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो बेहद खास मेहमान, रक्षा विश्लेषक मेजर जनरल अशोक कुमार सेवानिवृत्त और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के उपाध्यक्ष प्रोफेसर हर्ष वी पंत। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जनरल अशोक कुमार, आपके साथ शुरुआत करते हैं। देपसांग और डेमचोक जैसे फ्रिक्शन पॉइंट से पेट्रोलिंग और बफर जोन की व्यवस्था के संदर्भ में डोभाल और वांग यी की वार्ता को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या हम केवल टैक्टिकल डिसएंगेजमेंट यानी रणनीतिक रूप से पीछे हटने की स्थिति में हैं, या स्ट्रैटेजिक डी एक्सेलेशन यानी सेनाओं की वापसी की दिशा में कोई वास्तविक प्रगति हो रही है? क्या लगता है आपको?
1: मेरे ख्याल से अगर आप इसका घटनाक्रम ध्यान से देखें तो अक्टूबर 24 में जो एग्रीमेंट हुआ था उसके पहले ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी और उसी मुलाकात के तहत एक स्ट्रेटजिक डायरेक्शन दोनों कंट्रीज के लोगों को, डिसीजन मेकर्स को दिया गया कि हमें इस मुद्दे को सुलझाना है। और उसके बाद पिछले जो 24वें मीटिंग हुई थी ऐसा रिप्रेजेंटेटिव्स की, उसमें तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम पहले जो अर्ली हार्वेस्ट वाले ऑप्शंस हैं उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो मुद्दों पर जहाँ पर ज्यादा विवाद है उसकी तरफ बढ़ेंगे। आपको पता ही होगा कि सिक्किम का इलाका और हिमाचल प्रदेश का इलाका और उत्तराखंड इलाका, ये तीन जगह ऐसे हैं जहाँ पर ज्यादा डिफरेंस नहीं है भारत और चीन के अप्रोच में। इतना ही नहीं, यहाँ पर जहाँ विवाद है भी उस पर भी भारत अपने क्लेम के मुताबिक उन जगहों पर उसकी मौजूदगी है, जबकि चाइना का सिर्फ क्लेम है। और केवल उत्तराखंड में बाराहोती का मामला ऐसा है जहां पर उसमें ग्रेजिंग के दौरान में अक्सर हर साल आता है और फिर उसके बाद में वापस चला जाता है। इसके पहले दोनों देशों ने अपने नक्शे भी एक्सचेंज किए थे, दोनों को मिलाकर के हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को मिलाकर के मिडिल सेक्टर माना जाता है, उसके नक्शे एक्सचेंज हुए थे और दोनों ने अपनी पोजीशन डिलिनिएट की थी। तो वहां पर एकदम से क्लैरिटी है कि हम क्या क्लेम कर रहे हैं और चाइना क्या क्लेम कर रहा है, और गैप बहुत थोड़ा है जो रिजॉल्व किया जा सकता है। पहली बातचीत में हम वहां तक पहुंच चुके हैं। उस बातचीत के बाद में बाकी जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, और इस बार चूंकि 12-13 सितंबर को इंडिया में ब्रिक्स की समिट होने वाली है, तो काफी कयास लगाए जा रहे थे कि इस 25वीं मीटिंग में कोई बड़ा निर्णय सामने आएगा जिससे इस दिशा में एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन में कुछ सुनने को मिलेगा। लेकिन जब बातचीत खत्म हुई कल बीजिंग में, तो वहां पर ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ। इनफैक्ट इतना ही नहीं, जो पहले लो हैंगिंग फ्रूट की बात हो रही थी उसको रिजॉल्व करने की, उसका भी जिक्र ना तो चाइनीज के स्टेटमेंट में आया ना भारतीय स्टेटमेंट में आया। मोटे तौर पर यह कहा गया कि 24वीं मुलाकात के बाद में दोनों देशों के बीच में प्रगति हुई है। यह चीज तो स्पष्ट नहीं है कि प्रगति किस किस फील्ड में हुई है, लेकिन पूरा टोन आप देखेंगे उस भाषा का, जो बातचीत के जो अंश बाहर सामने आए हैं, उसे लगा है कि दोनों देशों में एक आंतरिक इच्छा है कि इस

0: मामले को स्ट्रेटजिक लेवल पर सुलझाया जाए। भारत ने ये चीज स्पष्ट मेंटेन किया है कि जब तक सीमाओं पर शांति नहीं रहती है, यह चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे कूटनीतिक क्षेत्र हो या और भी कोई रिलेशनशिप का क्षेत्र हो, उसमें रिलेशंस स्टेबल नहीं हो पाएंगे। और इसलिए उम्मीद है कि आगे आने वाले टाइम्स में जब WMCC की मीट होगी तो शायद इस दिशा में और प्रगति हो। मेरा मानना यह है कि दोनों देशों की तरफ इसको रिजॉल्व करने की इच्छा है, लेकिन दोनों की अपनी डोमेस्टिक कंपल्शंस हैं और इसलिए इसका रिजोल्यूशन होने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जो विश्व में मौजूदा परिस्थिति चल रही है उसको देखते हुए मैं इस कदम को और जो स्टेटमेंट आए हैं उनको काफी पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ।
1: हर्षी, अगर आपसे समझना चाहें और अपने श्रोताओं को थोड़ा बैकग्राउंडर बताएं, तो 2020 में कन्फ्रंट्रेशन और गंभीर संकट रहा, 2024 में डिसएंगेजमेंट अरेंजमेंट्स की बात हुई, 2025 में डी एक्सकलेशन, बॉर्डर मैनेजमेंट और अर्ली हार्वेस्ट जैसे विचारों पर संस्थागत चर्चा हुई, इस वर्ष यानी 2026 में बाउंड्री डिलिमिटेशन, राजनीतिक समाधान की दिशा में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की बातचीत। क्या ये कहना सही होगा कि भारत चीन संबंध अब क्राइसिस मैनेजमेंट, स्टेबलाइजेशन, पॉसिबल रिजोल्यूशन की तीन स्तरीय प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, या जैसा कि अभी जनरल अशोक बता रहे थे कि रिजोल्यूशन शब्द का इस्तेमाल करना अभी जल्दीबाजी होगी? क्या कहेंगे आप?
2: मुझे भी ऐसा लगता है कि रेजोल्यूशन तो अभी कुछ दूर दिख रहा है, रेजोल्यूशन नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जो क्राइसिस में ये संबंध थे और जो बॉर्डर इश्यूज जिस तरह से सेंटर स्टेज पर आ गए थे 2020 के बाद, उसके बाद ये सतत प्रयास मुझे लग रहा है भारत की तरफ से और चीन की तरफ से कि कैसे डीएस्केलेशन हो और उससे ज्यादा एक पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस दोनों साइड्स में बने। क्योंकि संबंध जो भारत ने एक अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया था कि जब तक बाउंड्री में LAC में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी नहीं होगी, तब तक ये मानना कि भारत और चीन के संबंध एक नॉर्मल दो देशों के जैसे संबंध होते हैं उस तरह से हो जाएंगे, वो नहीं हो पाएगा। भारत ने लगातार इस बात पर जोर दिया था 2020 के बाद और लगातार इस बात पर भारत अड़ा रहा कि जब तक हम बॉर्डर पर एक नॉर्मल सी नहीं देखेंगे, तब तक जो ब्रॉडर रिलेशनशिप है ये नॉर्मल नहीं होगी। तो मुझे लगता है उसको देखते हुए स्टेबलाइजेशन बॉर्डर पर हो गया है, उसको देखते हुए एक कॉन्फिडेंस दोनों देशों से निकल कर आ रहा है कि दोनों देश ये चाहते हैं और टॉप लीडरशिप दोनों देशों की ये चाहती है कि जो मुद्दे हैं खासकर बॉर्डर का जो मुद्दा है उसको पॉजिटिवली डील किया जाए। लेकिन रेजोल्यूशन अभी भी काफी दूर नजर आता है, क्योंकि रेजोल्यूशन के लिए कुछ जो प्रीरिक्विजिट्स हैं वो होने पड़ेंगे। एक तो दोनों देशों को स्ट्रेटेजिकली वो रेजोल्यूशन स्ट्रेटेजिकली कंपैटिबल होने पड़ेंगे। देखिए, अगर हम चीन की विदेश नीति को इस समय समझें, जैसा दुनिया में बहुत बदलाव आ रहा है और अमेरिका जिस तरह से अपने पार्टनर्स और एलाइज के साथ डील कर रहा है, उसको देखते हुए कहीं पर चीन को ऐसा लगता है कि अगर वो एक रिस्पॉन्सिबल पावर के तौर पर खड़ा नजर आएगा तो उसके संबंध अपने जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ बेहतर हो पाएंगे। तो चीन ये दिखाने की कोशिश जरूर कर रहा है कि वो उस तरह का एक एग्रेसिव प्लेयर नहीं है जिस तरह का वो कुछ सालों पहले नजर आता था, एटलीस्ट पॉलिसी वाइज। तो उसको देखते हुए वो ये चाहेगा कि भारत भी कुछ कदम बढ़ाए और भारत और चीन के बीच में कुछ सामंजस्य बने जो एक स्टेबिलिटी इस रिलेशनशिप में ला पाए। अब सवाल यहाँ पर ये होगा कि क्या ये चीन की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है या ये टैक्टिकल एडजस्टमेंट है इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को देखते हुए, और उस टैक्टिकल एडजस्टमेंट पर भारत कितना विश्वास कर सकता है। क्योंकि भारत के साथ और भारत चीन संबंधों में एक बात जो लगातार होती रही है कि ट्रस्ट फैक्टर बिल्कुल मिसिंग रहा है। भारत क्यों और किन मुद्दों को लेकर चीन के ऊपर ट्रस्ट करे, ये बहुत बड़ा विषय है भारत चीन संबंधों में। और अभी तक मुझे लगता है कि ऐसी स्थितियां पैदा नहीं हुई हैं जहां पर भारत की तरफ से ये 100% कहा जा सके कि हम चीन को एक ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पर देख रहे हैं। तो मुझे लगता है जो ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स का 25th राउंड हुआ है टॉक्स का, ये उसी दिशा में संकेत दे रहा है कि दोनों देश ये चाहते हैं कि बॉर्डर पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बनी रहे। और इसी बात को कमेंट भी किया दोनों इंटरलॉक्यूटर्स ने, रॉन्गी ने और अजीत डोवल ने, ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है और इस बात के लिए एक दूसरे की तारीफ और प्रशंसा की कि दोनों देश कमिटेड हैं इस समय कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बनी रहे। यहां तक तो हम पहुंच गए हैं, और ये मुझे

0: लगता है पॉजिटिव डेवलपमेंट है पीपल टू पीपल टाइज के पर्सपेक्टिव से, लेकिन क्या ये हमको एक लॉन्ग टर्म रेजोल्यूशन की तरफ ले जा रहा है? मुझे लगता है ये कहना भी जल्द पास।
1: जी हाँ, बिल्कुल जल्दीबाजी होगा ये कहना। मेजर जनरल, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, अगर हम थोड़ी बात सीमा प्रबंधन की करें तो एलएसी की अस्पष्टता और विभिन्न अवधारणाओं के कारण अक्सर लोकल फ्लैश पॉइंट्स बनते हैं। इस बातचीत में बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर जो सहमति बनी है, क्या वो 1993, 1996 और 2013 के द्विपक्षीय समझौतों के ढांचे को पुनर्जीवित कर पाएगी, या आपको लगता है कि एक नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने की आवश्यकता है?
0: हमारे पास में 1993, 1996, 2005 और 2013 में जो एग्रीमेंट्स हुए थे और जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स डिसाइड हुए थे, उन्होंने बहुत हद तक दोनों तरफ की सेनाओं को ग्राउंड पर भी आपस में एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करने से बहुत हद तक रोका है। 2020 के गलवान क्लैश में, हालांकि ये बहुत दुखद घटना हुई है, बावजूद इसके दोनों तरफ से किसी ने भी आर्म्स का, शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया है। हम लोगों ने तो रायट कंट्रोल इक्विपमेंट होता है उसका भी इस्तेमाल नहीं किया था। चीन ने उनका इस्तेमाल किया, पहले से तैयार हुए लेजर्स का इस्तेमाल किया और इस तरह से हमको वहां पर थोड़ा नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन मोटे तौर पर जहां पर भी चाइनीज ट्रांसग्रेशन होता है या दोनों तरफ के पेट्रोलों में क्लैश होता है, मोटे तौर पर वो चीज ग्राउंड पर एग्जिस्ट करती है, धक्का मुक्की होती है, पुश होता है, बट फायरिंग के जैसे केसेस जो सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल कर दें वो अभी तक सीमित रहा है। लेकिन गलवान वाला जो क्लैश था उसने इन आत्मविश्वास के पॉइंट्स पर एक नया मेजरमेंट लाने की कोशिश की है और हमको जरूरत है कि हम अपने जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं और जो बॉर्डर पे क्लैश होते हैं उनको हैंडल करने के तरीकों में और पॉजिटिव डेवलपमेंट लाएं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो लोकल लेवल पे क्लैश होते हैं, अगर वहां पर कोई भी लोकल कमांडर बहुत मेच्योर्ड नहीं है और अपने देश द्वारा किए गए एग्रीमेंट्स को फुल्ली ऑनर नहीं करता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को नहीं मानता है और इनएडवर्टेंटली या थोड़े से उग्रवादिता की वजह से गोली चल जाती है, तो जाहिर है दूसरा पक्ष भी उसका रिस्पॉन्ड करेगा और वह मामला काफी तूल पकड़ सकता है। कभी कभी वो मामला टैक्टिकल लेवल से बढ़ करके स्ट्रेटजिक एंगेजमेंट के लेवल तक जा सकता है। तो इसलिए अब जरूरत है कि हम इस चीज पर और संजीदगी से काम करें और उस संजीदगी को ग्राउंड पर उतारने का मेरी समझ से सबसे बढ़िया मॉडल यह है कि हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को डिलिनिएट करें। बॉर्डर का जो रिजोल्यूशन है वो तो लॉन्ग टर्म इशू है, उसके अपने बहुत ढेर सारे चैलेंजेस हैं, बट मेरा मानना यह है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को अगर दोनों देशों में पॉलिटिकल विल हो तो उसको डिलिनिएट करना और ग्राउंड में आइडेंटिफाई करना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं।
1: जी
0: लेकिन मुझे लगता है कि मौजूदा समय में दोनों देश के सबसे पावरफुल लीडर्स हिस्ट्री में एक साथ हैं, शी जिनपिंग का चाइना में कंट्रोल एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी की इंडिया में लोकप्रियता और जो पॉलिटिकल पावर है, अगर दोनों में एक पॉलिटिकल विल हो तो मेरे ख्याल से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को डिलिनिएट करके, डिमार्केट करके आगे बढ़ना कोई असंभव सी चीज नहीं लगती। मुझे लगता है कि ये किया जा सकता है। कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे दोनों देशों में वो विश्वास की कमी है और इसका जीता जागता उदाहरण आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा होगा। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत ने पाकिस्तान के अगेंस्ट लॉन्च किया था, उसमें चीन का कोई लेना देना नहीं था, बावजूद इसके चीन ने पूरा सेटेलाइट इमेजरी प्रोवाइड करना, सारा इक्विपमेंट प्रोवाइड करना, वहां पर कमांड कंट्रोल सेंटर एस्टेब्लिश करना, हर तरह की मदद पाकिस्तान को की। और इस समय ये माना जा सकता है कि जो वेपन सिस्टम चीन में है वो पाकिस्तान को भी अवेलेबल होंगे, सबमरीन्स मिल रहे हैं, ढेर सारी चीजें हो रही हैं। और ऐसे में भारत का चीन के इंटेंशन पर विश्वास करना और भी मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी दोनों देश डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करेंगे, तब तक इस मुद्दे पर पॉजिटिव सिग्नलिंग हो सकती है, पोस्टरिंग हो सकती है, लेकिन ग्राउंड पर हकीकी बदलाव होना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन एक छोटी सी मुझे आशा इसलिए दिखती है
1: जी
0: कि इस समय जो विश्व में बदलाव हो रहे हैं, जो ग्रुपिंग्स बन रही हैं डिफरेंट कंट्रीज की रीजनल सिक्योरिटी में, जो यूएस का अप्रोच चल रहा है और कभी कभी तो ब्रिक्स को नाटो के अगेंस्ट एक बुलवर्क भी माना जा रहा है, जिसमें रशिया, चाइना और इंडिया का एक साथ आना उसके

0: विरोध में खड़ा हो सकता है। तो अगर एक इंटरनेशनल कंपल्शन हुआ और इस कंपल्शन को रशिया, चाइना और इंडिया तीनों के अपेक्स लीडर्स ने, यानी प्रेसिडेंट पुतिन, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ने समझा, आपसी विश्वास को बढ़ाया और एकजुट हुए, जो उसका स्पाइरल बेनिफिट होगा वो आपसी संबंधों में भी होगा, वो रिश्ते को रिजॉल्व करेगा। इंडिया और चाइना के बढ़ते हुए रिश्ते इंडिया पाकिस्तान के बीच के डायलॉग को भी बेहतर कर सकते हैं। रशिया, चाइना और इंडिया के जो रिलेशनशिप में अगर बेहतरी हुई तो उससे भी इंडिया चाइना के रिश्ते को फर्दर इम्पेटस मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि मौजूदा समय में विश्वास की जो कमी है उस पर काम करना जरूरी है, साथ ही साथ एलएसी को डिलिनेट करना, उस पर काम होना चाहिए। बॉर्डर रिजोल्यूशन वो तो थोड़ा सा बाद में ही रखना पड़ेगा।
1: प्रोफेसर पंत, अगर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं तो भारत का स्पष्ट रुख रहा है कि जब तक सीमा पर शांति नहीं, तब तक अन्य द्विपक्षीय संबंध सामान्य नहीं हो सकते। इसके विपरीत, चीन व्यापार और कूटनीति को सीमा विवाद से अलग रखने की बात करता है। 25वें दौर की इस बातचीत के बाद आपको क्या लगता है कि भारत अपनी इस लिंकेज नीति पर अडिग रहने में सफल रहा है?
0: मुझे ऐसा लगता है कि भारत ने ये तो कन्विंस चीन को कर दिया है कि जो संबंध है भारत चीन के, इनको टुकड़ों में नहीं देख सकते, इनको अलग अलग डिस्टिंक्ट एंटिटीज के तौर पर नहीं देखा जा सकता। तो मुझे लगता है उसी का मतलब एक तरह से इस बात पर अग्री करने लगा है कि दोनों साइड्स को पॉलिटिकल सेटलमेंट करना चाहिए और बाउंड्री का, और वो ही दूरगामी इंटरेस्ट है दोनों साइड्स के, वो पूरे कर सकता है। हमने ये भी सुना भारतीय एनएसए को, डोवल साहब को ये कहते हुए कि लॉन्ग टर्म की बात करें तो भारत और चीन दोनों पार्टनर्स हैं, और जो एक प्रिडिक्टेबल फॉरवर्ड लुकिंग इंडिया चाइना रिलेशनशिप है ये महत्वपूर्ण है दुनिया के लिए। और जिसका जिक्र अभी हुआ कि दुनिया बदल रही है, और उस बदलती हुई दुनिया में भारत और चीन अगर साथ काम करेंगे तो उससे बहुत कुछ बदल सकता है, और फेवरेबली जो बदल सकता है, क्योंकि दोनों का इंटेंट काफी हद तक ग्लोबली अगर हम देखें उसमें मिलता है कि हम दोनों देश ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, दोनों देश रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो इम्पोर्टेंस है एक दूसरे के कमिटमेंट को देखें, और खासकर 2005 का जो अग्रीमेंट था पॉलिटिकल पैरामीटर्स का, गाइडिंग प्रिंसिपल्स का, जिससे कि फेयर, रीजनेबल और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल पैकेज सोल्यूशन बनता, इसकी बात दोनों ने करी है। तो कहीं पर भारत अपनी इस बात से चीन को कन्विंस करने में सफल रहा है। पुराना जो ढर्रा है वो नहीं चल सकता कि हम बाउंड्री इशू है उस पर प्रोग्रेस ना दिखाएं, और दूसरी तरफ हम ट्रेड की और पीपल टू पीपल टाइज की और कल्चरल टाइज की, पॉलिटिकल समिट्री की बात करें। तो मुझे लगता है वहां पर जरूर ये प्रोग्रेस हुई है, लेकिन वो प्रोग्रेस अभी भी आधी है, क्योंकि रिटोरिकली दोनों देश एक साथ भले ही हो लेकिन ऑन द ग्राउंड जो प्रपोजल्स हैं वो अभी भी अलग अलग तरीके से इवेल्युएट किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है इसीलिए बॉर्डर मैनेजमेंट की बात, इसीलिए क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन की बात बढ़ चढ़ कर इस बार हुई, क्योंकि अगर बॉर्डर मैनेजमेंट इम्प्रूव होता है तो उससे परसेप्शन भी इम्प्रूव होता है कि दोनों देश कमिटेड हैं लॉन्ग टर्म रेजोल्यूशन के लिए। लेकिन अगर बॉर्डर मैनेजमेंट वीक होता है, अगर वहां पर तनातनी बॉर्डर एरियाज पर चलती रहे और वो मीडिया कवर करता रहे, बार बार ये बताता रहे लोगों को कि कैसे सेनाएं हमारी आमने सामने खड़ी हैं, वो एक दूसरे के सामने लगातार आ रही हैं, तो उससे वो जो ऑलरेडी लो ट्रस्ट फैक्टर है, ऑलरेडी लो विश्वास है, वो और कम होता है। तो मुझे लगता है इस बात को एड्रेस करने की इस राउंड में जरूर कोशिश करी और एक बैलेंस आउटकम निकल कर आया। अब ये बैलेंस्ड आउटकम क्या हमको एक सीरियस नेगोशिएटिंग स्ट्रेटेजी के तौर पर आगे ले जाने की क्षमता दोनों देश रखते हैं, ये मुझे लगता है आने वाला समय।
1: मेजर जनरल अशोक जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर और तैयारी पर थोड़ी बातचीत अगर की जाए तो चीन द्वारा एलएसी के पार थिएटर कमांड स्तर पर बुनियादी ढांचे जिनमें एयरलिफ्ट है, हेलीपैड्स है और कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार किया गया है। ऐसा नहीं है कि भारत ने जवाब नहीं दिया, भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अपनी सीमाई कनेक्टिविटी को भी मजबूत किया है। लेकिन एक रक्षा विश्लेषक के रूप में आपके अनुसार क्या सीमा पर यह ढांचागत संतुलन भारत को कूटनीतिक मेज पर अधिक बार्गेनिंग पावर यानी सौदा करने की शक्ति प्रदान कर रहा है? क्या लग रहा है आपको?
0: इसको अगर आप देखेंगे तो एक दोनों तरफ के टेरेन को देखना आपको बहुत आवश्यक है। जो चीन की तरफ का टेरेन है वो तिब्बतन प्लेट्यू है, और जबकि हमारे यहाँ बॉर्डर पे जाने के लिए हम ऊपर चढ़ाई करते करते जाते हैं, इसीलिए अगर आपको याद

0: होगा कि गलवान क्लैश के बाद में या जब अक्टूबर 24 के बाद में फ्रिक्शन पॉइंट से डिसएंगेजमेंट का एग्रीमेंट हुआ था, तो फोर्सेस को पीछे ले जाने वाली सहमति अभी तक नहीं बन पाई है, क्योंकि जो चीन है उसका आर्गुमेंट था सेनाएं पीछे जाएं इक्वल डिस्टेंस में, जबकि अगर मान लो 20 किलोमीटर चीन की सेनाएं पीछे जाती हैं और 20 किलोमीटर हमारी पीछे जाते हैं, तो उसको 20 किलोमीटर कवर करने के लिए 2 घंटे लगेंगे और हमको 2 दिन लग सकते हैं। और भारत का मानना यह था कि दोनों सेनाओं का विड्रॉल हो वो इक्वल रिस्पॉन्स टाइम के बेसिस पे हो, क्योंकि दोनों तरफ के टेरेन डिफरेंट हैं, तो एक तो वो रियलिटी होना जरूरी है। दूसरे क्या है कि चीन ने 2015 में थिएटर कमांड बनाया था, जो उसका वेस्टर्न थिएटर कमांड है, जो कंप्लीट चाइना बॉर्डर जो इंडिया को देखता है उसमें बनाया गया है। इसमें कुछ एक खामियां भी हैं, बट बावजूद इसके उसके ज्यादातर जो रिसोर्सेज हैं वो सिंगल कमांडर के तहत सेंटर्ड हैं। हमारे पास उस समय एक समय ऐसा था कि जिसमें हमारा जो चाइना का बॉर्डर है उसमें नॉर्दर्न कमांड भी शामिल था, वेस्टर्न कमांड भी शामिल था, सेंट्रल कमांड भी शामिल था, ईस्टर्न कमांड भी शामिल था, और उसके बाद में कुछ एडजस्टमेंट हुए जिससे थोड़ा सा वेस्टर्न कमांड को जो हिमाचल प्रदेश का इलाका था वहां से करके उसको सेंट्रल कमांड के अंदर लाया गया, बट अभी भी 3 कमांड्स में वो बाइफरकेटेड है। उसके अलावा उसमें एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एयरफोर्स एंड उनकी भी जिम्मेवारियां हैं। लेकिन अब जो थिएटर कमांड की बात इंडिया में चल रही है वहां पे कंप्लीट नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे एक सिंगल थिएटर होगा, तो वो भी फोर्सेस को ऑप्टिमाइज करेगा हमारे रिस्पांस मैकेनिज्म को बेहतर करने के लिए। दूसरा है कि हमने 2014 के बाद में पिछले 12 सालों में बॉर्डर्स में अभूतपूर्व सुधार किया है। अगर आप वहां पे जाएं तो आपको यकीन नहीं होगा कि आप उसी इलाके में आ रहे हैं जहां पर उसकी स्थिति 2013-14 में हुआ करती थी, चाहे वो अरुणाचल का इलाका हो चाहे लद्दाख का इलाका हो। टनल्स बन गई हैं, रोड्स बन गए हैं, रोड्स चौड़े हो गए हैं, लेटरल कनेक्टिविटी बढ़ गई है, एयरफील्ड्स आ गई एकदम फॉरवर्ड एरियाज में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया का भी बहुत जोर है। लेकिन यह है कि चूंकि हमने शुरुआत थोड़ी लेट की थी और इसलिए अभी हमको अपना फुल पोटेंशियल पाने के लिए और भी मिशन मोड में काम करना पड़ेगा। जोजीला का में सुरंग बन रही है, अभी जल्दी ही ऐसा होगा कि हमारा बॉर्डर का एरिया जो है और बॉर्डर के लोग जो हैं वो सब लैंड रूट से कनेक्टेड हो जाएंगे, कोई मौसम के मोहताज नहीं होंगे, और फोर्सेस को भी इस बेहतर कनेक्टिविटी से एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में मूवमेंट करना इजी हो जाएगा। हमारा जो कैपेबिलिटी डेवलपमेंट है फोर्सेस का, जैसे एयरफोर्स की लिफ्ट कैपेबिलिटी है, हम ओन एयरक्राफ्ट C-295 बना रहे हैं, जिससे क्या होगा कि अगर लॉन्गर डिस्टेंस में भी फोर्सेस को शिफ्ट करना पड़ा तो वो सब भी संभव हुआ। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डिफिसिट था जिसमें चीन को एडवांटेज मिला था, उसको गैप को खत्म करने के लिए इंडिया बहुत तेजी से काम कर रहा है। आपको याद होगा अगर आप वर्बैटिम पढ़े, 2005 का जो एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, उसमें ये भी कहा गया था दोनों देशों के बीच में कि किसी फ्यूचर बॉर्डर सेटलमेंट में वहां की जो सेटल्ड पॉपुलेशन है हम उसका ध्यान जरूर रखेंगे, और इसलिए भारत के बहुत जरूरी है कि वाइब्रेंट विलेजेस के माध्यम से अपने फॉरवर्ड एरियाज में, क्लेम एरियाज में लोगों को बसाए। लेकिन लोग तभी बस सकते हैं जब वहाँ बुनियादी ढांचा, एजुकेशन की फैसिलिटीज, वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज और वहां पर उनके एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज हो, और इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट्स को, सेना को, सबको एक साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा। ऑलरेडी काफी काम हो रहा है, उसको और भी ज्यादा तीव्र दिशा देने की आवश्यकता है।
1: प्रोफेसर पंत आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि चीन की वर्तमान आर्थिक चुनौतियां, अमेरिका चीन की बढ़ती प्रतिद्वंद्विता और इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की मजबूत स्थिति, इन वैश्विक कारकों ने क्या बीजिंग को भारत के साथ वार्ता के लिए आने पर प्रेरित किया है, और साथ ही साथ क्या ये चीन का एक टैक्टिकल एडजस्टमेंट है या फिर लॉन्ग टर्म रणनीतिक बदलाव की दिशा में उठाया गया कदम, क्या लगता है?
0: जो आपका दूसरा सवाल है कि ये टैक्टिकल एडजस्टमेंट है या स्ट्रेटेजिक रियलाइनमेंट है, मुझे लगता है इसका जवाब तो कुछ समय बाद ही मिल सकता है हमको, जब हमको ये समझ में आए कि ये एक क्लियर पता चले कि चीन क्या, जो उसने पॉलिसी अप्रोच अभी लिया है, क्या इस पर वो अडिग रहेगा। क्योंकि चीन में हमने देखा है बहुत चेंजेस, बदलाव आते हैं और चीन की पॉलिसी से बदलाव आते हैं, और वो बदलाव ऐसे होते हैं कभी कभी कि वो जो, जैसा भारत ने कहा है कि जो अग्रीड होता है उसको वो ओवरटर्न कर देते हैं, और इसीलिए जब जो गलवान इतना बड़ा शॉक हुआ वो इसलिए हुआ कि ये तो एक अग्रीड था कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द बॉर्डर जो

0: अग्रीमेंट भारत और चीन के बीच में था उसको ओवरटर्न करके वहां पर जो गलवान वाला एपिसोड हुआ, तो उससे ट्रस्ट में बहुत बड़ी कमी आई। अब देखना पड़ेगा लगातार आगे आने वाले समय में कि किस तरह से चीन बिहेव करता है, क्या चीन अपनी पॉलिसीज पर अडिग रहता है, क्या चीन भारत के साथ अच्छे संबंधों को बढ़ाने में कुछ गुड फेथ नेगोशिएट करता है। लेकिन मेरे ख्याल से जिसका जिक्र पहले भी हो चुका है, देखिए समस्याएं और भी हैं चीन के भारत संबंधों में, जैसा ऑपरेशन सिंदूर के समय में हुआ और चीन और पाकिस्तान के संबंध जिस तरह के हैं, चीन जिस तरह से इंडियन ओशन में प्रेजेंस अपनी बढ़ा रहा है, वो सारी जो समस्याएं हैं वो अपनी जगह बनी हुई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि चीन अपनी कोई रणनीतिक जो उसकी समझ है भारत के बारे में, भारत के बढ़ते हुए जिसका आपने जिक्र किया, भारत का प्रभुत्व है, प्रभाव है दुनिया में, वो बढ़ रहा है और चीन के लिए बिल्कुल एक परेशानी का सबब होगा कि चीन जो अपना प्रभुत्व चाहता है इंडो पैसिफिक में, हिंद प्रशांत में, उसमें भारत जैसा देश अगर उसको चैलेंज करता है तो चीन साम दाम दंडभेद सब कुछ करके उसको कोशिश करेगा कि भारत एक सेकेंड टीयर पावर के तौर पर ही खड़ा रहे। तो
1: जी
0: मुझे लगता है इसीलिए ये बात को मानना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि चीन दूरगामी पॉलिसी अप्रोच भारत के लिए ले रहा है और वो अपने संबंधों को इस कदर ठीक करना चाहता है भारत के साथ कि बॉर्डर इशू जो भारत चीन संबंधों के कोर में है उस पर वो उसको टारगेट करके उसको सॉल्व करे। तो मुझे लगता है कि जो बदलाव आ रहे हैं दुनिया भर में वो एक रोल प्ले कर रहे हैं, चीन के अंदर भी समस्याएं हैं, चीन बाहर से भी थोड़ी समस्याओं से जूझ रहा है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से टारगेट कर रहा है, और मुझे लगता है उसको देखते हुए चीन को भी लगता होगा कि एक अच्छा मौका है कि भारत के साथ अपने संबंधों को सुधार कर ट्रस्ट डेफिसिट जो है भारत के साथ उसको कम किया जा सकता है। लेकिन क्या ये हो पाएगा चीन से, और क्या भारत चीन को इस नजरिए से और अपना नजरिया भारत बदल पाएगा पूरी तरह से, ये मुझे लगता है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेगा आगे आने वाली जियोपॉलिटिक्स।
1: श्रोताओं, शांति और समाधान में अंतर होता है। शांति का अर्थ है टकराव न होना, स्थिरता का अर्थ है टकराव की संभावना को कम करना, लेकिन समाधान का अर्थ होता है उस मूल समस्या को समाप्त करना जिससे टकराव बार बार जन्म ले सकता है। भारत और चीन के सामने आज शायद सबसे बड़ी चुनौती है कि क्या वे सीमा विवाद को केवल मैनेज करेंगे, क्या वे इतिहास के इस लंबे अध्याय को धीरे धीरे समाधान की दिशा में लेकर आगे बढ़ाएंगे। इसका जवाब केवल बीजिंग या नई दिल्ली की एक बैठक में नहीं मिलेगा, इसका जवाब मिलेगा सीमा पर ग्राउंड रियलिटी से, सैन्य तैनाती के फैसलों से, कूटनीतिक निरंतरता से और सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक इच्छा शक्ति से। क्योंकि दो परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसी देशों के बीच शांति केवल द्विपक्षीय हित नहीं है, ये एशिया की स्थिरता से जुड़ा प्रश्न है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में एक सकारात्मक समाधान देखने को मिलेगा। मेजर जनरल अशोक कुमार जी और प्रोफेसर हर्ष वी पंत जी, चर्चा का विषय है कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार।
0: जय हिंद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत चीन संबंध, सीमा समाधान, शांति और स्थिरता पर विशेष प्रतिनिधियों की बातचीत। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक मेजर जनरल अशोक कुमार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हर्ष वी पंत। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: चर्चा का विषय है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। नेपाल तिब्बत सीमा के भोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ से अब तक 105 भारतीयों और 37 प्रवासी भारतीयों सहित करीब 500 लोग लापता हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में अब तक 46 शव बरामद किए गए हैं और 93 लोगों को बचाया गया है। अधिकांश भारतीय तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। अचानक आई बाढ़ से रसुवा तथा धादिंग जिले प्रभावित हुए। बाद में इस असर नुवाकोट और चितनवन तक पहुंच गया। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। हेल्पलाइन नंबर हैं 9779851316807 और 9779709107500 पर संपर्क

0: किया जा सकता है। दूतावास ने बताया कि वे बाढ़ प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। भारत ने बाढ़ से जूझ रहे नेपाल की सहायता के लिए 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री तथा आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत इस संकट की घड़ी में नेपाल और वहां के लोगों के साथ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जानमान की हानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। उन्होंने कहा कि भारत इस आपदा से प्रभावित लोगों के लिए नेपाल सरकार के राहत और बचाव कार्य में हर संभव सहायता के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक आई बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है।
1: उस पर हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
0: आपदा मोचन बल के कमांडेंट हितेंद्र पाल सिंह कंडारी ने बताया कि बिहार में 9 टीमें तैनात हैं और कई अन्य टीमें अलर्ट पर हैं। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बात की। गृहमंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से हुई तबाही पर चिंता व्यक्त करते हुए महाराजगंज और कुशीनगर के स्थानीय प्रशासन को सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर कल पेचिंग में आयोजित किया गया। चीन के विशेष प्रतिनिधि सीपीसी केंद्रीय समिति के राजनयिक ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय विदेश आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग यी तथा भारत के विशेष प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारत चीन सीमा मुद्दे पर गहन विचार विमर्श किया तथा 8 बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दे पर समाधान के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु वार्ता को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर बल दिया। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रथम 2,500 पात्र महिला लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र सौंपे। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुंबई पुलिस ने एमपीएससी की ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा का प्रश्न पत्र कथित तौर पर लीक होने के मामले में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के 3 अधिकारियों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। अदालत ने सभी 6 आरोपियों को बुधवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने इन्फ्लुएंजा ए H1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। आईएमए ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। चिकित्सा संघ ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टरों की सलाह के बिना एंटीबायोटिक्स नहीं लेने को कहा है। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने फॉलोवन मिलने के बाद दूसरी पारी में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 229 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही श्रीलंका ने 16 रन की बढ़त हासिल कर ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। A massive flash flood swept through the northern part of Nepal near the border with Tibet today, claiming 46 lives so far and leaving 500 people missing, including over 100 Indians. The flood surged through the Bhotekoshi River this morning from the direction of Tibet. Security officials said at least 93 people have been rescued from different parts of the affected areas. According to the Nepal Tourism Board, those reported missing include foreign nationals and Nepali citizens. Among the foreign nationals, 105 are Indians, while 37 are NRIs, most of whom were travelling to Tibet for the Kailash Mansarovar Yatra. Other foreign nationals are from the United Kingdom, Australia, the United States, Malaysia, South Africa and the Netherlands.

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, अब वक्त है कार्यक्रम माटी के रंग का, जिसमें आज आप सुनेंगे शिवदत्त पंत के गाए कुमाऊनी लोकगीत। लीजिए शुरू करते हैं ये कार्यक्रम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम माटी के रंग में शिव दत्त पंत की गाए कुमायनी लोकगीत। हारमोनियम पर संगत दे रहे थे जाकिर धौलपुरी, सितार पर संगत दे रहे थे अकील अहमद और ढोलक पर संगत दे रहे थे गौरव पंत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, TRM 810 किलोहर्ट्स पर। और अब वक्त है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का। आज आप इस कार्यक्रम में सुनेंगे सोनाली नट्टा को राग मिश्र। तबले पर संगत दे रहे हैं बलराम शिशोदिया, हारमोनियम पर संगत दे रहे हैं दिनकर शर्मा। लीजिए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत में सोनाली नट्टा को।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में। सोनाली नत्था को स्वर थे और राग था मिश्र। तबले पर संगत दे रहे थे बलराम सिसोदिया और हारमोनियम पर संगत दे रहे थे दिनकर शर्मा। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, TRM 810 किलो हर्ट्स पर।

0: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, लीजिए सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। नेपाल तिब्बत सीमा के भोटे कोशी नदी में आई अचानक बाढ़ से अब तक 105 भारतीयों और 37 प्रवासी भारतीयों सहित करीब 500 लोग लापता हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 46 शव बरामद किए गए हैं और 93 लोगों को बचाया गया है। अधिकांश भारतीय तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। अचानक आई बाढ़ से रसुवा और धादिंग जिले प्रभावित हुए। बाद में इसका असर नोवाकोट और चितवन तक पहुंचा। लापता लोगों में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के नागरिक भी शामिल हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ये शुरुआती आंकड़े हैं। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। प्रारंभिक जांच के अनुसार भूकंप के कारण हिमस्खलन हुआ, इससे पिघली हुई बर्फ का पानी कोशी नदी में आ गया और अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ से रसुवा क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने रसुवा, नुआकोट, धादिंग, गोरखा और चितवन के प्रभावित क्षेत्रों के सांसदों के साथ स्थिति पर चर्चा की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। हेल्पलाइन नंबर हैं 9779851318077 और 9779701075000 पर संपर्क कर सकते हैं। दूतावास ने बताया है कि वह बाढ़ प्रभावित भारतीय नागरिकों के

0: बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। उन्होंने कहा कि भारत इस आपदा से प्रभावित लोगों के लिए नेपाल सरकार के राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। भारत ने बाढ़ से जूझ रहे नेपाल की सहायता के लिए 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री तथा आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत इस संकट की घड़ी में नेपाल और वहां के लोगों के साथ है। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृहमंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से हुई तबाही पर चिंता व्यक्त करते हुए महाराजगंज और कुशीनगर के स्थानीय प्रशासन को सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर कल पेइचिंग में आयोजित किया गया। चीन के विशेष प्रतिनिधि सीपीसी केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय विदेश आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग जी तथा भारत के विशेष प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारत चीन सीमा मुद्दे पर गहन विचार विमर्श किया तथा 8 बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दे पर समाधान के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु वार्ता को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने इन्फ्लुएंजा AH1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। आईएमए ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासियों ने आज तिरुओणम का पर्व मनाया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह पौराणिक राजा महाबली के स्वागत और नई फसल के आगमन की खुशी में सभी केरलवासियों द्वारा उत्साह के साथ मनाया जाता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। हंगरी में पीएसए बुडापेस्ट स्वेस ओपन में भारत के वीर चोटरानी और सेल्वन सेंथिल कुमार सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना ओरकेल। A massive flash flood swept through the northern part of Nepal near the border with Tibet today, claiming 46 lives so far and leaving 500 people missing, including over 100 Indians. The flood surged through the Bhote Koshi River this morning from the direction of Tibet. Preliminary reports suggest that the flash flood may have been triggered by an earthquake that caused an avalanche, sending large quantities of melted snow into the Bhote Koshi River. Rescue and relief operations have been intensified, with the Nepal Army deploying helicopters and disaster response teams to support search operations. Security officials said 93 people have been rescued from the different parts of the affected areas. According to the Nepal Tourism Board, those reported missing include foreign nationals and Nepali citizens. Among the foreign nationals, 105 are Indians, while 37 are NRIs, most of whom were travelling to Tibet for the Kailash Mansarovar Yatra. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan expressed grief at the loss of lives in the neighbouring country. Prime Minister Narendra Modi spoke to his Nepalese counterpart Balendra Shah and conveyed his condolences. In a social media post, Mr. Modi said, India is ready to provide all possible humanitarian assistance to Nepal. Meanwhile, India has

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं हम सभी का मनपसंद कार्यक्रम आपकी फरमाइश। साथियों, कहते हैं इंसान की आंखें सिर्फ दुनिया को देखने के लिए नहीं होती, इन आंखों में कुछ तस्वीरें ऐसी भी बसती हैं जिन्हें हम सपने कहते हैं। साथियों, कुछ सपने नींद में आते हैं और कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। किसी का सपना होता है आसमान छूने का, किसी का सपना होता है अपने घर का, किसी का सपना होता है अपने प्यार को पाने का, और किसी का सपना होता है बस इतना कि उसके जो अपने हैं उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपके साथ हूं, आपकी दोस्त शिल्पा गोस्वामी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ, और फिर बात करेंगे आपके संदेशों की।

साथियों, जब हम किसी को देखते हैं और अचानक हमारे मन में एक पूरी दुनिया बस जाती है। सपने हमेशा बड़े नहीं होते दोस्तों, कभी-कभी एक छोटी सी इच्छा भी सपना बन जाती है। बचपन में हमारा सपना होता था कि हम बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे।

एथलीट बनेंगे, अभिनेता बनेंगे या टीचर बनेंगे। देखिए, सबका अपना अपना सपना है। फिर जिंदगी आगे बढ़ती है और सपनों के मायने भी बदल जाते हैं। ये हम सभी के साथ होता है। कभी सपना नौकरी पाने का होता है, कभी अपना घर खरीदने का, कभी अपने माता-पिता को गर्व महसूस कराने का। और दोस्तों, कभी-कभी जिंदगी हमें यह सिखा देती है कि सबसे बड़ा सपना होता है सुकून से जीने का। और मुझे लगता है, देखिए, हम सभी के कोई ना कोई सपने होते हैं, ऐसे ही आपके भी कोई ना कोई सपना ऐसा होगा जिसे आप पूरा करना चाहेंगे। तो प्लीज हमें आप अपने संदेशों के द्वारा अपना सपना बता सकते हैं। फिलहाल हम लेते हैं अपने श्रोताओं के संदेश, जिन्हें सुनने के लिए आप बेकरार हैं। सबसे पहला जो संदेश हमारे पास आया है, वो आया है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज जी का। अगला जो संदेश आया है हमारे पास, बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद जी का। अगला संदेश आया है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ जी का। अगला जो संदेश है वो हमारे पास आया है मुक्कम पोस्ट फुल चिंचोली तालुका पंडरपुर, जाकिर मुलाड़ी, सुमया मुलाड़ी, सुबान मुलाड़ी, समीर मुलाड़ी और सलमा मुलाड़ी, मुमताज मुलाड़ी, दिलशाद मुलाड़ी, नसीर मुलाड़ी, चाचा चाची और पूरा मुलाड़ी परिवार का। और लीजिए, अब सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, नींद में आने वाले सपने हमारे मन, अनुभवों और भावनाओं से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ उन सपनों की बात नहीं कर रहे साथियों, जो हमें रात में दिखाई देते हैं। हम बात कर रहे हैं उन सपनों की जिन्हें हम खुली आंखों से देखते हैं। एक बेहतर जिंदगी का सपना, अपने भविष्य को साकार बनाने का सपना, अपने परिवार के लिए कुछ करने का सपना, और शायद यही सपने हम सभी को आगे बढ़ने में मदद करते हैं दोस्तों। क्योंकि जिस दिन इंसान सपने देखना बंद कर देगा ना, उस दिन उसकी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोई वजह ही नहीं रहेगी। और देखिए, हमारे पास जो हमारा अगला संदेश आया है वो है एयरपोर्ट रोड, वंदना नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी, कुमारी लड्डू देविका चौधरी। हम और ये लिखते हैं कि हमें कौन सी फिल्म में शामिल कीजिएगा। अरे, हम आपको तो अपने दिल में ही शामिल कर चुके हैं, फिल्म में क्या शामिल करना। हम तो आपके लिए जो सारे गाने प्ले कर रहे हैं वो सभी आपकी पसंद के ही हैं। और देखिए, अगला जो संदेश आया है हमारे पास वो आया है शास्त्री नगर बीच शहर से, किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, साईराज सपकाल और विशाल सपकाल जी का। अगला संदेश हमारे पास आया है गुरमीत सिंह मीता, साउथ एक्सटेंशन, खुशनुमा गीतों की महफिल में लिखते हैं ये। और लीजिए, सुनते हैं इसी से संबंधित एक गीत। लेकिन हाँ, मैं इंतजार कर रही हूँ आपके संदेशों का, जिसमें मैं ये देखना चाहती हूँ कि आपका क्या सपना है जिसे आप अपनी जिंदगी में हकीकत में बदलना चाहते हैं।

साथियों, अगला जो हमारे पास संदेश आया है वो आया है संबलपुर कांके से, फाकू राम यादव जी का, ज्योति यादव जी का और ओजस्वी यादव जी का। ये लिखते हैं, सपने को पूरा करने के लिए समर्पण व इसे पूर्ण करने की तत्परता हमेशा रहे तभी संभव है, नहीं तो सपना सपना ही रह जाता है। हमारे भी कुछ पूरे हुए, कुछ सपने ही रह गए। देखिए, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि हम जो सपने देखते हैं खुली आंखों से, उसके लिए हमें बहुत ही कोशिश करनी पड़ती है। लेकिन जो आपने लिखा है कि हमारे कुछ सपने पूरे हुए, तो देखिए वो तो साकार हो गए, और जो सपने अभी नहीं पूरे हुए, शायद है कि वो आगे जाके पूरे हो जाएं। नहीं तो जो सपने हमारे पूरे हो चुके हैं, हम उन्हीं में खुश रहना सीख लें। और अगला जो संदेश हमारे पास आया है वो आया है हमारे पास गांव गोविंदगढ़ माझी वाला श्री करनपुर राजस्थान से, राजू टूटेजा खुशदिल उर्मिला टूटेजा गुड्डू जीनू मन्नू शिव सेठी करनपुरी इस्माइल टूटेजा पवन गुज्जर जी का। अगला संदेश हमारे पास आया है पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन उषा मोहन टिल्लू नायक मधु नायक जी का। अगला जो संदेश हमारे पास आया है वो आया है दिल्ली नागलोई से राजेंद्र जाटोलिया जी का। अगला संदेश हमारे पास आया है दुर्गाई सेलू से चंदू कुलकर्णी हेमलता और सी आर कुलकर्णी जी का। अगला जो संदेश आया है हमारे पास वो आया है अनिल ताम्रकार अमर ताम्रकार दिलीप वर्मा संजय सोनी अरुण कन्नौजिया पवन यादव संजीव वर्मा विपिन गुप्ता रंजन रजक लालू सोना मोना हनी यश और उनके मम्मी पापा का।

दोस्तों, अगला जो हमारे पास संदेश आया है वो आया है सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, ये आया है शांति नगर सोनीपत से। अगला जो संदेश हमारे पास है वो हमें लिखते हैं शिल्पा बहना को नमस्कार, हमारा भी आपको प्यार भरा नमस्कार। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उस पर मेहनत करके हासिल करेंगे तो आपको हमेशा सुकून मिलेगा और नाज होगा। मैं राजस्थान के एक गांव में रहता था, शहर में बसने के लिए मेहनत की, कामयाब हुआ और सिरसा हरियाणा का वासी बन गया। फिर बड़े शहर के लिए सपना देखा और मेहनत की और चंडीगढ़ का वासी बन गया और मनाली हिमाचल में भी रैन बसेरा बना लिया। सपने देखे और उन पर मेहनत की और सफलता हासिल की। देखिए, ये चंडीगढ़ से है सतीश अनेजा जी का संदेश। देखिए सतीश जी, आपने सपना देखा और उस पर मेहनत की और आज आप सफल भी हुए हैं उसे पाने में। तो कितना अच्छा लगता है ना जब हमारे देखे हुए सपने हमारा जो अस्तित्व है उसको पूरा कर देते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। हमारा अगला संदेश आया है गांव बिटोड़ा भोयर तहसील मंगरूल पीर जिला वासिम पश्चिमी विदर्भ से, योगीराज मस्के, श्री हरि मस्के, इंदुमती मल्हार, कविता मोहन, विशाल विशाल कुशल गोपाल, श्याम गोविंद मस्के और सभी श्रोतागण का। अगला जो संदेश आया है वो आया है छोटे अंसारी जी का, ये लिखते हैं मेरा सपना एक घर से दो घर का है। जी, आप सपना देखिए और उसे साकार करने की कोशिश करिए, बिल्कुल आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। और देखिए अगला संदेश जो आया है हमारे पास आया है उत्तम नगर दिल्ली से, बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल जी का। अगला जो संदेश आया है हमारे पास वो आया है हमारे पास चंडीगढ़ सिटी सतीश अनेजा, विमल अनेजा जी का। अगला जो संदेश आया है वो आया है हमारे पास 16 नंबर वार्ड गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से, पूजा रघुवंशी, नंदिनी रघुवंशी, बबीता रघुवंशी, शोभा रघुवंशी, कुमारी मराठा, भाऊ मराठा, ललिता, जगदीश चौहान, चंदा, युवराज वानखेड़े। ये लिखते हैं हमें कोई से भी फिल्म में शामिल कर लीजिए। अरे बिल्कुल जी। और देखिए साथियों, जिंदगी का जो सफर है ना बहुत ही सुहाना होता है, और इस सफर में कभी धूप आती है तो कभी छांव, कभी हमारे सपने पूरे होते हैं और कभी अधूरे रह जाते हैं। लेकिन क्या अधूरा सपना बेकार होता है? नहीं दोस्तों, कभी कभी अधूरे जो सपने होते हैं वो हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सिखा देते हैं। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे सपने जरूर होते हैं जो पूरे नहीं हो पाते। किसी का सपना था कोई खास नौकरी पाने का, किसी का सपना था विदेश जाने का, तो किसी का सपना था किसी खास इंसान के साथ जिंदगी बिताने का। समय गुजर गया लेकिन सपना वही रह गया। ऐसे सपनों को भूलना आसान नहीं होता, लेकिन ऐसे सपनों के साथ हमें वहीं खड़े रहना भी जरूरी नहीं है दोस्तों। ऐसे सपने जब हमारे अधूरे रह जाते हैं ना, तो उनको हमारी हिम्मत बना के हमें आगे बढ़ना चाहिए।

श्रोताओं, अगला जो संदेश आया है वो आया है हमारे पास दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायब और लड्डू जी का। अगला संदेश है गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी और प्रमोद कुमार डूडी जी का। अगला संदेश है मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष राज जी का।

साथियों, ज़रूरी नहीं है कि हमारे जो सपने होते हैं वो सारे ही पूरे हों। कभी कोई सपना पूरा नहीं होता, लेकिन उसी सपने के रास्ते में हमें कोई एक नया रास्ता मिल जाता है जो हमारा सपना बन जाता है। इसलिए ज़िंदगी में अगर कोई भी सपना टूट जाए तो खुद को टूटने मत दीजिए। और देखिए, हमारा जो संदेश है अगला, वो आया है चिरमिरी कुरासिया कालरी से। इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे और कालंद्री लहरे जी का अगला संदेश है छत्तीसगढ़ पलारी से। प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का।

दोस्तों, जिन आँखों में सपने होते हैं उन आँखों में जिंदगी हमेशा जवान बनी रहती है। इसी गीत के साथ अब इजाज़त दीजिए अपनी दोस्त शिल्पा को। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर 12 बजने को है। इन मीटरों पर हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज़ 24x7 पर हमारे प्रसारण जारी हैं। अब कुछ ही देर में समाचार होंगे।

0: आइए अब सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। नेपाल तिब्बत सीमा के भोटे कोशी नदी में आई अचानक बाढ़ से अब तक 105 भारतीयों और 37 प्रवासी भारतीयों सहित करीब 500 लोग लापता हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 46 शव बरामद किए गए हैं और 93 लोगों को बचाया गया है। अधिकांश भारतीय तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। अचानक आई बाढ़ से रसुवा और धादिंग जिले प्रभावित हुए। बाद में इसका असर नुवाकोट और चितवन तक पहुंचा। चीन में पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में हाल में आई अचानक बाढ़ में आसपास फंसे भारतीय नागरिक हेल्पलाइन नंबरों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मदद के लिए भारतीय नागरिक दूतावास से 0086-185-1428-4905 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर भी संपर्क किया जा सकता है। उस क्षेत्र में मौजूद चीनी अधिकारियों से 0086-139-8999-0012 नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है। काठमांडू में भारतीय दूतावास के हेल्पलाइन नंबर 977-985-131-6807 और 977-970-910-7500 हैं। इन दोनों नंबरों पर व्हाट्सएप पर भी संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में बचाव और राहत कार्यों के लिए हर संभव मानवीय सहायता की पेशकश और एकजुटता की भावना व्यक्त करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी के फोन कॉल और गहरी संवेदनाओं का आभार जताते हुए श्री बालेन शाह ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में कहा कि हम इस मुश्किल समय में नेपाल के प्रति आपके एकजुटता भरे शब्दों और सहायता की उदार पेशकश की

0: अत्यंत सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि एकजुटता की यह भावना दोनों देशों के बीच गहरे मैत्रीपूर्ण संबंधों को दर्शाती है, जिसे हम बेहद महत्व देते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने प्राकृतिक आपदा पर नेपाल के प्रधानमंत्री श्री बालेंद्र शाह से बात की और वहां बाढ़ से हुई जनहानि पर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने संदेश में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने को तैयार है और भारतीय टीमें बचाव और राहत कार्यों में मिलकर मदद मुहैया करा रही हैं। तिब्बत से आरंभ हुई भीषण बाढ़ से मध्य नेपाल में कई कस्बे और गांव तबाह हो गए हैं। इससे पुल बह गए हैं और दर्जनों जल विद्युत परियोजनाएं ठप हो गई हैं। इस विनाशकारी बाढ़ में लगभग 100 लोगों की मौत हो गई है और 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लापता हैं। भारत ने नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मदद के लिए 10 टन मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री और आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि संकट की घड़ी में भारत नेपाल और वहां के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने भीषण बाढ़ में अपने प्रियजनों को खोने वाले और सभी बाढ़ प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। भारत ने C-130J विमान से आपातकालीन सामग्री, अस्थायी आश्रय के लिए तंबू, कंबल, स्वच्छता किट, सोलर लैंप और दवाइयां भेजी हैं। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृहमंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से हुई तबाही पर चिंता व्यक्त करते हुए महाराजगंज और कुशीनगर के स्थानीय प्रशासन को सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर पेइचिंग में आयोजित किया गया। चीन के विशेष प्रतिनिधि CPC केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय विदेश आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग जी तथा भारत के विदेश प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मौजूद थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Nina Rakel. A massive flash flood swept through the northern part of Nepal near the border with Tibet, claiming 46 lives so far and leaving 500 people missing, including over 100 Indians. The flood surged through the Bhote Koshi River yesterday from the direction of Tibet. Preliminary reports suggest that the flash flood may have been triggered by an earthquake that caused an avalanche, sending large quantities of melted snow into the Bhote Koshi River. Rescue and relief operations have been intensified, with the Nepal Army deploying helicopters and disaster response teams to support search operations. Security officials said 93 people have been rescued from the different parts of the affected areas. According to the Nepal Tourism Board, NTB, those reported missing include foreign nationals and Nepali citizens. Among the foreign nationals, 105 are Indians, while 37 are NRIs, most of whom were travelling to Tibet for the Kailash Mansarovar Yatra. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi expressed grief at the loss of lives in the neighbouring country. Mr. Modi spoke to his Nepalese counterpart Balendra Shah and conveyed his condolences. In a social media post, the Prime Minister said, India is ready to provide all possible humanitarian assistance to Nepal. Meanwhile, India has dispatched 10 tons of humanitarian assistance and disaster relief and essential medicines to support the people of Nepal. The Indian Embassy in Kathmandu has issued emergency numbers for assistance and information regarding Indian nationals affected by the flash floods in Nepal. The embassy said that people requiring assistance can contact the embassy on helpline +977-985-131-6807, +977-970-910-7500 and +977-981-0

नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कीर्तिका है आप सभी को प्रणाम। सुरों का सफरनामा कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम समर्पित है हिंदी सिनेमा के एक ऐसे अजीम शायर और गीतकार को, जिनकी कलम से निकले गीतों ने हर शादी ब्याह, देशभक्ति के गीतों और लोक संगीत को अमर बना दिया। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं वर्मा मलिक की, जिन्होंने लगभग 500 गीत लिखे और अपनी सादगी व पंजाबी लोक रस के संगम से भारतीय सिनेमा को नए मुकाम पर पहुंचाया। अप्रैल 1925 को अविभाजित भारत के पंजाब फिरोजपुर में एक बालक का जन्म हुआ, जिनका नाम रखा गया बरकत राय मलिक। बचपन से ही देशभक्ति और कविता का जुनून उनके अंदर दौड़ रहा था। ब्रिटिश राज के दौरान वे एक सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे और अपने देश प्रेमी गीतों व भजनों से लोगों में अलख जगाते थे। विभाजन के दर्द के बाद वे भारत आए और अपनी किस्मत आजमाने लगे। पंजाबी फिल्मों से उन्होंने अपना सफर शुरू किया, लेकिन क्या आप जानते हैं, संगीत निर्देशक हंसराज बहल जी की सलाह पर उन्होंने अपना नाम बरकत राय से बदलकर वर्मा मलिक रखा था। और भी बातें होंगी इनके जीवन सफर पर, आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म यादगार से इनका लिखा ये गीत।

0: हम मोहन लाल जी।
1: हाँ सोहन लाल जी।
2: बोलो लाल जी।
0: अरे यार कन्हैया
1: बैठा चुप है भैया।
2: मेरा भैया।
3: हाँ हाँ तेरा भैया। हाँ हाँ मेरा भैया।
2: भैया भैया बोलो भैया।
4: बोलूं क्या मैं? अरे बोल कन्हैया।

0: 1950 के दशक में चकोरी, जग्गू जैसी पंजाबी और हिंदी फिल्मों में काम करने के बाद भी वर्मा मलिक जी को वो पहचान नहीं मिल पा रही थी जिसके वे हकदार थे। लगभग 7 साल यानी 1961 से 1967 तक वे गुमनामी और इंडस्ट्री से दूर रहे। लेकिन कहते हैं ना कि हुनर कभी छिपता नहीं। उनकी किस्मत का ताला खोला भारत कुमार यानी मनोज कुमार जी ने। मनोज जी ने उनके हुनर को पहचाना और 1970 में फिल्म यादगार के लिए उन्हें गीत लिखने का मौका दिया। महेंद्र कपूर की आवाज में गाया गया गाना एक तारा बोले इतना बड़ा हिट हुआ कि वर्मा मलिक रातों रात हर संगीत प्रेमी की जुबान पर चढ़ गए। आइए सुनवाते हैं इनकी एक और रचना।
1: कहूंगा एक बार नहीं हजार बार कहूंगा, तुम चोर हो चोर हो चोर हो।
2: क्या चुराया है मैंने तुम्हारा? बोलो क्या चुराया है?
3: मेरा दिल।
2: क्या

समझी। अरमानों के खुले दरीचे आ जा जरा सिमट के, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे 85 झटके। हट तेरा।

1970 में वर्मा मलिक के जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसी साल रिलीज हुई फिल्म पहचान, और इस फिल्म के गीतों ने तहलका मचा दिया। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूं, और सबसे बड़ा नादान वही है, जैसे गीतों ने लोगों के दिल को छू लिया। और इसी फिल्म पहचान के लिए वर्मा मलिक को 1971 का बेस्ट लिरिसिस्ट का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। ये उनके जीवन की पहली बड़ी व्यावसायिक और आधिकारिक पहचान थी।

0: इसके बाद वर्मा मलिक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जी हाँ, 1972 में आई फिल्म बेईमान। इस फिल्म के गीत जय बोलो बेईमान की के लिए इन्हें 1973 में अपना दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला। संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ उनकी जुगलबंदी ने एक के बाद एक सुपरहिट गाने दिए। प्यारेलाल अक्सर कहते थे कि वर्मा मलिक बहुत ही सरल और स्पष्ट विचारों वाले इंसान थे, जिन्हें अपने काम पर गहरा गर्व था।
1: बेईमान की,
2: जय
1: बेईमान की।

सुरों का सफरनामा कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज बात हो रही है वर्मा मलिक के जीवन सफर पर। 1974 में मनोज कुमार की ही फिल्म आई रोटी कपड़ा और मकान। इस फिल्म के गीतों ने भारतीय संगीत इतिहास में नया कीर्तिमान रचा। महंगाई मार गई और हाय हाय ये मजबूरी जैसे गानों ने समाज की नब्ज पकड़ ली। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1975 की बिनाका गीतमाला की वार्षिक रैंकिंग में नंबर एक गाना महंगाई मार गई और नंबर दो गाना हाय हाय ये मजबूरी था। एक ही फिल्म और एक ही गीतकार के दो गानों का टॉप टू पर होना ऐतिहासिक था।

शर्मा मलिक अमर रहेंगे। क्यों? क्योंकि 1977 की फिल्म आदमी सड़क का के लिए उन्होंने जो गाना लिखा वो आज भी हर भारतीय शादी में अधिकतर प्ले होता है। आज मेरे यार की शादी है। जी हाँ, इसी तरह फिल्म नागिन का गाना तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना और संजोग का यशोदा का नंद लाला दर्शाता है कि वर्मा मलिक के पास रोमानियाई भक्ति और लोक रस का कितना अद्भुत संतुलन था।

आइए एक नजर डालते हैं फरमा मलिक जी के करियर के प्रमुख सम्मानों पर। 1971 में इन्हें फिल्म पहचान के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला सर्वश्रेष्ठ गीतकार के लिए, और 1973 में फिल्म बेईमान के लिए। उनकी लेखनी की सबसे बड़ी ताकत थी सरलता और जमीनी जुबान। उन्होंने कभी भारी भरकम शब्दों का सहारा नहीं लिया, बल्कि आम इंसान के दर्द, खुशी और

1990 के दशक तक सक्रिय रहने के बाद 15 मार्च 2009 को 83 वर्ष की आयु में मुंबई के जुहू में वर्मा मलिक ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वे शारीरिक रूप से भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन जब भी किसी दोस्त की शादी में ढोल बजेगा या रेडियो पर हाय हाय ये मजबूरी गूंजेगा, वर्मा मलिक की कलम मुस्कुराती हुई नजर आएगी। दोस्तों, आशा है वर्मा मलिक जी के ये जीवन यात्रा आपको पसंद आई होगी जो हमने सुरों का सफरनामा कार्यक्रम में शामिल की। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।

0: अभी आपने सुना फिल्म संजोग से वर्मा मलिक का लिखा ये खूबसूरत गीत जो लता मंगेशकर की आवाज में था, और इसी के साथ वर्मा मलिक के जीवन सफर को यहीं पर सुरों का सफर नामा कार्यक्रम में समाप्त करते हैं। अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत और जुड़े रहिए हमारे साथ AR लाइव News 24x7 पर हमारे अन्य कार्यक्रमों में। फिलहाल रात्रि के 1 बजने वाले हैं, कुछ ही देर में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। नेपाल तिब्बत सीमा के भोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ से मध्य नेपाल में कई कस्बे और गांव तबाह हो गए हैं। इससे पुल बह गए हैं और दर्जनों जल विद्युत परियोजनाएं ठप हो गई हैं। इस विनाशकारी बाढ़ में लगभग 100 लोगों की मौत हो गई है और 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लोग लापता हैं। चीन में पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में हाल में आई अचानक बाढ़ से आसपास फंसे भारतीय नागरिक हेल्पलाइन नंबरों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मदद के लिए भारतीय नागरिक दूतावास से 0086-185-1428-4905 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर भी संपर्क किया जा सकता है। उस क्षेत्र में मौजूद चीनी अधिकारियों से 0086-139-899-00-12 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। काठमांडू में भारतीय दूतावास के हेल्पलाइन नंबर 9779851316807 और 9779701075000 हैं। इन दोनों नंबरों पर व्हाट्सएप पर भी संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में बचाव और राहत कार्यों के लिए हर संभव मानवीय सहायता की पेशकश और एकजुटता की भावना व्यक्त करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी के फोन कॉल और गहरी संवेदनाओं पर आभार जताते हुए श्री बालेंद्र शाह ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में कहा कि हम इस मुश्किल समय में नेपाल के प्रति आपके एकजुटता भरे शब्दों और सहायता की उदार पेशकश की अत्यंत सराहना करते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने इस प्राकृतिक आपदा पर नेपाल के प्रधानमंत्री श्री बालेन्द्र शाह से बात की और वहां बाढ़ से हुई जनहानि पर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने संदेश में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने को तत्पर है और भारतीय टीमें बचाव और राहत कार्यों में मिलकर मदद मुहैया करा रही हैं। भारत ने नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मदद के लिए 10 टन मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, अस्थायी आश्रय के लिए तंबू, कंबल, स्वच्छता किट, सोलर लैंप और दवाइयां C-30 जे विमान से भेजी हैं। विदेश

मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि इस संकट की घड़ी में भारत नेपाल और वहां के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। विश्व बैंक ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को बचाव, राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 25 अरब नेपाली रुपए की आपातकालीन आर्थिक सहायता की पेशकश की है। नेपाल के लिए विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर डेविड सिसलेन ने नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले को बताया कि बाढ़ की खबर मिलने के तुरंत बाद आपातकालीन सहायता के तौर पर अलग अलग स्रोत से 25 अरब नेपाली रुपए जुटाने का काम शुरू किया गया। भारत ने नेपाल सरकार को तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री उपलब्ध कराई है। नेपाल के वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि चीन ने भी नेपाल को तुरंत आर्थिक मदद देने का वादा किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से नेपाल में आई बाढ़ के बारे में बात की। श्री शाह ने कहा कि जिन सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ का असर हो सकता है, वहां स्थानीय प्रशासन और राहत तथा बचाव टीमों के साथ ही राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मिजोरम में 6 सड़कों के निर्माण के लिए 256 करोड़ 70 लाख रुपए मंजूर किए जाने की घोषणा की है। श्री गडकरी ने बताया कि इन सड़कों की कुल लंबाई 82.89 किलोमीटर होगी और इनका निर्माण केंद्रीय सड़क अवसंरचना योजना के अंतर्गत किया जाएगा। भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय नागरिक परमाणु सहयोग में हुए विकास और इस क्षेत्र में संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की समुद्र में उपयोग के लिए लाइसेंस प्राप्त परमाणु प्रौद्योगिकी पहल के शुभारंभ से पहले परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती ने वॉशिंगटन में अमरीकी ऊर्जा सचिव क्रिस राइट से मुलाकात की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आपने सुना ये गीत दिल अपना और प्रीत पराई से लता मंगेशकर की आवाज़ में। अगला गीत आइए सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी का स्वर है।

वो कौन थी? जी हाँ, आपने सही समझा कि कौन सा गीत आप तक आने वाला है। सुरों की कोकिला लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत है। मदन मोहन ने संगीत से पिरोया है और बोल राजा मेहदी अली खान की हैं।

0: बरसों बाद यूं खुदने निकली हूं। ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी।
1: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
0: पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
1: एक काम करें, जब तक तुम यहां हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ है?
0: भूल गई। ना ना,
1: तुम नहीं बदलोगी। लो

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

अब आइए आपको अगला गीत सुनवाते हैं, फिल्म मेरे जीवन साथी से किशोर कुमार की आवाज है, बोल मजरूह सुल्तानपुरी के हैं और संगीत से पिरोया है आर डी बर्मन ने।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे और पुराने फिल्मी नगमों का सफर जारी है। तो चलिए अगला गीत सुनवाने जा रहे हैं फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा से, किशोर कुमार की आवाज़ है।

गीत सुनहरे कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं इस कार्यक्रम का आखिरी गीत। फिल्म कटी पतंग से ये आ रहा है किशोर कुमार की आवाज में।

0: इसी गीत के साथ गीत सुनहरे कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। अब समय है समाचारों का।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। नेपाल तिब्बत सीमा के भोटे कोशी नदी में अचानक आई बाढ़ से मध्य नेपाल में कई कस्बे और गांव तबाह हो गए हैं। पुल बह गए हैं और दर्जनों जल विद्युत परियोजनाएं ठप हो गई हैं। इस विनाशकारी बाढ़ में लगभग 100 लोगों की मौत हो गई है और 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लोग लापता हैं। राहत और बचाव कार्य जारी हैं। चीन में पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में हाल में अचानक बाढ़ आई से फंसे भारतीयों नागरिक हेल्पलाइन नंबरों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मदद के लिए भारतीय नागरिक दूतावास से 0086-185-1428-4905 पर संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर भी संपर्क किया जा सकता है। उस क्षेत्र में मौजूद चीनी अधिकारियों से 0086-139-8999-0012 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। काठमांडू में भारतीय दूतावास के हेल्पलाइन नंबर 977-985-131-6807 और 977-970-910-7500 हैं। इन दोनों नंबरों पर व्हाट्सएप पर भी संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने इस प्राकृतिक आपदा पर नेपाल के प्रधानमंत्री श्री बालेंद्र शाह से बात की और वहां बाढ़ से हुई जनहानि पर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने संदेश में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने को तत्पर है और भारतीय टीमें बचाव और राहत कार्यों में मिलकर सहायता उपलब्ध करा रही हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में बचाव और राहत कार्यों के लिए हर संभव मानवीय सहायता की पेशकश की और एकजुटता की भावना व्यक्त करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। श्री मोदी के फोन कॉल और गहरी संवेदनाओं पर आभार जताते हुए श्री बालेंद्र शाह ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में कहा कि हम इस मुश्किल समय में नेपाल के प्रति आपके एकजुटता भरे शब्दों और सहायता की उदार पेशकश की अत्यंत सराहना करते हैं। इस बीच भारत ने नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मदद के लिए 10 टन मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, अस्थायी आश्रय के लिए तंबू, कंबल, स्वच्छता किट, सोलर लैंप और दवाइयां C-130J विमान से भेजी हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि संकट की इस घड़ी में भारत नेपाल और वहां के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। विश्व बैंक ने बाढ़ से प्रभावित नेपाल को बचाव, राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 25 अरब नेपाली रुपए की आपातकालीन आर्थिक सहायता की पेशकश की है। नेपाल के लिए विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर डेविड सिस्लेन ने नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम बागले को बताया कि बाढ़ की खबर मिलने के तुरंत बाद आपातकालीन सहायता के तौर पर अलग अलग स्रोत से 25 अरब नेपाली रुपए जुटाने का काम शुरू किया गया। भारत ने नेपाल सरकार को तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री उपलब्ध कराई है।

0: केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वैश्विक स्तर पर प्रासंगिक बने रहने में भारत के लिए कौशल के साथ साथ बौद्धिक क्षमता निर्माण भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने नई दिल्ली में क्षमता निर्माण पर आयोजित एक गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि तेजी से बदलते तकनीकी और वैश्विक परिवेश का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए क्षमता निर्माण को व्यक्तिगत कौशल आधारित दृष्टिकोण से विकसित होकर एक सामूहिक और समग्र समाज के प्रयास में तब्दील होना चाहिए। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जारी निर्देशों पर हुई प्रगति का जायजा लिया गया और चल रही पहलों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। श्री जोशी ने समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने और प्रभावी ढंग से आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने की जरूरत पर बल दिया। सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी कीमतों के दबाव नियंत्रित करने के लिए बफर स्टॉक से प्याज चरणबद्ध और लक्षित तरीके से जारी करना शुरू कर दिया है। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक मंत्रालय ने 2025-26 के लिए प्याज का अनुमानित उत्पादन 3 लाख मीट्रिक टन रहने की बात कही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। A massive flash flood swept through the northern part of Nepal near the border with Tibet, claiming 46 lives so far and leaving 500 people missing, including over 100 Indians. The flood surged through the Bhote Koshi River yesterday from the direction of Tibet. Preliminary reports suggest that the flash flood may have been triggered by an earthquake that caused an avalanche, sending large quantities of melted snow into the Bhote Koshi River. Rescue and relief operations have been intensified, with the Nepal Army deploying helicopters and disaster response teams to support search operations. Security officials said 93 people have been rescued from different parts of the affected areas. According to the Nepal Tourism Board, NTB, those reported missing include foreign nationals and Nepalese citizens. Among the foreign nationals, 105 are Indians, while 37 are NRIs, most of whom were traveling to Tibet for the Kailash Mansarovar Yatra. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi expressed grief at the loss of lives in the neighbouring country. Mr. Modi spoke to his Nepalese counterpart Balendra Shah and conveyed his condolences. In a social media post, the Prime Minister said India is ready to provide all possible humanitarian assistance to Nepal. Prime Minister of Nepal Balendra Shah thanked Prime Minister Narendra Modi for his warm words of solidarity and offering all possible humanitarian assistance to the flood-hit country for the rescue and relief operations. Meanwhile, India has dispatched 10 tons of humanitarian assistance and disaster relief and essential medicines to support the people of Nepal. The Indian Embassy in Kathmandu has issued emergency numbers for assistance and information regarding Indian nationals affected by the flash floods in Nepal. The embassy said that people requiring assistance can contact the embassy on helpline plus 977-985-131-6807. Plus 977-970-910-7500 and plus 977-981-032-6117. These emergency numbers can also be contacted through WhatsApp. Bihar has stepped up preparedness following flash floods in the Himalayan nation and the possibility of a sudden rise in the water level of the Gandak River. Heightened vigilance is being maintained in 6 districts of Bihar: West Champaran, East Champaran, Gopalganj, Saran, Muzaffarpur and Vaishali. Chief Minister Samrat Chaudhary said that a high-level team has been constituted to closely monitor the situation. Union Home Minister Amit Shah spoke to Chief Minister Samrat Chaudhary over the phone in view of the flood situation in neighbouring country. Mr. Shah assured the state government of providing all possible assistance to deal with the emerging situation. In Uttar Pradesh as well, vigilance has been intensified in the districts of Maharajganj and Kushinagar near the Nepal border. Chief Minister Yogi Adityanath has directed the local administration to take all necessary precautionary measures and maintain strict vigil. NDRF Commandant Gyaneshwar Singh said the National Disaster Response Force, NDRF, has deployed 19

0: leaves of onions from its buffer stock to ensure sufficient supply and control seasonal price increases in the coming months. Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said onion availability is comfortable, with production estimated at over 307 lakh metric tons for 2025-26. Buffer onions will be sold at 35 rupees per kg through NCCF, NAFED, Safal and Kendriya Bhandar outlets as well as mobile vans. And the Meghalaya cabinet has approved the proposal to notify thunderstorm and strong winds other than cyclone as a state and local disaster. And that is the end of this news bulletin.
1: आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर। रात्रि के 2:10 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत बहार। मैं हूं आपकी दोस्त कीर्ति आपके साथ, और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक, और बिल्कुल फहरिस्त तैयार है। इन गीतों के सफर पर चलने के लिए आप और हम भी तैयार हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

0: आप सुन रहे थे नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक का कार्यक्रम गीत बहार, और इसी गीत के साथ अब इस कार्यक्रम को संपन्न करने की मैं आपसे चाहूंगी इजाजत। आपकी दोस्त कीर्ति थी आपके साथ। फिलहाल रात्रि के 3 बजने वाले हैं, कुछ ही देर में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। नेपाल तिब्बत सीमा के भोटेकोशी नदी में अचानक आई बाढ़ से मध्य नेपाल में कई कस्बे और गांव तबाह हो गए हैं। पुल बह गए हैं और दर्जनों जल विद्युत परियोजनाएं ठप हो गई हैं। इस विनाशकारी बाढ़ में लगभग 100 लोगों की मौत हो गई है और 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लोग लापता हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। चीन में पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में हाल में आई अचानक बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिक हेल्पलाइन नंबरों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मदद के लिए भारतीय नागरिक दूतावास से 0086-185-1428-4905 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर भी संपर्क किया जा सकता है। उस क्षेत्र में मौजूद चीनी अधिकारियों से 0086-139-899-0012 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। काठमांडू में भारतीय दूतावास के हेल्पलाइन नंबर 977-985-131-6807 और 977-970-910-7500 हैं। इन दोनों नंबरों पर व्हाट्सएप पर भी संपर्क किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने इस प्राकृतिक आपदा पर नेपाल के प्रधानमंत्री श्री बालेंद्र शाह से बात की और वहां बाढ़ से हुई जनहानि पर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने संदेश में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने को तत्पर है और भारतीय टीमें बचाव और राहत कार्यों में मिलकर सहायता उपलब्ध करा रही हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में बचाव और राहत कार्यों के लिए हर संभव मानवीय सहायता की पेशकश और एकजुटता की भावना व्यक्त करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने फोन कॉल और गहरी संवेदनाओं का आभार व्यक्त करते हुए श्री बालेंद्र शाह ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में कहा कि हम मुश्किल समय में नेपाल के प्रति आपके इस एकजुटता भरे शब्दों और सहायता की उदार पेशकश की अत्यंत सराहना करते हैं। इस बीच भारत ने नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मदद के लिए 10 टन मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, अस्थायी आश्रय के लिए तंबू, कंबल, स्वच्छता किट, सोलर लैंप और दवाइयां C-130J विमान से भेजी हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि इस संकट की घड़ी में भारत नेपाल और वहां के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से नेपाल में आई बाढ़ के बारे में बात की। श्री शाह ने कहा कि जिन सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ का असर हो सकता है वहां स्थानीय प्रशासन और राहत तथा बचाव टीमों के साथ ही राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। विश्व बैंक ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को बचाव, राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 25 अरब नेपाली रुपए की आपातकालीन आर्थिक सहायता की पेशकश की है। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर पेचिंग में आयोजित किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि व्यस्ततम रेल लाइनों को 4 लेन में बदलने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि देश में 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं जो तकरीबन 11,000 किलोमीटर तक फैले हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली हावड़ा, हावड़ा चेन्नई,

ये आकाशवाणी दिल्ली का ये लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है और स्टूडियो की घड़ी में रात के 3:10:15 हुए हैं। श्रोताओं, ये वक्त है कार्यक्रम गीतों और गज़लों का। आज के गीत गज़ल कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी सरिता। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज करते हैं मिताली की खूबसूरत आवाज के साथ।

लीजिए सुनते हैं अगली पेशकश एक बार फिर मिताली की आवाज में ही। आप सुन रहे हैं गीतों और गजलों का कार्यक्रम अपनी दोस्त सरिता के साथ।

श्रोताओं, गीतों और गज़लों का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाज़त। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का एआई लाइव न्यूज 24x7 चैनल है और स्टूडियो की घड़ी में प्रातः 4 बजे हैं। लीजिए सुनते हैं अगला कार्यक्रम।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

ऋषि व पुरे से सुप्रभातम सुनिए। रचना ज्ञानानंद सरस्वती की है। स्वर दिया है पारसाला पुन्नमाल ने।

0: इसी के साथ अर्चना कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का एयर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है और समय हुआ है रात 4:20। लीजिए सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे एस आर जानकी रमन का गायन। वायलिन पर आपका साथ दिया है

अभी आप सुन रहे थे कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्मा। आज के कार्यक्रम में आपने सुना एस आर जानकी रमन का गायन। आपके साथ वायलिन पर थी लक्ष्मी नारायण शास्त्री। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। आज बृहस्पतिवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 5वीं तिथि, तदनुसार 27 अगस्त 2026। सुबह के 4:53 और 55 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से अवगत करा देते हैं। अब से थोड़ी ही देर में ठीक 5:10 पर सुनेंगे आप कार्यक्रम आओ योग करें। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे उज्जायी प्राणायाम और वृक्षासन के बारे में। देशभक्ति गीतों का वक्त रहेगा प्रातः 5:20। 5:30 पर आप सुन सकते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी। छह बजकर दस मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदना। प्रातः 6:40 का वक्त रहेगा चिंतन कार्यक्रम का। आज के चिंतन कार्यक्रम में आप सुनेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में। प्रातः 6:45 का वक्त है श्री रामचरितमानस से पाठ का। आज इसके अंतर्गत आप सुनेंगे अयोध्या कांड का भाग 30। वह 7:10 पर आप सुन सकते हैं संगीतिका गीतों भरी गुड मॉर्निंग। इस कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं आप आज सुबह 7:30 पर। 8:45 का वक्त है भारतीय शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वरगंगा का। नौ बजकर 15 पर होगा कार्यक्रम उद्योग पत्रिका मिट्टी दी महक। इसका वक्त रहेगा 9:30 पर। 9:30 का कार्यक्रम आपकी पसंद, इसका आनंद ले सकते हैं आप 10:10 पर। और 11:10 पर सुनेंगे आप कार्यक्रम स्वरांजलि। ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रातः 5:00 हैं। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत द्वारा आयोजित

0: ये कार्यक्रम देश भर में आयोजित किया जाएगा। ये खेल युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण को एक साझा मंच प्रदान करेगा। इससे युवाओं को देश के खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा। नेपाल तिब्बत सीमा के भुटकोशी नदी में अचानक आई बाढ़ से मध्य नेपाल के कई कस्बे और गांव तबाह हो गए हैं। दर्जनों जल विद्युत परियोजनाएं ठप हो गई हैं। इस विनाशकारी बाढ़ में लगभग 100 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 133 भारतीय नागरिकों समेत 750 से अधिक लोग लापता हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। चीन में पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में अचानक आई बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिक हेल्पलाइन नंबरों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मदद के लिए भारतीय नागरिक दूतावास से 00801851429045 पर संपर्क कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में बाढ़ से हुई जनहानि पर दुख व्यक्त किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में बचाव और राहत कार्यों के लिए मानवीय सहायता की पेशकश की और एकजुटता की भावना व्यक्त करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने इस प्राकृतिक आपदा पर नेपाल के प्रधानमंत्री श्री बालेंद्र शाह से बात की और वहां बाढ़ से हुई जनहानि पर संवेदना व्यक्त की। इस बीच भारत ने नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मदद के लिए C-130J विमान से मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, स्वच्छता किट, सोलर लैंप और दवाइयां भेजी हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि संकट की इस घड़ी में भारत नेपाल के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। विश्व बैंक ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को बचाव, राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 25 अरब नेपाली रुपए की आपातकालीन आर्थिक सहायता की पेशकश की है। विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर डेविड सिसलिन ने बताया कि बाढ़ की खबर मिलने के तुरंत बाद आपातकालीन सहायता के तौर पर अलग अलग स्रोत से 25 अरब नेपाली रुपए जुटाने का काम शुरू किया गया। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर पेचिंग में आयोजित किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सुव्यवस्थित रेल लाइनों को 4 लेन में बदलने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि देश में 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं, जो तकरीबन 11,000 किलोमीटर तक फैले हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली हावड़ा, हावड़ा चेन्नई, चेन्नई मुंबई, मुंबई दिल्ली, दिल्ली चेन्नई, मुंबई हावड़ा और दिल्ली गुवाहाटी 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जारी निर्देशों पर हुई प्रगति का जायजा लिया गया और चल रही पहलों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। पीएसए बुडापेस्ट स्क्वॉश ओपन में भारत के वीर चोटरानी और विल्वन सेंथिल कुमार सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। चोटरानी ने क्वार्टर फाइनल में मिस्र के मोहम्मद अल शेरबिनी को 3-1 से और विल्वन सेंथिल कुमार ने मलेशिया के NUNG को 3-0 से हराया। सेमीफाइनल में आज दोनों भारतीय खिलाड़ियों का आमना सामना होगा। मुंबई में एशियाई जूनियर क्लासिकल शतरंज चैंपियनशिप में मयंक चक्रवर्ती ने ओपन और प्रतीति बोर्दोलोई ने लड़कियों के वर्ग का खिताब जीत लिया है। मयंक ने 9 राउंड की ओपन चैंपियनशिप में 7.5 अंक जबकि प्रतीति ने 7.5 अंक हासिल कर लड़कियों के वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने फॉलो ऑन मिलने के बाद दूसरी पारी में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 229 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही श्रीलंका ने 16 रन की बढ़त बना ली है। श्रीलंका पहली पारी में 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. In Nepal, nearly 160 people have been killed and over 750 included including 133 Indian nationals, remain missing after a massive

नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी शौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। दोस्तों, तनाव ग्रस्त जीवन शैली से थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम आजकल बहुत ही कॉमन हो गई है। आधुनिक जीवन में व्यक्ति अनेक चिंताओं से ग्रस्त है, जैसे परिवार की चिंताएं, पर्सनल प्रॉब्लम्स या ऑफिस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो आज हम के सेशन में हम देखेंगे कि थायराइड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उससे आप कैसे निजात पा सकते हैं। थायराइड हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है, जिसका काम होता है हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण करना, और साथ ही साथ यह ग्रंथि हमारे हृदय, मांसपेशियों और कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रण करती है। परंतु जब यह ग्रंथि सही रूप से काम नहीं कर पाती, तो हमारे शरीर में हाइपर या हाइपोथायरॉयडिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, और उससे उत्पन्न होने वाली कॉन्सिक्वेंसेस को हमें फेस करना पड़ता है। देखा गया है कि योग अभ्यास में उज्जयी प्राणायाम थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करने में काफी सहायक है। तो आज हम सीखेंगे कि उज्जयी प्राणायाम किस प्रकार किया जाता है। तो इसकी अभ्यास विधि के लिए आप सबसे पहले किसी भी सुखद पूर्वक आसन में बैठ जाएं, अपने मुंह को बंद कर लें, पूरे क्षेत्र को गले के पिछले हिस्से पर संकुचित कर लें, दोनों नासिकाओं से धीरे धीरे एक ही लय में तब तक श्वास भरते रहें जब तक आप गले से लेकर हृदय तक उसको महसूस ना करें। श्वास लेने के क्रम में कंठ द्वार यानी थ्रोट रीजन के आंशिक रूप से बंद होने के कारण एक विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न होती है। यह ध्वनि हल्की और समान होनी चाहिए, साथ ही साथ इसे लगातार करते रहना चाहिए। श्वास लेते समय सीने को फुलाएं। कुछ समय पश्चात धीरे धीरे दोनों नासिका छिद्र से श्वास को बाहर निकालें। यह इस अभ्यास का एक चक्र है। इसी प्रकार एक सेशन में आप कम से कम 4 से 5 बार उज्जयी प्राणायाम अवश्य करें, तभी आप इसका परिपूर्ण रूप से लाभ उठा पाएंगे। उज्जयी प्राणायाम आपके थायराइड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उससे काफी निजात पा सकते हैं। प्राणायाम के साथ साथ आप सर्वांगासन को भी कर सकते हैं, यह भी थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए काफी हद तक लाभकारी है। तो इस सेशन में आज हमने सीखा कि किस प्रकार आप थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए उज्जयी प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप योग अभ्यास करें, तो कुछ बातों का अवश्य ध्यान दें। कोई भी आप योग अभ्यास करें, उसे सहज पूर्वक करें, पूरी एकाग्रता के साथ करें, तभी आप उसका लाभ उठा पाएंगे और अपने जीवन को खुशहाल बना पाएंगे। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। नमस्कार।

आप सभी को सादर प्रणाम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमानी शौखन, आपकी योग विशेषज्ञ। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग अभ्यास बताऊंगी जो बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है। केवल बच्चों के लिए ही नहीं, परंतु हर वर्ग के लोगों के लिए यह आसन जरूरी है। आज हम करेंगे वृक्षासन। वृक्ष शब्द का अर्थ है पेड़। इस आसन के अभ्यास की अंतिम अवस्था में हमारा शरीर एक पेड़ का आकार ले लेता है, यानी बिल्कुल सीधा

0: हो जाता है, इसीलिए इस आसन को वृक्षासन कहते हैं। आजकल लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती जा रही है, यानी किसी भी कार्य में ध्यान ना लगना। इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई भी काम लगन से तो करना चाहते हैं, पर लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन यानी एकाग्रता की कमी से उस कार्य को परिपूर्ण रूप से नहीं कर पाते और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी हमें आगे फेस करना पड़ता है। वृक्षासन का अभ्यास करते समय सर्वप्रथम दोनों पैरों को एक दूसरे से 2 इंच की दूरी पर रखकर खड़े हो जाएं। आंखों के सामने किसी भी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए दाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को बाएं पैर की अंदरूनी जांग पर रखें। श्वास को शरीर के अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाकर दोनों हथेलियों को जोड़ें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास करें और सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए हाथों और दाएं पैर को मूल अवस्था में वापस ले आएं। शरीर को शिथिल करें और इसी आसन का अभ्यास पुनः बाएं पैर से भी दोहराएं। दोस्तों, यह आसन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। यदि आप इस आसन को 3 से 4 बार एक सेशन में दोहराते हैं तो यह धीरे धीरे आपकी एकाग्रता को बढ़ाने में सहायक है और शरीर को संतुलित बनाता है, सहनशीलता और जागरूकता भी बढ़ाता है। तो आज हमने सीखा कि किस प्रकार आप अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए वृक्षासन का अभ्यास कर सकते हैं। परंतु ध्यान रहे, यदि आपको कोई आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या मोटापा बहुत ज्यादा है, चक्कर आते हैं, तो इस आसन का अभ्यास ना करें। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ योग करें।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रातः 5:30 हुए हैं। लीजिए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी। आज के स्वर रंजनी कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्री जावेद अली खान का राग भैरव में गायन।